फिर उस शख्स से बड़ा जालिम कौन होगा जिसने अल्लाह पर झूठ बांधा और जब सच्चाई उसके सामने आई तो उसे झुटला दिया। क्या ऐसे लोगों के लिए जहन्नम में कोई ठिकाना नहीं है? और जो शख्स सच्चाई लेकर आया और जिन्होंने उसको सच माना वही आजाब से बचने वाले हैं, उन्हें अपने रब के हाँ वो सब कुछ मिलेगा जिसकी वो ख्वाहिश करेंगे। ये है नेकी करने वालों की जजा, ताकि जो बदतरीन आमाल उन्होंने किए थे उन्हें अल्लाह उनके हिसाब से साक़त कर दे और जो बेहतरीन आमाल वो करते रहे उनके लिहाज से उनको अजर अता फरमाए। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह अपने बंदे के लिए काफी नहीं है? ये लोग उसके सिवा दूसरों से तुमको डराते हैं, हालांकि अल्लाह जिसे गुमराही में डाल दे उसे कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है और जिसे वो हिदायत दे उसे भटकाने वाला भी कोई नहीं। क्या अल्लाह जबरदस्त और इंतकाम लेने वाला नहीं है? इन लोगों से अगर तुम पूछो कि जमीन और आसमानों को किसने पैदा किया है तो ये खुद कहेंगे कि अल्लाह ने। इनसे पूछो, जब हकीकत ये है तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो क्या तुम्हारी ये देवियां जिन्हें तुम अल्लाह को छोड़कर पुकारते हो मुझे उसके पहुंचाए हुए नुकसान से बचा लेंगी? या अल्लाह मुझ पर मेहरबानी करना चाहे तो क्या ये उसकी रहमत को रोक सकेंगी? बस इनसे कह दो कि मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, भरोसा करने वाले उसी पर भरोसा करते हैं। इनसे साफ कहो कि ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता रहूंगा। अनकरीब तुम्हें मालूम हो जाएगा कि किस पर रुस्वा कुन आजाब आता है और किसे वो सजा मिलती है जो कभी टलने वाली नहीं। ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने सब इंसानों के लिए किताबे बरहक तुम पर नाजिल कर दी है, अब जो सीधा रास्ता अख्तियार करेगा अपने लिए करेगा और जो भटकेगा उसके भटकने का वबाल उसी पर होगा, तुम उनके जिम्मेदार नहीं हो।

उस चीज का फैसला करेगा जिसमें वो इख्तलाफ करते रहे हैं। अगर इन जालिमों के पास जमीन की सारी दौलत भी हो और उतनी ही और भी, तो ये रोजे कयामत के बुरे आजाब से बचने के लिए सब कुछ फिदिये में देने के लिए तैयार हो जाएंगे। वहां अल्लाह की तरफ से इनके सामने वो कुछ आएगा जिसका इन्होंने कभी अंदाजा ही नहीं किया है। वहां अपनी कमाई के सारे बुरे नताइज इन पर खुल जाएंगे और वही चीज इन पर मुसल्लत हो जाएगी जिसका ये मजाक उड़ाते रहे हैं।

0: عقد ومن شر حاسد إذا حسد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: आप सुन रहे हैं FM 107 दिल से देसी।
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल। सुनिए डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ FM 107 दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, हेल्थ फॉर ऑल में खुश आमदीद। लिसनर्स, पानी जिंदगी की पहली जरूरत है, लेकिन क्या आप और हम जानते हैं कि दिन में सिर्फ 2 ग्लास पानी पीना हमारे गुर्दों, हमारा दिमाग और स्किन तीनों के लिए खतरनाक हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि पानी की कमी के क्या क्या असरात हमारे जिस्म पर हो सकते हैं। आपके साथ शेयर करना चाहूँगी एक लेडी के बारे में जो कि ऑफिस वर्कर भी थी, मगर हर वक्त सर दर्द, थकन, आंखों में जलन ये शिकायत थी। तो फिर जो डॉक्टर थे उनके, उन्होंने पूछा कि आप पानी पीती हैं? उनके बस 2 से 3 गिलास पानी जो है वो मैं पीती हूँ। तो जब उसको डायग्नोज किया गया तो डिहाइड्रेशन जो है वो सामने आई। चंद दिन बाद जब उसी लेडी ने 8 गिलास रोज पीने शुरू किए तो सर दर्द, स्किन और मूड सब बेहतर होता चला गया। तो पानी की कमी के असरात बार दफा में नहीं पता चलता है, मगर अगर आपके सर में दर्द है, थकन महसूस हो रही है, चक्कर आ रही हैं, इसी तरह गुर्दों पर दबाव पड़ता है, हमारी जो स्किन है वो बहुत ही ड्राई और बेरौनक हो जाती है, शुगर लेवल कभी कम कभी ज्यादा हो सकता है या हो जाता है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में तहकीक की गई और उसमें देखा गया कि जो अफराद रोज 8 से 10 गिलास पानी पीते हैं उनमें दिल के अमराज का खतरा 50% कम हो जाता है। पानी जिस्म का एक बहुत ही सफाई का सिस्टम है। सुबह उठकर 1 गिलास नीम गर्म पानी पीजिए, ये हमारे जिगर को, हमारे लीवर को डिटॉक्स करता है। और याद रखिए, पानी चाहे जूस या कॉफी का मुतबादल नहीं है, सादा पानी असल मेडिसन है। अब आप ये कर सकते हैं कि आप कोई मोबाइल ऐप है या आपके पास कोई बॉटल है तो उस पर निशान लगा लीजिए कि पानी कितना आपने पीना है। और गर्मी में आप नमकीन लस्सी या नारियल पानी भी ले सकते हैं, वो भी बहुत मुफीद होता है। बच्चों को पानी की आदत बचपन ही से डाल दीजिए। तो क्या हम ये भी नोट करेंगे कि क्या आज हमने अपने जिस्म की जो प्यास है वो बुझाई कि नहीं। साफ पानी साफ सेहत। पानी सिर्फ जिस्म नहीं रूह को भी ताजगी देता है। हेल्थ फॉर ऑल,
1: कतर नेशनल हेल्थ स्ट्रेटेजी, हेल्थ फॉर ऑल, FM 107 दिल से देसी।
0: आप सुन रहे हैं FM 107
2: दिल से देसी।
3: सेहत की बात हो तो आत्मा चाहिए माहिरीन की राय पर, माहिरीन की राय पर। लीजिए, हाजिर है आपके लिए प्रोग्राम हेल्थ गाइड, हेल्थ गाइड, जहां आपके सवालात के मिलेंगे मुस्तनद जवाबात। स्पेशलिस्ट और कंसल्टेंट डॉक्टर्स करेंगे रहनुमाई, बीमारियों की पहचान से लेकर इलाज और एहतियात तक, इलाज और एहतियात तक। सुनिए हर वेंसडे बुध की रात 8 बजे हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफीक के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी, दिल से देसी। याद रखिए, सेहत ही है सबसे बड़ी दौलत।
4: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी।

प्यारे बच्चों ये बात तो हम सब जानते हैं कि हम सभी को इखलाकी कहानियाँ नहायत पसंद हैं। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं दिलचस्प और सबक आमोज कहानियाँ जिसमें छुपे हैं आपके लिए मजेदार कीमती सबक। जी हाँ, ये है सुनो और सीखो, जहाँ हर कहानी आपको हंसा भी देगी, सिखा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी कर देगी। दोस्तों, एक छोटे से गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम फारिस था। फारिस बहुत ज़हीन और हमदर्द बच्चा था, मगर सबसे अहम बात ये थी कि फारिस का दिल ईमानदारी से भरा हुआ था। वो हमेशा सच बोलता था, जो वादा करता था उसे पूरा करता था। फारिस के वालिदैन हमेशा इसे सच बोलने की और ईमानदारी की अहमियत बताते थे। बेटा, सच्चाई हमेशा सबसे बड़ी ताकत होती है। अगर तुम सच के रास्ते पर चलते हो तो अल्लाह की मदद तुम्हारे साथ होगी, ये बात हमेशा याद रखना। फारिस का दिल बहुत साफ था। वो ना सिर्फ अपने दोस्तों से ईमानदारी से बात करता था, बल्कि जब भी कोई छोटा सा मसला आता वो बगैर किसी खौफ या झिझक के सच बता देता था। एक दिन फारिस के गांव में एक बहुत बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज हुआ। गांव के लोग खुशी के मौके पर बहुत सी तैयारियां कर रहे थे और मुख्तलिफ किस्म के खाने पका रहे थे। ये इवेंट पूरे गांव के लिए था और फारिस बहुत खुश था। वो अपने दोस्तों के साथ खेलने और इवेंट का हिस्सा बनने के लिए बेताब था। साथियों, इवेंट के दौरान फारिस अपने दोस्त अहमद के साथ खेलने में मगन था। वो दोनों एक दूसरे के साथ दौड़ कर बहुत खुश हो रहे थे कि अचानक फारिस की नज़र एक शीशे के ग्लास पर पड़ी जो नीचे ही गिरा पड़ा था। ग्लास टूट चुका था और बहुत सारे लोग इसके इर्द गिर्द जमा हो गए थे। अहमद ने जल्दी से कहा, फारिस, ये तुमने ग्लास गिरा दिया, क्या किया? फारिस ने फौरन जवाब दिया, नहीं अहमद, मैंने ग्लास नहीं गिराया। लेकिन फारिस दिल ही दिल में ये जानता था कि इस बात का सच क्या है। वो जानता था कि ग्लास गिरा था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इसके बारे में क्या सच बोलना है। फारिस ने फौरन अपने दिल की आवाज सुनी और कहा, अहमद, मैंने ग्लास गिराया है, मैं माजरत खा हूँ। सब लोग फारिस की तरफ मुतवज्जो हो गए। गांव के बुजुर्गों में से एक शख्स ने कहा, फारिस, तुमने बड़ी ईमानदारी दिखाई बेटा, सच बोलना बहुत बड़ा अमल होता है और तुमने वो कर दिखाया है। फारिस ने सच बोलने की कीमत समझ ली। वो जानता था कि कभी कभार सच बोलना बड़ा मुश्किल काम हो सकता है, लेकिन ईमानदारी हमेशा इंसान की इज्जत में इजाफा करती है। एक दिन अली के वालिद ने इसे कहा, बेटे, मैं तुम्हें एक काम सौंपना चाहता हूँ। हमारे गांव के बाहर एक छोटा सा कारोबार खुल रहा है और मुझे तुम्हें वहाँ एक छोटी सी रकम देनी है ताकि वहाँ से कुछ खरीदारी की जा सके। फारिस बहुत खुश हुआ और अपने वालिद से वो रकम लेकर गांव के बाहर जाने लगा। वो रास्ते में अपने दोस्त अहमद से मिला और अहमद ने कहा, फारिस, तुम्हारे पास इतनी सारी रकम है, क्या तुम मेरे साथ खेलने आओगे? फारिस ने अहमद की बात सुनी और उसके दिल में आया कि वो रकम को खेलने में खर्च कर दे। फिर उसे अपने वालिद की बात याद आई कि जो वादा तुम करते हो उसे पूरा करना चाहिए। फारिस ने अहमद से कहा, नहीं अहमद, मुझे अपने वालिद के काम को पूरा करना है, मैं आज तुम्हारे साथ खेल नहीं पाऊंगा। अहमद थोड़ी देर के लिए चुप हो गया, लेकिन फिर वो मुस्कुरा कर बोला, फारिस, तुमने बहुत अच्छा फैसला किया मेरे दोस्त, तुम्हारी ईमानदारी हमेशा तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। फारिस के दिल में एक सुकून था क्योंकि उसने सच्चाई और ईमानदारी का रास्ता इख्तियार किया था। साथियों, फारिस की ईमानदारी की कहानी पूरे गाँव में फैल गई। गाँव के लोग उसकी मिसाल देने लगे और उसे अपने बच्चों को सच बोलने और ईमानदारी की अहमियत सिखाने के लिए कहने लगे। एक दिन गांव के बुजुर्गों में से एक शख्स जो बहुत मौजज़ था अली के पास आया और कहा, अली बेटा, तुम्हारी ईमानदारी ने पूरे गांव में एक नई रोशनी डाल दी है, तुमने हमें सिखाया कि सच बोलना कितनी बड़ी बात है। फारिस ने मुस्कुरा कर कहा, हम सबको ईमानदार बनना चाहिए क्योंकि सच्चाई का रास्ता हमेशा सही होता है। गांव के लोग इस बात को मानते थे और अपनी जिंदगियों में ईमानदारी को अपना असूल बना चुके थे। साथियों, एक दिन गांव में एक बहुत बड़ी परेशानी आई। गांव के किसानों की खेतों में बीमारी लग गई थी और वो नहीं जानते थे कि इसका इलाज कैसे किया जाएगा। गांव के लोग बहुत परेशान हो गए थे।
और मुख्तलिफ तरह से इलाज की कोशिश कर रहे थे। फारिस ने जब ये सुना तो वो बहुत फिक्रमंद हुआ। उसने फैसला किया कि वो किसानों की मदद करेगा और उन्हें ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलने की हिम्मत देगा। फारिस ने गांव के बुजुर्गों से सुना था कि एक खास किस्म का पौधा है जो खेतों की बीमारी का इलाज कर सकता है, लेकिन वो पौधा बहुत दूर के पहाड़ों में उगता है। फारिस ने फौरन ये फैसला किया कि वो उस पौधे को ढूंढने जाएगा। फारिस जब पहाड़ों की तरफ रवाना हुआ तो उसने अपने दिल में एक अहद किया कि वो हमेशा सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेगा। फारिस कई दिनों तक पहाड़ों में सफर करता रहा। वो बहुत थक चुका था, लेकिन उसके दिल में एक अजम था। आखिरकार फारिस को वो पौधा मिल ही गया जो खेतों की बीमारी का इलाज कर सकता था। उसने वो पौधा गांव में ले जाकर किसानों को दिया। किसानों ने उस पौधे को इस्तेमाल किया और उनके खेतों में जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। गांव के लोग बहुत खुश हुए और उन्होंने फारिस की ईमानदारी और अजम की तारीफ की। फारिस, तुमने तो कमाल कर दिखाया, तुम अपनी बात से फिरे नहीं। हमें तो ये डर था कि तुम ऐसे ही झूठ बोलोगे कि तुम पहाड़ों में गए हो, लेकिन तुमने तो ये कर दिखाया बेटा। तुम्हारी ईमानदारी ने हमारे गांव को कामयाब कर दिया। तुम्हारा ढेर सारा शुक्रिया फारिस। साथियों, ये कहानी हमें सिखाती है कि ईमानदारी और सच्चाई ही कामयाबी का रास्ता है। फारिस ने हमेशा सच बोला और अपनी ईमानदारी को जिंदगी का असूल बनाया। उसके इस अमल ने न सिर्फ उसकी जिंदगी को कामयाब बनाया बल्कि पूरे गांव की तकदीर बदल कर रख दी। साथियों, सच बोलना और वादे को पूरा करना इंसान को बहुत इज्जत देता है और ईमानदारी से की जाने वाली कोशिशें हमेशा कामयाब होती हैं। तो साथियों, इस कहानी से ये सबक मिलता है कि ईमानदारी और सच बोलना इंसान का सबसे बड़ा हथियार होता है। जब हम ईमानदार रहते हैं और सच बोलते हैं तो हमें दुनिया में इज्जत और कामयाबी मिलती है। ईमानदारी का रास्ता कभी भी आसान नहीं होता दोस्तों, लेकिन इसके फल हमेशा मीठे होते हैं।

के अंदर भी ऐसी हिर्स पैदा हो जाती है जैसे उसे डर हो कि शायद कल खाने को न मिले। दौलत पर दौलत, कमजोरों के हुकूक दबाना, किसी की जमीन, किसी का माल, किसी की मेहनत, सब कुछ अपने फायदे के पैमाने से देखा जाता है। क्यों? क्योंकि निगाह के सामने सिर्फ दुनिया है, उसके बाद कुछ नहीं। मगर मोमिन जानता है कि इस दुनिया के बाद एक और दिन है। वो जानता है कि माल अमानत और इम्तिहान है। कहाँ से कमाया, किस जरिए से आया, कहाँ खर्च किया, किस नीयत से खर्च किया, हर सवाल अपनी जगह मौजूद है। माल हराम जरिए से हासिल किया और हराम में खर्च किया तो हिसाब है। हराम से हासिल किया मगर किसी बज़ाहिर अच्छे काम में खर्च कर दिया, तब भी असल सवाल अपनी जगह कायम है कि माल आया कहाँ से। हलाल से कमाया मगर हराम मसरफ में लगा दिया, ये भी जवाब तलब है। और गौर कीजिए, हलाल कमाया और हलाल ही में खर्च किया तब भी इंसान मुकम्मल तौर पर हिसाब से वाहिद नहीं हो जाता। वहाँ नीयत, अदल और अकदार की रियायत का सवाल आ जाता है। मसलन किसी शख्स पर 10,000 रियाल ज़कात वाजिब है। रकम हलाल है, ज़कात भी अदा करनी है, बज़ाहिर मामला बिल्कुल सेफ साइड पर है। लेकिन अब सवाल यह है कि ज़कात किसको दी? एक फ़कीर को इसलिए ज़्यादा दे दिया कि वो आपको देखकर बहुत एहतराम करता है, खुश आमदीद कहता है, आपकी तारीफ करता है, जबकि एक दूसरा शख्स उससे ज़्यादा मोहताज था मगर आपको वो ज़ाती तौर पर पसंद नहीं था इसलिए उसे छोड़ दिया। यहाँ सवाल पैदा होता है कि आपने अल्लाह का हक अदा किया या अपने पसंद नापसंद को दरमियान में ले आए। यही तो आखिरत के हिसाब की बारीकी है। इसलिए हमें अभी से अपनी ज़िंदगी का इंटरनल ऑडिट करना चाहिए। इंसान को ख़ुद से पूछना चाहिए, मेरे माल में क्या हलाल है, क्या मुश्तबा है? किसी इदारे, कंपनी या सरकारी माल से मैं जो कुछ ले रहा हूँ, क्या वाकई मुझे उसकी इजाज़त है, या सिर्फ इसलिए अपने लिए हलाल समझ बैठा हूँ कि मैंने बहुत मेहनत की है, मैं डिज़र्व करता हूँ। महज ये महसूस करना कि मैं उसका हकदार हूँ किसी चीज़ को शरण आपका हक नहीं बना देता। बाज़ औक़ात हम दूसरों के लिए एक मीज़ान रखते हैं और अपने लिए दूसरा। दूसरा गलती करे तो फौरन याद आता है कि अल्लाह शदीदुल अक़ाब है, और हमसे गलती हो जाए तो फौरन कहते हैं कि अल्लाह गफूरुर रहीम है। हालांकि मोमिन का मिजाज ये होना चाहिए कि दूसरे के मामले में रहम और अपने मामले में एहतसाब ज़्यादा हो। अगर आप माल ले रहे हैं तो एक सवाल जहन में रखिए, अगर अल्लाह क़यामत के दिन पूछे, मेरे बंदे ये माल कहाँ से लिया, किस हक से लिया, किस इजाज़त से लिया, तो क्या मेरे पास जवाब होगा? ये सवाल दुनिया को सही तरीके से इस्तेमाल करना सिखाता है, क्योंकि इस्लाम दौलत का दुश्मन नहीं है। माल की मोहब्बत, दौलत की मोहब्बत इंसान की फितरत में रखी गई है। कुरान कहता है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम।

हलो हराम है, जिम्मेदारी है, सब्र शुक्र है, वहाँ आखिरत में तकलीफ नहीं होगी, जन्नत में अबदी राहत होगी, यहाँ सवालात हैं वहाँ नतायज हैं। इसीलिए ईमान बिलगैब इंसान की पूरी तरजीहात बदल देता है। हम दुनिया को बहुत बड़ा समझ लेते हैं, जबकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर दुनिया अल्लाह के नज़दीक मच्छर के पर के बराबर भी होती तो अल्लाह किसी काफिर को उसमें एक घूंट पानी तक न देता। समझ कराम, ये दुनिया कितनी बड़ी है, जिस दिल ने आखिरत को देखा उसके लिए दुनिया खुद ब खुद छोटी हो जाती है। तो इससे मालूम होता है कि आजमाइश हमेशा इंसान को तोड़ने के लिए नहीं आती, बाज़ आजमाइशें उसका मकाम जाहिर करने के लिए आती हैं। समझ कराम, आज हमारी एक बड़ी कमज़ोरी ये है कि हम दीन के समरात तो चाहते हैं मगर उसकी जिम्मेदारियाँ कबूल नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि दुनिया में सुकून भी मिले, रिज़्क में बरकत भी हो, औलाद नेक भी हो, दुआएं कबूल भी हो और आखिरत में जन्नत भी मिले, लेकिन जब दीन हमसे माल मांगता है तो हम हिसाब बदलने लगते हैं। जब ज़कात का वक्त आता है तो कोई अपनी दौलत छुपाता है, कोई माल की नौईयत बदलने की कोशिश करता है, कोई ऐसा फतवा तलाश करता है जिससे वाजिब कम से कम हो जाए, और कोई पूरी तवानाई इस बात पर सर्व करता है कि अल्लाह का हक कैसे बचाया जाए। हालांकि ज़कात तो वही माल की पाकिजगी है, कुरान उसे बोझ नहीं तज़किया करार देता है। अब कॉस्ट फ्री इस्लाम पर कॉस्ट फ्री ईमान चाहने वाला इंसान ये सोचता है, अरे माल भी मुकम्मल मेरे पास रहे, दिल में दीनदारी का एहसास भी कायम रहे और आखिरत का अजर भी मिल जाए। तो ये मंतिक तो भाई कुरान के निज़ाम से हम आहंग नहीं। अल्लाह ताला ने दीन को इंसान की ख्वाहिशात का ताबे नहीं बनाया बल्कि इंसान को अपने रब के हुक्म के सामने झुकने की दावत दी है। लफ्ज़ इस्लाम बजाते खुद अपने अंदर तस्लीम, सुपुर्दगी और इताअत का मफहूम रखता है। मुसलमान होने का मतलब ये है कि इंसान अपने आप को अल्लाह के हुक्म के हवाले कर दे। ये सिर्फ ज़बान से मैं मुसलमान हूँ कहने का नाम नहीं, बल्कि ये कहना है कि अल्लाह जहाँ मेरी ख्वाहिश तेरे हुक्म से टकराएगी मैं अपनी ख्वाहिश को पीछे करूँगा, जहाँ मेरा फ़ायदा और तेरा हुक्म आमने सामने होंगे मैं तेरे हुक्म को मुकद्दम रखूँगा, जहाँ मेरी अना और हक में तसादुम होगा मैं हक के सामने झुकूँगा। यही तस्लीम है, लेकिन इस दावे की सदाकत जाँचने के लिए आजमाइश भी ज़रूरी है। एक मुलाजिम अपने इदारे के सरबराह से कहता है, मेरी वफादारी मुकम्मल तौर पर आपके साथ है, लेकिन जैसे ही किसी दूसरी जगह से मामूली बेहतर तनख्वाह की पेशकश आती है वो फौरन सब कुछ छोड़ देता है। अब उसकी साबका वफादारी का दावा कहाँ गया? असल हकीकत तो पेशकश के आने के बाद जाहिर हुई। इसी तरह अल्लाह के साथ हमारी वफादारी भी सिर्फ आसानी के ज़माने में नहीं जांची जाती बल्कि उस वक्त सामने आती है जब दुनिया किसी दूसरी तरफ हमें बुला रही हो। समय निक्रम, आजमाइश के बारे में हमारी समझ अक्सर अधूरी होती है। हम जब किसी बीमार को देखते हैं तो कहते हैं अल्लाह उसे आजमाइश से निकाले, किसी फ़कीर को देखते हैं तो कहते हैं ये बड़ा मुबतला है, किसी मजलूम बेरोज़गार या परेशान शख्स को देख कर हमें फ़ौरन इब्तला याद आता है, लेकिन जब कोई सेहतमंद दौलतमंद साहिब मनसब और आसूदा हाल हो तो हम समझते हैं कि उसकी ज़िंदगी में कोई इम्तहान नहीं। ये तसव्वुर गलत है, दुरुस्त नहीं। अल्लाह फरमाता है वलनब्लुवन्नकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, हम तुम्हें बुराई और भलाई दोनों के ज़रिए आजमाते हैं, यानी बीमारी भी इम्तहान है और सेहत भी, फ़क्र भी इम्तहान है और दौलत भी, नाकामी भी इम्तिहान है और कामयाबी भी। कभी आजमाइश आंसुओं के साथ आती है और कभी आजमाइश मुस्कुराहटों में छुपी होती है। कभी इंसान को कुछ लेकर आजमाया जाता है और कभी बहुत कुछ देकर। जब इंसान बीमार होता है तो अल्लाह को पुकारता है, या अल्लाह मुझे सेहत दे दे, रात को दुआ करता है, कुरान पढ़ता है, सदका देता है, अपनी कमज़ोरी महसूस करता है। जब माली तंगी आती है तो उसके अंदर आजिज़ी पैदा होती है। इस सिलसिले में इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह का एक नहायत मानखेज़ जुमला है जिसका मफहूम यूँ है कि अगर दुनिया सोने की हो मगर फना होने वाली
اور آخرت مٹی کی ہو مگر ہمیشہ باقی رہنے والی۔

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।
1: दोस्तों, जरूरतमंदों की मदद करना एक अहम और नोबल काम है, लेकिन आजकल फ्रॉडस्टर्स इसका फायदा उठाकर लोगों को धोखा दे रहे हैं। ऐसी स्कीम से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। यहाँ कुछ और हिदायत दी गई हैं, जो आपको फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज से बचाने में मदद दे सकती हैं। चैरिटेबल वेबसाइट की वेरिफिकेशन करें। जब आप ऑनलाइन चैरिटी देने का सोच रहे हो, तो इंश्योर करें कि जिस वेबसाइट पर आप चैरिटी दे रहे हैं वो ऑफिशियल और सिक्योर हो। ऐसी वेबसाइट्स पर https://होने चाहिए और उनकी रजिस्ट्रेशन डिटेल्स क्लियर होनी चाहिए। दूसरा, ओवर द फोन डोनेशंस। अगर आपको फोन पर चैरिटी देने की दरख्वास्त मिले तो इस पर शक करें। चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन अक्सर डायरेक्ट कॉल्स नहीं करती। अगर आपको कॉल आती है तो पहले उनका वेरिफिकेशन करें। तीसरा, सोशल मीडिया रिक्वेस्ट। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अक्सर फ्रॉडस्टर्स अपनी प्रोफाइल बनाकर लोगों से पैसे मांगते हैं। ऐसी रिक्वेस्ट को अवॉइड करें और सिर्फ उन्हीं ऑर्गेनाइजेशंस को मदद दें जो पहले से एस्टेब्लिश्ड और ट्रस्टेड हों। चौथा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। कभी भी अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन जैसे क्रेडिट कार्ड डिटेल्स, एड्रेस एक्सेट्रा किसी भी अननोन सोर्स को ना दें। अगर आपको किसी भी चैरिटी की रिक्वेस्ट के दौरान अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन देने का कहा जाए तो उसे फौरन रिजेक्ट करें। पांचवा, टैक्स रिसीप्ट। जेन्युइन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन आपको डोनेशन के बाद टैक्स रिसीप्ट्स भी देती हैं। अगर आपको रिसीप्ट ना मिले तो ये एक वार्निंग सिग्नल हो सकता है कि हो सकता है जो आपने चैरिटी दी वो इल्लीगल या फेक ऑर्गेनाइजेशन के पास गई हो। अगर आपको कभी भी शक हो कि कोई ऑर्गेनाइजेशन या इंडिविजुअल आपको धोखा दे रहा है तो फौरन अथॉरिटीज को इन्फॉर्म करें। आप अपनी कंप्लेंट्स हॉटलाइन नंबर 3361-8627 पर कॉल करके या मेथराज ऐप का इस्तेमाल करके भी रिपोर्ट कर सकते हैं। ये टिप्स आपकी चैरिटी को सेफ और ट्रांसपेरेंट बनाने में मदद देंगी और आपको फ्रॉडस्टर्स के जाल में नहीं आने देंगी। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: क्या आपने कभी खुद से पूछा है, अगर आज मुझे किसी की जरूरत ना हो तो मैं कौन हूं? अक्सर औरतें दूसरों की खुशी में अपनी आइडेंटिटी भूल जाती हैं, मगर अब वक्त है खुद से मिलने का। आरजे एफ और अमिता लेकर आ रही हैं एक नया सफर, मेरी पहचान। बर्नआउट से लेकर नए बिजनेसेस तक, सेहत से लेकर सुकून तक, ये शो है हर उस औरत के लिए जो अपनी बाउंड्रीज तय करना चाहती है। आप सिलसिले की एक कड़ी नहीं, आप

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में। हर मोड़ पर एक नई उम्मीद, मेरी पहचान। सुनिए हर वेंसडे सुबह 10 बजे से और हर फ्राइडे रात 10 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 Time Check. Time Check. राइट दोस्तों, वेलकम बैक. टाइम फॉर द टाइम चेक. इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 6:01.
1: आप

0: हाँ जी सलाम आदाब, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. और आज है वेंसडे का दिन, अगस्त 26, एक और नया दिन. और कल है वीकेंड. कहाँ ये वीक चला गया पता नहीं चला, और ये बिल्कुल लास्ट वीक था. नहीं, अभी दो दिन और हैं जब आपकी और मेरी मुलाकात मॉर्निंग्स में होगी. आई मीन टू से लाइक कमिंग संडे एंड मंडे. लेकिन हाँ, उसके बाद हमारे टाइमिंग्स थोड़े से चेंज होने वाले हैं. जब मैं आ रही थी तो मेरे दिमाग में एक बड़ी प्यारी सी लाइन आई, ख्वाब और ख्वाहिशों को लेकर. मुझे लगा कि देखो, आँख खुली और हमारे ख्वाब जो हैं वो हमसे छूट जाते हैं, रूठ जाते हैं. हमारी ख्वाहिशें जो हैं वो लेकिन कभी हमसे रूठती नहीं, लगातार कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमें जो है वो मोटिवेट करती रहती हैं. हम अक्सर ये देखते हैं कि हम एक ख्वाब से दूसरे ख्वाब की तरफ, फिर तीसरा, फिर चौथा, और इसी तरह से हम एक के बाद एक दूसरे ख्वाब की तरफ बढ़ते जाते हैं. और ज़िंदगी रुकने का नाम भी नहीं है, बल्कि मैं कहूँगी कि हर रोज़ नए मकसद और नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने का नाम है. और ख्वाब होने चाहिए, देखने चाहिए. जब ख्वाब पूरे होते हैं ना, तो दिल में एक नया ख्वाब दूसरा जो है वो पैदा हो जाता है. और शायद इसी तलाश, इसी उम्मीद और इसी सफ़र का नाम जिंदगी है. इसीलिए कभी भी मैं ये नहीं कहती कि ख्वाब देखना मत छोड़ो, बल्कि खुली आंखों से भी ख्वाब देखो, क्योंकि ख्वाब ही हैं, ड्रीम्स ही हैं जो इंसान को जिंदा, पूर्ण उम्मीद और कामयाबी की तरफ लेकर जाते हैं. यानी जब तक ख्वाब जिंदा है, तब तक जिंदगी में आगे बढ़ने की वजह भी जिंदा है. तो बस हम जिंदा हैं और जिंदा हैं तो ये एहसास भी होना चाहिए. चलिए आज इसी खूबसूरत सी और पॉजिटिव सी लाइन के साथ शो का आगाज करते हैं. बहुत सारी बातें आज भी हैं जो आपके साथ शेयर की जाएंगी, लेकिन अभी के लिए हम बढ़ रहे हैं मॉर्निंग असकार की तरफ. और हाँ, अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, नंबर है 666-22-107, और कॉल करने के लिए नंबर है 443-443-77.
1: एक पुरसकून और खामोश सुबह फजर की रोशनी से शुरू होती है. इन्हीं पाकीजा लम्हों में दुआएं कबूल होती हैं, बरकतों का नुजूल होता है, और अल्लाह की रहमतें उनकी तरफ मुतवज्जे होती हैं जो उसे याद रखते हैं. इरशाद खुदावंदी है, वज़्कुर इस्मा रब्बिका बुकरतन व असीला, और सुबह शाम अपने परवरदिगार के नाम का जिक्र किया करो. और अब समाज फरमाइए सुबह के अजगार FM 107 पर.

राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूं नाजिया आपके साथ 6:14 ऑन द क्लॉक। एंड यस, चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मौसम की। तो आज का मौसम कैसा रहने वाला है? वैसे आज जो है वो थोड़ा सा मैंने देखा स्लाइटली बेहतर रहेगा। मैक्सिमम टेम्परेचर आज है 39 डिग्री सेल्सियस। हर रोज़ हम बताते हैं 43, 44, 42, बट टुडे इट्स लाइक 39 और मिनिमम रहने वाला है 33 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर ह्यूमिडिटी की बात की जाए तो ह्यूमिडिटी सुबह और शाम के वक्त ज़्यादा रहेगी, लगभग 45 से 85 के दरमियान, और शायद इसी वजह से एक्चुअल जो टेम्परेचर है उससे ज़्यादा हमें और आपको गर्मी महसूस होती है। बट दिन आज उतना नहीं है जैसे मैंने आपको बता ही दिया। वहीं पर यूवी इंडेक्स की बात की जाए तो आज यूवी इंडेक्स इज वेरी हाई कैटेगरी में है, 8 से 9 के दरमियान रह सकता है। और स्पेशली 10 बजे से लेकर 3 बजे तक कोशिश ये कीजिए कि आप जो है वो डायरेक्ट सनलाइट से

बचें। इसके साथ अगर सनराइज़ की अगर हम बात करें तो आज जो है सनराइज़ हुआ है 5:12 AM पर और सनसेट होगा 6:06 PM पर। जी हाँ, वहीं पर डे लाइट आज जो है वो लगभग हमें 12 घंटे और 45 मिनट्स के मिल रहे हैं, जो कि काफ़ी हैं। पूरे दिन हम इतने सारे काम कर सकते हैं, इतना है हमारे पास टाइम। वैसे ऑल टुगेदर आज जो है वो सनी रहेगा, एकदम क्लियर है। और बस बाकी चीज़ें तो आपको पता ही है, पानी वानी की बात तो हम करते ही रहते हैं, वो तो आपको मालूम ही मालूम है, बार बार क्या रिपीट करें। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, जो पीक हीट आज हैं उनमें आप कोशिश कीजिए कि अननेसेसरली आपकी जो आउटडोर एक्टिविटीज़ हैं वो ना हो, उन्हें आप अवॉइड करें। एंड हाँ, जो एल्डरली पीपल हैं उनका और छोटे बच्चों का, इनका भी खास ख्याल रखिए। इनको इन आज में जो पीक आज हैं लाइक 10 to 3, इनमें कहीं इधर उधर जो है वो ये ना चाहें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनडोर एक्टिविटीज़ ही इनके लिए हों, ये बेहतर रहेगा। तो चलिए, मौसम की तो आज हमने बात कर ली और आज है 26th of August। तो आज आ जाते हैं कि आज दुनिया भर में कौन से खास ऑब्जर्वेंसेज जो हैं वो मनाए जाते हैं, जिसमें आज मैं देख रही थी ये बड़ा अच्छा दिन है, एंड दिस इज़ कॉल्ड वुमेन्स इक्वालिटी डे। आज का दिन जो है वो कहीं ना कहीं वुमेन्स इक्वालिटी डे इसलिए मनाया जाता है कि ये जितनी भी फीमेल्स हैं उनके हुकूक, उनके अचीवमेंट्स, उनके सोसाइटी में जो उनका रोल है उसे सेलिब्रेट किया जाए। और ये दिन कहीं ना कहीं याद दिलाता है कि जो तालीम है, रोज़गार है, या फिर जो ज़िंदगी के हर फील्ड में जो वुमेन को बराबरी के मौके मिलने की बात होती है, उस पर बाकायदा से पूरी तरीके से सही तरीके से अमल भी किया जाए। तो चलिए, आज ये है वुमेन्स इक्वालिटी डे, और कहीं ना कहीं ये डे हमें और आपको पैगाम भी देता है कि जब सोसाइटी में हर शख्स को बराबर के मौके मिलते हैं तो कामयाबी जो है वो सही तरीके से हो पाती है, इसलिए मौके सबको मिलने चाहिए। इसके अलावा आज ये दिन भी है भाई, आज है नेशनल डॉग डे। अब ये जो दिन है वो क्यों मनाया जाता है, ये तो आप जानते हैं कि डॉग्स की जो लॉयल्टी है, जो फ्रेंडशिप है, या जो भी उनका पॉजिटिव रोल है उसे अप्रिशिएट करने के लिए आज का दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। और दुनिया भर में लोग जो है वो अपने पेट्स के साथ वक्त गुजारना पसंद करते हैं, और जितने भी एनिमल वेलफेयर हैं वो अवेयरनेस आज के दिन जो है वो डॉग से रिलेटेड जो भी अवेयरनेस है वो फैलाते हैं। तो आज ये भी दिन है और एक दो दिन ऐवे ही हैं, बस क्या ये बताएं। तो चलिए, बस यही एक ख़ास दिन है, बाकी अब मैं इंतज़ार करूँगी यूसुफ जी कुछ और मुझे बताएं तो मुझे समझ में आए, लेकिन हाँ कुछ ख़ास और दिन है नहीं। लेकिन हाँ, वैसे ख़ास दिन है, ख़ास ऑफकोर्स क्यों नहीं, हर दिन ख़ास है, और नहीं है तो कुछ ना कुछ ख़ास बात करनी ही चाहिए। तो बस आपकी लाइफ में क्या कुछ चल रहा है, कुछ ख़ास चल रहा है कि नहीं चल रहा है, या कुछ ख़ास प्लान किया है कि नहीं किया है, या फिर जो नॉर्मल रूटीन है उसे ही आप भरपूर तरीके से फॉलो कर पा रहे हैं, अगर ये भी कर पा रहे हैं तो भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पता है, ये भी बहुत ख़ास बात होती है। आसान नहीं होता हर रोज़ जो है अपने आप को झंझोड़ना, अपने आप को नींद से निकालना और फिर अपने काम पर चले जाना, और फिर वक्त कहाँ निकल जाए, हंसते खेलते काम करते पता ही ना चले। ये रूटीन अगर आपका सेट है और हर रोज़ आप ऐसा कर पा रहे हैं, आप कामयाब हैं। हाँ जी, और अब आ जाते हैं आपके मैसेजेस की तरफ। यहाँ पर हमें गुड मॉर्निंग का मैसेज भेजा है यूसुफ जी ने। ओके, ये तो आपने बताया ही है। ओके, गुड मॉर्निंग कहते हैं, आज मिस नाजिया पूरी टीम ऐसे ही स्माइल्स जो हैं वो बांटती रहिए, पॉजिटिविटी स्प्रेड करती रहिए, और हर दिल को खुशियों से जो है वो रोशन करती रहिए। हैव अ वंडरफुल एंड एनर्जेटिक डे एंड आई विश यू द सेम। थैंक यू सो वेरी मच, और बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से मैसेज का। इसके साथ हमारे साथ जो हैं लियाकत अली जी हैं, ये जुड़ गए हैं, और कुछ तो वीडियो इन्होंने हमें भेजा हुआ है जो मुझे देखना पड़ेगा क्या भेजा है। इसके साथ यहाँ पे हुसैन जी हमारे साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग आपको, एंड गुड मॉर्निंग का मैसेज है, और इनका नाम है रहमान जी, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। और यहाँ हमें मैसेज किया है, इनका नाम चेक कर लेते हैं, बशीर जी गुड मॉर्निंग कहते हैं, मैडम कैसी हैं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ,

0: न्याज जी हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग। यहाँ हमें मैसेज है अहमद जी का, गुड मॉर्निंग एंड सुबह बखैर आपको भी और सारे सुनने वालों को भी, उन्होंने कहा है। इसके अलावा हमें मैसेज है, इनका नाम हम चेक करते हैं, साजिद जी हैं और बकरा से दोहा जाते हुए हमें सुन रहे हैं। सो थैंक यू एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। अब वापस से मैं रिपीट करना चाहूँगी, थोड़ी देर बाद जो है वो हम, अभी तो खैर टाइम है, अभी थोड़ा सा टाइम लेंगे, अभी हम लोकल अपडेट्स वगैरह भी आपके साथ शेयर करेंगे, लेकिन हाँ जब उसके बाद आप और हम मिलेंगे तो हमारा जो टॉपिक है वो हम रिवील कर देंगे। और टॉपिक जब हम एक बार रिवील कर ही देते हैं तो फिर हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ओवर कॉल जुड़ें, और कॉल करने के लिए जो नंबर है वो प्लीज़ आप लिख लीजिए, नंबर है 4434377। इस नंबर पर आपका हमारा साथ होगा, मतलब ओवर कॉल। वैसे अगर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं, कुछ भी वॉइस नोट भेजना चाहते हैं, देन द नंबर इज 666-22107। सो चलिए फिलहाल के एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और हम यूं गए और यूं ही आए।
1: कहते हैं जिंदगी एक रेस है, लेकिन क्या आप इस रेस में भागने के लिए तैयार हैं?
2: आपका करियर सिर्फ एक जॉब नहीं, आपके फ्यूचर की डायरेक्शन है। तो फिर सवाल ये है कि आप किस डायरेक्शन में जा रहे हैं?
1: नए करियर्स, फ्यूचर स्किल्स, चेंजिंग जॉब मार्केट और वो अपॉर्चुनिटीज जो आपके मुस्तकबिल को नई राह दे सकती हैं। सुनिए प्रोग्राम फ्यूचर करियर आरजे महविश खान के साथ हर मंडे शाम 7:15 से ओनली ऑन FM 107। अपने करियर का अगला कदम सोच समझ कर उठाइए।
3: हर नबी की जिंदगी एक सबक है, एक रोशनी जो हमें राह दिखाती है। उनकी कुर्बानियां, सब्र और अल्लाह पर यकीन हमें सिखाता है कि मुश्किलें आती हैं मगर ईमान हमेशा जीतता है। स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, स्टोरीज ऑफ प्रॉफिट्स, जिसमें आप सुनेंगे नबियों की दिलचस्प कहानियां, उनकी मेहनत, उनके इम्तिहान और उनके पैगामात जो दिल को छू लेते हैं। आप भी इस सफर में शामिल हों और इन पाक कहानियों से अपने दिल को रोशन करें।
4: सुनिए शो आरजे महविश खान के साथ हर बुध दोपहर 1 बजे से ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
3: इस दुनिया में हमें मुख्तलिफ रिश्ते और ताल्लुकात जोड़ते हैं, मुख्तलिफ लोगों के साथ मेल जोल रखते हैं, जिनमें से कई अफराद को हम दोस्त भी बना लेते हैं। ये सोहबतें हमारी जिंदगी का एक नुमाया रंग बन जाती हैं। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने कई अस्हाब के वाकियात बयान किए हैं ताकि हम इबरत हासिल करें और राह रास्त पर आ जाएं।
5: सुनिए प्रोग्राम कससुल कुरान आरजे तलहा और आरजे सरवर के साथ हर जुम्मा दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर।
6: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، خوش آمدید آپ کو آپ کے پسندیدہ پروگرام سننا آف دی ڈے میں۔ ہم میں سے بہت سے لوگ یہ خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا تعلق دین اسلام سے مزید مضبوط ہو، ہمارا ایمان بڑھے اور ہماری زندگی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے بھر جائے۔ اکثر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے لیے شاید بہت بڑے بڑے اعمال، لمبی عبادات یا مشکل مراحل درکار ہیں۔ حالانکہ کبھی کبھی اللہ کے قریب ہونے کا سب سے آسان راستہ انہی چھوٹی چھوٹی سنتوں میں پوشیدہ ہوتا ہے جنہیں ہم روز مرہ زندگی میں آسانی سے اپنا سکتے ہیں۔ ماہرین نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بڑی تبدیلی ہمیشہ چھوٹے قدموں سے شروع ہوتی ہے۔ اسی لیے اس پروگرام میں ہم ایسی آسان اور مختصر سنتوں کا ذکر کریں گے جو صرف چند سیکنڈ یا 1 منٹ لیتی ہیں، لیکن انسان کی روح، عادتوں اور اللہ سے تعلق کو مضبوط بنانے میں بہت بڑا کردار ادا کرتی ہیں۔ تو آئیے آج ہم مل کر ایک اور خوبصورت سنت سیکھتے ہیں اور اپنی زندگی کو سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی سے منور کرتے ہیں۔ سامعین کرام، ہم میں سے اکثر لوگ خرید و فروخت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، قیمت پر بات چیت کرتے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے معاملات صرف نفع و نقصان پر قائم ہیں یا ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق بھی جھلکتے ہیں؟ آج کی سنت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ ایک مسلمان کا کردار اس کے کاروبار اور لین دین میں بھی نمایاں ہو

0: फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानी का सबब बनाए, आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के साथ किसी सुन्नत को अपनी रोजमर्रा जिंदगी का हिस्सा बनाते हैं तो वो सिर्फ एक अमल नहीं रहती बल्कि हमारे ईमान की खूबसूरती बन जाती है। प्रोग्राम सुन्ना ऑफ द डे के आज के इस हलके से साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और मुझे तलहा अशरफुज़्ज़मान को आइंदा मुलाकात तक के लिए दीजिए इजाजत। मअस्सलामा।
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

हाँ जी दोस्तों, वेलकम बैक. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नासिया आपके साथ 6:32 ऑन द क्लॉक. एंड यस, चलिए अब जो कुछ लोकल अपडेट्स हैं उसकी तरफ आ जाते हैं. और आज कौन कौन सी अपडेट्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ. तो सबसे पहले हम बात करते हैं कतर म्यूज़ियम की. जी हाँ, दोहा में कतर म्यूज़ियम सेप्टेम्बर से एक ख़ास एग्जिबिशन, और इस एग्जिबिशन का नाम है उज़्बेकिस्तान हेरिटेज इन मोशन, पेश करने जा रहा है. और ये एग्जिबिशन म्यूजियम ऑफ इस्लामिक आर्ट में 3 सितंबर से लेकर 28 नवंबर 2026 तक चलेगी. आपको बताएं कि इस एग्जिबिशन में उज़्बेकिस्तान की 1000 साल से ज़्यादा पुरानी तारीख और कल्चर को दिखाया जाएगा. यहाँ 146 हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट्स डिस्प्ले किए जाएंगे, जिनमें मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं, सिरेमिक्स हैं, ज्वेलरी है, टेक्सटाइल है, और कुछ आर्किटेक्चरल पीसेस भी शामिल किए गए हैं. जी हाँ, एग्जिबिशन का मकसद है ये दिखाना कि उज़्बेकिस्तान की जो पुरानी इस्लामिक ट्रेडिशन है और जो आर्ट है, आर्किटेक्चर है, वो किस तरह से आज के मॉडर्न वर्ल्ड को असरअंदाज कर रही है. तो अगर आप जो हैं वो हिस्ट्री, कल्चर या फिर इस्लामिक हेरिटेज में दिलचस्पी रखते हैं, तो मैं कहूँगी डेफिनेटली सेप्टेम्बर में आप जा सकते हैं. ये स्टार्ट हो जाएगी एग्जिबिशन 3 सितंबर से और जारी रहेगी काफ़ी लंबी, 28 नवंबर तक. तो भरपूर मौका है कि आप जाएं, देखें और उज़्बेकिस्तान के कल्चर को, उनके ट्रेडिशंस को उन्हें भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं. तो चलिए, ये हुई एक न्यूज़. और दूसरी न्यूज़ भी उज़्बेकिस्तान शहर से ही, उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद से है. आपको बताएं कि उज़्बेकिस्तान के शहर ताशकंद में इंटरनेशनल मीडिया फोरम्स का आगाज हुआ है, जहाँ पर जर्नलिस्ट, फिल्म मेकर्स, एकेडमिक्स और डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट्स ने शिरकत की है. इस साल फोरम का थीम रखा गया है इस्लामिक सिविलाइजेशन, अ न्यू पर्सपेक्टिव, न्यू डिस्कवरीज. और इसका मकसद ये दिखाना है कि इस्लामिक हिस्ट्री और स्कॉलरशिप को आज के ऑडियंसेस किस तरह से एक्सेप्ट करें, और किस तरह से जर्नलिज्म, टेलीविजन, डॉक्यूमेंट्रीज और डिजिटल टेक्नोलॉजी के जरिए इसे और लोगों तक पहुँचाया जाए. जी हाँ, पार्टिसिपेंट्स ने कतर ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन इन उज़्बेकिस्तान का भी दौरा किया, और इस सेंटर में इस्लामिक हिस्ट्री, साइंस और कल्चर से मुतालिक बहुत सारी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई. और यहाँ एक बहुत अहम हिस्टोरिकल मैन्यूस्क्रिप्ट, ऑटोमन कुरान भी रखा गया है, जो दुनिया के कदीम तरीन कुरान मैन्यूस्क्रिप्ट में से एक माना जाता है और यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में भी शामिल है. तो ये भी एक बहुत ही अच्छा मौका है कि लोग जो हैं वो इस्लामिक सिविलाइजेशन को मीडिया के थ्रू दुनिया तक पहुँचाएँ. और वाकई ये तो बहुत ही अच्छा कमाल का फोरम. और इसके साथ एक और अपडेट, और ये अपडेट जो है वो ऑटिज़म के हवाले से है. कतर फाउंडेशन, यूनिसेफ, WHO, ऑटिज़म स्पीक्स और कतर की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल डेवलपमेंट एंड फैमिली की तरफ से ग्लोबल ऑटिज़म एडवोकेसी इंटरनेशनल रीच को जो है बढ़ाने के लिए प्रमोट की जा रही है. इस कोलैबोरेशन का जो मकसद है वो है कि ऑटिज़म के हवाले से दुनिया भर में अवेयरनेस को जो है वो फैलाया जाए, बढ़ाया जाए, प्रैक्टिकल एक्शंस लिए जाए, और इसमें डायग्नोस करना, एजुकेशन, लर्निंग, टेक्नोलॉजी, लाइफ लॉन्ग सपोर्ट, इसके प्लान्स भी शामिल किए गए हैं. आपको बताएं कि ये कोलैबोरेशन नए इंटरनेशनल पार्टनर्स को भी शामिल करता है, जिनका ताल्लुक एजुकेशन से है, हेल्थ केयर से है और साथ ही फिलैंथ्रोपी से भी है. तो

0: ये अपने आप में कमाल का इनिशिएटिव, दुनिया भर में बहुत सारे लोग जो हैं और मिलियंस जो हैं वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम पर हैं, और इसीलिए इनका फोकस है इंक्लूजन, डिग्निटी और सपोर्ट को बढ़ावा देना। तो ये भी अपने आप में कतर की बेहतरीन कोशिश जो हमने आप तक पहुंचाई, और अब आपके कुछ प्यारे प्यारे मैसेजेस जो हम तक पहुंचेंगे, और फिर उसके बाद हमारा जो आज का टॉपिक है आप तक पहुँचेगा। तो बस अब हम इस टॉपिक पर भी बात करना स्टार्ट कर देंगे। आपको जुड़ना है हमारे साथ, यू नो द नंबर 4-4-3-4-4-3-7-7। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मेरे साथ व्हाट्सएप पे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 666-22-107। यहाँ पर कुछ मैसेजेस आ चुके हैं, कैसे आप और आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, हम डेली सुनते हैं, हमारा दिन बन जाता है। ये प्यारा सा मैसेज इमरान जी का है, थैंक यू सो मच। और आपके प्यारे से मैसेज के बाद तो मेरा दिन बन गया। यहाँ पर सलाम कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं सऊदी अरेबिया से, हमें सुनते हुए कोई तो कौन है नाम नहीं बताया है इन्होंने। चलिए थैंक यू सो मच आपके मैसेज के लिए। हमको ये मैसेज है लतीफ़ खान जी का, और लतीफ़ खान जी ने एक वीडियो बहुत प्यारा सा भेजा है, वेरी गुड मॉर्निंग आपको भी। इसके अलावा हमें जो है वो मोहसिन अलखोर से सुनते हुए सलाम कहते हैं, होप एवरीथिंग विल बी फाइन, गुड मॉर्निंग टू ऑल द लिसनर्स, या वेरी वेरी गुड मॉर्निंग टू यू टू। और हम भी उम्मीद करते हैं कि आपके साइड भी सब कुछ ठीक होगा, इंशाल्लाह ठीक रहेगा। इसके अलावा हमें मैसेज है हाई का लिख के भेज दिया, बस हाई के आगे इन्होंने कुछ नहीं बताया है, आर आर इनका नाम है, सो हेलो। यहाँ पर एक और मैसेज है, सऊदी अरेबिया दमाम से हमें सुनते हुए, और गुड मॉर्निंग कहते हैं मैडम आपको सुन रहे हैं, थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके इस प्यारे से मैसेज का कि आप टाइम निकालते हैं और एटलीस्ट मुझे टेक्स्ट करके बता रहे होते हैं कि कौन कौन मुझे सुन रहा है। ऐसे तो सुन ही रहे होते हैं लोग, लेकिन हाँ ये निकालना, टाइम और एफर्ट्स डालना, टाइप करना और फिर बताना कि जी हम आपको सुन रहे हैं, इसमें इसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट्स रिक्वायर्ड है, और उसके लिए वाकई मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ, आप सभी लोगों की, बिकॉज आई नो कि सुबह सुबह का टाइम कितना क्योटिक होता है। हर कोई जो है वो अपने जाने की तैयारी में पहुंच गया है, तो काम की तैयारी में पहुंचने वाला है, तो भी बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, तो इतना आसान नहीं होता मॉर्निंग में। बट यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, सलाम कहते हैं हिशाम, और सभी सुनने वालों को सलाम कहते हैं, वालेकुम अस्सलाम, द फ्रेंड्स नेम ऑल्सो। अच्छा जी, तो यहाँ पर मोहसिन इमरान और सताइपन जी, थैंक यू सो मच आप सबके प्यारे से मैसेज का। और रईस खान जी हमारे साथ गुड मॉर्निंग कहते हुए, अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग आपको। यहाँ पर हमें एक और मैसेज है, और ये हैं एम एम खान जी, गुड मॉर्निंग कहते हैं, वेरी गुड मॉर्निंग, कैसी हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं और कैसी जा रही है आपकी सुबह। इरफान अल कासमी जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर, और बहुत सारी दुआएं इन्होंने सभी लिसनर्स के लिए दुआएं दी हैं, थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपके प्यारे से मैसेज का। और हमें ये मैसेज है बशीर जी का, आई थिंक इनका तो हमने शामिल कर लिया था, सो थैंक यू सो मच आपके प्यारे से मैसेज का। और कुछ लोगों के सवाल और हमारे पास नो जवाब, क्या बता सकते हैं। एम शफीक जी हमारे साथ, और उन्होंने भी सलाम कहा है सभी सुनने वालों को और हमें भी, सो वालेकुम अस्सलाम एंड थैंक यू फॉर दिस लवली मैसेज। अब हमारा सारा कोटा पूरा हो चुका है अभी सुबह का, अब आएंगे जब वापस है ना, जब ब्रेक के बाद आपकी और मेरी मुलाकात होगी, तो उस वक्त आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर बात होगी। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, हाँ ऐसा नहीं कि आपका दिमाग एकदम चकरा जाए घूम जाए, बट हाँ इंटरेस्टिंग है, मज़ा आने वाला है। एंड मैं चाहूँगी कि आप मेरे साथ जुड़िए, ओवर कॉल 4-4-3-4-4-3-7-7, या फिर आप मुझे मैसेज करना चाहते हैं दैन दैट्स फाइन, नंबर है 666-22-107। और हाँ वैसे बाय द वे हम आपको मिलते हैं हर जगह, आई मीन ऑन ऑल सोशल मीडिया हैंडल्स, राइट फ्रॉम FB टू इंस्टा टू यूट्यूब टू एक्स टू एवरीवेयर। तो अगर हमें आप ढूंढ रहे हैं, मेरा मतलब FM 107 को ढूंढ रहे हैं, तो हम आपको सारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर मिल जाएंगे, और अगर मुझे भी ढूंढ रहे हैं तो मैं भी सारे पे आपको मिल ही जाऊंगी। फिलहाल यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, वापस आएंगे तो आज के हमारे मुद्दे के साथ हमारी एंट्री होगी। सुनते रहिए, बने रहिए हमारे साथ, सुनते हुए शो समर मॉर्निंग्स।
1: क्या आप जानना चाहते हैं कि कतर में बिजनेस कैसे चलता है,
2: और कौन से हैं वो मुख्तलिफ टाइप्स के बिजनेस, और कैसे आप भी अपनी बिजनेस जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं?
1: तो मिस मत कीजिए प्रोग्राम कतर बिजनेस 360, जहां हम बात करते हैं बिजनेस की दुनिया के हर पहलू।

0: पहलू पर सिंपल और इंटरेस्टिंग अंदाज में
1: हर मंडे सुबह 10 बजे से आप जनाजिया के साथ ओनली ऑन एफएम 107
0: बिजनेस की समझ कतर बिजनेस 360 के साथ
2: एब्सोल्यूट सिनेमा
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल से पहले ही घर पे होते हैं बट डोंट वरी मैं हूं ना भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है एफएम 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 आरजे फजील के साथ ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा
4: दोस्तों गर्मियों के मौसम में जब गर्मी अपनी शिद्दत पर होती है ऐसे वक्त में फायर इंसिडेंट्स का रिस्क भी बढ़ जाता है इसलिए रूफटॉप्स या छत की सेफ्टी पर खास तवज्जो देना जरूरी है अक्सर बिल्डिंग्स की छतों को लोग एक्स्ट्रा सामान रखने की जगह समझकर इस्तेमाल कर लेते हैं लेकिन ये आदत बहुत खतरनाक साबित हो सकती है कोई भी सामान खास करके फ्लेमेबल मटेरियल्स जैसे कि पुराने कार्टन्स, प्लास्टिक कपड़े या पेट्रोल पेंट के डब्बे आग लगने की सूरत में बहुत जल्द आग या फ्लेम्स को फैला देते हैं रूफटॉप या अपनी छत को साफ रखना और वक्तन फावक्तन उसको देखते रहना बहुत जरूरी है हमेशा कोशिश करें कि छत पर फकत जरूरी ही सामान रखा जाए और वो भी ठीक तरीके से अगर वायरिंग या इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स छत पर हैं तो उनको भी चेक करना लाजमी है क्योंकि पुरानी या खराब वायरिंग से भी स्पार्क होकर आग लग सकती है रेगुलर इंस्पेक्शन एक ऐसी आदत होनी चाहिए जो हर बिल्डिंग मैनेजमेंट या हर फर्द अपने घर पर लाजमी बनाए महीने में कम से कम एक मर्तबा अपनी छत को जरूर चेक करें सामान की सफाई करना और किसी भी अनयूजुअल स्मेल वायर या गर्म होने वाले इक्विपमेंट्स को देखना बहुत मददगार साबित होता है एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है ये भी बात याद रखें कि एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना रूफटॉप और बिल्डिंग दोनों के लिए बहुत अहमियत रखता है ये इंश्योर करें कि फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेसिबल हो उसकी एक्सपायरी डेट चेक हो और हर वक्त काम करने की पोजीशन में हो ये सब छोटी छोटी एहतियात आपकी और आपके आसपास रहने वालों की जिंदगी को महफूज बनाती हैं विदारत दाखला का कहना है कि याद रखें आपकी सेफ्टी सिर्फ आपकी जिम्मेदारी नहीं बल्कि एक सोशल जिम्मेदारी भी है क्योंकि आपकी एहतियात से दूसरे लोग भी महफूज रहते हैं FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है
5: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 ओनली ऑन एफएम 107 एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी स्ट्रेस हो बिजी रूटीन हो फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस हर हफ्ते एक नई हदीब एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम हदीब टू हैबिट हदीब टू हैबिट दिल से सुनिए जिंदगी में अपनाइए
6: एक होती है दफ्तर की कुर्सी जिस पे जिम्मेदारियों का बोझ होता है एक होती है घर की आरामदेह कुर्सी जिस पे दिल खोल के बातें की जाती हैं और सुनाई जाती है इसी कुर्सी से लाइव होंगी हमारे साथ कई जिम्मेदार शख्सियतें जो करेंगी दफ्तर की नहीं दिल की बातें आपसे और हमसे
7: सुनिए एम्बेसडर ऑफ द मंथ आरजे नाजिया के साथ हर महीने के पहले जुमे को दोपहर 3 से सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी
4: दोस्तों ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना बहुत जरूरी है ये रूल्स न सिर्फ आपकी सेफ्टी के लिए हैं, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स की हिफाजत के लिए भी बुनियादी अहमियत रखते हैं स्कूल्स के आसपास ट्रैफिक

स्लो होना चाहिए और ड्राइवर्स को स्टूडेंट्स के क्रॉसिंग के वक्त रुकना चाहिए. पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स और स्कूल साइंस की रेस्पेक्ट करना और स्पीड लिमिट का ख्याल रखना एक्सीडेंट्स और चोटों से बचाता है. हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे. पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं. वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है. FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है. सेफ रहें और खुश रहें.

ऑलराइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ। और आज का जो मुद्दा है वो लेकर हम आ चुके हैं। आज हमने सोचा कि आज ऐसे मुद्दे पे बात करेंगे जो बहुत बार तो सुना है हमने, लेकिन क्या वाकई हम इसको 100% हर तरीके से मानते हैं, अप्लाई करते हैं, हमें लगता है कि ये वाली बात जो है वो 100% सही है कि नहीं। देखिए, हमारी और आपकी लाइफ में एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा अहमियत रखती है अपार्ट फ्रॉम हमारी फैमिली और भी दूसरी चीज़ों को देखे, तो वो है पैसा। हर किसी को पैसा चाहिए और हम समझते हैं कि पैसा जो है वो ज़रूरी भी है। कभी आपने से सोचा कि अगर आप सुबह उठे और आपको पता चले कि आपके अकाउंट में $1 million आ गए हैं, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या नई गाड़ी खरीदेंगे, या नया घर खरीदेंगे, या फिर जॉब छोड़ छाड़ के अपने घर भाग जाएंगे, या फिर वर्ल्ड टूर प्लान करेंगे, या फिर अपने किसी फैमिली मेम्बर की हेल्प करेंगे, या कोई ऐसा लॉन्ग पेंडिंग वर्क जो पैसे की वजह से पूरा नहीं हुआ था वो आप पूरा करेंगे? हम में से बहुत ज़्यादा लोग ये मानते हैं, सोचते नहीं मानते हैं कि अगर पैसे ज़्यादा हों तो ज़िंदगी आसान हो जाती है और शायद हम ज़्यादा खुश रहते हैं। और सच भी कुछ हद तक है कि हमारी प्रॉब्लम्स तो सॉल्व हो ही जाती हैं, एटलीस्ट हम अपने बिल्स पे कर लेते हैं, थोड़ा सा फाइनेंशियल स्ट्रेस कम हो जाता है, एक अच्छी हेल्थ केयर हमें मिल जाती है, शायद हमारे बच्चों को बेहतर एजुकेशन मिल जाती है, और शायद इन टू द ब्रैकेट्स आई से कि शायद फ्यूचर जो है वो सिक्योर लगता है। लेकिन सवाल ये है कि आप वाकई पैसा जो है वो खुशी लेकर आता है, या पैसे के आने से स्ट्रेस, एंजाइटी और पैसे का लालच, या कभी कभी समटाइम्स डिप्रेशन ये भी आ जाता है। देखिए, दुनिया में बहुत से अमीर लोग भी हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लग्जरी है, लेकिन फिर भी आपने देखा होगा कि वो स्ट्रेस में, एंजाइटी में और शायद लोनलीनेस का शिकार है। दूसरी तरफ ऐसे भी मैंने बहुत सारे लोग देखे हैं जिनके पास बहुत पैसा नहीं है, लेकिन उनके पास उनकी फैमिली है, उनके प्यारे अच्छे दोस्त हैं, एक सिंपल सी जिंदगी है और वो शायद बहुत खुश हैं। अब हमें किसी भी चीज़ की ख्वाहिश अगर हम करते हैं, अच्छी नौकरी की करते हैं, बहुत सारे पैसों की करते हैं, या अच्छी एजुकेशन की भी करते हैं, तो हमारा अल्टीमेट गोल क्या है? अल्टीमेट गोल हम सब का है हैप्पीनेस, कि हमें खुशी मिले, है ना। इसीलिए हम चाहे अच्छी नौकरी ढूंढते हैं कि भाई शायद फाइनली हम खुश रहें, हमारी फैमिली खुश रहे, हम अच्छी पढ़ाई के लिए बच्चों को जो है वो मोटिवेट करते हैं कि जी तुम्हारी ज़िंदगी बेहतर होगी, तुम खुश होगे। यानी अल्टीमेट हमारा मकसद है कि हमें वो हैप्पीनेस मिले जिसकी हम पूरी ज़िंदगी तलाश करते ही रह जाते हैं, और शायद वो हैप्पीनेस हमें कभी नहीं मिल पाती। जैसे आते के साथ ही मैंने कहा था ना, ख्वाब और ख्वाहिशें हमें आसानी से जीने नहीं देती ना, इनमें गुड बैलेंस क्रिएट कर पाना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक ख्वाब पूरा हुआ तो दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा। इस तरह से हम हैं इंसान ऐसे कि एक के बाद एक चीज़ों की तरफ बढ़ते ही चले जाते हैं। आज हमारा सवाल कहने को तो ये था कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है कि नहीं, फिर मुझे लगा कि इस सवाल को थोड़ा सा ट्रिकी किया जाए और इससे और कहीं ना कहीं आपसे पूछा जाए कि आपको क्या लगता है, क्या सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपके लिए क्या है जिसे आपको खुशी मिलती है? क्या वाकई वो पैसा है, या फिर कोई और चीज़ है, या वो रिश्ता है, या फिर कोई और चीज़ है जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देती है? सवाल खुशी का नहीं है कि व्हाट इज़ हैप्पीनेस, सवाल ये है कि आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस चीज़ में मिलती है। हो सकता है कुछ लोग ये भी कहें कि भाई अगर हम फाइनेंशियली सिक्योर हैं तो हम बहुत

0: खुश हैं। सो इसमें कोई बुराई नहीं है, बहुत अच्छी बात है कि अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, इसको तस्लीम करते हैं, दैट्स राइट। हो सकता है आप जैसे बहुत सारे लोग हों जो इस बात को मानते ही मानते हैं, कहीं ना कहीं पार्शली आई एम ऑल्सो लाइक दी वन। मुझे भी ऐसा लगता है कि अगर आपके पास ठीक ठाक पैसा होगा तो शायद आपकी काफ़ी हद तक जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाएंगी, एंड वंस दे आर सॉर्टेड यू विल बी लाइक हैप्पी, ऐसा मेरा मानना है। अब आप मुझे सही या गलत साबित कीजिए, बताइए मुझे क्या वाकई पैसों से खुशियाँ जो हैं वो मिलती हैं, खरीद सकते हैं हम खुश रह सकते हैं, हम पे ज़्यादा पैसा होगा तो वाकई हम बहुत ज़्यादा खुश होंगे, या ऐसा कुछ भी नहीं है। आपके लिए खुश होने की जो बड़ी वजह है वो क्या है, रिश्ते हैं, पैसा है, कोई और ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा खुशी देती है, या फिर आपकी गुड हेल्थ है, या फिर आपका डेली रूटीन है, छोटी छोटी चीज़ें भी होती हैं, आई विल टेल यू हाउ लेटर ऑन, अभी नहीं बताऊँगी मैं आपको, या कुछ और है। तो बस आज इस पर ही हम बात करेंगे। तो पहले कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो, कैसे हैं रईस जी, आप खैरियत से?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ठीक ठाक, और आज भी माशाल्लाह आपने मतलब ऐसा मौजू छेड़ा कि मतलब बंदा इसी में घूमते घूमते घूमते घूमते टेंशन में चले जाए।
0: नहीं, नहीं। टेंशन क्यों कह रहे हैं
1: आप? कैसे पैसों को दिए?
0: नहीं नहीं देखिए, मैंने पहले सोचा कि पूछूं कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं, या फिर मैंने कहा चलो आपके लिए खुशी के सबसे बड़े रीजंस क्या हैं, आपके पैसों से खुश होते हैं, कोई और चीज है जो आपको सबसे ज्यादा अल्टीमेट खुशी देती है? हेलो रईस जी, आप हैं क्या? पता नहीं, इनकी आवाज़ ही नहीं आ रही मुझे। चलिए वापस से ट्राई करेंगे, आप अगर जुड़ सकते हैं तो जरूर जुड़िए हमारे साथ। एक और कॉलर इस वक्त कनेक्ट हो रहे हैं, हेलो, हेलो, जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू, कौन है मेरे साथ?
1: नाम मेरा बे, अभी हम रास्ता में बाद में कॉल करेगा, फिर बताएगा। ये पैसा का खुशी भी आता है, वो गजब भी आता है पैसा का,
0: पैसे से खुशी भी मिलती है। अच्छा चलिए ठीक है,
1: अच्छा
0: ठीक है ठीक है, ओके अल्लाह हाफिज़। कितने अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे इनोसेंट लिस्टर्स हैं हमारे। अच्छा आज हो रही है पैसों की बात, क्या वाकई पैसों से आपको खुशी मिलती है, या कोई और चीज़ है जो आपको खुशी देती है? आज सिर्फ इस पर हम बात करेंगे, और अगर पैसा भी आपको खुशी दे रहा है तो बताइएगा कैसे, या फिर पैसे बहुत ज़्यादा अगर हो या पैसा है तो उसने आपको स्ट्रेस दिया, या किसी तरह की कोई एंग्जाइटी हुई वो भी मुझे बता सकते हैं, कभी कोई इंसिडेंट हुआ। देखिए मेरा मकसद जो है वो पैसे कम कमाने की तरफ आपको पुश करना नहीं है, अगर आप कमा रहे हैं जितना अल्लाह करे और ज़्यादा कमाएं और अच्छे आप कामयाब शख्स बने, हमारी दुआएं आपके साथ हैं, लेकिन सिर्फ मेरा मकसद है ये समझना और समझाना और जानना क्या वाकई हमारी खुशी का ताल्लुक पैसों से ही है या नहीं है। एटलीस्ट हम सोचें तो हमें तो पता तो चले कि क्या वाकई, और अगर है वाकई ताल्लुक तो प्लीज़ वो भी आप मुझे बताइएगा, एकदम धड़ल्ले से बताइएगा कि यस मुझे तो लगता है कि है ताल्लुक, कोई इसमें शर्माने वाली बात नहीं है। चलिए एक और कॉलम मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, हेलो, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू, कौन है मेरे साथ?
2: आज आप पहचाने मुझे,
0: सुमी है मेरे साथ, सुमी पहचान लिया, जैसे थोड़ा सा आपने ज्यादा बोला ना मैंने पहचान लिया आपको। कैसे हैं?
2: बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह, आप बताइए।
0: मुझे भी बहुत खुशी होती है जब भी आपसे बात होती है। एक तो आपकी आवाज़ अच्छी है, बहुत ही प्यारी है, और दूसरा आप हंसती मुस्कुराती रहती हैं तो वैसे ही माहौल बन जाता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो क्या कहेंगे, पैसा पसंद है, अच्छा लगता है, क्या खुशियाँ खरीद सकती हैं आप पैसों से? अच्छा टू सम एक्सटेंड आप कहती हैं, अच्छा नहीं खरीद सकती,
2: मतलब आप कह सकते हैं कि एक लिमिट तक, मतलब चीजों को बैलेंस करना होना चाहिए। आप ये बोलो कि भाई मेरे पास पैसा है, मैं अपने बच्चों को सारी खुशियां ला कर दूंगा, तो इट्स डम, उनको आप खुशियां खरीद के दे रहे हो, उनको अर्न करना नहीं सिखा रहे हो, उनको स्ट्रगल करना नहीं सिखा रहे हो। वो जब रियल लाइफ में नहीं हो, इनकेस भाई पैसा आता जाता है, वो एक कहावत है ना, पैसा तो हाथों का मैल है।
0: हाँ ये बात तो है,
2: वो कभी ना कभी खत्म होता ही होता है। तो अगर आप अपने बच्चों को फिर हैबिचुअल बना देते हैं कि नहीं भाई हम आपके लिए सब कुछ खरीद के लेकर आएंगे, नहीं, टेल योर किड्स टू अर्न इट. कहीं ना कहीं आप अपने बच्चों को एक लिमिट तक वो चीज का, अगर आप बच्चों को आदि बना दोगे पैसों का तो बहुत मुश्किल, या खुद आदि हो जाओगे. वो बहुत, एक कहते ना, दर्द देती है.
0: बहुत दर्द देती है. लेकिन बताए कि हार्श रियलिटी भी है सुमी, हम अपने बच्चों को आज के दौर में क्या सिखाते हैं, अरे तुम अच्छा पढ़ लोगे ना, तुम बड़े होगे, तुम्हारे पास बड़ी गाड़ी होगी, बड़ा घर होगा, बहुत अच्छी लाइफ होगी, ये सब कहते हैं, जबकि हम उनसे ये कह ही नहीं पाते कि तुम ऐसे पढ़ो कि एक अच्छे इंसान बनो.
2: मैं अपने बच्चों को क्या एग्जांपल देती हूं,
0: क्या देती हैं.
2: I'm sorry but I respect means every profession. So मैं अपने बच्चों को बोलती हूँ, नहीं बेटा अगर आप नहीं पढ़ोगे ना, मैं आपको स्कूल में पियोन की जॉब दिलवा दूंगी. But I respect every profession. किसी की लाइफ में circumstances होते हैं कि वो किसी वजह से नहीं वो चीज. आपको पता है, मैं अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस बताऊँ. मैं घर की सबसे बड़ी बेटी, ठीक है, आपको पता है घर की बड़ी बेटियों के लिए वैसे भी लाइफ बहुत स्ट्रगलफुल होती है.
0: सही बात है, हमेशा से उनको रिस्पांसिबल रहना पड़ता है.
2: मतलब मैंने वहां से देखा है, मैंने वहां से अर्न किया है, जहां पे मैंने देखा था कि मतलब एक क्लास के बाद घर वालों के पास वो सिचुएशन नहीं थी. उन्होंने बोला नहीं अब आप अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दो, अपनी पढ़ाई स्टॉप कर दो, मतलब नहीं हमारे फाइनेंशियल सिचुएशन इतनी अच्छी नहीं है. तो वो चीज मुझे वहां पे लगा कि नहीं आज मतलब अगर फाइनेंशियल स्टेबल होते तो हम आज एक अच्छी एजुकेशन. नहीं, आप पैसों से अच्छी एजुकेशन नहीं ले सकते.
0: सही,
2: आपको मैं बता रही हूँ ना कि ये बहुत कंफ्यूजिंग टॉपिक है.
0: ये कंफ्यूजिंग टॉपिक है महा, ये वाकई ऐसा टॉपिक है कि हम, दिल तो कहेगा कि हाँ हमें ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं, मुझसे कोई कहेगा तो मैं छूट देगा हूँ, हाँ ठीक है मुझे दे दो पैसे, मैं खुश रहूँगी. लेकिन फिर वाकई, फिर वही सवाल है कि वाकई खुशी है या आपको स्ट्रेस है.
2: आपने अपनी जिंदगी में सब कुछ खरीद लिया, ठीक है, आप खुश नहीं हो तो उस पैसे का कोई मतलब नहीं है.
0: हाँ, कहीं ना कहीं खुशी का ताल्लुक. सही बात है, सही बात है.
2: आपका बड़ा घर है, आपके पास आपकी फैमिली नहीं है, उस बड़े घर में खुशियां नहीं है, उस गाड़ी में बैठने के लिए एक अच्छी फैमिली नहीं है, तो वो मैटर ही नहीं करती है. आप कहीं ना कहीं सेटिस्फाइड ही नहीं हो. आपका सेटिस्फेक्शन बहुत जरूरी है.
0: सेटिस्फेक्शन एंड दैट कम्स विद इनर पीस. अब मुझे इनर पीस, मुझे सुकून ही नहीं है, तो ये सारी चीजें मेरे लिए बेमायने हो जाती हैं. बहुत ही सही बात की, यानी हम कहते तो हैं लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं संधि रेस का शिकार है उसको. अल्टीमेटली हमारा पर्पस है पैसे ही कमाना, और हम लगे हुए भी हैं किसी भी तरह से, तो
2: लगे हुए भी. एग्जैक्टली,
0: देखते हैं आज क्या लोग कहते हैं.
2: बात बात है कि मणिकांत भाई हैप्पीनेस, मणिकांत भाई हेल्थ. आप अगर अच्छा, देखिए आपकी हेल्थ अच्छी है, आप सही पैसा कमा रहे हो, आपके पास खुशी, एक अच्छी फैमिली है, आप खुश हो अपनी जिंदगी में, बस जिंदगी का मकसद पूरा हो गया.
0: सही बात है, अल्टीमेट हैप्पीनेस इज योर पीस. हाँ, ये बात है.
2: ज्यादा पैसे
0: वो भी टेंशन की वजह है, वो स्ट्रेस की वजह है.
2: स्ट्रेस की वजह है भाई. हाँ. डर होता है भाई, मैंने लॉकअप में अपना रखी ज्वेलरी, ऐसा ना हो कहीं से वो चोरी हो. मैं ये ज्वेलरी पहन के जा रही हूँ रास्ते में.
0: सही बात है
2: भाई, जिंदगी खाने पीने के लिए पैसा स्ट्रेस है.
0: वाकई बहुत स्ट्रेस है. अगर आपके पास ज्यादा पैसा है तो उसे मैनेज करना इज ऑल टुगेदर अ टीडियस टास्क. आसान नहीं होता, बहुत मुश्किल है. तो खैर चलिए, उतना पैसा तो अभी तक आया नहीं है, जिस पे है वो बाहर आए. वो आए निकल के और हमें बताए.
2: लालच,
0: हाँ वही है, जिसके पास ज्यादा है उसे कभी ज्यादा नहीं लगेगा, ये भी एक है. कितना भी ज्यादा हो कम ही लगता है पैसे के मामले में, हर बार कम नहीं. लेकिन आप हर एक को देखिए, वो सिर्फ रोता ही हुआ नजर आएगा. कोई ये कभी नहीं कहेगा कि अरे मेरे पास तो ठीक ठाक पैसे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है. मतलब हर इंसान को ऐसी लालच ग्रीड है कि मेरे पास तो कम है, अरे मेरे पास तो कम है. आई डोंट नो किसके साथ उनका कंपैरिजन चल रहा है, लेकिन कम तो है.
2: क्योंकि वो कंपैरिजन कर लेते
0: हैं, या वही ना,
2: वहां पे कंपैरिजन करते हैं कि भाई मेरे रिलेटिव, मेरे कजन्स के पास तो भाई गाड़ी है, अच्छी गाड़ियों में घूम रहे हैं वो, या उनकी फैमिली दूसरी कंट्रीज की ट्रिप्स कर रहे हैं. तो कंपैरिजन को हटाना पड़ेगा यहाँ पे. आप खुद अपने लिए कमाओ और एक मस्त जाके चाय पियो ना, अपने पैसे, अपने कमाए हुए पैसों की, तो वो खुशी देती है आपको.
0: सही बात है.
2: अब अगर आपने पैसे कमाए और आप ये सोच रहे हो चाय पीते हुए, यार मेरे पास तो पैसा ही नहीं है और दूसरे की जिंदगी में देखो क्या चल रहा है, वो चाय फिर आपको मजा नहीं देगी.
0: मजा नहीं देगी, ट्रू. बहुत ही अच्छी बात आपने कही, हालांकि सुनने कहने में बहुत अच्छी लग रही है, लेकिन दिल में वही कसक है कि थोड़ा सा मिल ही जाए एक्स्ट्रा पैसा तो क्या बात है। ये तो खैर चलता है, इसमें झूठ बोलने वाली बात नहीं। अब पता नहीं लालची है हम कि हम मजबूर हैं कि हमारे पास, अच्छा कुछ लोगों की लाइबिलिटीज भी हैं, कुछ तो चलो लालची है, कुछ को मैंने देखा बेचारे मजबूर भी हैं, उनके पास अपनी लाइबिलिटीज
2: हैं, बाहर आए हैं पैसा कमाने के लिए, क्यों भाई अगर हमें हमारी होम कंट्रीज में इतने अच्छे पैसे मिले हम
0: क्यों आएंगे।
2: लेकिन वो चीज है ना कि नहीं, हमें अगर हमने एक चीज खरीदी है तो हमें एक और लेनी है, एक और लेनी है तो फिर एक और लेनी है, ये हो जाता है
0: बस। नहीं फिर एक और नहीं, अब हम सबके पास दो दो होनी चाहिए, दो हो गई तो अब हम तीन तीन तो लालच चल रही है। सही बात है, बिल्कुल सही कहा, ट्रू ट्रू, वेरी वेल सेड, बहुत ही जबरदस्त। हाँ देखते हैं बाकी लोग क्या कहते हैं आज, बट थैंक यू सो मच, बहुत ही अच्छी स्टार्ट आपने दिया आज के हमारे इस टॉपिक को, सो थैंक यू कि आप टाइम निकाल पाए और आप हमारे साथ जुड़े। प्लेजर टॉकिंग टू यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। सो यहाँ पर हमारे साथ सुमी जुड़ी और रईस भी जुड़ रहे थे, बट पता नहीं क्या हुआ उनकी कॉल ड्रॉप हुई। यहाँ पे एक छोटा सा मैं ब्रेक लेती हूँ, वापस आऊँगी तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आज का टॉपिक इज़ वेरी सिंपल येट वेरी इंटरेस्टिंग। आज हम आपसे जान ये रहे हैं कि क्या पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, कैन मनी बाय हैप्पीनेस, व्हाट डू थिंक, यस और नो, और हाँ तो कैसे, ना तो कैसे, बस हमें सोच के बताइएगा। फिलहाल छोटा सा ब्रेक एंड आई विल बी राइट बैक।

0: FM 107. Time check. Time check. राइट दोस्तों, टाइम फॉर द टाइम चेक. और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 7:03.
1: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ एफएम 107 पर. दिल से देसी.
0: हाँ जी, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूँ नाजिया आपके साथ. एंड यस, वी आर कनेक्टेड टू वन कॉलर. हेलो, वालेकुम अस्सलाम.
2: हमारे कॉल में पहले भाई.
0: हाँ,
2: लेकिन
0: क्या
2: भाई
0: हुआ?
2: तो हमारे भाई लोग शिकायत करते हैं. मैं यही कहना चाहूँगा कि भाई कोशिश करते रहोगे तो हार नहीं होती है, वो कभी ना कभी कामयाब हो जाता है. ये
0: हाँ,
2: ये गलत है कि मतलब हमारी कॉल नहीं लगती है. भाई कोशिश करना पड़ता है इसके पीछे. कोशिश तो कभी ना कभी आपको लग जाएगा. ऐसा थोड़ी है कि आपके लिए खाली बैठा हुआ है कोई.
0: ये थोड़ा सा मेहनत, अब कोई बेचारा इतना डेडिकेशन से टाइम नहीं दे पाता होगा, बिजी हैं लोग.
2: मतलब ड्यूटी होता है तो वो बेचारे नहीं
0: दे पाते.
2: सफा करे ज्यादा बेहतर है. कोई जरूरी नहीं है कि मतलब अगर हमको सुनने को मिल जाता है जो अच्छी बातें करने वाले हमारे भाई लोग हैं कोई भी, तो उसमें कोई हमको उसमें क्या कोई विनर बन के थोड़ी ये निकलना है इतना बड़ा.
0: ये बात तो सही कही आपने,
2: जरूरी नहीं है.
0: हाँ.
2: रहा बात आपके टॉपिक का, तो पता नहीं क्यों बात करते करते कॉल अचानक मतलब ड्रॉप हो गया.
0: जी जी जी,
2: क्या हो गया?
0: हाँ, एकदम से ड्रॉप हुए. मैंने हेलो कहा, फिर आपकी आवाज नहीं आई. फिर मुझे लगा पता नहीं शायद आपकी मैम आ गई या बिजी हो गए, क्या हुआ.
2: ये जो टॉपिक छेड़ा ये बहुत कम, बहुत समझ लो कि ये मुश्किल वाला. इसमें बंदा ये भी नहीं कह सकता कि मुझे पैसा नहीं चाहिए. और ये भी मतलब अगर ये जरूरत से ज्यादा, ये अल्लाह ने कुरान में कह दिया है कि तुम्हें कसरत की चाहत ने इतना गाफिल कर दिया कि तुम कब्रिस्तान जाके पहुंच गए. मैं तर्जुमा कर रहा हूँ मतलब ज्यादा उसको ये करके. तो ये सब चीजें है ना. और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि एक पहाड़ के बराबर, एक बहुत पहाड़ के बराबर उसको अगर सोना आता

0: कर दिया जाए तो फिर दूसरे के ख्वाहिश करने लग जाता है। ये बंदे की फितरत है,
1: सही बात,
0: ये बंदे की फितरत, ये बंदे की फितरत ये खत्म नहीं होती है। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, पैसा जो है ना ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बच्चे को, बहुत ज्यादा उसको मतलब उसको पैसा मैनेज करके कहाँ पे हमको कैसे करना है अपनी लाइफ को और लोगों को, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी आ जाती है। अगर बहुत से लोग मतलब इस पैसे के पीछे अपने सेहत को, अपने आप को और अपनी लाइफ को, बहुत अच्छा खासा चल रहा होता है लेकिन वो बर्बाद कर लेते हैं। ये चीज है ना,
1: बिल्कुल,
0: आदमी के अंदर गुरूर सबसे पहले तो उसके अंदर है, ये बहुत ज्यादा शैतान उसको गुरूर के उसमें मुब्तला कर देता है, वो बंदा सामने वाले को छोटा समझना शुरू कर देता है। ये बहुत बड़ी गलती जो शैतान की मतलब सबसे बड़ी चाल है और लोगों को मतलब उसमें गुमराह करके बर्बाद कर देता सामने वाले को। अगर हमारे पास पैसा का मतलब ये रहे, नॉर्मल रहे, तो हम हर एक की कदर करते हैं, लेकिन अगर यही पैसा जो आ जाने के बाद में ना, हम लोगों को कदर करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, ये बहुत बड़ी गलती है। हम किसी की भी मदद करते हैं, मैं अपनी जाति बता रहा हूँ, तो कोई लोग बहुत तारीफ, मैं बोलता हूँ कि भाई इतना तारीफ मत करो, नहीं तो ये हमारा हक था, हमारा फर्ज था आपको मतलब ये करना, आप हमारे करीब के थे, हमने अगर किया तो कोई, मैं सीधा यही अल्फाज कहता हूँ कि कोई मेहरबानी मैंने नहीं किया, अल्लाह ताला ने आप लोगों की दुआ से किसे मुझे नवाजा, अगर उस लायक मुझे बनाया तो ये मेरा हक था, और अगर मैं आपका साथ में ये भलाई नहीं करता तो शायद मेरा पकड़ होता अल्लाह के सामने। ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, तो ये पैसा ऐसा नहीं है कि मतलब, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है बंदे को, उसको मैनेज करके कैसे चलना है उसको, सामने वाले के उसमें बहुत बड़ा चैलेंज आ जाता है। तो ये पैसा इतना आसान नहीं है, अगर आदमी मतलब जो फाइनेंशियली नॉर्मल चल रहा है वो बेहतर है, बहुत ज्यादा पैसा आना बंदे के उसमें ये बहुत बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड मतलब उसके लाइफ में बन जाता है।
1: बिल्कुल सही कहा, और कहीं ना कहीं जिसमें बहुत पैसा, आपने सही कहा, वो उसका ब्रेन भी करप्ट हो जाता है उस तरह से। तो भाई ठीक है, एक आपका इतना आप पे पैसा हो कि आपकी जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो सारी आप पूरी कर रहे हैं, और हाँ क्योंकि पैसा बढ़ना भी कई बार जो है ना वो इंसान को पूरी तरह से बदल देता है। कुछ ही लोग हैं जो जिन पे ज्यादा आजमाइश बहुत पड़ी है। हाँ
0: माल ये बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है, और बंदे से ये पूछा जाएगा कि मतलब तुम्हें इतना दिया गया तो तुमने कहा इसको ये किया। ये बहुत बड़ी आजमाइश है। मिसाल के तौर पे जो हम लोग देखते हैं कि मतलब ये जो प्रोजेक्ट मैनेजर है या जीएम है या जो कोई भी है, तो उसके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। ऐसा नहीं देखो कि वो अच्छे गाड़ी में आता और ये करके उसके पूरे प्रोजेक्ट का पूरा उसके ऊपर उसको हल करना है, कहाँ पे क्या करना है, कहाँ पे लोस है, कहाँ पे भाई। एक हम लोग नॉर्मल है, हम लोग बोलते चलो यार अपना ड्यूटी पूरा किया, अपने कपड़ा अपने रूम में गए, ये करके आराम से सो गए, टेंशन ज्यादा ले, लेकिन उनके ऊपर पूरा जिम्मेदारी होता है कि उनके प्रोजेक्ट को कितना प्रॉफिट हो, उनको किसको सैलरी देना, क्या करना है। तो ये इतना आसान नहीं है, बड़े बहुत मतलब ये मुश्किल टफ मतलब ये है इसमें इसको मैनेज करना। बस मैं यही दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला उतना ही दे जितना कि मतलब हम उसको ये कर ले, नहीं तो उससे ज्यादा ना दे कि हम मतलब बर्बाद हो जाएं अपने अपने अपनी उसको, और बहुत लोग बर्बाद हो गए। और हमारे असलाफ के उसमें भी मतलब ये कि कुछ दलील हदीस में मिलता है कि मतलब कुछ लोगों को अल्लाह ताला ने अता किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ की उनके लिए, और वो लोग फिर बाद में वो मतलब वो अपने आकबत को बर्बाद कर लिए। मैं शॉर्टकट में बात बयान करूंगा, ज्यादा उसमें तफसील नहीं कहूंगा। तो उन्होंने अपनी आकबत को बर्बाद कर दी। ये बड़ी बहुत बड़ी आजमाइश है, ये पैसा जो है ना ये बहुत बड़ी आजमाइश है लोगों को। हाँ, अगर वो मैनेज करके ना चल पाए तो फिर वो बहुत बड़ी सख्त पकड़ के मुस्तहिक बन जाते हैं। और ये रहा बात आपने सेहत का, तो ये भी बहुत बड़ी नेमत है कि अगर बंदे के पास सेहत है और पैसा भले नॉर्मल है, अपनी लाइफ को ये करके जी रहा है, तो ये बहुत बड़ा अल्लाह का मशकूर होना चाहिए कि मतलब मैं अगर मुझे इतना मिल रहा है और अल्लाह ने मुझे सेहत दिया है और लोगों से मैं मतलब ये जुड़ा हुआ हूँ अपने मतलब रिश्तेदारों से, करीब वालों से, तो ये बहुत बड़ी नेमत है। बहुत ज्यादा मतलब ये करके लोगों को मतलब दूर कर देता है, वो नहीं मिल पाते हैं। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है, बड़े बड़े, वो अपने करीब के लोगों से नहीं मिल पाते हैं, उनके पास बड़े चैलेंजेस होते हैं अपने लाइफ में।
1: बिल्कुल सही।
0: हाँ, तो ये सब चीजें मतलब
1: जरूरी है। मगर तब आप ये एक वन लाइनर स्टेटमेंट अगर निकले तो यही है कि नहीं, पैसे से आप ये नहीं कह सकते कि आप खुशियां खरीद सकते हैं। खुशियां नहीं खरीद सकते। हो सकता है आप अपने बिल जमा कर लें, आप अपनी नीड्स पूरी कर लें, लेकिन खुशियां खरीदने की गारंटी पैसे से नहीं मिलती।
0: बस अल्लाह ताला से मैं तो यही दुआ करूंगा कि मतलब मैं अपने बात को यहीं पे मतलब ये करके खत्म करके और लोगों को मौका देना चाहता हूँ कि मतलब बहुत ज्यादा नहीं, बस अल्लाह ताला उतने में रखे कि जितना हमारे अंदर तकब्बुर और गुरूर

0: ना आके हम हमारा आकबत आखिरत ना बर्बाद हो, हमारा आखिरत अल्लाह ताला कायम रखे, बस उतना ही अल्लाह ताला करे हमें।
1: बहुत अच्छी बात, जबरदस्त।
0: ठीक है, मैं आगे और हमारे भाइयों को मौका देता हूँ, बहुत लंबा मतलब ये नहीं टाइम लूंगा। ठीक है, और हमारे तमाम सुनने वाले दोस्तों को जानने
1: तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी बात और कमाल की बात हमारे लिसनर्स कर रहे हैं। अभी तक तो यही समझ में आया है कि पैसे के पीछे बहुत ज्यादा लोग हैं नहीं, बट लेट्स सी कितना इम्पोर्टेंट है सबके लिए पैसा, या वाकई खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं पैसे से। एक्सप्लेन करके भी आप कुछ एग्जाम्पल देके समझाना चाहें तो जरूर समझाइएगा। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं। हेलो, हाँ जी,
2: अस्सलाम वालेकुम।
1: वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम अस्सलाम।
2: मेरा नाम मकसूद आलम है। मकसूद आलम,
1: कैसे हैं मकसूद आलम जी, आप खैरियत से हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हैं?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ।
2: मैं उस टॉपिक पे दो बात कहूँगा,
1: कहिए।
2: मैं बता रहा हूँ।
1: जी जी बताइए।
2: इकोनॉमिस्ट का एक कोटेशन है,
1: हाँ
2: अली मासियात का, कि एक्सेस ऑफ मनी इज वेरी बैड, मैंने जरूरत से ज्यादा अगर पैसा है तो ये बहुत खराब है। और दूसरा है कि इसका सिटी ऑफ मनी इज वेरी बैड, अगर पैसे की किल्लत है ये भी खराब है। इसका बैलेंस होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए। पैसा तो आपकी जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन आपकी खुशी कभी पूरी नहीं कर सकता। आपकी जो भी जरूरतें हैं पूरी हो जाएंगी, ये अलग चीज है।
1: Right.
2: और खुशी हासिल होना ये अलग चीज है,
1: ये अलग चीज है।
2: अल्लाह का जिससे फजल नाजिल होता है, अल्लाह का रहमत नाजिल होता है, उसे खुशी और सुकून मिलता है। वरना दुनिया के करोड़ों अरबों पति कभी खुश नहीं हुए, मरते मर गए, खुशी नहीं मिली उनको।
1: बिल्कुल,
2: ये चीज है,
1: बहुत अच्छी।
2: अब अगर आ गया कि आपके पास अगर एक पैसा है, उस पैसे का इस्तेमाल जो है कहाँ करेंगे। मैं एक और जगह देखा था कि 10 पॉइंट दिया था, मुझे तो 4 पॉइंट याद है, जिसमें खुशी के बारे में बताया था कि इंसान खुश कैसे रह सकता है। इंसान को तो उस पैसे में से खैरात करना चाहिए, ताकि अपने से मजबूर लोगों की मदद हो सके।
1: सही,
2: उसके बाद खुश रहने के लिए उसको एक्सरसाइज वर्जिश करना चाहिए, उसके बाद उसको सोशल होना चाहिए, सोशलिज्म पर ध्यान देना चाहिए। ये सब चीजें अगर आप अपनाते हैं तब तो आप खुश रह सकते हैं, जरूरतें भी पूरी हो जाएंगी और खुशी भी मिलेगी। अगर इन सब चीजों से अलग है तो आपको खुशी जिंदगी में कभी नहीं मिलेगी। ये क्लियर है।
1: बहुत अच्छी बात कही मकसूद जी, वो बिल्कुल सही, सटीक एंड टू द पॉइंट। बहुत अच्छी बात, ये सच्चाई है।
2: और इंसान की पैसे की जहाँ तक बात है, तो एक और इकोनॉमिस्ट का कोटेशन आता है कि डिजायर्स आर अनलिमिटेड, तमन्नाएं लामहदूद है। इंसान के पास पैसे बढ़ता है, उसकी तमन्ना बढ़ती जाती है, और वो जो है नाखुश होने लगता है, उसे खुशी नहीं मिलती है, बल्कि उसकी परेशानी शुरू हो गई।
1: परेशानी,
2: अगर उसमें भी खुश रहना चाहता है तो अपनी तमन्नाओं को कम करे, कम करे, और वो जो पैसा है दूसरी जगह खर्च करे, जो लोगों की भलाई के लिए,
1: पैसे को हलाल बनाए। ये भी है, और हलाल कमाई भी बहुत अहमियत रखती है।
2: वो तो जरूरी है, वो तो जरूरी है, वही तो वाइट मनी।
1: हाँ, मतलब अगर आपने किसी और तरीके से पैसे कमाए हैं तो कहने को तो ज्यादा पैसे है, लेकिन वो ज्यादा ज्यादा कभी भी नहीं रहते, वो चले ही जाते कहीं ना कहीं।
2: नहीं, वो तो नेचर,
1: उनमें तो बरकत भी नहीं होती।
2: नेचर के लोग के मुताबिक एक्सेप्टेड नहीं है। अल्लाह ने तो हलाल कमाई का ना जिक्र किया है,
1: हलाल कमाई,
2: वो हराम का थोड़े किया है। व्हाइट और ब्लैक मनी में फर्क इतना ही है कि हमारी मजदूरी आज का 30 रियाल है, हमने 30 रियाल कमाया। अगर दूसरे तरीके से हमने 200 रियाल कमा लिया तो हमारा वो बाकी जो पैसा है ना वही ब्लैक मनी है, वही हराम पैसा है। हलाल पैसा तो हमारा वही है जो 30 रुपया हमने कमाया है।
1: और अल्लाह ताला बरकत डालते हैं उस 30 रुपए में भी आपके, हाँ, ना काम हो जाएंगे, और कई बार वो 200 कमाए हुए भी आपके यूं ही जाया हो जाएंगे। तो मतलब बरकत तो डालने वाला अल्लाह ताला है, 30 में भी आपके सारे काम कंप्लीट, सारे पूरे हो रहे हैं, तो बस यही होना चाहिए, है ना।
2: सब कुछ तो वही करने वाला है, करते के हमके यकीन हो, सब यकीन भी बहुत बड़ी चीज है ना, हमारा
1: यकीन तो होना ही चाहिए,
2: हमारा अकीदा हो,
1: हाँ,
2: तो दोनों हमारा सेम बेल खाए, ये भी तो बहुत बड़ी।
1: सही बात, बहुत जबरदस्त बात आपने की और मुझे बहुत अच्छा लगा। आई थिंक आपसे मेरी फर्स्ट टाइम शायद इस शो में बात हो रही है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग।
2: जी पहली मरतबा
1: पहली बार हो रही है। हाँ, बहुत अच्छी, बहुत ही सटीक बात एंड टू द पॉइंट।

0: और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया।
1: मेरे नजर से तो यही लगता है।
0: नहीं बिल्कुल सही आपने कहा, अब देखते हैं बाकी हमारे लिसनर्स क्या कहते हैं, बट बहुत ही अच्छा आपका जवाब, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया।
1: और एक और बात, हाँ जी कहिए, किसी की पूरी करने की रह गई तो हम अपने मोहल्ला अपने फैमिली अपने सिटी में देख सकते हैं, बहुत लोग मिलेंगे। हम पैंट शर्ट पहने हैं तो हमारे सामने एक ऐसा भी इंसान गुजरेगा जो हाफ शर्ट पहन के जा रहा है, हाफ पैंट पहन के जा रहा है, उसको देखिए ना, उसको देखिए, समझिए, आपको समझ आएगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने, बहुत ही अच्छी बात की, अपने से नीचे को देखो हमेशा और उससे आपको सुकून और सब्र दोनों मिलता है। थैंक यू जी, थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, हैव वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो चलिए यहाँ पे तो एक से बढ़कर एक हमारे साथ लोग जुड़ रहे हैं और बड़ी अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो अब तक कही जा रही हैं, और सभी ने अभी तक जितनी भी कॉलर्स मेरे साथ जुड़े किसी ने भी एक सिंगल बंदे ने आके नहीं कहा कि हाँ हम भाई पैसों से खुशियाँ खरीद लेंगे, हमें तो पैसा चाहिए, नहीं अभी तक किसी ने भी इस चीज़ को माना नहीं है। देखते हैं और लोग हमारे साथ जो जुड़ेंगे उनका क्या कहना है। फिलहाल एक और कॉलर, हेलो,
2: हाँ जी,
0: अ वेरी गुड मॉर्निंग, कैसे हैं गावा जी?
2: एक्सीलेंट एज ऑलवेज जी,
0: एक्सीलेंट एज ऑलवेज, नाइस।
2: नाजिया जी एक बात तो है,
0: हाँ जी,
2: आपने मेरे को और सिमोन जी को ये वर्ड बिल्कुल अच्छे तरीके से रटा दिया, एक्सीलेंट।
0: देखिए हमें कोई मोटिवेट नहीं करने आएगा, पता है आपको, सेल्फ मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, तो भाई अपने आप को खुद मोटिवेट करते रहो कह के, कि जैसे वो कहता था ना ऑल इज वेल ऑल इज वेल, तो वाकई अपने दिल को ही कहना पड़ता है, दिमाग को भी मैसेज देना ही पड़ता है कि सब ठीक चल रहा है, नहीं तो फिर हम कितने पैनिक में आ जाएंगे। तो बस खुद को झूठ में तो नहीं रख रहे लेकिन हाँ पॉजिटिवली अपने आप को समझा रहे हैं, ये कहिए।
2: बिल्कुल,
0: तो आज
2: अच्छा मैडम
0: आप तो प्रैक्टिकल बोलेंगे, प्रैक्टिकल आपकी कुछ अच्छी वाली।
2: बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। मैडम सबसे पहले मेरा छोटा सा सवाल है आपसे।
0: हाँ जी पूछिए।
2: आज कल के हिसाब से अगर आप पूरा सिनेरियो देखते हो सोसाइटी का, तो हाँ। आपके हिसाब से मैडम खुशी की डेफिनेशन क्या है?
0: देखिए मेरे हिसाब से अगर आप सच में पूछें खुशी क्या है, तो मैं कहूँगी एक एहसास है, एक अंदर आपको एक सुकून मिल रहा है, एक सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, ये है आपके लिए खुशी। और हो सकता है वो शायद आप पैसों में तलाश कर रहे हो, मिल रही है नहीं मिल रही है आई डोंट नो, बट मेरे हिसाब से अगर आप अंदर से यानी इनर पीस आपको जब तक नहीं, सुकून नहीं है, आप सेटिस्फाइड नहीं है, तब तक आप खुश नहीं है। हो सकता है किसी के पास पैसे बहुत कम हो लेकिन फैमिली के साथ वक्त गुजारना उसके लिए खुशी का बायस है, ठीक है, ये भी हो सकता है। किसी के पास जो है वो बहुत पैसा है लेकिन वो बेड रिडन है, वो खुश नहीं रह सकता। बैंक बैलेंस तो बहुत अच्छा तगड़ा है मेरा लेकिन मैं चल फिर नहीं सकती, मैं खुश हूँ नहीं, हो सकता है मेरे पास बहुत कम पैसे हैं लेकिन मेरे सारे काम बराबर टाइम पे हो रहे हैं, मैं खुश हूँ,
2: ठीक है। मैडम जहाँ तक मेरा मानना है ना नाजिया मैडम जी, आजकल हम लोगों ने जो खुशी है ना उसको अपनी जरूरतों के साथ मैडम जोड़ दिया है।
0: ये बात तो है, हमने अपनी जरूरतों के साथ जोड़ दिया और जो चीज है उस पे हम शुक्रगुजार ही नहीं होते, ग्रेटफुल होना छोड़ दिया है।
2: जी बिल्कुल नाजिया जी, चक्कर पता क्या है, देखिए मेरा मानना ये है, बंदे के पास पैसा हो तो दबा के हो मैडम,
0: अच्छा?
2: या तो बिल्कुल ना हो जी, या ये मिडिल क्लास वाला सिस्टम ना हो, हो तो दबा के हो नाजिया जी।
0: अच्छा क्यों?
2: टू बी वेरी ऑनेस्ट,
0: क्यों बीच में अगर है मतलब मिडिल क्लास तो ठीक ही है ना, क्यों ऐसा क्यों
2: ठीक है? मेरे हिसाब से सही नहीं है मैडम।
0: अच्छा,
2: क्योंकि जो बीच बीच वाला बंदा होता है ना मैडम, वो ना इधर का ना उधर का, एक तो बंदे के पास बिल्कुल जीरो है वो सही है, जस्टिफाई है, बिल्कुल ऊपर है फिर भी जस्टिफाई है, मगर पैसे के मामले में ये मिडल वाला मसला मेरे को सही नहीं लगता मैडम।
0: ये आपको पसंद नहीं है, या तो ज्यादा हो या बिल्कुल ही ना हो, और बिल्कुल ना हो या कम हो बहुत, तब भी तो आप परेशान रहेंगे, तब कैसे खुश रहेंगे बताइए।
2: मैडम मैं बताता हूँ आपको, देखिए मैडम मैं ना दिल्ली में ट्रेवल कर रहा था, तो हम लोग कैब में जा रहे थे मैडम,
0: सही,
2: तो मैंने देखा हस्बैंड वाइफ और उनके साथ में बच्चा, वो लोग भीख मांग रहे थे, मगर बैगिंग अच्छी चीज नहीं है वो तो हमें भी पता है, बंदा मेहनत मजदूरी करके अपना कमा सकता है। मैडम मैंने उनको देखा सिग्नल के पास बैठ के वो अपना खाना खा रहे हैं दोनों, उनके बच्चा उनके बच्चे भी उनके साथ में बैठ के खाना खा रहे हैं मैडम, इतनी खुशी उनके चेहरे पे देख के कसम से मैं खुश हो गया मैडम जी।
0: वही ना, बिल्कुल सही कहा आपने, वो जो कहते हैं ना कि आप बिस्तर तो महंगे खरीद सकते हैं लेकिन नींद नहीं खरीद सकते।
2: जी बिल्कुल, और नाजिया

0: मैं बताता हूँ, देखिए पैसे से खुशियाँ टेम्परेरी आती हैं, ये बात ये भी नहीं आती है, आ सकती हैं बट टेम्परेरी आ सकती हैं,
1: ये वर्ड अप्लाई से।
0: और मैडम पैसे से आप जी पैसे से आप मैडम

0: मैडम मैंने एक नहीं दो बार देखा उस उनके बच्चों को स्कूल से सिर्फ इसीलिए निकाला गया क्योंकि उनके पास स्कूल की फीस भरने के पैसे नहीं थे। वहां पे मैडम वही सवाल आ जाता है ना, अगर बंदे के पास पैसा हो तो डेफिनेटली बंदा अच्छी एजुकेशन ले सकता है।
1: ये तो है।
0: और दूसरी एग्जांपल है मैडम अच्छी हेल्थ की। नेचुरली मैडम जो बंदे के साथ चलो मिस हैपनिंग होनी है वो तो होनी है, बंदे का जितना टाइम है वो तो डिसाइडेड है। मगर फिर भी मैडम मैंने ये पैसे की वैल्यू देखी कोविड के टाइम में।
1: पैसे की
0: मेरा मतलब बीमार हुआ था,
1: पैसे की अहमियत तो है, इससे हम डिनाई नहीं कर सकते, लेकिन इसका हमेशा ताल्लुक खुशी से नहीं है। हमारी नीड्स जरूरत है, टेम्परेरी है, जरूरत हमारी पूरी कर रहा है, हम कंफर्ट तो खरीद रहे हैं लेकिन वो जो कंप्लीट हैप्पीनेस है वो नहीं मिल पाती है।
0: कंप्लीट हैप्पीनेस नहीं मिल पाती है और वो मिलेगी भी नहीं नाजिया जी।
1: वो कभी नहीं मिलेगी। लेकिन नहीं, आपने अभी अभी बताया कि वो फैमिली बेचारी कितने देवर अंडर प्रिविलेज्ड, उसके बावजूद भी कितना खुश थे।
0: आप और मैं बात कर रहे हैं ना अभी।
1: हाँ
0: मैं ये सिनेरियो को ले रहा हूँ जी।
1: अच्छा
0: जी जी जी। तो नाजिया जी मेरा मानना क्या है, दुनिया का सबसे खुश इंसान आज के दौर में वो है जो बंदा रात को बिना नींद की गोली लिए हुए सोता है।
1: सो रहा है वाकई, सच बात है, चैन से नींद आ रही है उसे। वो वाकई वाकई बहुत बड़ी नेमत है कि आपको नींद आ रही है, क्योंकि देखिए कितने सो कॉल्ड वेल्दी लोग हैं सो नहीं पा रहे हैं, नींद नहीं, एक एंग्जाइटी का शिकार है, कितनी सारी बीमारियां उनकी वजह से हम लोग को पता चली। अच्छा ये भी होती है, ये भी होती है, क्योंकि है उन्हें इतनी सारी, अब पैसा है, डायग्नोस कर रहे हैं भरपूर तरीके से, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। दवा लाइफ लॉन्ग चल रही है, सब कुछ चल रहा है, सब कुछ खरीदा है, कंफर्ट से लेके एवरीथिंग लग्जरी सब कुछ है, लेकिन क्या चीज मिसिंग है, हैप्पीनेस। तो कहीं ना कहीं हैप्पीनेस का ताल्लुक जो है वो कंफर्ट या लग्जरी से नहीं है, उन छोटे छोटे मोमेंट्स से है जो हम अपने लिए खुद ही क्रिएट करते हैं और शायद उनमें पैसे भी नहीं लगते, बहुत सारे मोमेंट्स हैं।
0: मैडम देखिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल और दूंगा आपको।
1: हाँ।
0: इसमें आप किस्मत का खेल लगा लीजिए या समय का चक्कर लगा लीजिए।
1: ओके।
0: सिद्धू पाजी का जब टाइम अच्छा नहीं था, वो नॉर्मल थे, वो आर्टिस्ट नहीं बने थे, उस टाइम तक तो सारा कुछ ठीक था। जब वो मैडम आर्टिस्ट बन गए, एक अच्छे फेमस सिंगर बन गए, तो कैनेडा से मैडम वापिस आके अपनी फैमिली के साथ पुराने घर में रहने लग गए मैडम। उस टाइम उनका सोसो था, इतना ज्यादा नहीं था। जब उनके पास मैडम पैसा आया, बहुत ज्यादा शोज लगे, बहुत ज्यादा फेमस हो गए वो, तो उन्होंने ना मैडम अपने लिए अपने हाथों से अपने तरीके से एक नई हवेली बनाई गांव के बाहर। और बंदे की मैडम किस्मत देखिए, इतना पैसा होने के बाद भी वो बंदा एक दिन अपनी हवेली में नहीं सोया, क्योंकि उससे पहले ही वो सारा हो गया था जो आपको पता ही है जी। तो ऐसा भी हो जाता है मैडम लाइफ में।
1: अब कुछ लोग अभी, खैर चलिए इस पे तो बात नहीं कर सकते, बट यू नो कि किस तरह से कमाया था या क्या हुआ था, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, तो वो भी हम कहते हैं ना कि जब हम कमा रहे हैं तो उसका भी ख्याल रखें।
0: जी मैडम, लास्ट में बस नाजिया जी मैं यही कहना चाहूंगा, जब आपने घर पे आप जाते हो ना, आपका लाइफ पार्टनर है, आपके बच्चे हैं, आपके मदर फादर हैं, उनको अच्छे से हग करो, उनके साथ बैठ के बातचीत करो।
1: असली खुशी रिलेशनशिप में है। हाँ,
0: जी, ये जो हम रीलें स्क्रॉल करते हैं ना मैडम, यकीन मानिए इसकी एडिक्शन ऐसी है, बंदा सोचता है मैंने दो तीन रील्स देखनी है बस। हाँ। तो बंदा जब मैडम देखने लगता है ना रील्स, कब एक मिनट से एक घंटा हो जाता है, पता नहीं चलता।
1: बिल्कुल सही कहा, कहाँ टाइम चला जाता है बिल्कुल पता नहीं चलता। बहुत ही अच्छी ये जो लाइन आपने कही कि पैसों से टेम्परेरी हैप्पीनेस तो हम खरीद सकते हैं, लेकिन एक्चुअल हैप्पीनेस हमें हमारे रिश्तों में मिलती है। जो हग आपने करने वाली बात की ना, ये हमें अल्टीमेट हैप्पीनेस देती है, अपने बच्चे के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ, तो ये खुशी है,
0: ये खुशी, ये जरूरत नहीं है,
1: खुशी है
0: जी। आपने घर पे तो जाना ही जाना है, चाहे एक दिन के बाद जाओ चाहे दस दिन के बाद जाओ, आपका घर खुश है ना, आपकी जिंदगी खुश हो जाएगी मैडम।
1: बिल्कुल सही बात है। आप महंगे महंगे चीजें तोहफे तो खरीद सकते हैं, लेकिन अच्छा रिश्ता जो है वो आप खरीद नहीं सकते, वो बनाना पड़ता है, वो खरीदा नहीं जा सकता है। तो बस यही चीज़ें हमें याद रखनी है। बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात कही और बहुत ही प्रैक्टिकल तरीके से आपने समझाया, हमेशा ही आप ऐसा करते हैं, सो रियली इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, इट्स ऑलवेज ऑलवेज प्लेजर टॉकिंग टू यू। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड,
0: ओके,
1: बी हैप्पी।

ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय। सो ऑलराइट, यहाँ पे दोस्तों 7:26 हो गया है, आई एम बाउंड के अभी मुझे गाना यहाँ पे चलाना है, कितना टाइम हो चुका है हमने गाना नहीं चलाया। तो फिलहाल एक फर्स्ट सॉन्ग इस हमारे शो का अभी आ रहा है और वापस आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे। आज मैं आपसे पूछ ही रही हूँ कि पैसों से खुशियाँ खरीदी जा सकती हैं, हाँ कि ना? आपको क्या लगता है, आप सोच के रखिए, बताइए मुझे, कनेक्ट होइए 4434377 पर, या फिर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं 666-222-107 पर।

0: राइट गाइस, एक बार वापस आप सभी को कहेंगे वेलकम, खुश आमदीद। आप सुन रहे हैं शो समा मॉर्निंग्स, मैं हूँ नासिया आपके साथ। और मेरे साथ यहाँ पे कॉलर जुड़ चुके हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कौन है हमारे साथ
1: भाई? मैं पाकिस्तान का है, मेरा है मेटल, पहला कल किया फिर बंद किया।
0: अच्छा,
1: यह बोला पैसा का, पैसा इतना अच्छा चीज है लेकिन फिर इतना गजब भी आता है, तो सही तरीके से इस्तेमाल करेगा तो ठीक है, सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करा ये बहुत बड़ा गजब आएगा इसके ऊपर। पैसा अच्छा भी है अच्छा भी नहीं है, क्यों? सबसे अच्छा चीज इखलाक है, दिल साफ रखना मत है, तो दिल साफ है इखलाक अच्छा है वो पैसा से बहुत ज्यादा अच्छा है। लेकिन पैसा कमाना का आसान है, कमाएगा मुश्किल नहीं, लेकिन आजमायत के लिए बहुत मुश्किल है, किसी पूरा बंदा आजमायत नहीं करेगा।
0: बिल्कुल
1: अच्छा। वो दूसरा एक बात है, ये मेरा एक दोस्त है उसके साथ फैमिली है इधर, वो इतना पैसा कमाता है तो बुरी मिलाता है और बुरी फूल करता है। फिर वो पैसा के साथ उसका इतना गजब आ गया, ये बहुत सरकच हो गया वो बंदा, अभी पूरा फैमिली पूरा वो घर वाला पूरा कैंसल चल गया। क्या वजह क्या है? वो पैसा का वजह से, ये पैसा चीज भी अच्छा है लेकिन फिर गजब भी उसका बहुत बड़ा गजब आता है, क्यों? सही तरीके से इस्तेमाल नहीं करेगा तो गलत इस्तेमाल करेगा, इसका बहुत गजब भी आता है, उसका तकलीफ भी आता है।
0: सही बात है। अच्छा, आपको ऐसा लगता है कि पैसे से आपको खुशी मिलती है? आपको पैसे से ये महसूस होता है कि आपको खुशी मिलती है?
1: खुशी मिलता है लेकिन गजब भी मिलता है कि ना पैसा के साथ? मैं पहले बोला खुशी भी मिलता है लेकिन गजब भी फिर मिलता है, इतना गजब मिलेगा फिर तुम फिर यह दस रहेगा पूरा बंदा बोलेगा ये इसके साथ पैसा के साथ इस शर्कशी किया यार, ये किसी का दूसरे बंदा का तकलीफ दे दिया, किसी का खून दे दिया, खून किया किसी वो किया किया इसी किया। पैसा सबसे अच्छा चीज नहीं है, बस इखलाक दिल साफ, इससे ज्यादा कोई बात नहीं है मेरा दिमाग।
0: नहीं, बहुत ही अच्छी आपने बात की, बहुत जबरदस्त। आपने अपना नाम नहीं बताया मुझे।
1: मेरा नाम मेरा भाई, मैं पेशावर का हूँ,
0: पेशावर के हैं। अच्छा जी,
1: पैसा मेरा है, मेरा पास इतना पैसा मिल गया लेकिन मैं बोला मेरा बच्चा का भी तुबा, क्यों इसका फिर सही इस्तेमाल नहीं करेगा फिर उसका गजब आएगा, इतना बड़ा गजब आएगा। तुम्हारा खानदान जिंदा है, बच्चा सब

0: चीज जिंदे है उसका वो गजब खत्म नहीं हो जाएगा।
1: सही कहा, बिल्कुल सही।
0: चलिए ठीक है,
1: बहुत जबरदस्त। चलिए जी, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो अभी तक तो मुझे ये समझ में आया कि कोई भी ऐसा नहीं है जिसने कहा कि मैं पैसे की तरफ हूँ और मैं मानता हूँ कि वाकई मैं पैसों से खुशियाँ ले सकता हूँ, खरीद सकता हूँ। चलिए कौन कॉलर मेरे साथ यहाँ पर कनेक्ट हो रहे हैं, इनसे बात कर लेते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जमाल जी, कैसे हैं आप? खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है, आप बताएं कैसे हैं?
1: मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। आज क्या कहेंगे?
2: मैं सबसे पहले आपसे ये पूछूंगा कि क्या मेरी आवाज आप तक मुकम्मल जा रही है?
1: हाँ जी, आपकी आवाज पूरी क्लियर आ रही है।
2: चले, बहुत शुक्रिया। अब आते हैं टॉपिक की तरफ। किसी ने कहा था,
1: हाँ,
2: गरीब शहर तो पाके से मर गया लेकिन अमीर शहर ने हीरो से खुदकशी कर ली। मनोहर राणा ने जब कला बताया था, यही लिखा कि भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छिलवाती है तिनके डाल लेती।
1: सही।
2: और इसी तरह एक राजू राज एक शायर है, तो उसने जब कला उठाया तो इस तरह से लिखा कि अमीर लोगों की नीयत कभी नहीं भरती, गरीब भूखे भी रहते हैं मुस्कुराते हैं।
1: ये बात तो सच है, कभी इनकी नीयत नहीं भरती और कभी खुश भी नहीं है। बहुत से लोग आप देखिए जिन पे बहुत पैसा है, वो बहुत डिस्टर्ब है मेंटली, बहुत डिस्टर्ब है। ये सच्चाई है, इनकी जिंदगी में वाकई सुकून नहीं है। तो अल्लाह कहीं कुछ दे भी रहा है।
2: मतलब मीडियम या गरीब आंगन में जिस तरह से आप फलती फूलती हुए या एक समुस्ता अंदाज में देखेंगे, कभी ऐसा भी होता है, दौलत के अंबार पर बैठा हुआ इंसान अपने घरेलू झगड़ों से इस तरह से परेशान होता है तो उसका दिल करता है कि वो अपना घर बार और ये दौलत का सारा एम्पायर छोड़कर कहीं और जाकर देते। ऐसा भी हमने देखा है, इस तरह की मिसालें मिलती हैं। और अगर इस तरह का समाज में आईनी मुशाहदा कहीं दिखता है तो मुझे लगता है कि आज का आपका ये मौजू कि क्या पैसे से कुछ खरीदी जा सकती है, मुकम्मल वजाहत नहीं मिल
1: सही।
2: ये तो अपनी जगह पर फैक्ट है कि
1: बिल्कुल,
2: अगर आपके पास कितनी भी दौलत क्यों ना हो, आप उससे खुशी नहीं खरीद सकते। हाँ, आपके पैसों से वक्ती तौर के लिए थोड़ी सी खुशी आ तो सकती है, वक्ती तौर की खुशी आप थोड़ा सा हासिल तो कर सकते हैं, लेकिन अगर ये आप जो है कि एक मुकम्मल सुकून और खुशी का आपके चेहरे पे हमा वक्त मुस्कुराहट का सबब बन जाए दौलत, तो मुझे लगता है कि ये मुमकिन में से तो नहीं है और ये मुमकिन बिल्कुल नहीं है,
1: ये मुमकिन नहीं।
2: और उसकी मिसाल हम आपको इस तरह से देना चाहेंगे
1: जी
2: कि अपने माँ के हाथ का एक रोटी में लपेटा हुआ सब्जी जिसे आज हम मतलब शक्ल देते हैं सैंडविच वगैरह का, उस तरह से अगर कहीं मिल जाता था ना बचपने में और उसको लेकर अपने खलिहान में तमाम बच्चों के साथ जब खेलने जाते थे तो दिमाग में ये नहीं होता था कि काश हम कहीं किसी बहुत गुदाज बिस्तरे पर सोए या हमारे साथ खेलने के लिए वो ऐसे कीमती कीमती खिलौने हो कि जिसे लोग देख कर आशाज करते हो। उसमें वो खुशियां बचपन में मिलती थी जिसे पैसे से कभी खरीदा ही नहीं जा सकता, और सिगरे सिलने खत्म होने के बाद जब होश संभाले तो हमने अपने गांव में ही देखा है ये चीज कि एक साहब जो गोरखपुर में रहते थे और अपने बच्चों को पढ़ाते थे, वो जब कभी कभी छुट्टियों में बच्चों को अपने लेके आते थे, उनके तीन बच्चे थे, हम लोग खेलने के लिए जब मैदान में जाते थे पढ़ाई खत्म होने के बाद, जो मतलब की पढ़ाई होती थी खत्म होने के बाद जब वहाँ जाते थे खेलने तो अपने बच्चों को बड़ा सख्ती से मना करते थे वहाँ नहीं जाना खेलने, तब उसके चेहरे की एक जो अजमुर्दगी होती थी, एक जो ये होता था तमन्ना जो साफ झलकती थी कि काश उन बच्चों के साथ खेल कर मुझे भी खुशी हासिल हो जाती, तो हमने देखा है कि वो मायूसी में बदली होती थी और उन्हें वो चांस नहीं मिलता था। वो वक्त नहीं पाते थे, क्यों? क्योंकि घर से बड़ी बड़ी जबरदस्त उनको पॉलिसी लगी होती कि नहीं वहां बिल्कुल नहीं जाना है, हाथ में पैर में चोट लग जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। अब इसी तरह से आप अपनी उम्र को और आगे बढ़ाते जाइए, ठीक है, आपको ये अंदाजा लगेगा कि हम दो महीने तीन महीने मुंबई कमा कर जब आदमी एक दिन जिस दिन लौटता है अपने बच्चों के साथ जब वो पेट भर खाना खाता है तो छोटी छोटी चीजों में जो उसे खुशियां मैसर होती हैं वो कभी कभार महलों में रहने वाले सुबह को उठकर ऑफिस जाने की देर में उन्हें ये पता नहीं होता है कि मेरा बेटा सोया है, उसकी शक्ल कैसी है, मेरी बीवी कहाँ है, उसे पता नहीं होता है। वो खुद से तैयार होता है और हाथ में ब्रीफकेस लेता है या बैग लेता है और रस्ते पर बात कर निकल जाता है, लेकिन उनके चेहरे का रिजाव तक नहीं कर पाता। और एक गरीब को मैंने देखा है, मीडियम क्लास के लोगों को मैंने देखा है कि वो थोड़े ही वक्त से गुजर जाने के बाद जब घर में लौट कर आते हैं अपने बीवी को जब एकदम बिल्कुल परागंदा शक्ल में देख रहे हैं, लेकिन अगर वो मुस्कुरा कर देख लें तो ऐसा लगता है कि जैसे वो खुशी से सिर्फ महल में नहीं बल्कि ऐसा लगता है कि खुशी में और दौलत समेटे हुए आगे बढ़ता है और उसे हासिल होता है।
1: सही, बिल्कुल
2: जरूरी नहीं कि वो तमाम खुशियों को आप दौलत से खरीद पाए, कहीं नहीं मिलती है, वो
1: नहीं मिलती
2: बाजार में।
1: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात आपने कही। जरूरी नहीं है कि सारी खुशियां जो है पैसों से ही मिले। और सबसे ज़्यादा हम खुश कब होते हैं, कौन सा हमारा फेज है लाइफ का? आई थिंक जब हम बच्चे होते हैं, है ना, तब सबसे ज़्यादा खुशी हमने, और हर कोई कहता है अरे बचपन जो था वो बेस्ट था। क्यों? क्योंकि हम पैसे वैसे भी नहीं कमा रहे, लेकिन फिर भी हम कितने खुश हैं। या फिर आप देखिए जब एक एज हो जाती है, जब आप बहुत मैच्योर हो जाते हैं, उस एज में भी आके एक सुकून आ जाता है अगर लाइफ में है, अगर नहीं है तो बात अलग है, लेकिन है तो फिर उस एज में भी आप पैसे नहीं कमा रहे, फिर भी आप सुकून में हैं, खुशी आपको मिल रही है। तो सबसे ज़्यादा परेशानी और तकलीफ में इंसान किस फेज़ में है? जब वो पैसे कमाने की भाग दौड़ में लगा है। तो यानी पैसा जो है वो कभी सुकून तो लेकर नहीं आता। ठीक है, आपकी नीड्स को, आपकी नेसेसिटी, जो आपकी ज़रूरत है, उन चीज़ों को पूरा कर रहा है, लेकिन हाँ खुशी नहीं ला रहा है, ये बात तो सच है। और ये आई थिंक अभी
2: देखिए वो जो ज़रूरत की चीज़ है पैसा, और ये सीमित तौर पर सिर्फ ज़रूरत है, कभी गलती से उसको खुदा नहीं समझ लेना चाहिए, है ना। वो ज़रूरत की चीज़ है। अब आपको जरूरत की चीज में छोटी सी मिसाल देने की कोशिश करता हूँ, अल्लाह करे कि कामयाब हो जाए आपको समझाने में, एक्सप्लेन करने में, अल्लाह तौफीक दे इस बात की। देखिए एक अमीर शख्स का बेटा भी कपड़ा पहनता है और वो कपड़ा तन ढकने के लिए जरूरत है और पैसे से लिबास भी आता है, और गरीब का बच्चा जो ताइवान लपेट कर भी अपने जिस्म को ढाके रहता है, ठीक है, उसकी भी जरूरत वहाँ पूरी होती है ताइवान से।
1: सही बात है, वही तो है जरूरत तो हमारी, हाँ बिल्कुल सही का, जो हमारी ख्वाहिशें हैं वो खत्म नहीं होती, पहले साइकिल, फिर बाइक, फिर गाड़ी, फिर लग्जरी कार, फिर उससे भी बड़ी गाड़ी, और इस तरह से ये रेस कभी खत्म नहीं होती, तो वो तो चल रही है।
2: हाँ मैंने मुनव्वर आपको जो एक शेर सुनाया है ना
1: जी,
2: भटकती है हवस रात सोने की दुकानों पर। हवस का मतलब यहाँ अमीर या अमीरी कहा गया है, उसको गलत हुआ मतलब एक दूसरा माना भी निकलता है, लेकिन नहीं, यहाँ जो शायर ने जो मफहूम लिया है वो सिर्फ और सिर्फ अमीरी और दौलतमंदी से, भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों पर, गरीबी कान छिदवाती है तिनके डाल लेती है। ये मंजर हमने गाँव में देखा है की जब कान छिदने वाले सुनार आते थे तो मतलब जो भी मीडियम क्लास या गरीब घरों के बच्चे जो होते थे उनके कान जब छेड़े जाते थे तो नीम का एक वो तोड़ा जाता था पत्ता, और पत्ता खींच कर जो उनके बीच में वो होता है उसको डाल देते थे ताकि इसके कान में पके नहीं, और जिस दिन वो कान छिदवाते और वो तिनके डालते थे वो बच्चे बहुत खुश होते थे। इस बात को ही सिर्फ लेकर आज मेरा कॉल,
1: आपने बहुत ही जबरदस्त, हाँ नहीं आपने बहुत अच्छे से समझाया भी, बताया भी, और आई थिंक अभी तक जितने लिसनर्स आए उन सब का ऑलमोस्ट यही कहना है अभी तक। सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया जमाल जी, और मुझे अच्छा ये लग रहा है जान के कि हमारे जितने भी कॉलर्स हैं उनमें से कोई भी ऐसा लालची नहीं है जो पैसे के पीछे है, और कोई भी पैसे को उतनी उस तरह की अहमियत नहीं दे रहा, दो इट इज़ इम्पॉर्टेंट वी नो दैट, लेकिन हाँ उस तरह की अहमियत नहीं दे रहा है, ये बड़ी बात है। सो थैंक यू, बहुत शुक्रिया
2: जी। बात से जो मुझे समझ में आया है, और दुनिया इस चीज का इकरार करेगी क्या नहीं, पैसे को हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, वो पैसा ही है। लेकिन एक वही दूसरी बात जो आप कहते हैं कि भाग दौड़ ने आपको सुकून नहीं दिया, पता ये चला कि पैसा कमाने की बात की आपको सुकून नहीं है,
1: खुशी
2: नहीं मैसर हो रही है, तो पैसे को सुकून का जरिया समझना
1: नहीं है, ये बात है। परफेक्ट, शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वंस अगेन कि आप हमारे साथ जुड़े, और बहुत अच्छे आपने अपने जो पॉइंट्स हैं वो हमारी ऑडियंस तक पहुंचाए, सो थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका, अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज। ऑल राइट, आज हम जिस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आज हम बात कर रहे हैं कि पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती हैं। हाँ।

0: कि ना पहले तो खान आप पे आते हैं और फिर आगे बढ़ेंगे कि क्या क्या खरीदा जा सकता है और क्या क्या नहीं खरीदा जा सकता। तो एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात कर लेते हैं। हेलो
1: हेलो
0: हाय गुड मॉर्निंग।
1: हाय गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू?
0: आई एम गुड, हाउ आर यू डूइंग?
1: आई एम डूइंग गुड।
0: आपका नाम?
1: मेरा अतुल मेहरा।
0: अतुल, ओके, सो अतुल मेहरा जी क्या कहना चाहेंगे, कैन मनी बाय हैप्पीनेस?
1: Yes, it can.
0: Okay.
1: मेरा मानना ये है कि हाँ, पैसे से खुशियाँ ढेर सारी तो नहीं, बट कुछ ऐसी चीजें हम खरीद सकते हैं जो हमें खुश करती है।
0: Nice.
1: जी, और जैसा अभी थोड़ी देर पहले मैं आपको सुन रहा था इसी में कि सुकून को लेके, तो बट सुकून नहीं खरीद सकते पैसे से, बट खुशियाँ हासिल की जा सकती है।
0: हासिल की जा सकती है, अच्छा थोड़ा सा एलैबोरेट करेंगे कैसे? हमारे रिश्ते मजबूत हैं अपने, तो वो हमें खुशी दे रही है, या मुझे नहीं लगता कि हमारा एक तगड़ा बैंक बैलेंस है तो हम शायद कहें कि हाँ हम खुश हैं। हाँ ठीक है, हमें फाइनेंशियल स्ट्रेस कम है, दैट्स ट्रू। हाँ, यहाँ पर एक जगह मैं कह सकती हूँ कि मेरा अगर बैंक बैलेंस अच्छा है और मैं अच्छी एजुकेशन दे पा रही हूँ बच्चों को, तो वहाँ वो एजुकेशन दे पाना मेरी खुशी के साथ जुड़ सकता है। That I can relate with.
1: But जब आपने बोला कि हम अपने दोस्तों के साथ है, परिवार के साथ, सेहत के साथ, बट उससे तो पैसे का कोई लेना देना नहीं है उस टाइम पे।
0: हाँ, उससे वही तो कह रही हूँ, कुछ चीजें ऐसे उसे लेना देना नहीं है,
1: कभी आप दुखी होते हैं तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जिस चीज को लेके हम दुखी हैं कि काश ये चीज मेरे पास होती। अगर जैसे आप कहीं जा रहे हैं, जैसे या फिर आप ट्रैफिक सिग्नल पे भी खड़े हैं, तो किसी इंसान को देख के जो जैसे भीख मांगता है, या फिर कोई ऐसा लाचार आदमी है जो जिसके पास पैसा नहीं है, तो आप उसकी मदद करना चाहते हैं, बट अगर आपके पास पैसा नहीं रहेगा तो उस दौरान आप उसकी मदद भी नहीं कर सकते हैं। तो पैसा जरूरी है, अगर आप उसकी मदद कर पा रहे हैं, आपके पास बैंक बैलेंस है अच्छा, या जितना भी आपके पास अगर 10 रुपए भी हैं, अगर आपने उसको 10 रुपए में से 2 रुपए दिए, तो उस दौरान आपको खुशी मिली कि मैंने उसकी हेल्प करी, भले ही वो 2 रुपए से छोटी चीज खरीदे या कुछ कुछ भी वो कर सकता है, उसकी इच्छा है वो उसके लिए, बट अगर आपके पास बैलेंस है, आपने किसी की हेल्प करी, तो आपको खुशी मिली।
0: ये तो सही कहा आपने। एक और चीज मुझे बताइए अतुल जी, क्या ज्यादा पैसा आता है तो हम लालची हो जाते हैं?
1: ये तो इंसानी फितरत है, देखिए कि अगर इंसान के पास कोई चीज जब तक नहीं होती है, उसे वो चीज चाहिए होती है, जब उसके पास वो चीज आती है तो उसकी इच्छा बढ़ने लग जाती है कि काश थोड़ा सा और हो जाता, थोड़ा सा और हो जाता, और वो थोड़ा थोड़ा कर करके उसकी इच्छाएं इतनी बढ़ जाती है कि एक टाइम ऐसा आता है कि उसके पास अगर पूरा समंदर भी रहेगा तो वो खुश नहीं है, उसके पास ये है कि मुझे थोड़ा सा और मिल जाता यार। ये इंसानी फितरत है, इसमें तो कुछ नहीं किया जा सकता।
0: अच्छा, इस फिर ऐसा भी होता है जब हम पे पैसा ज्यादा आता है तो फिर हम उसे होल्ड भी करने लगते हैं, फिर खर्च नहीं कर पाते हैं दूसरों पे, अपने तो ड्रीम्स फुलफिल कर रहे हैं पर दूसरों को दे पाना, मैंने देखा उसमें बड़े रिलक्टेंट हो जाते हैं। डू यू बिलीव दिस और नो?
1: नहीं, मैं इसपे नहीं, क्योंकि ये भी एक इंसान के ऊपर डिपेंड करता है।
0: अच्छा, ये वेरी करता है पर्सन टू पर्सन। ओके,
1: हाँ, पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, क्योंकि कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास कम होते हुए भी वो लोगों की मदद करते हैं, पर कुछ इंसान ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत ज्यादा है, वो चाहे तो 20 लोगों की एक साथ हेल्प कर सकते हैं, बट वो नहीं करते हैं। तो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है ये चीज भी।
0: पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, बट नाइस, बहुत ही अच्छा और बड़ा वैलिड पॉइंट, और बहुत टाइम के बाद किसी ने मनी के प्रो आके बोला है, बट अभी तक तो यही चल रहा था कि नहीं, मनी से वाकई हम हैप्पीनेस नहीं खरीद सकते, बट यू हैव गिवन अस अ वेरी डिफरेंट पर्सपेक्टिव कि हाँ, टू सम एक्सटेंड मनी के थ्रू हम हैप्पीनेस दे सकते हैं, दैट्स समथिंग नाइस।
1: Right. हम खुशी दे भी सकते हैं, हम भी खुश हो सकते हैं, क्योंकि उस आदमी से पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है, दिन में एक टाइम खाने के लिए उसके पास पैसा नहीं है, तो उस आदमी से अगर आप पूछेंगे कि पैसे से खुशी मिल सकती है, तो उस आदमी का जवाब ये रहेगा कि यस, डेफिनेटली वी कैन बाय हैप्पीनेस विद मनी, क्योंकि हमारे पास अभी है, तो हमारे लिए कहना बहुत ईजी है कि नहीं, पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते, बट जिसके पास नहीं है, एक बार उससे पूछ के देखिए।
0: सही बात है, उसके लिए तो खुशी वो एक वक्त का खाना है, और उसके लिए उसको पैसा चाहिए और पैसा है नहीं। हाँ, ये बात तो है।
1: जी बिल्कुल, उसके लिए पैसा चाहिए, और वो दिन भर मेहनत करने के बाद भी लास्ट में एक टाइम की रोटी जुटाने के लिए वो दिन भर काम करता है और उसको क्या मिलता है, पेट भर के खाना भी नहीं मिल पाता है कुछ आदमियों को। कुछ आदमी तीन टाइम का बढ़िया कमा रहे हैं, कुछ खा रहे हैं, उनके लिए अलग है। जिसके पास नहीं है उसको पूछिए।
0: सही कहा, बहुत ही अच्छी बात, वेरी वेल सेड। सो थैंक यू जी, एक अलग ही नज़रिया आपने हमारे साथ, हमारे ऑडियंस के साथ शेयर किया एंड आपने टाइम निकाला, थैंक यू रियली, बहुत अच्छा लगा। और मुझे भी सोचने पे आपने मजबूर किया कि हाँ, कई बार हम पैसों से खरीद सकते हैं खुशियाँ, अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, टू सम एक्सटेंड, दैट्स राइट। सो थैंक यू अतुल, हैव अ फैंटास्टिक डे अहेड, अपना ख्याल रखिएगा, बाय।
1: Okay, thank you,
0: bye-bye. Bye. All right, तो अभी मैं यही सोच रही थी कि अभी तक कोई ऐसा नहीं आया जिसने आके ये कहा हो कि yes, पैसे से हम जो हैं वो बहुत ही आराम से इत्मीनान से खुशियाँ खरीद रहे हैं, खरीद सकते हैं और दूसरों को भी खुशियाँ दे सकते हैं। अब आपने किसी को दिया तो आपको खुशी तो मिली, सुकून तो मिला, ये सुकून मैं ढूंढ रही थी जो मुझे लग रहा था पैसों में नहीं है, लेकिन देखिए यहाँ पर समझ में आया कि नहीं है, कहीं ना कहीं है अगर आप दे पाते हैं। अब कितने लोग दे पाते हैं नहीं दे पाते हैं ये अगेन डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, जैसे उन्होंने खुद भी बोला। एक और कॉलर मेरे साथ यहाँ पर जुड़ रहे हैं, चलिए इनसे बात करते हैं। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू, कौन है मेरे साथ? सुभान अल्लाह, पुनेरी, पुनेरी। अच्छा जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से?
2: अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। फोन लगता है, अच्छी बात है।
0: अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए मुझे भी बड़ी खुशी हो रही है आपसे बात करते हुए। तो आज के हमारे टॉपिक के हवाले से क्या कहना चाहेंगे?
2: मुतफिक नहीं हूँ, लेकिन जो लास्ट कॉलर था अतुल भाई, इसके साथ मैं मुतफिक हूँ।
0: अच्छा,
2: पैसों से ठीक है सारी खुशियाँ नहीं, लेकिन बहुत हद तक खुशियाँ खरीदी जा सकती है। मैं एग्जांपल दूंगा कि यहाँ पे कतर में जितने भी लोग हैं, या सऊदी में जितने भी पाकिस्तानी, बंगाली, इंडियन जो भी लोग हैं, ये आए ये पैसे कमाने के लिए यहाँ पे आए।
0: सही है? सही।
2: तो अगर इनके साथ पैसे होते और आए भी हैं, लेकिन इनमें 98% लोग ऐसे हैं जो बीवी बच्चों के बगैर इधर रह रहे हैं, बगैर फैमिली के यहाँ पे रह रहे हैं। बहुत मुश्किल काम है,
0: बहुत मुश्किल है। सही काम।
2: तो अगर इनके साथ पैसे होते तो कभी ये जिंदगी में ऐसे नहीं करते। ठीक है, हम अपने अरमान जो है ना वो खास में मिला रहे, लेकिन फिर भी खुश किसी के लिए खुशी खरीदने के लिए यहाँ पे बैठे हुए। तो वो खुशी खरीदना जो है ज्यादातर पैसों से ताल्लुक रखता है। आप अच्छी एजुकेशन दे सकते हो, आप अच्छी खाना दे सकते हो, अगर आप सबसे बड़ी बात यह है कि आप अपने फैमिली के साथ रह सकते हो अगर आपके साथ पैसा है तो।
0: बिल्कुल सही, अपनी फैमिली के साथ या उनको साथ में रख सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, तो कहीं ना कहीं पैसा है तो जरूरी, ये बात तो सच है।
2: बिल्कुल जी। और जैसे अतुल भाई ने कहा कि भाई अगर आप किसी का हेल्प करना चाहते तो भी वो पैसे से ताल्लुक रखते
0: हैं।
2: अगर आपके पास पैसा नहीं है तो आप किसी की हेल्प क्या कर लो, कुछ नहीं कर सकते हो। सिर्फ जबानी हेल्प से तो कुछ नहीं होता है। बाज इंसान को भूख लगी होती है, बाज को कोई बीमारी होती, किसी का बच्चा बीमार है, उसको पैसे की जरूरत होती है और आपने लाके उसको पैसे पकड़ा दिया हाथ में, तो उस टाइम उस आदमी के फेस को देखो कि उसमें कितनी खुशी महसूस होती है उसको।
0: सही, यहाँ पर तुम वाकई मेरे पास कोई इस चीज़ का कोई जवाब नहीं है। बात तो सच है, ये बिल्कुल सच है। इसीलिए शायद कहीं ना कहीं हल्का सा एज में दे रही थी मनी को, पैसे को, कि पैसा है बहुत ज़रूरी, लेकिन पैसा ही सब कुछ हो ये नहीं होना चाहिए। बहुत कुछ है पैसा, लेकिन सब कुछ नहीं है पैसा, ये समझना भी ज़रूरी है। कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ पैसे की इस अंधी रेस में लगे हुए हैं, कमा रहे हैं और कमा भी लिया लेकिन अकेले हैं। ऐसी भी बहुत सी मिसालें आपको नज़र आएंगी। ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनके पास खाने के नहीं है पैसे, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसे लेकिन अकेले हैं। अब उनके लिए वो पैसा किसी भी यूज में नहीं, उन्हें समझ ही नहीं आ रहा है, क्योंकि अब उनको ना सुकून है, ना सेटिस्फैक्शन है, ना वो खुशी है। जो सोच रहे थे कि शायद पैसा मैं बहुत कमा लूँगा तो सब चीज़ें मुझे मिलेंगी, वो भी नहीं मिली। तो एक चीज़ जो समझ में आती है, इज़ अ गुड बैलेंस अगेन, दोनों के बीच एक अच्छा बैलेंस को बना के रखना कि अगर आप पे बहुत पैसे हैं तो सुकून के लिए दूसरों को दे दूँ, जिन पे नहीं है या जिन पे बहुत कम है।
2: اس میں نظر مین شرط یہ ہے کہ پیسوں کے ساتھ سکون آپ کا تب ہوگا اگر آپ کے پیسے حلال ہوں گے تو
0: ہاں حلال ہوں گے یہی نا بالکل بالکل
2: حلال نہیں ہوں گے تو پھر کوئی سکون نہیں ہے پھر آپ کو ٹینشن ٹینشن کیونکہ پھر آپ کے گھر میں آپ کے فیملی میں ایسے ایسی بیماریاں ہوں گی مختلف چیزیں ہوتی ہیں جو آپ کو سکون نہیں دیتی ہے آپ کا پیسہ حلال نہیں ہے تو
0: بہت اچھا کہا آپ نے یہ بات تو ہے بالکل صحیح بات ہے تو بالکل ایسے ہمیں سکون نہیں ملتا جو زبردست تھینک یو سو مچ بہت بہت شکریہ کہ آج آپ میرے ساتھ جڑے اور بہت اچھا آپ نے بڑا پریکٹیکل طریقے سے سمجھایا اور ہماری آڈینس تک اپنا پوائنٹ آف ویو پہنچایا سو بہت شکریہ تھینک یو سو ویری مچ اپنا خیال رکھیے گا اوکے جی اللہ حافظ اللہ حافظ اللہ حافظ آلرائٹ میری کوشش ہے کہ بہت سارے کالرز جو ہیں وہ ہمیں لگاتار کال کریں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ہم کنیکٹ کر سکیں اور ان کا جو جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ لے سکیں تو ایک اور کالر میرے ساتھ یہاں پر جڑ رہے ہیں ہیلو
3: گوروں کی نہ کالوں کی یہ دنیا ہے پیسے والوں کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو مطلب پیسہ ہی آپ سمجھ رہے ہیں سب کچھ ہاں سمجھ جی
3: باپ بڑا نہ بھیا سب سے بڑا روپیہ
0: یہ ساری چیزیں اور بھی کچھ بولیں گے کہ کیا بس ایسے کہہ کے رہ جائیں گے
3: نہیں ایسا کچھ نہیں ہے کیا ہے کہ سب کے اپنے نظریات ہیں پیسے کو لے کر اب کیا ہے سب کے اپنے سیناریوز ہوتے ہیں سب کے اپنی ضروریات ہوتے ہیں اس حساب سے آدمی جو ہے اپنے آپ کو وہ پوزیشن میں ڈال دیتا ہے اب ایک بڑی اچھی بات کہی ہمارے جو ہے چاہنے والے ہیں ہمارے دوست ہیں موہت بھائی تو انہوں نے بہت اچھی بات کہی ہم دونوں سنتے رہتے ہیں تو انہوں نے جو ہے اپنی طرف سے ایک بات رکھی ہے جو میں آپ کے سامنے رکھوں گا
0: جی جی
3: انہوں نے کہا کہ بھائی پیسہ ایک جو ہے ہم کو جیسے پانی میں ناؤ کو چاہیے پانی کی ضرورت کشتی کو تو اسی طریقے سے زندگی چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے اگر پانی جو ہے کشتی میں آ جائے گا تو وہ ڈوب جائے گی اگر پیسہ اگر ہمارے دل میں اتر جائے گا تو ہم ڈوب جائیں گے بڑی اچھی بات ہے بڑی گہری بات ہے
0: بہت ہی گہری بات
3: تو یعنی کہ دیکھیں آپ کے پیسہ ہونا چاہیے لیکن پیسے کی محبت نہیں ہونا چاہیے اور رہی بات پیسے سے سب کچھ ہوتا ہے یہ میرا ماننا ہے کہ دنیا میں جب ہم آئے ہیں تو کوئی ایک چیز کی ضرورت ہوتی ہے ذریعہ بنتا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر چیز کے ذریعے بنائے ہیں ایسا نہیں ہے کہ شام میں سوئے اور صبح میں ہمارے بستر کے نیچے چار سونے کی اینٹیں رکھی ملی ہے فرشتے لا کے رکھ دی اسے ہم بیچیں گے اور کھائیں گے ایسا نہیں ہوتا ہے نا تو ذریعے بنتے ہیں تو پیسہ بھی ایک زندگی کا ایک ذریعہ ہے جس سے ہم جو ہے ہماری ضرورتیں پوری کرتے ہیں اور جب ہماری ضرورتیں پوری ہو جائے تو ہمارا فرض بنتا ہے کہ جو بچ چکا ہے وہ جو باقی لوگوں کی ضرورتیں پوری نہیں ہو رہی ہیں وہ ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جائے نہیں ہوتا ہے
0: کرنا چاہیے
3: میں تو کرتا ہوں میں اپنے خیر کہنا نہیں چاہ رہا تھا میں لیکن اس بات نکل پڑی ہے تو کہہ دیتے ہیں کہ مہینے کا جو ہے 10% ہم نکال دیتے ہیں نکال کے وہ ہم دے دیتے ہیں بس ختم باقی وہ ہمارا حق نہیں ہے ہم اس چیز کو سمجھتے ہیں صدقہ جو ہے انسان کی دولت کو کم نہیں کرتا بڑھاتا ہے کہیں نہ کہیں سے اللہ پاک اس کو ریٹرن دے دیتے ہیں صدقہ بہت ضروری ہے اب پیسہ بنانے کے لیے لوگ منی مینجمنٹ کرتے ہیں وہ انویسٹمنٹ یہ انویسٹمنٹ اچھی بات ہے کرنی چاہیے اپنے پیسے کو جو ہے ملٹیپلائی کرنا چاہیے لیکن حد سے زیادہ بھی ہو جائے تو جواب دہی بھی ہے اس کا بھی دھیان رکھنا پڑے گا اور ہم یہاں پر آئے ہیں سب چیز ہوتی ہے کہ بھائی یہ تو مقدر کا کھیل ہے کس کا رزق کہاں لکھا ہے وہ تو اللہ کو پتا ہے
0: صحیح بات ہے
3: تو میرا یہ نظریہ ہے پیسے کو لے کے کہ پیسہ ضرورت کی حد تک ہی کرے زیادہ پیسے
0: سے محبت نہ کرے یہ لائن مجھے بہت اچھی لگی
3: پیسہ بے وفا ہوتا ہے نا یہ ایک جگہ نہیں ہوتا ہے یہ کبھی کسی چند تو کبھی کسی چند وقت کے ساتھ جو ہے کبھی اس کی جیب میں تو کبھی اس کی جیب میں تو اس کے لیے اپنے دماغ پہ لوڈ نہ لیں جب جو چیز ہونی ہوتی ہے نا وہ ہو جاتی ہے ہم دیکھتے ہیں ہمارے باپ دادا کی زندگی کو دیکھیں گے ہمارے اطراف جتنے لوگ ہیں ہمارے چاچا ماما فلانا ڈنکا یہ سب لوگوں کو دیکھتے ہوئے آتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں گزر جاتی ہے ہو جاتا ہے جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا ہے سنگل ڈھیلا ان کے بچیوں کی شادیاں بھی اتنی دھوم دھام سے ہوتی ہیں کہ وہ سوچ بھی نہیں پاتے کہ کیسے ہو گئی اللہ کر دیتے ہیں تو زیادہ لوڈ نہیں لینا چاہیے کھاؤ پیو خوش رہو انجوائے کرو اپنی زندگی کا
0: صحیح چلیے بہت ہی اچھا آپ نے بڑی زبردست سی فلسفی کو جو ہے یہاں پہ ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کیا کھاؤ پیو خوش رہو زیادہ ٹینشن نہیں لو اور بس پیسے سے بہت پیار نہیں کرو ٹھیک ہے آ رہا ہے تو وہ ایک ذمہ داری کے طور پہ آ رہا ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری اپنی جو نیڈس ہیں انہیں پورا کیجیے اور جو آس پاس کے لوگ ہیں ان کا بھی آپ کو خیال رکھنا ہے نائس بہت ہی اچھا बहुत ही अच्छा क्रिस्प और बहुत ही सटीक आपने जवाब दिया. थैंक यू सो मच समर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया. अपना ख्याल रखिएगा.
3: Allah Hafiz.
0: All right, दोस्तों यहाँ पर छोटा सा ब्रेक लेंगे, which is like again a mandatory break. अब आएंगे तो इस टॉपिक को फर्दर एक्सप्लोर करेंगे.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 Time check. Right, दोस्तों शो के थर्ड आर में हमने एंट्री ले ली है और इस वक्त हमारे स्टूडियो क्लॉक में बज रहे हैं 8:03।
0: आप सुन रहे हैं समर मॉर्निंग आरजे नाजिया के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
2: हाँ जी वेलकम बैक, आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स, मैं हूँ नाजिया आपके साथ 8:03 ऑन द क्लॉक। मेरे साथ एक कॉलर यहाँ पे जुड़ गए हैं, चलिए बात करते हैं। हेलो
3: गुड मॉर्निंग
2: वालेकुम अस्सलाम, अ वेरी गुड मॉर्निंग। अंशु है हमारे साथ, राइट? कैसे हैं आप अंशु?
3: शुक्र है अल्लाह का कि आपने फोन उठा लिया।
2: चलिए भाई, मैं वाकई कॉल्स बहुत सारी मुझे आ रही हैं और मुझे कुछ लोग यहाँ पे भी कॉल कर रहे हैं 666 वाले नंबर पे, तो बस उन्हें भी यही कहूँगी कि 4434377। कई बार होता है ऐसा है कि इतनी कॉल्स आती हैं कि नहीं कुछ लोगों की लग पाती हैं, तो आप समझ ही सकते हैं हम कितनी कॉल्स लें, हालांकि हम ले रहे हैं बैक टू बैक, फिर भी कितना ले सकते हैं वो है।
3: एक बार और अल्हम्दुलिल्लाह कि आप बिजी रहे, शुरू शुरू में आई तो कॉल फौरन लग जाती थी, अब आपकी टॉपिक अच्छी आ रही है
2: अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए वो आप लोग
3: मॉर्निंग में आए थे कुछ दिन पहले तो मुश्किल हुआ था।
2: अब मुझे नहीं याद आता कि मुझे कभी भी परेशानी हुई, मेरे लिसनर्स मेरे साथ जुड़ते ही रहे राइट फ्रॉम द डे वन, जब से मैंने स्टार्ट किया है।
3: इतना ज़्यादा बिजी नहीं था।
2: हाँ अभी कुछ, हाँ शायद कुछ टाइम से तो बहुत बिजी होने लगा है, शायद आप लोग को टॉपिक्स अच्छे लग रहे हैं, माशाल्लाह ये हो सकता है।
3: जी जी बिल्कुल बिल्कुल, कल का भी टॉपिक अच्छा था, कल फोन करते कहते
2: मुझे पता है क्या लग रहा है, शुरू शुरू में लोगों को समझ में नहीं आ रहा था हम बात करें ना करें, कुछ ही लोग कर पाते थे, अब सब लोग चाहते कि चलो जो भी है हिम्मत उनकी थोड़ी सी बड़ी है कि हम भी बात करें, तो ये एक अच्छी बात है। हाँ ये तो है। तो क्या कहेंगे आज हमारा जो टॉपिक है पैसे को लेकर है, क्या पैसों से खुशियां खरीदी जा सकती है, आप मानते हैं इस बात को?
3: जी जी बिल्कुल।
2: अच्छा बिल्कुल ओके, अच्छा स्ट्रेट अवे, हाँ मतलब पैसा नहीं तो खुशियां नहीं है।
3: बिल्कुल।
2: तो क्या आपको खुशी तभी मिलती है जब आप अपने बच्चे को गिफ्ट देते हैं कोई, या फिर ऐसे ही जब बच्चा आपको हंस के स्माइल करता है, हग करता है, तो भी आपको खुशी मिल रही होती है?
3: अभी तो मेरा बच्चा 2 महीने का हुआ है।
2: अच्छा चलिए तो दूसरा सवाल कर लें, दूसरा सिनेरियो आपके साथ जो है वो शेयर करते हैं। आपके जो पेरेंट्स हैं क्या वो आपको कुछ दे, कुछ गिफ्ट दे या कुछ?
3: इसीलिए
2: आप पैसे की तरफ आ गए। चलिए वाइफ की बात कर लेते हैं, वाइफ वाइफ आपको गिफ्ट देगी तभी आप खुश होते हैं। इंतकाल हो गया, ओहो सॉरी आई एम रियली सॉरी।
3: 2 साल पहले बस मेरी अम्मी ही थी, पापा का तो बचपन में चाइल्डहुड में इंतकाल हो गया, मेरी मम्मी का 2 साल पहले इंतकाल हो गया।
2: चलिए I'm sorry for that।
3: उसके बाद मैं सफर गया तो शादी किया तो मेरा अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को औलाद दिया, बेटा दिया, अल्लाह का शुक्र
2: माशाल्लाह माशाल्लाह। तो अभी वाइफ पे आ जाते हैं क्योंकि अब उनसे पैसों से ही ताल्लुक, मतलब आप उन्हें पैसे देते हैं या वो आपको कभी पैसे से कोई गिफ्ट लाके देती है तब खुशी होती है, या उनसे सिंपली यूं ही फोन पे बात कर लेते तब भी आपको अच्छा लगता है, दिन आपका बन जाता है?
3: क्या है
2: आप बताइए मुझे।
3: मेरे हिसाब से खुशी जरूरत जो हम चाहें वो पूरी हो जाए तो हमें खुशी मिलती है, हमें ये लगता है।
2: हमेशा तो नहीं कह सकते अंशु जी कि हमेशा आपकी जरूरतें सारी पूरी हो तभी खुशी आपको मिल रही है, कभी कभी किसी की स्माइल मतलब कोई आपको हंस के देख रहे तभी आप थोड़ा सा खुश तो हो ही जाते हैं ना, अच्छा तो लगते ही आपको।
3: बिल्कुल ये बात सही।
2: या आपने किसी को एक अच्छा मशवरा दे दिया, देखिए अंशु जी आप मान लीजिए आपने किसी को एक अच्छा मशवरा दिया, किसी को एक अच्छा मशवरा दिया और उससे उसका कुछ भला हो गया, अब इसमें पैसे तो लगे नहीं कहीं से कहीं तक कुछ भी, और वो आपको आके बहुत ज्यादा हक करता है, थैंक यू बोलता है, खुशी मिलेगी ना? अब आपका दोस्त है मान लेते हैं, अब ये मत कहिएगा दोस्त भी नहीं है मेरे।
3: नहीं दोस्तों है हम आपसे मजाक नहीं किए वाकई में जिंदगी में
2: हाँ नहीं वो तो हुआ
3: मैं क्या कहते
2: नहीं वो बात तो सच है नहीं मैं समझ रही हूँ I'm really sorry for that लेकिन मैं आपसे ये पूछ रही हूँ कि मान लेते हैं इस तरह का कोई सीन सिनेरियो है जहाँ आपने सिर्फ किसी को मशवरा ही दिया और वो इतना अच्छा कमाल का था उससे उसका भला हो गया और वो आपको आता है हक करता है और आपको थैंक यू बोलता है तो आपको खुशी मिलेगी नहीं मिलेगी
3: खुशी हुई ना वो तो अगले की खुशी हुई ना
2: आपको नहीं मिली
3: हमें बस ये लगेगा ठीक अल्लाह का शुक्र उसका भला हो गया खुशी जो है अब
2: अच्छा
3: मेरे हिसाब से खुशी जैसे हम किसी चीज चाह कोई भी चीज है उसको चाह लिया ठीक है या मेरा बेटा या मेरी वाइफ चाह ली जब बचपन में इंसान छोटा होता है तो उस वक्त उतना दिमाग में नहीं रखता जो मिल गया उसमें खुश हो जाता है जैसे कोई खिलौना है अम्मी पापा मम्मी ने जब मम्मी से जिद किया तो वो दिला दी उतने में खुश हो जाता है इंसान और नहीं दिलाए तो कुछ कुछ वक्त के बाद भूल जाता है मगर जब वो इंसान बड़ा होता है तो वो इंसान वो चीज जो चीज चाहता है वो चीज रखता ही रखता है जैसे हम सोच रहे हैं कितने साल से आईफोन लेंगे मैं अभी तक ले नहीं पा रहा है
2: मैं आपको एक एक टिप दूंगी अंशु जी अगर आप अपनी ख्वाहिशों के साथ उनका पूरा होने के साथ अपने खुशी को रिलेट करेंगे तो आप कभी खुश नहीं हो पाएंगे पता है क्यों क्योंकि हमारी इंसानी फितरत है हमें एक चीज मिल जाए हमें दूसरी की ख्वाहिश होती है दूसरी मिल जाए तीसरे की हमारी ये जो ख्वाहिश है ये जो ड्रीम्स हैं ये सारी बहुत ही ज़्यादा अनएंडिंग सी हैं इनका कोई एंड नहीं है एक के बाद एक और ये इंसानी फितरत है
3: ये
2: आपके साथ भी मेरे साथ भी बहुत है ये बात तो अगर मैं इनके साथ अपनी खुशियां रिलेट करूं तो खुश नहीं होंगे
3: जो मेरे ख्याल से जो खुशी है कि चाहत पूरी हो जाए तो खुशी मिलती है नहीं हुई या मोहब्बत किसी भी चीज से चाहत पूरी होगी तो खुशी मिल जाएगी तो ज्यादातर आजकल के दौर में इंसान एक दूसरे से कंपटीशन कर रहा है कि उसके पास वो है दीदी ही देख लीजिए मेरी दीदी की बहन है उसके पास अच्छा सूट आ गया तो मेरे से कहती है उसको मैं दिला दिया तो वो खुश होगी नहीं दिलाया तो वो झगड़ा करेगी तो सूट कहाँ से आएगा पैसे से आएगा
2: और कितने दिन तक खुशी देगा ये मैं मानती हूँ कितने दिन तक खुशी देगा जब खरीदा तो बहुत ही हम एक्साइटेड थे सूट आया या कोई भी चीज खरीदी एक्साइटमेंट तीन चार हफ्ते तक चला चलो महीने तक पकड़ते फिर एक्साइटमेंट खत्म
3: हम बता रहे तब तो हमें वो बनना पड़ेगा क्या नाम सूफी बनना पड़ेगा चाहत मार दो खुश रहो
2: नहीं नहीं ऐसा नहीं है यही तो मैं समझाना चाह रही हूँ
3: चाहत है तो खुशी है चाहत नहीं तो खुशी नहीं
2: नहीं चाहत होनी चाहिए और उसके लिए आपको कोशिश भी करनी चाहिए लेकिन खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में भी ढूंढिए नहीं तो परेशान रहेगा इंसान आज इतने ज्यादा लोग बात करते हैं मेंटल हेल्थ इश्यू फलाना एंजाइटी डिप्रेशन पहले नहीं इतने होते थे क्योंकि इतने मटेरियलिस्टिक हम नहीं थे हमने अपनी खुशियों को
3: आजकल कंपटीशन बहुत जोर चल रहा है बिना पैसे के कंपटीशन पूरा नहीं होगा
2: पैसे से भी नहीं होगा
3: पहले अगर घर के अगल बगल को देख लेते थे कि घर के अगल बगल थोड़े सभी अच्छे हैं तो हम भी अच्छे हैं अब पूरी दुनिया को देख रहे हैं फलाने फरारे दिया तो फेसबुक पे पोस्ट किया तो अल्लाह हमें क्यों नहीं मिला फलाने का लड़का जो है यूरोप गया तो हमें क्यों नहीं गया क्योंकि वो पोस्ट कर रहे हैं अपनी खुशियां दिखा रहे हैं उसके बाद दूसरे बंदे जो
2: एक और एंगल भी अंशु जी एक और एंगल भी वो दिखा रहे हैं उससे बहुत इम्पोर्टेंट कि हम देख रहे हैं
3: जाहिर सी बात आप देखेंगे नहीं जब कोई दूसरा बंदे को जब अच्छा मिलेगा क्या अब
2: तो हमें अल्लाह ताला नहीं देखिए जरूर देखिए लेकिन इस तरह से देखिए कि आप अपने आप को बेहतर बना सकें इस तरह से मत देखिए कि वो आपको डिमोटिवेट करे चीज और सबसे अच्छी चीज है कि माल और दौलत में अपने से नीचे के शख्स को देखो
3: इंसान की फितरत है इंसान जो अपने से ऊपर ही को देखता है नीचे को देखने लगे तो दुनिया में इतने फसाद हो ही ना
2: अब वो एक इंसान
3: आप भी बोलिए मगर आप भी जानती हैं कि
2: नहीं मैं जानती हूँ पैसा नहीं नहीं देखिए पैसा जरूरी है मैं ये कहती हूँ लेकिन पैसे से खुशी है इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती ना खुशियाँ छोटी छोटी चीजों में है जैसे गाबा जी ने कहा ना टेम्परेरी खुशी है टेम्परेरी बहुत वक्ती खुशी आपको मिलेगी वक्ती मिलेगी फिर खत्म हो जाएगी
3: मेरे ख्याल से ये पहले बताइए कि खुशी कब जो है हमेशा की जिंदगी भर इंसान मुस्कुराता है। दुख तो तीन ही आई है ना, अल्लाह ताला ने 300 बरस जो है दुख का पानी गिराया, एक एक 100 बरस जो है सुख का पानी गिराया, तो एक ही की है जिंदगी में, तीन तिहाई दुख है एक तिहाई जो खुशी है, तो कहां से हम खुशी रख अपने पास भी तोड़ पाएंगे।
2: चलिए आप कह रहे हैं, मैं बहुत ज़्यादा मैं आपके साथ आगे नहीं करूँगी, लेकिन मैं पर्सनली अगर मुझसे आप फिर भी पूछें तो मैं ये कहूँगी कि नहीं, आप अगर कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों में मटेरियलिस्टिक थिंग्स में मुझे खुशी मिले, तो वो फिर आपकी जो जो आपकी जर्नी है वो बहुत लंबी होने वाली है, क्योंकि उसका कोई एंड नहीं है। कोशिश कीजिए कहीं ब्रेक लें बीच में और कुछ और चीज़ों पे भी निगाह डालें जहाँ शायद आपकी निगाह नहीं जा रही है, शायद आप अल्टीमेट गोल पे निगाह रखे हैं और जो जर्नी है, जो फेज है जिसके थ्रू आप वहाँ तक पहुँच रहे हैं, उसमें इतने मोमेंट्स जो आपको खुशी देंगे और खुशी मिलेगी उन चीज़ों में। हो सकता है हमारा जहन हमारा ध्यान उधर नहीं जा रहा हो। मैं ये कहती हूँ कि पैसा बहुत ज़रूरी है, इसमें मैंने बिल्कुल ना नहीं कहा, बहुत ज़रूरी है, हर हाल में चाहिए, लेकिन पैसा जो है वो सिर्फ और सिर्फ खुशी की वजह बनता है, ये मैं इस चीज़ से अभी तक तो मैं उतना इत्तेफाक नहीं रख पा रही हूँ, बट लेट्स सी। एक एंगल किसी भाई ने बहुत अच्छा बताया, अतुल जी ने, कि ठीक है आप सुकून की बात करती हैं, और सुकून इस चीज़ में भी है कि आप लोगों की मदद कर रहे हैं, बहुत अच्छा कोई चैरिटेबल वर्क कर रहे हैं। यहां मुझे बात समझ में आई कि हाँ, ये एक हो सकता है, अनलेस एंड अंटिल मेरे पास पैसे ही नहीं है तो मैं वैसे हेल्प नहीं कर सकूंगी, लेकिन फिर एक और भी चीज़ है कि मैं हाथ पैर से मदद कर रही हूँ, मेरे पास पैसा नहीं है बट मैं एडवाइस लोगों को अच्छी दे पा रही हूँ, या मैं और उनके काम में हाथ बटा रही हूँ बिना पैसों के भी मैं मदद कर रही हूँ, और फिर वहां से भी मुझे सुकून मिल रहा है, तो ये भी एक पॉइंट हो सकता है खुशी खुश होने का।
3: एक बार बताइए, जब आपके पास पैसा नहीं रहेगा हाँ, तो आपकी कुछ सलाह भी मिलेगा।
2: ये तो अब हम सब हम लोग नहीं बताए इस सोसाइटी को, इस तरह
3: हम जिस सोसाइटी में बड़े हुए हैं हमें मालूम है, आपको जो सबसे नीचे तबके के माना जाता है, आप जितने भी अकलमंद हो, जितने भी सात दिल के हो, जितने भी आप सात दिल के हो, सबकी मदद करना चाह रहे हो, मगर आपकी इज्जत आपका पैसा नहीं है तो आपकी बात की वैल्यू नहीं है, आपकी बात की वैल्यू नहीं है। हाँ हो सकता है आप अपनी बात की वैल्यू बताने की आपको सूफी या संत या बहुत अच्छा आदमी बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा जानकारी रखना पड़ेगा, तो आजकल के दौर में तो मेरे ख्याल से नहीं है, क्योंकि आजकल का दौर जो कंपटीशन का चल रहा है, तो कंपटीशन के लिए ही पैसा जरूरी है, बहुत जरूरी है, क्योंकि आपको जो है आपके पास पैसा नहीं है, बहुत ऐसे तीन बच्चे होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता तो उनको कुत्ते जैसे व्यवहार करते हैं लोग।
2: चलिए हमने माना पैसे दिए आप
3: पैसा है तो आपका इज्जत है, आपकी बात की वैल्यू है, आप गाली भी बकोगे तो आपको वो गाली जो है फूल लगेगा, पैसा है तो आप किसी को गाली बकरे तो अगले बंदे को चलो नहीं कोई ना कभी जरूरत पड़ेगा तो पैसा ले लेंगे, तो अगला बंदा जो है चुप होकर सुन लेगा, आपके पास पैसा नहीं है तो आप अच्छी बात बोलोगे तो अगले बंदे को जहर लगेगा, अरे खुद फकीर का दूसरे समझाओ, जा निकल लो, पहले अपना तो देख लो।

0: ये भी है, चलिए माना
1: मानी कंपटीशन के जमाना है, उस वक्त जो हमारे जो बाप दादा थे तो उस वक्त इतना कंपटीशन नहीं था, इतना ज्यादा लोग एक दूसरे को जानते नहीं थे, इतना ज्यादा ब्रांड या ये या वो नहीं जानते थे, तो थोड़ा बहुत तो था। मगर आजकल ब्रांड है, लग्जरी लाइफ है, सबको हवेली चाहिए, हवेली चाहिए पैसा, क्योंकि इंसान जैसे जिस माहौल में रहता है उसी माहौल से उसकी उसकी खुशियां जुड़ती हैं। जैसे हम मदरसे में रहते हैं, शुरू से मदरसे में रहे तो हमें अल्लाह और अल्लाह की राह पे जाने में खुशियां मिलेंगी, मगर अभी हम मदरसे वाली लाइफ नहीं, हम दुनियावी लाइफ में, तो दुनियावी लाइफ में जीने के लिए, खुशी पाने के लिए पैसे जरूरी है। खुशी का तरीका अलग अलग है ना, कैसे माहौल में हम रह रहे हैं,
0: ये भी है,
1: मेरा मानना है
0: सबकी अपनी अपनी, हाँ नहीं बिल्कुल, सबके अपने अपने हालात हैं और अपने अपने डिफरेंट सिचुएशंस हैं, उसके हिसाब से ठीक है। पैसा बहुत बहुत बहुत जरूरी है,
1: बहुत जरूरी जिंदगी,
0: सिर्फ पैसा ही खुशी है, ये बस इस पॉइंट को मैं आपको समझाना चाहिए, बस यही समझाना चाह रही
1: थी, खुशी है ये,
0: हाँ ये बस ये, थैंक यू।
1: कुछ ऐसे रिश्ते जो अल्लाह ने बना के भेजे उसको नहीं खरीद सकते, जैसे माँ का, बेटे का, बहन का, भाई का, ये रिश्ते पैसे से नहीं, मोहब्बत से चलते हैं। हम पूरी चीज पैसे नहीं कह रहे की हर चीज भी पैसे, ये तुझे पैसे, ये नहीं कह रहे, हम ये कहना चाह रहे हैं कि आजकल के दौर में कंपटीशन के जमाने में पैसे बहुत जरूरी, किसी की मदद करना या अपनी बात बोलना या अपनी बात मनवन या कुछ भी ऐसा, और जो पैसे बिना पैसे के नहीं होता। हम क्यों बाहर आ रहे हैं, हम क्यों कतर में काम कर रहे हैं, पैसे के लिए ना, बेटर लाइफ के लिए ना।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने कही अंशु जी, बहुत अच्छा, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, अपना ख्याल रखिएगा। नहीं, असल में बहुत सारे कॉलर्स हैं और कल भी हमें कहा गया था कि थोड़ा कॉल शॉर्ट रखिए, इसीलिए चलिए थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा, ओके अलाफिज अलाफिज। तो अभी मेरे साथ बहुत लोग जो है वो 666 वाले नंबर पे भी कॉल कर रहे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज अगर आप मुझे कॉल करना चाहते हैं, नंबर है 4434377। बस थोड़ी देर और इस टॉपिक के साथ और फिर इसे कंक्लूड करेंगे। Let's get connected to one more caller. Hello.
2: Assalamu alaikum Nazia.
0: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bilkul sahi time pe aap entry lete hain. Acche se conclude karne ke liye. Please go ahead. Kya kehna chahenge?
2: Main sabse pehle to main maazrat chahunga. Main aksar main aapko call kar deta hoon. Main chahta hoon ki na karun. In fact, but
0: nahi nahi. Please kijiye.
2: Aapse baat kar. नहीं एक्चुअली वो कभी कभी थोड़ा सा टाइम ज्यादा लग जाता है, व्हिच आई डोंट लाइक, पर्सनली आई डोंट लाइक।
0: हाँ कभी कभी मैं ही आपसे क्वेश्चन पे क्वेश्चन, कभी कभी किसी से मैं क्वेश्चन रखने लगती हूँ, लेकिन अब मैं थोड़ा सा कंट्रोल भी कर रही हूँ खुद को।
2: So, but as I said yesterday, you know, talking to you is addictive. So that's why, you know, कुछ कभी कभी जो है वो होता है कि आप ना चाह के भी आप कॉल कर देते हैं, वो लग जाती है।
0: चलिए बहुत ही अच्छी बात है और हमें खुशी होती है कि आप आते हैं और आपको तो इनफैक्ट आपकी बात सभी लोग, क्योंकि आप समझाते बहुत अच्छे से तो सबको समझ में भी आती है और अच्छा भी लगता है।
2: मैं हर बात तो कुछ भी नई नहीं होती है, वही होती है जो सब लोग कहते
0: हैं, सभी कहते हैं, समझा देते हैं। जी जी जी,
2: बस ये है कि थोड़ा सा उसको स्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं। तो इस पे आज के टॉपिक के ताल्लुक से विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, कि देखिए अगर आप ना खाली जो आप जो है कैन मनी बाय हैप्पीनेस और नॉट, ठीक है, क्वेश्चन इज दिस, तो अगर आप इसको खाली हैप्पीनेस को अगर आप ट्वीक कर दें थोड़ा सा, इंस्टेड ऑफ हैप्पीनेस इफ यू से कैन मनी बाय प्लेजर,
0: ठीक है
2: जैसे कि आपका जो है वो कोई अच्छा खाना खाने का दिल हुआ, राइट, तो आपके पास पैसे हैं, आपने गए, आप किसी अच्छी जगह गए, आपने खाना खा लिया,
0: सही,
2: दिस इज प्लेजर दैट यू गेट, दिस मनी गिव्स यू, राइट, मनी गिव्स यू द फ्रीडम यूज आल्सो,
0: राइट,
2: ठीक है, ये सब चीजें पैसा ही दे सकता है, ठीक है। अच्छा अब आप मिसाल के तौर पे किसी एक, जैसे आपका अच्छा खाना खाने का, अच्छी जगह अच्छा खाना खाने का दिल हुआ, तो अब आप वहाँ गए खाना खाने, लेकिन आपके साथ कोई ऐसा इंसान भी था जिससे आप मोहब्बत भी करते हैं, जिसका साथ भी आपको पसंद है, ठीक है, तो वो जो है वो प्लेजर भी हो गया और वो एक मेमोरी भी हो गई, हैप्पीनेस भी हो गई, वो हैप्पीनेस में भी कन्वर्ट हो गया, वो चीज कि आप

0: truly money can buy happiness. No.
1: No, money cannot buy happiness. Yeah. I mean,
0: together
1: with pleasure possible. Yes. है थोड़ा बहुत ठीक है. Yes. देखिए एक आपकी एक अच्छी फैमिली है, ये एक हैप्पीनेस है ना.
0: Hmm.
1: आप जो काम कर रहे हैं उसमें उसको जो है आप पसंद करते हैं, उसको आप एंजॉय करते हैं, ये हैप्पीनेस है.
0: ये हैप्पीनेस
1: आप जो आप खुद जो एक इंसान है कैसा आप खुद फील करते हैं. आर यू प्राउड ऑफ योर सेल्फ, दिस इज वॉट हैप्पीनेस इज. ये सारी चीजें जो है ये हैप्पीनेस है.
0: बिल्कुल.
1: प्लेजर जो है वो ये है, वो थोड़े टाइम के लिए होता है, इंस्टेंट होता है और वो खत्म हो जाता है. आपने मूवी देखी, आप किसी मूवी को, आपको कोई पता चला बहुत सी मूवी है, आप वो मूवी देखने गए, आपको बहुत अच्छा लगा वो मूवी देख के, बट बियॉन्ड दैट फिनिश.
0: वही मैंने कहा, थोड़ी देर का एक्साइटमेंट है, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, कितना लास्ट करेगा, एक हफ्ता, उसके बाद नॉर्मल हो गए. तो वहां ही तक है बस आपकी मनी से.
1: Exactly.
0: लगाओ.
1: तो प्लेजर जो है, वो प्लेजर जो होता है ना, वो इट पॉइंट्स टुवर्ड्स कंजम्पशन. मतलब वो उससे आप क्या कंज्यूम कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, क्या हो रहा है आपकी जिंदगी में, उससे प्लेजर आता है. लेकिन हैप्पीनेस क्या होता है, वो इट रिलेट मोर टू क्रिएशन ऑफ योर लॉन्ग लास्टिंग मेमोरीज. जो आप खुश होते हैं, जो आप फैमिली के साथ जाते हैं, आपने बच्चे को हक रहे थे उसे, आपने फैमिली को देखा, आपने पेरेंट्स को देखा, आपने पेरेंट्स से अच्छे बैठ के बात करी. अब पेरेंट्स के लिए या आपके लिए हैप्पीनेस वहाँ पैसा नहीं है. वहाँ आप जो है आप बैठ के उनसे बात करेंगे, आधा घंटा उनके साथ अच्छे से बिताएंगे, उनकी बात सुनेंगे, ऑल ऑफ दिस. दिस इज व्हाट हैप्पीनेस.
0: वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा एक्सप्लेन किया आपने, जबरदस्त. एंड आई एम श्योर मेरी ऑडियंस जो है, जो लिसनर्स हैं, उन्हें एकदम क्लियर हो गया. आई वॉज रियली लुकिंग कि इसको कैसे मैं इसको एंड करूँ, कैसे कंक्लूड करूंगी, बट यू हैव गिवन अ वर्ड प्लेजर, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट. बहुत ही अच्छा. इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू एज वेल. थैंक यू सो मच. अपना बहुत ख्याल रखिए. हैव अ फैंटास्टिक डे. टेक केयर. वालेकुम अस्सलाम. तो यहाँ पे मसला सॉल्व कर दिया भाई. शिमोन जी, बहुत ही अच्छा आप जुड़ते हैं और आपने हमारी इस बहस को जो है एक बहुत ही अच्छा वर्ड दिया विद द वर्ड प्लेजर. एंड आई अग्री. या बिल्कुल, यही एक्चुअल में बात भी है, क्योंकि हम हैप्पीनेस बोल रहे हैं और कह रहे हैं टेम्परेरी है, फला है, बहुत लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, थोड़ी देर का एक्साइटमेंट है, बट वो समझ में नहीं आ रही. बट देन देयर कम्स अ वर्ड प्लेजर. हाँ, आप खरीद सकते हैं, मतलब ये प्लेजर खरीद सकते हैं, लेकिन अगर हैप्पीनेस की बात कर रहे हैं तो वो क्रिएट की जाती है, जैसे कहा शिमोन जी ने. आई थिंक यहाँ पर एकदम लास्ट कॉलर लेते हैं, क्योंकि बहुत देर से हमें कॉल कर रहे हैं, इस नंबर से बहुत देर से मुझे कॉल आ रही है, तो इनसे बात कर लेते हैं. लेट्स फिनिश दिस, लेट्स कंक्लूड दिस. हेलो.
2: हेलो, अस्सलाम वालेकुम मैम.
0: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू. अहमद जी, राइट
2: मैम? मेरा नाम जी मोइन है.
0: मोइन
2: अहमद. मैं आपका कांस्टेंट लिसनर हूं, बट ये पहली बार मैंने कॉल किया है.
0: ओ ग्रेट, ग्लैड. बहुत अच्छा लगा कि चलिए आज आपने फाइनली कॉल कर लिया.
2: या ऑफ कोर्स, थैंक यू. मैं आपके हर एक टॉपिक सुनता रहता हूँ, कल भी सुन रहा था, आज भी सुन रहा था. बहुत अच्छे टॉपिक्स आप लेके आते हैं. आई मीन आपके टॉपिक्स ना हमें मजबूर कर देती है जस्ट टू टेक अ स्टेप बैक एंड थिंक कि भाई दुनिया की जो मसरूफियात है उससे सोच, मतलब एक स्टेप पीछे आके सोचें कि यार एक्चुअली जिंदगी में ये भी चल रहा है. तो रियली थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग सच टॉपिक्स.
0: थैंक यू सो मच. बहुत शुक्रिया. थैंक यू फॉर ऑल योर काइंड वर्ड्स. तो क्या कहेंगे आज हमारे इस टॉपिक के हवाले से?
2: मैम जी, आज मैम ये डिपेंड करता है कि पैसा या जो खुशी है ना, ये डिपेंड करता है कि आप लाइफ के कौन से स्टेज में है. ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है. जब तक हमें समझ नहीं आती है ना, तो पैसा कुछ मायने ही नहीं रखता है. मतलब पापा ने, माँ ने, दोस्तों ने आके बस एक बार हाथ भी लगा लिया ना सर पे, तो खुशी मिल जाती है. पैसे का तो हमें कुछ पता ही नहीं होता है उस टाइम पे.
0: सही बात है, सही कहा.
2: बट जैसे जैसे आप ग्रो करते हैं ना, जैसे जैसे आप कंटामिनेट हो जाते हैं दुनिया में आके, दुनिया के दस्तूर जब जब समझने लगते हैं ना, तो मैंने देखा है. मीन आई माय पास्ट इज मैं ज्यादा नहीं टाइम दूंगा आपका पास्ट में जाके. तो इसमें क्या है कि हमने देखा है, एक जैसे फॉर एग्जांपल फैमिली में मतलब मल्टीपल सिबलिंग्स जो होते हैं ना, जब पैसे का मामला जब आप समझने लगते हो कि पैसा ही सब कुछ है, तो हमने देखा है खुद के पेरेंट्स भी सेपरेट कर देते हैं. मतलब जो बच्चा ज्यादा कमा रहा है, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है.
0: एग्जैक्टली.
2: तो ये सब प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है मैम. तो तब समझ में जाता है कि यार पैसा है तभी आप खुश हो सकते हो. मतलब आप समझ आप ये

0: के सोच के देखो ना कि आपके पास जब पैसा होता है तो आप यू फील कॉन्फिडेंट योरसेल्फ, तब जाके आप दूसरों को जो आइडिया देते हो ना वो भी काम करता है। जब आपके पास पैसा नहीं होता ना तो आपसे कोई आइडिया भी लेगा नहीं।
1: एग्जैक्टली
0: तो वो कामयाबी को दुनिया देखती है कि पैसा है कि नहीं। वो आदमी के पास अगर पैसा है दैट मींस ही इज कामयाब इरिस्पेक्टिव ऑफ उसका लाइफ एक्सपीरियंस क्या है। तो दुनिया हैज कंटामिनेटेड, तो दिस इज जैसे आपका कल का टॉपिक था ना वैसा ही है ये भी। पैसा चाहिए आपको जिंदगी गुजारने के लिए, खुशी इज मतलब खुशी इज समथिंग विच यू कैन इग्नोर बट पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: पैसा इज वेरी,
0: आई वुड से हलाल पैसा इज वेरी इम्पोर्टेंट।
1: हलाल पैसा, हाँ उसमें बरकत है। तो पैसा बहुत इम्पोर्टेंट है, लेकिन वही चीज है जैसे अभी एक शिमोन है हमारे लिसनर, उन्होंने कहा कि ठीक है आप उससे हैप्पीनेस तो शायद नहीं खरीद पाए अभी भी, व्हाट यू से हैप्पीनेस का मतलब हमारा हम सबके लिए इनर पीस है। आपके लिए क्या है, व्हाट इज हैप्पीनेस टू यू?
0: मैम हैप्पीनेस इज सक्सेस फॉर मी।
1: अच्छा, सो यू
0: सक्सेस, एज फार एज आई एम सक्सेसफुल एंड आई कैन डिस्ट्रीब्यूट माय हैप्पीनेस और आई कैन शेयर माय थिंग्स विद समबडी एल्स, मेक समबडी लाइफ मोर इजीियर फॉर देमसेल्व्स, That is happiness for me.
1: Make somebody's life easier for them and for yourself. तो कहीं ना कहीं ये line says that you are also looking for a kind of inner peace, a satisfaction.
0: Yes.
1: है ना?
0: And without money, this is not possible, ma'am.
1: No, at times it is. आप किसी को अच्छा मशवरा देके देखिए, help them physically.
0: वही मैं बोल रहा हूँ। अगर आप successful नहीं हैं, बोथ मनी वाइज एज वेल एज इन योर लाइफ आप जो लेवल पे हैं, आपको कोई पूछेगा भी नहीं मैम। प्रैक्टिकली आप हम अगर आप लाइफ में आके देखोगे ना, कहीं एक जगह हम जो अभी फिलहाल सिचुएशंस में हैं इस पे बैठ के बोलना बहुत इजी है, बट प्रैक्टिकली अगर आप जाके देखोगे ना लाइफ में जो दुनिया में चल रहा है, हमारा कोई भी बात नहीं सुनेगा अनलेस यू नो कि हमारा अपीयरेंस क्या है, पैसा क्या है और क्या लाइफ में है।
1: सही
0: ये
1: बात
0: कोई
1: है।
0: नहीं
1: अच्छा,
0: सुनेगा।
1: मोहिन जी मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताती हूँ। मैंने ये इंटरव्यू देखा था रतन टाटा जी का, जहाँ पर उनकी गाड़ी का ब्रेकडाउन हुआ एंड वो बीच में थे कहीं भी हाईवे में एंड बहुत सी गाड़ियाँ आ रही जा रही हैं, उनका ड्राइवर वाज स्ट्रगलिंग कि कैसे करें कैसे इसको करें, वो भी कॉल कर रहे थे लेकिन टाइम लगता। एक बंदे ने बिना हेल्प, मतलब उन्होंने हेल्प नहीं मांगी क्योंकि उन्हें लगा कि लोग सब हाईवे पे हैं, बिजी हैं, गाड़ियाँ आ जा रही हैं, इतना कोई टाइम नहीं देगा। एक बंदा खुद ही, उसको पता नहीं कि इसमें रतन टाटा जी बैठे हैं क्या है, गाड़ी भी बहुत बड़ी नहीं लेकिन थी, अच्छी गाड़ी थी, लक्ज़री गाड़ी थी, वो आता है रुकता है रिस्पेक्ट के कौन बैठा है क्या, वो पूछता है ड्राइवर से कि क्या हेल्प चाहिए, बट आप परेशान लग रहे हैं। अपने आप से उसने पूछा, उसने हेल्प की, एक और बंदे को बुलाया, उसे हेल्प की कराया, तो सब कुछ करने के बाद रतन जी जो हैं वो अपना गाड़ी का जो विंडो है उसका मिरर नीचे करते हैं एंड देन वो थैंक यू कहते हैं उसे कि बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला और आप बिजी होंगे और उसके बाद भी आपने मेरी हेल्प की। कहाँ जा रहे हैं बाय द वे ऐसे? तो कहता है बस मेरा इंटरव्यू है और सर मैं जॉब के लिए जा रहा हूँ। तो कहते हैं अच्छा ठीक है ओके ओके। इत्तेफाक से ये बंदा उन्हीं के एक वन ऑफ द कंपनीज में जॉब के लिए जा रहा था। तो आपको पता है कि जैसे ही इस बंदे का फेस और इस चीज़ की बात क्लिक हुई, रतन जी ने इसको ना सिर्फ हायर किया बल्कि अपनी बहुत खास टीम का एक बड़ा मेंबर बनाया। अब इसकी शुरुआत कहाँ से हुई, मतलब मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए दे रही हूँ क्योंकि ये उन्होंने अपने इंटरव्यू में बताया कि लोग जो हैं कई बार अट्रैक्ट होते हैं आपकी जनरोसिटी से, आपकी काइंडनेस से, और इसमें पैसे नहीं लगे उसके। देखिए उसने कोई पैसे ना लिए ना दिए ना किए लेकिन उसकी जिंदगी बदल गई।
0: आई एग्री विद यू मैम कम्प्लीटली। ऐसे लोग तो बहुत कम ही बच गए हैं
1: कि अब देखिए पैसे ना होने के बाद भी विलिंगनेस है क्योंकि सीखा है हेल्प करना है तो किया के, और हजारों लाखों लोग पास करते रहे जिनको वो खुद हेल्प के लिए कह रहे थे कि प्लीज मेरी हेल्प कर दो, कोई हेल्प कर दे, पर नहीं कर रहे थे लोग। और वहाँ पे उस बंदे ने खुद आके हेल्प करी। तो कई बार आपकी खुशी जो है ना वो इस चीज़ में नहीं कि क्या आपको उसके बाद मिलेगा, खुशी इस चीज़ में कि बस मैं इसकी हेल्प कर दूँ। रिजल्ट तो हम देखते नहीं है ना सोचते कि हमें इसके बाद इससे क्या मिलने वाला है, बस मैंने हेल्प की कर दी फिनिश। तो ये भी है।
0: I completely agree with you, जी जी, definitely.
1: तो बस ये कोशिश हमें और आपको करनी है कि अपनी हैप्पीनेस किन चीजों में तलाश करनी है। बट एनीवेज आपका पॉइंट बहुत सही था और आपने कहा भी सही, पैसा ट्रूली ट्रूली मैटर्स अ लॉट। आई अग्री,
0: या या ऑफ कोर्स,
1: बिल्कुल। थैंक यू वंस अगेन, बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर योर कॉल। ना ख्याल रखिएगा।
0: थैंक यू, थैंक यू,
1: ओके जी, लव यू, लव यू। तो दोस्तों देखो कुछ ना कुछ याद आ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इस बात से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखती हूँ कि हाँ पैसा ज़रूरी नहीं है, पैसा बहुत बहुत बहुत ज़रूरी है। मैं ख़ुद कहती हूँ, बहुत से लोग जो हैं वो कहते हैं कि हम अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें उससे खुशी मिलती है, लेकिन अब हमारे पास जो है वो टाइम ही नहीं है, क्योंकि हमें हमारी फैमिली के लिए पैसे कमाना है, हमें हमारे बच्चों की फ़ीस भरनी है, हमें हमारे और दूसरे बिल्स को सेटल करना है, अब मेरे पास टाइम नहीं, मैं स्ट्रेस में हूँ तो मैं फैमिली को टाइम नहीं दे रहा हूँ, तो वो मैं हैप्पीनेस जो क्रिएट कर सकता हूँ अपने लिए अपनी फैमिली के लिए वो कर नहीं पा रहा हूँ। तो अगेन मनी इज़ इक्वली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लेकिन हमारा पर्सपेक्टिव हैप्पीनेस को लेके क्या है ये असली बात है, जो मैं आज आपको समझाना चाह रही थी, जो मैं चाह रही थी कि हम और आप समझें, वो आप समझे भी हैं, बहुत से लोग समझे हैं, और सच्चाई भी ये है कि हमारा और आपका पर्सपेक्टिव हैप्पीनेस को लेकर क्या है, क्या है, क्या वाकई वो सिर्फ और सिर्फ चीज़ों के साथ ही जुड़ा हुआ है या उसके पीछे कुछ और भी है। चलिए वापस आऊँगी छोटे से ब्रेक के बाद, तो मैं इस टॉपिक को एब्सोल्युटली कंक्लूड करूँगी और फिर हम अपने गेम की तरफ भी बढ़ेंगे। एंड आई रिक्वेस्ट एवरीवन प्लीज़ मेरे साथ जुड़िएगा गेम के लिए, और हाँ कुछ लोग जो मैसेजेस भेज रहे हैं वो भी हम शामिल करेंगे। अब एक गाना हो जाए, और अभी के लिए हर्षदीप कौर और बेनी दयाल की आवाज़ में उफ एंजॉय कीजिए एंड स्टे हुक्ड टू FM 107 दिल से देसी।

Right guys, welcome back. आप सुन रहे हैं शो समर मॉर्निंग्स. मैं हूं नासिया आपके साथ. 8:42 ऑन द क्लॉक. वो लोग जो मैसेज करके बैठे हैं कितना नाराज होंगे अगर उनके मैसेजेस शामिल ना किए जाए. शहजादा जी कहते हैं कि मैं आपको सुन रहा हूं. शायद बहुत ज़्यादा कॉल की इन्होंने समथिंग. ओके अच्छा शहजाद अहमद जी हैं. आप दोनों का क्या हाल है? दो लोग कौन है भाई? अच्छा आपका भी पूछ रहे हैं क्या? मुझे जब भी स्ट्रेस होता है मैं सरवर भाई की तरह खूब ज़्यादा खाना खा लेता हूँ. अरे ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी सेहत के साथ जुल्म? चलिए कभी कभी खाना कोई बुरा नहीं है. स्ट्रेस की तो बात हम आज स्ट्रेस ही तो दूर करने की बात कर रहे थे कि पैसों को लेकर स्ट्रेस है, ना मिले तो स्ट्रेस है, मिल जाए तो स्ट्रेस है. तो बस एक गुड बैलेंस क्रिएट करने की बात कर रहे थे और आप लोगों ने बहुत ही अच्छी अच्छी बातें की. यहाँ पर बहुत ही प्यारा मैसेज है. कोई ओहो बहरीन से हमें सुनता हुआ नासिर जी है और सलाम कहते हैं एंड ही इज एंजॉइंग. और कहते हैं मैम मैं आपको हर रोज़ सुनता हूँ. मुझे नहीं पता था कि सऊदी के बाद बहरीन से भी लोग सुन रहे हैं. वेल नाइस, थैंक यू सो मच. इसके साथ है मोहम्मद मुशीर आलम जी. देखो मैडम, हम वो जनरेशन है जिन्होंने गरीबी देखी है. अगर हमें बाहर पैसे मिल जाएं तो हम खुश हो जाएंगे और हमें खुशियां मिलेंगी, क्योंकि आपके पास पैसा है तो आपके लिए खुशी भी आपका परिवार है. और अगर पैसा ना हो तो फिर पूछिए. हाँ देखिए, ये बात मैं नहीं कह रही हूँ कि बात सच है कि पैसा बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुशियों को ढूंढना भी ज़रूरी है. यहाँ पर मैसेज है और कहते हैं फोकस ऑन स्किल्स नॉट ऑन मनी. ये बड़ा अच्छा सा बहुत ही सी बी इनका नाम है. इन्होंने बहुत ही अच्छी एक लाइन वन लाइनर जो जवाब हो सकता है वो दिया है. सलाम कहते हैं मुमताज़ जी और आपका प्रोग्राम लाजवाब होता है. थैंक यू सो मच. पैसे से खुशियां नहीं खरीद सकते. आप जुदाई मूवी देख लो. हाँ देखा कितना अच्छा बोला है भाई. हमारे यहाँ पर जो कुछ लिसनर्स जो कॉल पर नहीं आ पाते वो हमारे साथ यहाँ पर जुड़ते हैं और इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस. और यहाँ मनी इज़ हंगर, द मोर यू ईट द मोर यू वॉन्ट. ये कादिर अब्दुल हादी जी का कहना है. बिल्कुल सही कहा आपने. हालांकि आपने और भी कुछ लंबा लिखा है लेकिन मैंने एक छोटा सा जल्दी सा क्विक वाला ले लिया आपका मैसेज. यहाँ मुझे मैसेज किया है गुल नफीस जी ने. सलाम कहते हैं, थैंक यू सो मच. सलाम कहते हैं और ये कोई और हमें बहरीन से सुनता हुआ. क्या बात है भाई, आज तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हैं. इन्होंने ए लिख रखा है, पता नहीं नाम. सबसे बड़ा रुपया ये कह रहा है हाशिम जी का. ऑल राइट एंड सलाम अली हुसैन जी हैं. वालेकुम अस्सलाम एंड सलाम का ये मैसेज है रमज़ान खान जी का. वालेकुम अस्सलाम. एंड पैसा खुशियां नहीं ख़रीद सकता. यूसुफ जी, मोहम्मद यूसुफ जी का कहना है. एंड वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच. कह रहे हैं अंशु जी, उस्मान जी कह रहे हैं अंशु जी डिप्रेस लग रहे हैं. नहीं शायद हो सकता है परेशान हूँ, लेकिन उन्होंने अपनी जो बात कही कही. आसिफ हमारे साथ गुड मॉर्निंग कहते हैं एंड थैंक यू सो मच. मनी कैन मेक लाइफ ईजियर बट गिव यू मोर फ्रीडम बट इट डजेंट गारंटी यू विल बी हैप्पी. ये बात तो है भाई. ये तो ज़्यादातर लोग कहते हैं. आपने अपना नाम नहीं मैंशन किया. एंड गुड मॉर्निंग का मैसेज है अरमान मलिक जी का. अब इसका मैं क्या ही आपको जवाब दूँ. यहाँ पर सलाम कॉल रिसीव क्यों नहीं किया आपने? ये तो शेख अजहर जी कह रहे हैं. अल्लाह आपको खुश रखे. आमीन से मामीन. मुझे नहीं पता चल रहा था कि आप मुझे कॉल कर रहे हैं. हालांकि अब देखिए टाइम कितना कम हो गया है और मुझे जल्दी से कुछ गेम भी खिलवाने हैं, तो बस आपको जल्दी जल्दी जुड़ना है. आज मेरा जो टॉपिक लेकर आने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं कहना है कि पैसा ज़रूरी नहीं है. मैं वापस से बार बार रिपीट कर रही हूँ कि पैसा जो है वो हम सब के लिए बहुत ज़रूरी, बहुत इंपॉर्टेंट है. पैसा जो है वो हमारी बेसिक नीड्स को पूरी करता है. हम सिक्योर फील करते हैं, कुछ ना कुछ कंफर्ट भी हमें जो है वो मिलता है. लेकिन पैसे के बगैर ज़िंदगी वाकई टफ है. बिल्कुल सच बात है, इसमें कोई डाउट नहीं. लेकिन एक चीज़ जो हमें और आपको याद रखनी है वो ये कि पैसा ज़िंदगी का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी ज़िंदगी नहीं है. ये समझना ज़रूरी है. अगर हम सिर्फ पैसे के पीछे भागते रहें तो मुमकिन है कि हम शायद जो छोटी छोटी खुशियाँ हैं उन्हें मिस कर देते हैं. और डेफिनेटली मिस होती ही हैं. और ये छोटी छोटी खुशियाँ हो सकता है आपकी फैमिली के साथ घर पे ही बैठ के दाल रोटी खाने में हो. हो सकता है कि आपके एक दोस्त की आपको कॉल आ गई, ये एक छोटी सी खुशी आपको मिल गई. हो सकता है आपके पेरेंट्स ने सुबह सुबह आपको कॉल करके आपको दुआ दे दी, कितनी बड़ी खुशी है. या फिर आपने किसी की छोटी सी मदद कर दी. ये तो खैर मैंने बड़ी मदद बताई रतन जी की, जो मुझे याद आई उस लड़के की बात. मतलब ये तो एक एग्जाम्पल निकल आया, क्योंकि रतन टाटा खुद भी

0: एक बड़े नाम है तो उन्होंने अपने इंटरव्यू में इस चीज को हाईलाइट किया कि मैं जब भी हायर करता हूँ सो आई लुक मोर ऑन ऑनेस्टी डेडिकेशन काइंडनेस जेनरोसिटी एंड ऑल दैट. लेकिन ठीक है, आज की दुनिया वैसी नहीं है, हर कोई इस तरह के प्रिंसिपल्स और उसूल नहीं रखता, ये क्राइटेरिया नहीं होता लोगों को जो हायर करने का. लेकिन फिर मैंने इस चीज़ को हाईलाइट किया क्योंकि ऐसे लोग आज भी हैं दुनिया में. मैं ये नहीं कहती हूँ कि पैसा मत कमाइए, कमाइए पैसा कमाइए, ज़रूर कमाइए, अपने ड्रीम्स को पूरा कीजिए, लेकिन साथ साथ ज़िंदगी को महसूस करना ना भूलें. हम जिंदगी को वाकई महसूस करना भूल चुके हैं. बैंक बैलेंस बढ़ाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी खुशियों का बैलेंस जो है वो बनाए रखना ये बड़ा ज़रूरी है. आखिर में बस मैं यही कहना चाहूँगी आप सभी से कि पैसा ज़रूरी है जीने के लिए, बहुत ज़रूरी है, लेकिन खुशी ज़रूरी है ज़िंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए. और खुशी आपको किन चीज़ों में मिलती है, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने में ओके या फिर और छोटी छोटी चीज़ों में? अगर इसका जवाब आपको मिल गया है तो ज़रूर अपनी वो छोटी छोटी चीज़ों पर जो अपना फोकस है, जो आपने हटा रखा है, जो चीज़ें आउट ऑफ फोकस कर रखी है, उन्हें फोकस में लाइए और उन चीज़ों को वाकई एक्सपीरियंस कीजिए. जैसे मैं कहूँगी कि मनी कैन मेक लाइफ ईजियर, राइट, बट हैप्पीनेस is in little moments, the people we love, the memory we create, the gratitude we carry in our hearts. Paisa zarur kamaiye lekin choti choti baaton mein jo khushiyan dhoondne ka silsila hai ise mat chhodiye. Ye important baat thi. Chaliye kehne ko bahut kuch hai lekin ab time to raha nahi hai to bas ise conclude karungi. And I request please please please ek aad bande aaj mere sath jud jaye jo is waqt hamare sath game khel sake. Voices aapko pehchani hai simply aur kuch voices jo hai main aapke liye play karungi bas pehchani hai. There you are good to score jitna aap kar sakte hain. To कॉलर मेरे साथ यहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं. हेलो,
1: अल्लाह का शुक्र है कॉल उठा लिया है. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह.
0: वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह बरकातहू. इस वक्त तो आप मतलब सेवियर की तरह मेरे साथ जुड़े हैं, बहुत अच्छा किया आप जुड़ गए अजहर जी.
1: नहीं,
0: इतनी खुशी
1: तो
0: आपने मुझे इतनी हैप्पीनेस दी है, बता नहीं सकते.
1: बात हैप्पीनेस की नहीं है, मतलब बोलना भी ये चाह रहा था भाई. टाइम वाकई कम हो गया क्योंकि कोई सैटिस्फाई कर ही नहीं सके इस बार तो, क्योंकि वक्त ही खत्म हो गया.
0: वक्त ही खत्म हो गया और अभी भी मेरे पास कॉल्स आ रही हैं और यहाँ पे मैसेजेस भी हैं और बहुत सारे मैसेजेस
1: कॉल्स आएंगे, मैसेजेस आएंगे, क्योंकि चाहने वाले उतने ही तो है दोहा में.
0: नहीं, ये टॉपिक ही ऐसा है, अब पैसे को अच्छा कहते हुए भी शर्म आ रही है और ना कह भी नहीं पा रहे हैं. खुशी क्या है उसे ढूंढना चाहते हैं. लेकिन मैं आप लोगों को यही चाहती हूँ कि देखिए, पैसे तो हम सब कमा रहे हैं, भाग रहे हैं, ज़रूरत है, सब कुछ है, लेकिन अपने आप को इतना परेशान बोझल ना कीजिए. छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ ढूँढिए और ये छोटी छोटी खुशियाँ ही आपको किक देती हैं बड़े अचीवमेंट्स के लिए. तो ये
1: बिल्कुल ये हकीकत है. हाँ. लास्ट टाइम भी आपकी यही मतलब ये टॉपिक थी, पैसा और वक्त, और मगर
0: रिस्पेक्ट थी. कल तो मैंने रिस्पेक्ट और ट्रस्ट की बात की थी.
1: जी जी जी, तो बात यहीं पे एक छोटी बात बोल देता हूँ. पैसा है यानी लाखों पैसा है, लेकिन वक्त पे पैसा काम में नहीं आता तो फिर वो पैसा क्या काम का.
0: अभी तक कोई नहीं बोला था.
1: वक्त पे पैसा है लेकिन वक्त पे वो पैसा काम में नहीं आया तो क्या फायदा. तो वक्त भी जरूरी है, पैसा भी जरूरी है, लेकिन सबसे पहले अहमियत ये है कि वक्त की, क्योंकि वक्त वक्त पे जो है ना हर चीज ताजर है. जैसे कि वक्त आए तो पैसा भी चाहिए, वक्त आए तो खाना भी चाहिए, वक्त आए तो इंसान की भी जरूरत चाहिए, लेकिन वक्त साथ देना, वक्त साथ दिया तो हर चीज साथ देती. बोलते ना तुम्हारा जिस दिन वक्त आएगा उस दिन अल्लाह ताला तुम्हारे नसीब में जो बेहतर है वही नसीब करेगा
0: इंशाल्लाह.
1: तो सबसे पहले वक्त, उसके बाद सारी दुनिया,
0: सारी चीजें. हालांकि अजहर जी सॉरी मैं आपको बीच में रोक रही हूँ, बात तो हम और भी करते हैं आपसे, बट अब हमें गेम खेलना है, टाइम बहुत कम है.
1: मैं भी आपका वक्त ज्यादा नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है.
0: वही ना, तो चलिए आपके साथ गेम स्टार्ट करते हैं, आप तैयार हैं?
1: चलिए आईसो उसको जो ना गेम खेल लेके चलेंगे. बिस्मिल्लाह
0: रहमान रहीम. ओके चलिए, ऑल द वेरी बेस्ट, आपका टाइम स्टार्ट होता है अब.
2: चलिए रेडी चेक, 70 मिनट है तुम्हारे पास.
0: 70 मिनट थे बस.
3: अंधेरे को अंधेरा नहीं सिर्फ रोशनी मिटा सकती है.
1: श्रद्धा कपूर.
0: बिल्कुल सही.
4: उस्मान, अगर तुझ में दम है तो तू अब.
0: बिल्कुल सही.
5: Two days time, I met Rahul Dravid near the pool.
6: Mumbai ka king kaun? Viku Mhatre.
1: Pass.
4: Ab devil ke piche, devil aapke piche. Too much.
0: सलमान खान इज द राइट आंसर. तो आपने यहाँ सलमान पहचाना है, एक और सलमान पहचाने आपने, श्रद्धा पहचानी. हाँ, तो इस तरह से आपका 3 का स्कोर होता है ना, और तो नहीं पहचाना ना कोई, इतने पहचाने. ऑलराइट, सो नाइस. चलिए 3 का आपने फाइनली स्कोर किया, कुछ तो अच्छा किया. देखिए आए तो आपने कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ लेके जाएंगे, ये कितना अच्छा था, बहुत ही अच्छा. आप बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक

0: क्यों जी, बहुत शुक्रिया आपका।
1: आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह सलामत और खुश रखे, सदा इतनी खुश रखे, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट बरकरार।
0: आमीन आमीन। अल्लाह ताला आपको भी हमेशा खुश रखे, हंसता मुस्कुराता रखे। थैंक यू वंस अगेन जी,
1: जज़ाकअल्लाह खैर, अस्सलाम
0: वालेकुम। अस्सलाम, अल्लाह हाफिज़। तो इतनी खुशी दी है ना मुझे अज़र भाई ने, मैं बता नहीं सकती इतना। मुझे अगर पैसा भी आज दे देते ना सरवर, कह देते कि ले लीजिए 100 रियाल, 100 तो बहुत ही कम कह रही हूँ मैं इनके हिसाब से कह रही हूँ, लेकिन खुशी नहीं मिलती जितनी मुझे ये अजहर जी की कॉल से मिली है। तो एक और कॉल है मेरे साथ फाइनली। हेलो, वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। कैसे हैं यूसुफ जी, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ। तो टाइम कम है, आपके साथ गेम स्टार्ट करूँ क्या जल्दी से?
2: हाँ हाँ हाँ, कोई बात मत कीजिए, मुझे पता है टाइम हो चुका है,
0: बहुत हो चुका है। चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है। आप
3: एक्चुअली सर एक बात पूछना चाहता हूँ, जो मम्मियाँ होती हैं वो बड़ा सोच करती हैं।
0: बिल्कुल सही,
4: इजी लगता है मोनिका डांस, इजी नहीं है
0: दीपिका। बिल्कुल सही,
5: आई एम अ डिस्को डांसर
2: मिथुन चक्रवर्ती।
0: बिल्कुल सही,
6: पार्टी पठान के घर पे रखोगे
2: शाहरुख।
0: बिल्कुल सही,
7: हम हमेशा सोचते थे जिससे शादी करेंगे ना हम उसकी जिंदगी बन जाएगी।
0: बिल्कुल सही,
8: कोई नाम नहीं है लेकिन मैं भाईजान नाम से जाना चाहता हूँ।
0: Is the right answer. यहाँ पे time up हुआ है, but क्या बात है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 का score, सारे के सारे 6 ही play हो सके और 6 के 6 आपने बता दिए। Wow, that's really nice. पहचान लिया भाई,
2: पुरानी आवाजें पूरे play हो चुकी हैं already, नए आवाजें ये पूरे हो चुके जी।
0: तभी आपने इतना हाई कर लिया स्कोर। ओ, मुझे लगा कि आपने पूरी भरपूर अकड़ लगा के सारी आवाज पे चल ली। अच्छा चलिए, आपको तो पेपर आउट था, लेकिन फिर भी याद नहीं रहता, तो कुछ लोग पहचान नहीं भी पा रहे, बट एनीवेज आपने पहचाना और अच्छा खेला। थैंक यू सो मच, टेक अ स्कोर, इट्स रियली नाइस एंड डीसेंट।
2: थैंक्स फॉर माय मैसेज रीडिंग।
0: आई हैव स्टार्टेड टेकिंग द मैसेजेस दीस डेज, आपके कहने के बाद मैं काफी सतर्क हो चुकी हूँ और मैं भरपूर मैसेजेस ले रही हूँ, है ना, कोशिश मेरी। चलिए जी, थैंक यू वंस अगेन, अपना ख्याल
2: रखिएगा।
0: वालेकुम अस्सलाम, अल्लाह हाफिज। दोस्तों अब वक्त हो गया कि आपसे इजाजत ली जाए इस वादे के साथ, इंशाल्लाह कि कल वापस 6 बजे हम और आप इसी शो में मिलेंगे जिसका नाम है समा मॉर्निंग्स। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, सुनते रहिए FM 107। दिल से देसी, एंड थैंक यू सो मच एजाज जी। यहाँ पर मैसेज है शाहिद जी का, थैंक यू सो मच, एंड मुशीर जी थैंक यू सो वेरी मच।

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी
1: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
2: आज ही राब्ता करें
1: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448-88-8806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: में 4 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा हुआ और 27 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में कमी आई, जबकि 3 कंपनियों ने अपनी साबिका क्लोजिंग प्राइसेस को बरकरार रखा। ये थी अभी तक की बिजनेस न्यूज अपडेट्स, आइए अब रुख करते हैं स्पोर्ट्स न्यूज का।
1: अस्सलाम वालेकुम। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में, कतर ओलंपिक कमेटी ने मंगल को लुसेल हॉल में एक तकरीब के दौरान अपने अल आदम समर 2026 प्रोग्राम के दूसरे एडिशन में शिरकत करने वालों को इजाज़त से नवाजा। मारूफ टेनिस खिलाड़ी सेरेना विलियम्स की यूएस ओपन में वापसी मायूसी में बदल गई, जब वो और कार्लोस अल्काराज मिक्स डबल्स के क्वार्टर फाइनल्स में फ्लाविओ कोवोली और बेलिंचा बेंचिक से हार गए। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जारी करदा एक बयान के मुताबिक टीम के कप्तान बाबर आजम उंगली की चोट से सेहत याबी में हौसला अफजा तरक्की के बाद इंग्लैंड के खिलाफ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड में होने वाले दूसरे टेस्ट में वापसी कर सकते हैं। मैनचेस्टर यूनाइटेड के कप्तान ब्रूनो फर्नांडिस को प्रोफेशनल फुटबॉलर्स एसोसिएशन का प्लेयर ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। स्पैनिश फुटबॉल लीग ला लीगा के अहम मैच में जुमेरात को बार्सिलोना का सामना एटलेटिको मैड्रिड से होगा। और सोनाल दिनुशा की शानदार सेंचुरी के बावजूद श्रीलंका की टीम 290 रन पर आउट हो गई, जिसके बाद भारत के कप्तान शुभमन गिल ने फॉलो ऑन नाफिज कर दिया है। ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक श्रीलंका अपनी दूसरी पारी में 2 विकेट के नुकसान पर 67 रन बना लिए हैं। स्पोर्ट्स हेडलाइंस में आज इतना ही, आप सुन रहे हैं FM 107। अब आप न्यूज हेडलाइंस समझ पाएंगे।
2: FM 107 पर न्यूज हेडलाइंस विद मोहम्मद नफीस।
3: वज़ीर आज़म वज़ीर खारजा से ईरान व ओमान के वज़राए खारजा ने टेलीफोनिक रबते कायम किए। इन रबतों में खत्ते के ताज़ा तरीन हालात, ओमान और ईरान के दरमियान अबनाए हुरमुज़ के हवाले से मुजव्वज़ा अबूरी फ्रेमवर्क पर जारी मुज़ाकरात का जायज़ा लिया गया। रियासत कतर और मिस्र ने इसराइली वज़ीर दिफा के गैर कानूनी तौर पर शाम की सरजमीन में दाखिल होने की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और इसे बरदर मुल्क शाम की खुद मुख्तारी पर खुली जा रही बैन अलावी कानून की सरी खिलाफ वर्जी और इलाकई सलामती के लिए संगीन खतरा करार दिया है। कतर ने अमरीका की जानब से ब्रादर मुल्क अरब जमहूरी शाम का नाम दहशतगर्दी की सरपरस्ती करने वाली रियासतों की फहरिस्त से खारिज करने के फैसले की मंजूरी का खैर मकदम किया है। वजारत खारजा ने जारी करदा बयान में कहा है कि यह इकदाम एक मुस्बत पेशरफ्त की नुमाइंदगी करता है, जो शाम और खत्ते में इस्तेहकाम के हसूल के लिए की जाने वाली कोशिशों में मुआविन मददगार साबित होगा। गजा पट्टी के शमाली और वस्त इलाकों पर इसराइली फौज की बमबारी के नतीजे में 3 फलस्तीनी शहीद और मुतअद्दद जख्मी हो गए। रूस ने गुज़िश्ता कल एक बार फिर यूक्रेन में तंजीम मुआहदे शमाली बहरे उकियानूस नेटो से वाबस्ता फौजी यूनिट्स तैनात करने की मुखालफत की है। समाइन, इसी के साथ उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला नशरिया अपने अख्तिताम को पहुंचता है। स्टूडियो से हमारी साउंड टेक्नीशियन सारा और सोशल मीडिया से मोहम्मद हाफिज और न्यूज रूम से मोहम्मद अमीन, सरवर मिर्जा और मुझे मोहम्मद नफीस को अगली मुलाकात के लिए दीजिए इजाजत। फी अमानिल्लाह।
2: हमारा अगला बुलेटिन शाम 7 बजे पेश किया जाएगा। सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी।

उतारा तो वो ऐसे चलने लगा किस तरह कभी ना चला था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे मुझे एक उकिया में बेच दो। मैंने कहा, नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया, उसको मुझे फरोख्त कर दो। तो मैंने उसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उकिया के वज़ फरोख्त कर दिया और उस पर सवार होकर अपने अहल अयाल तक जाने का इस्तिस्ना कर लिया। जब मैं पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वो ऊंट लेकर हाजिर हुआ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे उसकी कीमत अदा कर दी। फिर मैं वापस आ गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरे पीछे एक आदमी को भेजा और फरमाया, क्या तुमने ये समझा था कि मैंने तुमसे तुम्हारा ऊंट लेने के लिए भाव उताव किया था? अपना ऊंट भी ले लो और दिरहम भी, ये सब तुम्हारा है। इसे रिवायत किया है बुखारी और मुस्लिम ने। सामने किराम, वाकया ये है कि जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा एक गज़वे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। वो एक ऊंट पर सवार थे जो लागर और कमजोर होने की वजह से चलने और लश्कर वालों की हमराही से कासिर था। यहाँ तक कि जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु ने उसे छोड़ देने का इरादा कर लिया कि वो जहां चाहे चला जाए, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं रह गया था। ये नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने सहाबा और उम्मत के साथ शफकत का एक मजहर था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमजोर और नातवां और अलग हो जाने वाले अफराद का ख्याल करते हुए लश्कर के पीछे पीछे चला करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे से जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु के साथ आ मिले, जो कि अपने लागर ऊंट पर सवार थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके लिए दुआ फरमाई और उनके ऊंट को मारा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस पुरशफकत मार ने लागर और कमजोर ऊंट में ताकत भर दी, उसे उससे मदद मिली और वो ऐसे चलने लगा जैसे वो कभी चला ही नहीं था। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि लुत्फ मेहरबानी के पैकर थे, इसलिए जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु का दिल बहलाने और उन्हें बातों में लगाने का फैसला किया ताकि सफर आसानी से कट जाए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये ऊंट एक उकिया के वज बेच दो। जाबिर रज़ियल्लाहु अन्हु अल्लाह के फजल को अपने पास रखना चाहते थे और उन्हें ये इल्म था कि उस ऊंट को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों न बेचने से उनके दीन में कोई कमी नहीं आनी है, क्योंकि ये नबी के वाजिब इताअत में दाखिल नहीं। दरअसल ये हुक्म ऐसा नहीं था कि उसकी पाबंदी जरूरी हो। उसके बावजूद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दोबारा बेचने को कहा तो उन्होंने उसे एक उकिया के बदले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेच दिया और शर्त लगाई कि वो मदीने में मौजूद अहले खाना तक उस पर सवार होकर जाएंगे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी शर्त कबूल कर ली। जब वो पहुंच गए तो वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ऊंट लेकर आए और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें कीमत अदा कर दी। जब वो वापस पलटे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पीछे एक शख्स को भेजा। वो वापस आए तो आपने उनसे फरमाया, क्या तुम ये ख्याल करते हो कि मैंने तुम्हारे ऊंट को लेने के लिए तुमसे खरीदो फरोख्त का मामला किया था? अपना ऊंट ले लो और दराहिम भी, दोनों तुम्हारे हैं। सभी कराम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फजल व करम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक और लुत्फ मेहरबानी को देखा जाए तो ये कोई अनोखी बात महसूस नहीं होती। इस सिलसिले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहुत से बड़े बड़े वाकयात मनकूल हैं। सभी कराम, ये खरीदो फरोख्त का नहीं, इसमें बेशुमार अखलाकी तालीमात मौजूद हैं। पहली सुन्नत तो इसमें इस बात की है कि कमजोर लोगों का ख्याल रखना। आज अगर कोई साथी पीछे रह जाए, कोई बुजुर्ग आहिस्ता चल रहा हो, कोई कमजोर इंसान मदद चाहता हो, तो हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत याद आनी चाहिए। दूसरी सुन्नत है मामलात में नरमी इख्तियार करना। कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने न सख्ती की न जबर किया, बल्कि मोहब्बत से गुफ्तगू फरमाई। फिर एक सुन्नत ये भी है कि शरायत पूरी करना, अगर कोई जायज शर्त हो तो उसे पूरना ईमान का हिस्सा है। फिर एक सुन्नत है एहसान करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाहते तो ऊंट रख लेते क्योंकि सौदा मुकम्मल हो चुका था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कीमत भी वापस न ली और ऊंट भी वापस कर दिया। ये एहसान था और कुरान फरमाता है, हल जज़ाउल इहसानी इल्लल इहसान, क्या एहसान का बदला एहसान के सिवा कुछ और हो सकता है? अल्लाह ताला हमें भी अपने मामलात में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत अपनाने की तौफीक अता फरमाए, हमारे अखलाक को हसीन बनाए, हमारे दिलों में सखावत पैदा फरमाए और हमें लोगों के लिए आसानी का सबब बनाए। आमीन या रब्बल आलमीन। आमीन। ये था प्रोग्राम आज की सुन्नत। याद रखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हर सुन्नत में खैर, बरकत, सुकून और कामयाबी पोशीदा है। और जब हम मोहब्बत के

0: दोस्तों, साइबर क्राइम के खतरों से बचने के लिए हमेशा एहतियात बरतना जरूरी है। अननोन सोर्सेज से आने वाले मैसेजेस का जवाब देना या उनके लिंक्स पर क्लिक करना आपके लिए खतरा बन सकता है। हर मैसेज या ईमेल को वेरीफाई करें और सिर्फ ट्रस्टेड सोर्सेज पर ही यकीन कीजिए। अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन, पासवर्ड्स और बैंकिंग डिटेल्स कभी भी किसी अनजान शख्स के साथ शेयर ना करें। स्ट्रॉन्ग और यूनिक पासवर्ड्स का इस्तेमाल करें और अपने डिवाइसेस पर एंटीवायरस और सिक्योरिटी अपडेट्स हमेशा अप टू डेट रखें। याद रखें, आपकी अवेयरनेस ही आपकी सबसे बड़ी सिक्योरिटी है और छोटी सी एहतियात आपको बड़े नुकसान से बचाती है। साइबर क्राइम से महफूज रहने के लिए होशियारी और एहतियात को अपनी आदत बनाएं। FM 107 आपको याद दिलाता है कि धोखेबाजी से हमेशा होशियार रहना है।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM 107 Qatar। दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के नुमाया स्क्वाश प्लेयर्स में से एक अब्दुल्ला अल मुतावा के बारे में। दोस्तों अब्दुल्ला अल मुतावा जो है टॉप प्लेयर्स में, कतर में टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल स्क्वाश टीम की अहम शख्सियत रहे हैं। उन्होंने कम उम्र से ही स्क्वाश खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन बदौलत कतर की जानिब कई मकामी और बैन अवकामी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। उनका मकसद हमेशा कतर का परचम बुलंद करना और स्क्वाश कोर्ट में मुल्क की पहचान मजबूत बनाना रहा है। अब्दुल्ला मुतावा ने GCC चैंपियनशिप्स, अरब चैंपियनशिप्स और एशियन स्क्वाश टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की है। उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंसेस देकर टीम की तजुर्बा हासिल किया और अपनी स्किल्स को मुसलसल बेहतर बनाया। कोर्ट पर उनकी रफ्तार, स्टैमिना और टैक्टिकल गेम उन्हें दूसरे खिलाड़ियों से अलग पहचान

0: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
1: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि हम अपनी समात को लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ज्यादा शोर वाली जगहों पर एयर प्लग या कानों के हिफाजती आलात जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, तामीराती मुकाम या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहां मुसलसल शोर हो, तो हिफाजती हदायात पर ज़रूर अमल कीजिए। बच्चों को भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मोबाइल, टैबलेट्स या वीडियो गेम्स इस्तेमाल ना करने दें। कान साफ करने के लिए रुई की जो एक पतली सी तीली होती है या कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर ना डालिए, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कान में दर्द हो, रतूबत हो या अचानक कम सुनाई देना शुरू हो जाए या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो खुद से कोई भी इलाज करने के बजाय आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग भी वक्त के साथ साथ समात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और जो सिगरेट से परहेज़ है, ना सिर्फ दिल बल्कि कानों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। बुज़ुर्ग अफराद और शोर वाले माहौल में काम करने वाले अफराद को वक्तन फवक्तन अपनी समात का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले की तशखीस जल्द हो सके। याद रखिए, समात एक कीमती नेमत है। सिर्फ चंद आसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम अपनी और अपने बच्चों की समात को कई सालों तक महफूज रख सकते हैं। तो अपनी आवाज़ की सतह कम रखिए, शोर से बचिए और अगर समात में कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद समात और तंदुरुस्त ज़िंदगी अता फरमाए।

FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 448888806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: तो आइए इस खास महफिल में शामिल हो जाइए। ए फॉर अमिता के साथ ढूंढिए अपनी छुपी हुई मैं को, मेरी पहचान में हर मोड़ पर एक नई उम्मीद। मेरी पहचान, पहचान सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, FM 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी अमिता आपके साथ, और इस हफ्ते मेरी पहचान में आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है। तो कैसे हैं आप सब? आई एम श्योर कि बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आपके ये गर्मियों के दिन भी बड़े मजे के जा रहे होंगे। वेल, आज मेरी पहचान में क्या बातचीत होने वाली है, चलिए आपसे शेयर करते हैं। अच्छा, सोचिए कि एक आम सा वीकडे है, ठीक है, हमारी जो दोहा की धूप है वो बाहर भी बिल्कुल उतनी ही शार्प है जितनी हमको अंदर से दिख रही है। अब कुछ जगह पर हल्का फुल्का ट्रैफिक है और आप अपने घर के ठंडे कमरे में ना बैठी हैं, लेकिन इस ठंडक के बावजूद आप

अंदर ना एक अजीब सी बेचैनी है। क्यों? क्योंकि आप तैयारी कर रही हैं अपने इस पूरे हफ्ते की सबसे बड़ी परफॉर्मेंस की। ये परफॉर्मेंस क्या है? ये परफॉर्मेंस किसी स्टेज पर नहीं होनी है, किसी थिएटर में नहीं होनी है। इसके ऑडियंस सिर्फ दो लोग हैं जो हजारों मील दूर बैठे आपका इंतजार कर रहे हैं। हाँ जी, आपका फोन बजता है, स्क्रीन पर मम्मी या पापा का नाम चमक रहा होता है, लेकिन एक्सेप्ट का बटन दबाने से पहले आप एक क्विक मेंटल चेक करती हैं। आप शीशे में अपनी थकी हुई आंखों को देखती हैं और उन्हें थोड़ा सा ना साफ करती हैं। माथे पर जो पसीना होता है या थकान होती है उसको भी थोड़ा सा ठीक ठाक करती हैं। कैमरे का एंगल ऐसे सेट करती हैं कि पीछे जो अनपेड बिल्स का ढेर पड़ा है वो नजर ना आए। वो बिखरे हुए कपड़े, वो अधूरा काम सब कैमरे के फ्रेम से बाहर कर दिया जाता है। और फिर आप अपने बच्चों की तरफ मुड़ती हैं और धीरे से मगर सख्ती से कहती हैं, प्लीज सिर्फ 10 मिनट के लिए ऐसे एक्ट करो जैसे तुम दुनिया के सबसे खुश बच्चे हो। हाँ, नो फाइटिंग। वैसे ये डायलॉग हर घर का कुछ अलग लेवल का आता है। कई बार तो धमकियां मिलती है पेरेंट्स की, वो भी बहुत तेज, की दादा दादी का कॉल है या नाना नानी का कॉल है, बिल्कुल मस्ती नहीं चाहिए वरना फिर देखना है कि नहीं। फिर आप वो बटन स्वाइप करती है, स्क्रीन पर उनका चेहरा दिखता है, वही उम्मीद से भरी आंखें, वही फिकर। आप अपने चेहरे पर एक ऐसी मुस्कुराहट लाती हैं जो शायद आपने पिछले 4 दिनों में ना महसूस भी नहीं की होती है। और फिर आप वो 4 लफ्ज कहती हैं जो हम जो अपने घरों से दूर होते हैं जिंदगी के सबसे महंगे अल्फाज हैं, कि सब ठीक है मम्मी, सब ठीक है पापा, है कि नहीं, सब ठीक है क्या, एवरीथिंग इज फाइन क्या, सब वाकई में ठीक है। ये 4 शब्द कहने के लिए कितनी हिम्मत लगती है ना, ये सिर्फ एक परदेसी ही समझ सकता है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि जब हम अपने देश से दूर होते हैं, अपने घरों से भी दूर होते हैं, तो दूर होने के अपने अपने चैलेंजेस होते हैं, और स्पेशली जब हम फैमिली वाले होते हैं तब तो बयां करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर हम अपने चैलेंजेस गिनाएंगे तो हमारे पेरेंट्स की फिकर बढ़ जाएगी। हाँ, आप उन्हें नहीं बताना चाहते कि आज ऑफिस में बॉस ने क्या कहा, आप उन्हें बिल्कुल नहीं बताती कि महीने का रेंट कितना बढ़ गया है और आपकी नींदें उड़ गई हैं, है कि नहीं। आप ये भी नहीं बताती कि पिछले 3 दिनों से आपको माइग्रेन हो रहा है, क्योंकि आप उन्हें बिल्कुल टेंशन या दुख नहीं देना चाहती। वेल, हम एक ऐसी जनरेशन बन गए ना जो प्रोफेशनल एक्टर्स हैं। हम इस गोल्डन केज यानी सोने के पिंजरे में बैठे तो हैं जहां बाहर से सब कुछ चमक धमक रहा है, मगर अंदर थोड़ी सी ना खामोशी वो बढ़ती जा रही है। हम खुशी या यूं कहें हैप्पीनेस परफॉर्म करते हैं ताकि हमारे जो मॉम डैड हैं वो सुकून से जी सके या सुकून से सो सके, ताकि उन्हें लगे कि उनके जो बच्चे हैं वो बहुत ही अच्छी जगह पर हैं, खुश मिजाज है, कोई टेंशन नहीं है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन इस मिसाल को बनाए रखने के लिए हम हर रोज अपनी थकान का सौदा करते हैं। सो ब्यूटीफुल लेडीज, कभी सोचा है आपने कि जब वो कट जाती है, जब वो मोबाइल की स्क्रीन काली हो जाती है और आप उस अंधेरे स्क्रीन में अपना ही चेहरा देखती हैं, तब क्या महसूस करती है? एक अजीब सा खौफ दिमाग में आता है ना। उन्हें प्रोटेक्ट करने के चक्कर में, उन्हें सच्चाई से दूर रखने के चक्कर में, क्या आपने अपने चारों तरफ एक ऐसी दीवार खड़ी कर ली है जहां से अब कोई अंदर नहीं आ सकता? क्या उन्हें सुकून देते देते आपने खुद को तन्हा या यूं कहें अलोन कर लिया है? देखो, आज मेरी पहचान में हम बात इसी के बारे में करने वाले हैं, इस परफॉर्मेंस की बात करने वाले हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारी जिंदगियों का एक हिस्सा बनते जा रहा है कि नहीं। तो चलो, फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: बहुत बहुत इस्तकबाल है आप सभी का ऑन एफएम 107 पर। मैं हूं अमिता आपके साथ और आप सुन रहे हैं मेरी पहचान। मेरी पहचान में इस वक्त आज की सोच पर हम एक चर्चा करने वाले हैं। आज की सोच एक ऐसे बोझ के बारे में हम बात करेंगे जिसे हम सब ने ना बड़ा प्राइडली या यूं कहें गर्व के साथ उठाया हुआ है। इस बोझ का नाम बड़ा खूबसूरत है। हम इसे कहते हैं द बर्डन ऑफ पीस, यानी सुकून का वो बोझ जो हमने अपने कंधों पर अपने दिल पर लगा रखा है। सुकून, ये लफ्ज सुनने में कितना हल्का लगता है ना? ऐसा लगता है जैसे कोई ठंडी हवा का झोंका हो, लेकिन हम इस सुकून के बारे में जब सोचते हैं तो हमको बड़ा भारी लगता है कि नहीं? ये वो सुकून है जो हम अपने माँ बाप को देना चाहते हैं, उनके हिस्से का चैन हम खरीदना चाहते हैं अपने सच्चाई की कीमत देकर। देखो, ये ऐसा नहीं है कि अगर हम अपने मम्मी पापा से कभी कभी अपना दर्द छुपाएं तो उसमें गलत है, लेकिन जब ये आदत बन जाए तो ये बहुत गलत है। समझ रहे हैं? हम सोचते हैं कि अगर हमने सच बता दिया या अगर हमने कह दिया कि मम्मी मैं थक गई हूँ या पापा मुझे अब नींद नहीं आ रही या मुझे सोने दो या मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, तो उनका सुकून छिन जाएगा। और उनका सुकून बचाने के लिए हम हर रोज अपने अंदर एक नया झूठ पालते हैं। क्या आपने कभी रुककर सोचा है कि इस सुकून की बुनियाद झूठ पर रखी है? वो सुकून असली में है भी या नहीं? हमारी तहजीब में, हमारी परवरिश में एक बात कोट कोट कर भरी जाती है, और ये एक अच्छी बात है। कैसे? एक अच्छी बेटी या एक जिम्मेदार बेटा वही होता है जो अपने माँ बाप की आंखों में कभी आंसू ना आने दे। हम पर उनकी उम्मीदों का एक अजीम शान या यूं कहें एक ग्रैंड बोझ होता है। हमें याद दिलाया जाता है कि शायद हम खुद को याद दिलाते हैं कि कैसे उन्होंने अपनी जमीन बेची थी हमें पढ़ाने के लिए या हमारे किसी बहुत इम्पोर्टेंट काम के लिए। कैसे मम्मी ने अपने गहने गिरवी रखे थे कि भाई अगर किसी जगह जा रहे हैं, विदेश यात्रा में जा रहे हैं जहां हमें पढ़ाई करनी है, तो उसकी टिकट कर ले। कहीं उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी हम पर लगा दी होती है, बताएं जरा। और बस यही से शुरू होता है वो सक्सेस स्टोरी बनने का दबाव। हमें लगता है कि हम कोई इंसान नहीं बल्कि उनकी इन्वेस्टमेंट का रिटर्न है। हमें लगता है कि अगर हमने बताया कि हम अकेला महसूस कर रहे हैं या हमारी फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, काफ़ी तंग चल रही है या हम मेंटल हेल्थ से जूझ रहे हैं, तो हम उन्हें ब्रेक कर देंगे। हम उनकी कुर्बानियों को इंसल्ट नहीं कर सकते, हम उनकी तौहीन नहीं कर सकते, हम उन्हें ये जता देंगे कि उनका फैसला गलत था। लेकिन जनाब, क्या सच में वो इतने कमजोर हैं या हमने उन्हें कमजोर समझ लिया है? दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो जरूर सोचिए इसके बारे में। मेरी बात आज बहुत गौर से सुनिएगा। उनका सुकून बचाने की इस कोशिश में आप एक बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। आप अपनी रूह का कत्ल भी कर रहे हैं। हाँ जी, जब आप उनके सामने जो झूठी मोटी मुस्कान रखते हैं ना, वो सही नहीं है। हाँ, जब आप हर मुश्किल को हंसकर टाल देते हैं तो पता है क्या होता है? आप धीरे धीरे गायब होने लगते हैं। यू बिकम इमोशनली इनविजिबल। आप फिजिकली तो उनसे हजारों मील दूर है ही, मगर अब आपने अपने आप को और उनके बीच एक ऐसा पर्दा गिरा लिया है जिसे कोई पार ही नहीं कर सकता। आप उनके लिए सिर्फ एक सक्सेस सिंबल बनकर रह जाते हैं, एक ऐसी फोटो जो उनके ड्राइंग रूम में लगी है और जिसे वो सबको गर्व से दिखाते हैं। लेकिन उस फोटो के पीछे जो इंसान है, जो लड़की है, जो रात को सो नहीं पाती, जो लड़का है जो ऑफिस के स्ट्रेस से परेशान है, उससे उनका कोई रिश्ता नहीं है क्या? आपने उन्हें सुकून तो दे दिया, मगर उनसे उनका बच्चा छीन लिया। हाँ जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या ये सौदा सही है? क्या एक माँ बाप के लिए उनके बच्चे की कामयाबी उसकी खुशी से ज्यादा अहम हो सकती है? शायद नहीं। हमें लगता है कि ऑनेस्टी यानी सच्चाई एक बोझ है जो हम उन पर डाल देंगे, मगर सच तो ये है कि ऑनेस्टी कोई बोझ नहीं है बल्कि एक खूबसूरत सा ब्रिज है, एक पुल है जो आप उन तक पहुंचाने के लिए बनाते हैं। सोचिए जब आप उन्हें बताते हैं कि आप परेशान हैं, तो आप उन्हें एक मौका देते हैं, वो फिर से माँ बाप बन जाते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज भी आपके काम आ सकते हैं, उनका तजुर्बा, उनकी हिकमत, उनकी दुआएं, वो सब आपके लिए रास्ता खोलने लगती हैं। लेकिन अगर आप सिर्फ अपनी उस परफेक्ट तस्वीर से उन्हें रूबरू करवाएंगे तो वो आपसे मोहब्बत नहीं कर पाएंगे। कम ऑन, वो उस परफॉर्मेंस से इश्क कर रहे हैं जो आप हर रोज उनके लिए स्टेज पर दिखाते हैं, वीडियो कॉल्स पर दिखाते हैं। रिश्ते परफेक्शन से नहीं, वल्नरेबिलिटी से मजबूत होते हैं। जब तक आप उन्हें अपने जख्म नहीं दिखाएंगे ना, वो उन पर मरहम कैसे लगाएंगे, कभी सोचा है आपने? तो आज हमारा मेरी पहचान शो का ग्रैंड फिनाले है, इस सीजन का ग्रैंड फिनाले, और मैं आपसे सिर्फ एक ही गुजारिश करना चाहती हूँ, सक्सेस स्टोरी बनाना बंद कीजिए, एक इंसान बनने की कोशिश कीजिए। कतर एक बहुत खूबसूरत मुल्क है, यहाँ मौके हैं, यहाँ तरक्की है, मगर यहाँ कभी कभी जब हम अपनी चीजों में जूझ जाते हैं तो हम अगर अकेलापन महसूस कर रहे हैं तो हमें क्या करना चाहिए? अपने अंदर इसे मत दबाइए, अपने घर वालों को अपने असली रंग दिखाइए। उनसे क्या होगा, उन्हें बताएंगे कि आप थके हैं, आप कोरोना आ रहा है या आपको उनके खाने की याद आ रही है। ये जो दूरी है ना रिश्तों की, वो कम होते नजर आएगी। याद रखिए, आपके माँ बाप ने आपको इस दुनिया में इसीलिए नहीं भेजा था कि आप एक गोल्डन रोबोट बन जाए जो सिर्फ पैसे और अच्छी खबरें ही सुनाते रहे। उन्होंने आपको इसीलिए भेजा ताकि आप अपनी जिंदगी बना सकें, और जिंदगी तभी बनती है जब उसमें सच हो। अपने माँ बाप को ये हक दीजिए कि वो आपकी तकलीफ में आपका साथ दे सके। उन्हें अपने बर्डन ऑफ पीस से आजाद कीजिए, और खुद को इस परफॉर्मेंस से भी कि हाँ मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बेटी हूँ या मैं तो बिल्कुल परफेक्ट बहू हूँ और मैं सब कुछ परफेक्ट ही बताऊंगी। नहीं, आपके अपनों को अपना दर्द दिखाइए। तो चलो फिर कहीं नहीं जाना है, बने रहना है हमारे साथ FM 107 पर, और अपनी बातों को हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है? सो स्टे ट्यून्ड, दिल से देसी।

हो जाती है और फिर क्या होता है, मेडिकल मास्क लगाने पड़ते हैं, यानी कि मेडिकल के चक्कर लगने लगते हैं। सोचिए आप एक 30 मिनट की कॉल पर है, आपकी आवाज थोड़ी हाई पिच्ड हो जाती है, हाँ मम्मी सब बहुत मजे में चल रहा है, बच्चे बहुत खुश हैं, आपका चेहरा एक मुस्कुराहट जैसे बिल्कुल फ्रीज हो जाता है, उफ। लेकिन ब्यूटीफुल लेडीज, साइंस कहती है कि जब आपका मन दुखी हो और आपका चेहरा झूठी मुस्कुराहट दिखाए ना, तो आपका ब्रेन कॉन्फ्लिक्ट में चला जाता है। आपका बदन जानता है कि आप झूठ बोल रहे हैं। क्या आपने कभी नोटिस किया है, कॉल खत्म होते ही आपको बिल्कुल एकदम थकान सी महसूस होती है, आपके गले में एक ड्राइनेस आ जाती है, आपके कंधे एकदम कान तक चढ़ जाते हैं और आप टेंस हो जाते हैं कि ओ हो अब मैं क्या ही करूं। सो, ये हमारे जो हार्मोनल बैलेंस होता है वो भी थोड़ा सा बिगड़ने लगता है। आपका ब्रेन लगातार स्ट्रेस सिग्नल्स भेज रहा है क्योंकि उसे नकाब पहनने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। आप अपने माँ बाप को तो धोखा दे रहे होते हैं, लेकिन आप अपने DNA को धोखा नहीं दे सकते हैं। तो आखिर हम ऐसा करते क्यों हैं? क्योंकि हमें लगता है कि स्ट्रॉन्ग होने का मतलब है साइलेंट होना। हमें लगता है कि अगर हमने अपनी थकान दिखा दी तो हम कमजोर हो गए। हम इतने खूबसूरत शहर में है, इतनी ब्यूटीफुल कंट्री में है जहां हम डेफिनेटली सक्सेसफुल है, लेकिन अगर सक्सेस के साथ हमें थोड़ा सा कमर में दर्द हो गया तो क्या वो बताना गलत है? हाँ, ये जो मास्क फटीग है ना, धीरे धीरे आपको अंदर से ना खोखला कर देगी। जब आप हर रोज एक झूठी पहचान के लिए जीते हैं, तो एक वक्त ऐसा आता है जब आप भूल जाते हैं कि असली आप कौन है, आपकी असली पहचान क्या है। आपके और आपके अपनों के बीच एक ऐसा गैप पैदा हो जाता है जिसे भरना बड़ा मुश्किल हो जाता है, या फिर आगे आप उसके बारे में सोचते भी नहीं। तो आज हमारे मेरी पहचान के ग्रैंड फिनाले में मैं चाहती हूँ कि जब आप कहें कि एवरीथिंग इज फाइन, तो वाकई में सब कुछ फाइन रहे, ना कि अंदर से आप टूटा हुआ महसूस करें, है कि नहीं। पहल कुछ चीज़ें हैं जिसका मैं जिक्र करना चाहती हूँ जो डेफिनेटली हमें बहुत हेल्प करेगी, जैसे कि द मिरर साय, यानी कि पहला ऐसा टूल है जिसको कहते हैं द मिरर साय। और मैं चाहती हूँ कि आप अभी जहाँ भी हैं, चाहे आप गाड़ी चला रहे हैं या घर में हैं, मेरे साथ ये चीज़ कर लो। क्या? अगली बार जब वो फैमिली का कॉल आए तो एक्सेप्ट करने से पहले शीशे के सामने ना खड़े हो जाओ, 2 मिनट के लिए फोन को साइड में रख के अपने आप को देखो, उन आंखों में देखो कि थकी हुई है या फिर आपको लग रहा है कि मतलब थोड़ा रेस्ट करना है, क्या हो क्या रहा है, अपने आप को पहले थोड़ा ऑब्जर्व करो और एक बहुत गहरी सांस लो, इतनी गहरी कि आपका जो स्टमक है वो फूल जाए, और फिर उसे अपने मुंह से जोर से हा की आवाज करते हुए बाहर निकालो, फिर से इसे करो। और जब आप ऐसा करते हो तो आपकी बॉडी हल्के रिलैक्स मोड में जाती है। अपने जबड़े को लूज छोड़ो और शीशे में देखकर खुद से कहो, मुझे परफेक्ट होने की जरूरत नहीं है, मैं जैसी हूँ काफी हूँ। ये साय आपके नर्वस सिस्टम को बताता है कि सेफ्टी है। ये आपके मास्क को थोड़ा ढीला कर देता है। जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हैं ना, तभी आप दूसरों के सामने थोड़ा सा सच रखने की हिम्मत जुटा पाते हैं। ये आपका अपने आप से एक वादा है कि मैंने कम से कम अपने लिए इनविजिबल होना तो छोड़ दिया है कि नहीं। मतलब जो है जैसे हैं वैसे हम अपने अपनों के साथ हैं। अब आते हैं उस कॉल पर। मैं जानती हूँ कि आप अपने बुजुर्ग माँ बाप को परेशान नहीं करना चाहते, दिस आई नो वेरी वेल, ये सेम हाल हमारा भी है। उन्हें क्योंकि कभी कभी कुछ जो पेरेंट्स हैं वो हार्ट पेशेंट होते हैं, जैसे कि मेरे फादर भी हार्ट पेशेंट हैं, और इस डर के चक्कर में कि कहीं उनका ब्लड प्रेशर बढ़ ना जाए, मैं समझती हूँ कि मैं अपनी चीज़ें भी उनको पहले नहीं बताती थी, इसीलिए हर चीज़ छुपाना ज़रूरी लगने लगा। लेकिन 100% झूठ बोलना बंद करना पड़ेगा। हाँ, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें द ट्रूथ सैंडविच का सहारा लेना पड़ेगा। यानी कि सैंडविच में क्या होता है, ऊपर और नीचे ब्रेड और बीच में फिलिंग्स होती हैं, आपको भी वही करना है। पहली लेयर गुड न्यूज़, अपने पेरेंट्स को जब भी कॉल करते हो या उनका कॉल आता है तो मम्मी आज बच्चों का रिजल्ट आया है, वो बहुत खुश हैं, स्टार्ट विथ अ गुड न्यूज़। बीच के लेयर में
थोड़ा सा स्ट्रगल दिखाओ अपना। लेकिन मम्मी सच बताऊं तो इस हफ्ते मैं थोड़ा ओवरवेल्म महसूस कर रही।

0: हूँ, ऑफिस में काम बहुत ज्यादा है, थोड़ी सी थकान हो गई है, यू हैव टू टेल, है ना, आपको रियल होना पड़ेगा. और आखिरी लेयर जो होगी वो एक पॉजिटिव नोट पर एंड होगी. बस आज जल्दी सोने की कोशिश करूंगी, कल तक थोड़ा सा बेहतर लगेगा, आप बस दुआ कीजिए. यू नो, पता है इससे क्या होता है, इससे आपका प्रेशर वेल्व जो है वो खुल जाता है. आपने उन्हें क्राइसिस में नहीं डाला, मगर उन्हें अपनी हकीकत का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया. इससे उन्हें एक मौका मिलता है फिर से माँ बाप बनने का. उन्हें लगता है कि उनकी बेटी को, उनके बेटे को आज भी उनकी ज़रूरत है, उनकी तसल्ली की, उनके कंफर्ट की ज़रूरत है. उन्हें लगता है कि उनकी दुआएं आज भी आपके लिए शील्ड की तरह काम कर रही हैं. लेट देम बी पेरेंट्स अगेन. उन्हें उनके इस हक से ना महरूम मत कीजिए. तो आप समझे ये ट्रुथ सैंडविच कैसे इस्तेमाल करना है. आपको लगेगा कि आपने अपने दिल का जो बोझ है ना थोड़ा सा उनके साथ शेयर कर लिया है, पर उन पर डाला नहीं है. जिंदगी जो है एवरीथिंग इज फाइन के बोर्ड को लगाने के लिए नहीं होती है. जिंदगी तो उन रिश्तों को निभाने के लिए होती है जहां हम जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्टेड हो, या यूं कहें वैसे ही कबूल हो. पर मैं हूं अमिता आपके साथ, और मेरी पहचान में आज हमारी ये बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है. तो आप कहीं ना जाएं, बने रहें हमारे साथ FM 107 पर, दिल से देसी.
1: आप FM 107 इसीलिए लगाते हैं बिकॉज़ हर घंटे सबसे ज्यादा गाने हम बजाते हैं.
2: The radio station with more music. FM 107. दिल से देसी.
3: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें, आज ही राब्ता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से. कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa.

0: आप सुन रहे हैं मेरी पहचान ए फॉर अमिता के साथ सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी
1: वेलकम वंस अगेन आप सुन रहे हैं FM 107 पर मेरी पहचान आपकी अमिता के साथ अब हम उस खास सेगमेंट पर कदम रखने वाले हैं जिसे हम कहते हैं छुपी हुई मैं आज की छुपी हुई कोई एक औरत नहीं है वो हम सब हैं जो इस वक्त कतर की चमकती सड़कों पर अपनी गाड़ियां चला रहे हैं सोचिए आप अभी अभी सुपरमार्केट से निकली हैं हाथ में भरे हुए बैग्स हैं बच्चे शायद पीछे की सीट पर सो गए हैं आप अपने गाड़ी के एसी को फुल करती हैं बाहर की गर्मी से बचने के लिए लेकिन जैसे ही आप गियर डालती हैं अचानक आपकी आंखों से एक आंसू गिरता है और फिर एक और आप वहां सुपरमार्केट की पार्किंग में अपनी शाइनी एसयूवी में बैठकर रोने लगती हैं क्यों आपको खुद नहीं पता कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ है किसी ने बुरा भी नहीं कहा है मगर वो जो अंदर से एक हैवीनेस हो रहा है ना वो फट जाता है आप स्टेयरिंग व्हील पर सर रख लेती हैं और दो मिनट

ताली लगाती हैं, अपने आप को सही करती हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर में परफॉर्मेंस शुरू हो जाएगी, कॉल आ जाएगी। ओहो हो, यही पे तो आके दुनिया अटक जाती है। और ये है वो छुपी हुई मैं जो हर रोज अपने दर्द को बैक सीट पर बैठा कर ड्राइव कर रही होती है। या फिर सोचिए, आप मुशर्रफ डाउनटाउन के किसी बहुत ही एस्थेटिक और खूबसूरत कैफे में बैठी हैं, आपके हाथ में एक महंगा सा कॉफी का कप है और चारों तरफ लोग स्टाइलिश कपड़ों में हसीन बातें कर रहे हैं। आप कतर के सबसे पॉश इलाके में सबसे बेहतरीन माहौल में कॉफी पीने के लिए बैठी हैं, लेकिन उस भीड़ में बैठकर भी ना आपको अचानक लगता है कि एक फ्रॉड है। क्यों? आपको लगता है कि ये लग्जरी आपके चारों तरफ है, ये आपकी नहीं है, आप इसमें फिट नहीं बैठ रही हैं। उफ, लोग आपके डिजाइनर बैग देख रहे हैं, आपकी स्माइल देख रहे हैं, मगर आपका दुख नहीं देख पा रहे। उफ, आपको लगता है कि आप एक घोस्ट की तरह अपनी ही जिंदगी में घूम रही हैं। डिनर पार्टीज हो, स्कूल इवेंट्स हो, या दोस्तों के साथ ब्रंच हो, आप वहां होती ही नहीं है। आपने एक ऐसा मास्क पहन लिया होता है जो बड़ा भारी होता है कि नहीं? और आप सोचती हैं कि अगर आपने बता दिया कि आपका दिल बहुत दुखी है या किसी पेन से आप गुजर रही हैं, तो फिर लोग कहेंगे कि इसके पास तो सब कुछ है, फिर ये दुखी क्यों है कि नहीं? ये सवाल जनाब सबसे बड़ा, वो कहते हैं ना कि पॉइजन है, कि मेरे पास तो सब कुछ है, मुझे कंप्लेन करने का कोई हक ही नहीं है। कतर में हमें हर फैसिलिटी मिली है, सेफ स्ट्रीट्स है, बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स हैं, एक कंफर्टेबल लाइफ है, और यही कंफर्ट हमारी दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज है। लेकिन एज एन इंडिविजुअल हमारे अपने भी स्ट्रगल्स हैं, और उनका जिक्र हम नहीं कर पाते। हम सोचते हैं कि अगर हम यहाँ इतने अच्छे से रह रहे हैं, और अगर हमने बता दिया कि भाई देखो हमारे काम के चक्कर में है, या किसी भी चक्कर में हमें थोड़ी सी परेशानी हो रही है, या हम अकेलापन महसूस कर रहे हैं, हम या डिप्रेस हो रहे हैं, तो फिर हमें लोग कहेंगे कि हम बहुत ही अनग्रेटफुल हैं या ना शुक्रे हैं। इसलिए आप द स्ट्रॉन्ग वन बन जाते हैं, फैमिली की एंकर, बच्चों की सुपर मॉम, हस्बैंड की सुपर सिस्टम, ओफ, और माँ बाप का सक्सेस सिंबल। आप थक गई हैं, लगता नहीं है थोड़ा बहुत कि आप ये स्ट्रॉन्ग वन का जो टैग है ना, धो धो कर पहन लेती हैं, है कि नहीं? आपको डर लगता है कि अगर आपने एक छोटा सा क्रैक भी दिखा दिया, तो ये जो परफेक्शन की जिंदगी है, ये बिखर जाएगी। लेकिन याद रखिए, जो हीरा होता है ना, डायमंड, भी ये स्ट्रेस से ही बनता है, ये सच है। मगर एक हीरे को भी चमकने के लिए रोशनी की जरूरत होती है, तो अंधेरे में हीरा भी सिर्फ एक काला पत्थर ही लगता है। सो यू डोंट हैव टू बी अनब्रेकेबल। आपका टूटना, आपका रोना, आपका कमजोर महसूस करना आपको इंसान बनाता है, कमजोर नहीं। इसे जरूर याद रखें, बिकॉज यही आजकल के ट्रेंड में होते जा रहा है। अब जैसे जैसे हम इस सीजन के आखिरी मोड़ पर आ गए हैं, तो हमारी बात उतनी ही गहरी हो गई है। आज मैं आपसे एक बहुत बड़ी गुजारिश करना चाहती हूँ। आज वक्त आ गया है कि आप अपने परिवार की खुशियों के डायरेक्टर के ओहदे से रिजाइन कर दें, और इस इस्तीफे को देने के बाद थोड़ा सुकून में आए। बहुत हो गया सीन डायरेक्ट करना, बहुत हो गया कैमरा एंगल सेट करना ताकि सब बिल्कुल हंसता खेलता दिखाई दे, बहुत हो गया स्क्रिप्ट एडिट करना कि भाई मैं तो दुखी नहीं हूँ, ये लाइन मुझे नहीं कहनी। स्टॉप डायरेक्टिंग द मूवी ऑफ योर लाइफ। एटलीस्ट अपने पेरेंट्स के लिए बस उनकी बेटी बन जाए, बस उनका बेटा बन जाए। आपके माँ बाप ना, जो कि कतर से दूर हैं, वो बहुत अच्छा आपके बारे में सोच रहे हैं, तो उन्हें अच्छी खबर के साथ अपना स्ट्रगल भी बताएं। उन्हें जानना बहुत जरूरी है कि उनकी बेटी कैसी है अभी असलियत में। उन्हें ये जानने का हक है कि उसके बुरे दिन भी होते हैं। पता है, जब आप उनसे अपने दुख दर्द शेयर करते हैं, तो आप उन्हें जिंदा महसूस कराते हैं। हाँ जी, मैंने बहुत गहरी लाइन इस वक्त आपके सामने रख दी है, जिंदा महसूस कराते हैं। उन्हें लगता है कि वो आज भी आपका साया बन सकते हैं। उन्हें बताइए कि आपको आज भी अपनी माँ की आवाज की उतनी ही जरूरत है जितनी बचपन में चोट लगने पर होती थी।

है कि नहीं? देखिए जनाब, आज ये जो मुद्दा था ना परफॉर्मेंस का, ये मैंने इसलिए उठाया क्योंकि हम अपनी जिंदगी में कभी ना कभी ये काम कर ही रहे होते हैं, और मैंने तो किया है, तो मैंने कहा कि चलो जो चीज़ मेरा एक्सपीरियंस है वो शायद औरों का भी एक्सपीरियंस हो और आज आपसे शेयर करना बनता है। तो कुछ बातें हैं जिसका जिक्र आपसे करना ज़रूरी है कि मैं ये नहीं कहती कि आज ही कॉल करके सब कुछ बोल दीजिए, ठीक है, बस अगली बार जब घर कॉल करें तो 10% ज़्यादा थोड़ा सच बोलें और सच्चे होने की कोशिश करें। अगर उन्होंने पूछा कैसे हो तो सब ठीक है कहने के बजाय कहिए कि मम्मी सब ठीक है मगर आज थोड़ा मन उदास है, मतलब बातों में उन्हें जताएं कि जो आपके साथ हो रहा है, बस इतना ही। सिर्फ 10% या 10% अगर आप सच बोलेंगे, आप देखेंगे कि कैसे आप वो 10% सच बोलने पर आपका जो बोझ है ना वो 90% यानी 90% तक हल्का हो जाता है। एक साथ रोया गाया या एक आंसू उस झूठी मुस्कुराहट से कहीं ज्यादा हीलिंग होता है। रिश्तों में ना एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं होती, सिर्फ एहसास की जरूरत होती है। आज से ये परफॉर्मेंस बंद कर दो और असलियत शुरू कर दो। तो ब्यूटीफुल लेडीज, मेरी पहचान का ये पहला सीजन आज खत्म हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने दिल से हमारा साथ दिया और अपनी गाड़ियों के या अपने घरों के रेडियो में रेडियो सेट्स के जरिए मुझे सुना आपकी अमिता को। तो मेरी पहचान ये खासम खास शो जो हम सिर्फ आपके लिए लेकर आए, बस याद रखिए कि

और आपको हमारा शो मेरी पहचान कैसा लगा, कुछ कहना चाहते हैं, कोई सजेशन देना चाहते हैं, सो 666-22-107 पर आप शेयर कर सकते हैं या FM 107 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़कर भी अपने दिल की बात कह सकते हैं या फिर सोशल मीडिया पर अपनी अमिता को भी ढूंढ सकते हैं। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, आपकी मेरी मुलाकात होगी अब अगले सीजन में। तब तक के लिए क्या करना है, खुश रहना है, मुस्कुराते रहना है और अपनी पहचान को कभी नहीं गंवाना है। और इसी के साथ अब मुझे दे दीजिए इजाजत। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: हेलो अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडियो की घड़ी में 11:02।
3: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
4: साथियों वेलकम वेलकम हैगा जी। गोभी दया पुल्लम आ जाओ जरा खुशबू लगा के। इस वक्त एफएम 107 की घड़ी में बज रहे हैं 11:02 और हमारा यानी के सर्वर और सफा का साथ रहेगा आपके साथ 1 बजे तक। और भाई देखें आज का टेम्परेचर बड़ा ही अच्छा हो रहा है। अच्छा इसलिए हो रहा है क्योंकि 50 फील्स लाइक 50-53 तो नहीं हो रहा ना, फील्स लाइक ओनली 44 हो रहा है सर्वर भाई।
2: अच्छा
4: हाँ जी। और हाँ आपको ये बताती चलूं कि आज का टेम्परेचर लोएस्ट जाएगा 32 डिग्री सेल्सियस तक और अभी फिलहाल का टेम्परेचर ये चल रहा है कि 41 से 43 डिग्री सेल्सियस तक के बीच का टेम्परेचर कुछ चल रहा है। टू बी प्रिसाइज आपको बता दूं कि ह्यूमिडिटी जो है ना वो आज थोड़ी सी कम है, उसका हमारे पर तरस आ गया है। बट भाई 20% है सिर्फ 20%। और देखें क्योंकि जैसे सरव भाई ने कल परसों भी कहा था, एक तमीज बांधी थी सरव भाई ने कि अब आहिस्ता आहिस्ता टेम्परेचर नीचे आता चला जाएगा, सितंबर तक माशाल्लाह अच्छा हो जाएगा, मिड ऑफ सितंबर तक, क्या कहते हैं
2: इंशाल्लाह ताला। और उसी के हवाले से यहाँ पर आज फिर एक अपडेट लेकर आया हूँ मैं, जानना चाहती हूँ सफा क्या है।
4: क्या क्या क्या क्या क्या क्या,
2: चलिए जान लेते हैं।
0: वेदर का हाल 107 दिनाल।
2: तो साहब QMD ने यहाँ पर हमें फिर लगातार तीसरे दिन खुश करने की कोशिश की है और उनके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि आज सफा सही से सुनिए आज 26 और कल 27 अगस्त को जी यही बताया जा रहा है
4: भाई।
2: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करें और रिमझिम हो जाए किसी तरीके से, यही हमारी ख्वाहिश भी है और ये चाहते भी हैं हम कि भाई मुल्क के चंद इलाकों में बारिश होने के इम्कान है, ये QMD ने बताया।
4: मैं चली शुमाल, शाहनिया
2: और शुमाल वाले जरा सा हमारे साथ जुड़ के बताइएगा जरूर, अगर कोई इस वक्त हमें सुन रहा है और उस वक्त सुन रहा हो तो भी बता दिएगा। बल्कि ये कि आज के मौसम के हवाले से कहा गया है कि दिन के वक्त गर्मी तो रहेगी मगर दोपहर के बाद कुछ मकामात पर बादल जो हैं वो बनना शुरू हो जाएंगे या बन सकते हैं।
4: मतलब मैं शो के बाद जाऊँ अभी नहीं, अच्छा चलो शो कर लेती हूं, उसके बाद जाती
2: हूं। जबकि रात के वक्त नमी में इजाफा होगा और हवाएं शुमाल मगरिब से शुमाल मशरक की तरफ
4: हल्की सी
2: दरमियानी रफ्तार में चलने की तवक्का है भाई। तो QMD के हवाले से अगर ये बात हमने सुन ली है तो अब तैयारी भी कर ली जाए कि भाई आज और कल हो सकता है कि कुछ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ, लेट हो जाए तो भाई हो सकता है कि जुमे में ही बारिश मिल जाए, अल्लाह करे हो जाए ताकि और भी ज्यादा इस मौसम में आराम हो जाए। इदारे के मुताबिक इन दिनों मकामी तौर पर बादल जो हैं वो बने रह सकते हैं और आज का जैसे कि बताया कि मौसम गर्म रहेगा जबकि रात के वक्त नमी में इजाफा हो सकता है। भाई तमाम शहरियों को मशवरा दिया गया है कि आप जब भी मौसम का हाल या कोई भी अपडेट लेना चाहें तो वो सही प्लेटफॉर्म से ही हासिल करें, न्यूज़ खबर जो भी है, जो भी बात आप जानना चाहते हैं कतर के हवाले से हमेशा उसको आप सही प्लेटफॉर्म से ही उस खबर को हासिल करने की कोशिश करें। तो भाई ये तो रही खुशखबरी प्रोग्राम के शुरू होते ही और आगे इंशाल्लाह ताला और भी ज्यादा बढ़िया होने वाला है प्रोग्राम, क्योंकि जैसा कि सफा ने बता दिया है कि हमारे साथ जुड़े रहिए, 2 घंटे हमारा आपका साथ रहने वाला है। नंबर हमारा व्हाट्सएप का है 666-22107-6662-2107 और वहीं हमारा टेलीफोन नंबर है 443-443-7744-3-443-77 पर हम हाजिर खिदमत है आपके लिए। और जहां भाई मुद्दा भी आज बड़ा जबरदस्त होने वाला है, जो मौजू है
4: मेरे
2: वो हम छेड़ने वाले
4: पे, दिल पे लगा है मेरे, मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे बारे में बात की आपने सर्वर भाई, क्या क्लोजली ऑब्जर्व किया था मुझे,
2: या इसको ऐसा कहें कि हमारे बारे में सफा।
4: हाँ हाँ ये भी है,
2: ऐसा मुझे लग रहा है हमारे बारे में। तो चलिए क्या कहती है, मुद्दा छेड़ी दिया जाए ताकि फिर अपनी अपनी राय मशवरे हमारे पास लेकर लोग जाएं। तो सफा से ही शुरुआत करते हैं।
4: तो भाई देखें मामला पता है क्या है, दो टाइप के लोग होते हैं दुनिया में, एक वो जो खामोश रहते हैं, एक वो जो बहुत ज्यादा बोलते हैं। अब जो बहुत ज्यादा बोलते हैं ना उनके बारे में लोगों को एक बहुत ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है, जो कम बोलते हैं उनके बारे में भी होता है, लेकिन जो ज्यादा बोलते हैं उनके बारे में ज्यादा मिसकॉन्सेप्शन होता है। तो मामला हमारा ये है कि क्या लोग अक्सर आपको गलत समझ लेते हैं क्योंकि आप कम बोलते हैं या आपको समझ लेते हैं क्योंकि आप ज्यादा बोलते हैं. मुझे कहते ना हाँ तुम्हारे पास तो जिंदगी के सारे एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं तो
2: नहीं,
4: बोलती तेरा हूँ तो इसका बोलती भी तो इसलिए हूँ ना क्योंकि एक्सपीरियंस है भाई.
2: भाई दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो फिर कम बोलने वालों को अलग अलग नाम भी दिए जाते हैं. गुन्ना है भाई बड़ा गुन्ना. ये गुन्ना समझ में आया होता क्या
4: पिन की आदमी गुन्ना
2: यार गुन्ना है तो लफ्ज और भी ज्यादा मगर हम बता नहीं सकते. आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं तो हमारे साथ शेयर कर सकते हैं आप अपने दिल की बात कि भाई आपको कम बोलने की वजह से गलत समझा जाता है या फिर ज्यादा बोलने की वजह से गलत समझा जाता है. बात यहाँ पे हो रही है कि गलत समझा जाता है यानी अच्छा समझने की बात नहीं कर रहे. अच्छा तो हम खुद को समझ ही रहे हैं इसीलिए हम हरकत कर रहे हैं कि या तो हम कम बोल रहे हैं
4: हम ना सुधरेंगे
2: या फिर हम ज्यादा बोल रहे हैं. मसला क्या है दूसरी तरफ वो जानते हैं. तो आइए पहले कॉलर का वेलकम करते हैं और इनसे भी जानते हैं कि क्या है इनके दिल की बात. हेलो सलाम वालेकुम. सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु. कौन है हमारे साथ.
5: अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं ठीक हूँ और मैं हूँ हमजा.
2: अरे वाह हमजा बदल के आवाज आ रही है अभी. आवाज में कुछ मुश्किल लग रही है मुझे.
4: हमजा भाई की पेशेंट में तबीयत भी खराब थी क्या वही वाली.
5: असल में मैं समोसे पकोड़े और चाय का इंतजाम कर रहा था. चलो शाम को अच्छी गुजारी जाए.
2: वाह वाह तो ये इंतजाम में
5: मेरे ने बताया है बारिश का मौसम चलो इंतजाम पहले ही कर लेते.
4: मैं ना वो पालक वाले पकौड़े खाती हूँ मुझे अच्छे लगते हैं गोभी के पकौड़े भी.
2: तो ये दोनों हैं आपके पास.
5: ये बहुत मेहनती काम है. आलू वाले पकौड़े

0: से गुजारा कर लूंगा।
1: झूठे मुंह भी ना बोला इस शख्स ने, झूठे मुंह भी ना बोला कि हाँ हाँ बहन आ जाना, कोई मसला नहीं, दुकान से मंगवा दूंगा।
2: वैसे पनीर और अंडे के भी अच्छे लगते हैं ना, ऐसी बात नहीं।
1: भाई क्या याद दिला दिया, बहुत गलत आदमी चल रहे हो सरवर भाई।
0: छेड़ने को नहीं बोला मैंने।
2: चलिए ये पकौड़े छकौड़े इंशाल्लाह ताला मौसम बैठा हो जाए तो फिर तो आगे बारबेक्यू तक भी बात नहीं है। ये बताइए हमदा के ज्यादा बोलने की वजह से आपके साथ मसले पैदा होते हैं या फिर कम बोलने की वजह से मसले पैदा हो जाते हैं? वैसे आप ज्यादा बोलने में हैं, मैं ये जताऊं।
1: हमारी कैटेगरी के हो क्या?
0: सीरियसली इन बातों में कभी गौर ही नहीं। मुझे पता नहीं पड़ता किसी को मसला होता है नहीं
2: होता। नहीं नहीं वो तो हमदा है ही, वो भी बात हमने बताई हमदा, मगर यूजुअली आप फर्क तो नहीं पड़ता माशाल्लाह से, इसलिए आप देखिए मुझ पे भी फर्क नहीं पड़ रहा, इसलिए 150 ग्राम भी इधर उधर नहीं हो रहा। फर्क पड़ रहा होता तो फिर मसला होता। मसला ये कैसे माशरे में जनरली किस बात पे तंज या ताने दिए जाते हैं आपको लेकर?
1: क्या बोल दिया जाता है आपको लेकर?
0: कभी ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसके किसी ने इतना बोला हो कि यार बहुत कम बोलता है, घमंडी है, या कोई इतना बोले कि भाई बहुत ज्यादा बोल रहा है, इस तरह तो नहीं होता है।
2: मेरे हाल में हिम्मत नहीं होती होगी, मुंह पे बोलने की हिम्मत नहीं होती होगी।
1: भाई का रोब है, भाई का रोब है।
0: मौका ही नहीं देते, मौका ही नहीं देते हैं भाई।
2: माशाल्लाह खाते पीते घर के हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ देख
1: के। हमजा भाई आपकी
0: किसी को गलत बात करने का मौका नहीं दिया जाए।
1: नहीं नहीं हमजा भाई देखिए, अब सरवर भाई को भी कोई देखता है ना तो थोड़ा संभल कर बात करता है, क्योंकि उसको पता है कि अगर सरवर भाई ने एक ये 2.5 किलो का हाथ
2: देखो इसके भी गैर फंसने लगे।
1: भाई को अपनी पावर का पता है, सुपर पावर का।
2: बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। तो हमजा के ऊपर इस चीज का कोई असर नहीं है, चलिए ठीक है। मगर वैसे जनरली यार एक तो बात होती है ना, एक कहना चाहिए इंसान का, एक कहना चाहिए, अबे क्या कहना चाहिए, कितना कहना चाहिए,
1: देखो भाई सीधी बात है।
2: एक मतलब आ जाता है ना कि भाई वो ऐसा है, तो वो वाला इम्प्रेशन क्या रहता है आपका, ज्यादा बोलने कम बोलने वाला?
0: बहुत कम बोलने वाला भी नहीं और बहुत ज्यादा बोलने वाला भी नहीं, यानी कि मीडियम। बात की नोयत देख के साथ लगाया जाता है,
1: समझाना है। बोरिंग आदमी है भाई ये, बहुत बोरिंग आदमी। नहीं हमें एक्सट्रीमिस्ट चाहिए, नहीं नहीं नहीं हमें एक्सट्रीम चाहिए थे, ना ना ना ये बहुत बोरिंग बात है।
2: हमरा कहीं भी सेटल हो जाता
0: नहीं है कि मैं बोरिंग आदमी हूं, मेरे साथ रहने वाले लोग कभी ऐसा भी बोलेंगे कि बहुत बोर है।
1: अच्छा हमजा भाई
2: बहुत अच्छी बात कही यार, ये वाकई ये बात इस पे हाइट करा जाए जो अभी बात कही है सफा। हमजा फिर रिपीट कीजिए।
1: नहीं नहीं पहले मुझे बताए की आप है कहाँ से?
2: कराची।
1: कराची से ना? भाई कराची वाले तो भाई कराची वाले होते हैं।
0: कराची की वैसे मैं बिलोंग के पंजाब से करता हूँ।
1: अच्छा पंजाब से करते हैं तो पंजाब और
2: कराची का तो मोहर तो लगी हुई है ना
1: भाई। देखो पंजाब में भी ना हमें ना पंजाबी जो होते हैं ना वो जुग में ना बहुत सेट होते हैं, वो खुले दिल के होते हैं। और कराची वालों का
0: पहले इसलिए अभी आपको बताया ना, पहले इसलिए भी आपको बताया कि मैं अगर किसी को मजाक करता हूँ तो पहले बता देता हूँ भाई यार मजाक से ना तो वेल एंड गुड, क्योंकि मैं जुगते मारूंगा फिर नहीं बोलूंगा।
1: रुला देते वाले ना पंजाब वालों से करने के लिए एपिटाइट चाहिए, हर किसी को उनका मजाक ना समझ में आता है ना उनसे सह जाता है। सही
0: असल में हर लैंग्वेज के अंदर उसके कई मतलब निकलते हैं।
1: हाँ,
0: और हमारे जो पंजाबी लैंग्वेज इसमें तो बहुत सारे निकलते हैं,
1: वो कुछ बात भी इस तरीके से करते हैं ना।
0: हम एक ही बात को चार अंदाज में आपको बता सकते हैं और वही जो अगला बंदा कर रहे हैं अगर हमने अपने अंदाज में ली तो हम उसको आंखों से ऐसे देखते हैं कि अगर बोलता है कि यार कुछ गलत कह दिया, कुछ तो गलत हो गया हमारे साथ, तो ये कहानी है।
1: भाई देखें जिसको समझ में आई पंजाबियों का मामला है, जिसको जो समझ में आई, और अगर किसी को नहीं रास आ रहा होता ना तो हम कहते हैं अपना रास्ता ना आपको, चलो तुम हमारे टाइप के नहीं हो, चलो चलो कट लो।
2: चलिए भाई ये तो अच्छी बात पता चली, और जब हमजा जो है अपने आपको एडजस्ट कर लेते हैं, फिर कोई ऐसी बात इनको
1: कराची का डीएनए है, कराची का डीएनए
2: एडजस्टमेंट करने वाली,
1: एडजस्टमेंट कर लेते हैं।

0: बहुत बहुत शुक्रिया और इंशाल्लाह ताला जब कहीं आपको बारिश वगैरह दिख जाए तो भी हमारे साथ शेयर करिएगा, ठीक है?
1: जरूर शेयर करूंगा, बाकी
0: थैंक यू सो मच, ख्याल रखिए अपना, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू, आप भी, वालेकुम अस्सलाम।
2: यार ये बड़ा दुख है भाई, मुझे पालक के पकोड़े खाने हैं, मेरी अम्मा बनाती हैं और अम्मा यहाँ पर नहीं है अभी फिलहाल, छुट्टियों घूमती फिर रही हैं। अच्छा भाई हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, अगर आप भी हमारे साथ जुड़े हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं 4344377 पर, देखते हैं हमारे साथ कॉल पे कौन है। अस्सलाम वालेकुम।
3: जी वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप?
2: बिल्कुल अच्छी खासी अल्हम्दुलिल्लाह। सरवर भाई की साइड कर हम जो है ना वो खुशवाशी होंगे। सरवर भाई क्यों ज्यादा हंसी आ रही है?
0: नहीं बता के उन्होंने पूछा बहुत अच्छे तरीके से। कौन है हमारे साथ?
3: जी मैं शोएब बोल रहा हूँ जनाब, आप कैसे हैं?
0: यार आज सबकी आवाजें बदली नहीं है, क्या हो गया? मेरे कान ज्यादा बंद है या क्या मसला है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ शोएब भाई, उम्मीद करता हूँ कि आप भी खैरियत से होंगे।
3: जी अल्लाह का शुक्र बहुत ज्यादा अच्छा।
2: आज आप दिल से नहीं सुन रहे ना सर भाई, दिल से
0: दिल
2: सुने
0: तक नहीं जा रही है, कान तक नहीं जा रही
2: है।
0: तो भाई शोएब भाई कैसे हैं और कैसा गुजरा अभी तक का दिन आपका?
3: अभी तक का दिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बढ़िया है, चैलेंजेस कर रहे हैं कम्प्लीट,
0: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे। तो क्या कहते हैं भाई, ज्यादा बोलने की वजह से गलत लिया जा रहा है मार्केट में आजकल या कम बोलने की वजह से?
3: नहीं मैं सर साहब मैं बहुत ज्यादा फ्रेंडली बना हूँ, अभी जैसे कि मैं किसी से मिलता हूँ तो पहले शांत रहता हूँ। अभी आपको कल का एक किस्सा सुनाता हूँ, मैं कहीं बैठा हुआ था तो अब एक बंदा मेरे बाजू में बैठा है, मतलब मेरे पास में बैठा है, वो मेरे को वो बात करा है किसी से फोन पे, कहाँ जा रही है तू? समझ गया अपनी साइड का बंदा लग रहा है मेरे को। मैंने उसको फोन रखा तो मैंने उसको पूछा, फिर मैंने उसको पूछा मैंने बिजनौरी है मुरादाबादी भाई? बोलता मैं बिजनौरी हूँ। अच्छा जी, तो हम लोग बैठे रहे तकरीबन हम लोग हाय हेलो हो गई और दो घंटे तक हम लोग गप्पे लगा रहे
2: भाई।
0: वाह वाह
2: नाइस।
0: नहीं देखिए एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, तो उस कैटेगरी में एक्सेप्शन के कैटेगरी में तो सफा हर वक्त ही है।
2: मेरे साथ भी है भाई, पता है कल मेरे साथ ऑफिस में कुछ मतलब हर अलग अलग डिपार्टमेंट होता है ना।
0: एक मिनट मुझे यहाँ पे कुछ याद आ गया, कल मेरे साथ ऐसे आपने गौर से वो कहीं सफाई तो नहीं थी?
2: कल मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मजे बात ये कि जिनको लैंग्वेज नहीं आती, इंग्लिश भी नहीं आती प्रॉपरली, उनसे भी मेरी दोस्ती हो गई।
0: उनसे अच्छी होती है यार,
2: उनसे अच्छी दोस्ती हो गई,
0: उनसे अच्छी होती है। मैं तो ये कहता हूँ, मैंने मतलब शोएब हमारे साथ हैं, खैर इन्होंने कॉन्ट्रास्ट तो नहीं करी है शादी, बट जो कॉन्ट्रास्ट शादी होती है ना, मैं ये फायदा हो आप कुछ भी चलिए सामने वाले को समझ में नहीं आ रहा, उधर जो बात हो रही है इधर मेरे समझ नहीं आ रहा, और यही सास और बहू के बीच हो रहा है। तो फायदे काफी हैं जब एक दूसरे की लैंग्वेज कम समझते हैं, दोस्ती अच्छी होती है, रियली बता रहा हूँ। ऐसे ही
3: मैं बिल्कुल अभी जैसे कि लैंग्वेज का बड़ा भारी सिस्टम है, जब मेरी वाइफ से जब कहानी सुनी हो जाती है तो वो अपना मराठी में स्टार्ट हो जाती है।
0: ओहो
3: आप
0: और कुछ क्या सुनाया भाई, वाह वाह वाह मजा आ गया, क्या मतलब उठाया
2: मुकर्रर मुकर्रर
0: वो औरतें हो जाती होंगी।
3: अब मराठी में बोल रही है और मराठी के साथ साथ एक और लैंग्वेज बोलती है साथ कोकनी।
0: अरे कोकनी तो हमारे पास भी है भाई, हमारे पास भी एक कोकनी है मौजूद शकरी ना हमारे। ओके
3: मैं उसको बोलता हूँ मेरा कोई फायदा नहीं है, सब बाउंस जा रहा है, सब बाउंस जा रहा है,
2: सर के ऊपर घूम कर जा रहा
0: है। नहीं ये मत कहा करिए, यही का इसी तरह तारीफ करिए कि वाह वाह वाह क्या बात कही, ऐसा कहा करिए
2: एनर्जी है वाह,
0: बाउंस पे तो फिर और ज्यादा गुस्सा आएगा और ज्यादा बातें शुरू हो जाएंगी। वैसे ये भी तरीका सही है कि भाई दूसरा थक जाए है ना,
3: बिल्कुल थका देना चाहिए,
2: फुटबॉल में से एक गेंद के पीछे भाग रहे होते हैं ना सबके
0: बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, हाँ बहुत शुक्रिया शोएब हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।

0: मैंने
1: कहा भैया और कल सभा के साथ ही तो नहीं बैठे हुए थे, दो घंटे ये भी यही कर रही है। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम
0: जी, कौन है हमारे साथ?
1: आसिफ है हमारे साथ लग रहा है
2: भाई। आज सरवर भाई सलाम वालेकुम। सफदर सफा सफदर बेन सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल?
1: सफदर भाई
2: अच्छा अच्छा, मैं एक मैसेज देगा पहले भेजा, आप उसको पढ़ो।
1: अच्छा मैसेज बोलो भेजा है पहले पढ़ो।
0: आसिफ भाई ये नहीं, सफदर भाई सलाम।
1: ये काम तो मुश्किल हो जाएगा क्योंकि मैसेज अच्छा अभी आया। ओके ये मैं पढ़ूं या साइलेंट रह के पढ़ूं?
2: साइलेंट रह के पढ़ो भाई, ऊपर चल के नीचे।
0: ये कैसा क्या सच भेज रहे हैं भाई, साइलेंट रह कर पढ़ो, ये सही चल रहा है? आसिफ भाई, आसिफ भाई ने पता नहीं क्या ही भेजा है। सर भाई पे मुस्कुराहट आते हुए अकेले अकेले मुस्कुरा रहे
2: हैं। समझ गया
1: मैंने पढ़ा।
0: बहुत बुरी बात, लोग पहले जमाने में कानों में बातें किया करते थे और दूसरों को लेफ्ट आउट फील हो रहा।
1: अब ऑन एयर कर रहे हैं अभी भी।
2: तो सफदर भाई, सफदर भाई,
1: सफदर भाई और सरवर भाई, सही है सही है सही है, सही जा रहे हैं। ऐसे ही रखिए इसको, इसको ऐसे ही रखिए। वो है ना मुत्र साहब, अब आगे कौन है?
0: ये क्या वो ड्रामा आता है, इसमें मोमो आती थी और जो ना वो महमूद साहब को कहती थी, हर हर डिफरेंट नाम से महमूद साहब को बुलाती थी। महमूद साहब
1: वही चला। तो आसिफ क्या कहते हैं लोग, ज्यादा वाले मामला है आसिफ के साथ भी मुझे लगता है।
2: मेरे साथ में तो नहीं करोगे भाई जैसे तुम अभी?
1: नहीं नहीं नहीं, मैं तो जानने की कोशिश कर रहा हूँ यार कि ज्यादा बोलने की वजह से मशे बदनाम तो नहीं कहूंगा मैं, या कम नहीं की वजह से?
2: नहीं भाई मैं बात नहीं करता हूँ वरा के, तुमको तो पता है भाई
1: मैं बात नहीं करता। ऐसा तो नहीं है यार, बोल तो
2: भाई बस तुम भी बात करता हूँ, फैमिली में बात करता हूँ, बाकी लोगों से तो नहीं, ज्यादा बातचीत नहीं होती है भाई मेरी।
1: तो कम बोलने की वजह से कभी कोई
0: लेबल लगा है?
1: कोई लेबल लगा है?
2: बिल्कुल भी नहीं।
1: चलो ये तो अच्छी बात है यार, बचे में
2: कम बोलता नहीं हूँ भाई, मीडियम बात करता हूँ।
1: कम बोलता नहीं हूँ, मीडियम बात करता हूँ। मीडियम वाले मतलब मीडियम, उनसे मैच।
0: मैं तो गाड़ी में न्यूट्रल का गियर इस्तेमाल ना करती तो ये लोग तो जिंदगी में न्यूट्रल का गियर इस्तेमाल कर रहे हैं।
1: कहाँ हैं अभी?
2: ओ पर आपके दिल में भाई।
1: उसके अलावा वो तो परमानेंट है अभी इस वक्त। कहाँ है अभी?
2: बस आसमान की जमीन के ऊपर, कार के अंदर बात करते
1: हुए। मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या माहौल है इस वक्त वहाँ, वेदर का, ट्रैफिक का, जिस जगह आप हैं?
2: अभी तो माशाल्लाह गर्म थोड़ा कम हो गया है, 30 degrees दिखा रहे हैं मेरे को।
1: बादल कुछ आते दिख रहे हैं क्या?
2: जी जी नहीं नहीं, गरम थोड़ी थोड़ी गरम हवा चल रही है
0: अब। देखिए इन्होंने ना बिल्कुल वाली बात की, जी जी नहीं नहीं
1: जी जी,
0: अब ये किस चीज पर था और नहीं किस पर था?
2: मैं सरवर भाई आपसे मैं एक आज कॉमेडी शेयर करता हूँ तुम्हारा।
1: अरे मतलब ऑन एयर शेयर करने वाली
0: भाई, शेयर
1: करने वाली हो वरना वॉइस नोट भेज सकते हैं आप।
2: ठीक है मैं वॉइस नोट भेज दूंगा आपको।
1: ऑल राइट आसिफ, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ओके
0: क्या हो रहा है आज, आज क्या हो रहा है?
1: तो भाई यही चल रहा है, देखिए अपने अपने दिल की बात रखी जा रही है, बड़े अच्छे तरीके से रखी है। कुछ दरमियानी रास्ता अख्तियार कर रहे हैं और कुछ हमारे जैसे भी हैं और कुछ खामोश मिजाजी को भी पसंद करते हैं। एक कॉल ले लेते हैं सफा।
0: बड़े टॉक्सिक होते हैं वो आदमी जो खामोश मिजाज होते हैं, बेगमों के लिए बड़ी टॉक्सिक बात होती है।
1: हेलो अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू।
1: हला हला खादिम भाई कैसे हैं?
3: मैं बिल्कुल खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह। सफा बहन आपको भी बहुत बहुत सलाम।
0: वालेकुम
1: अस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातहू। तो खादिम भाई क्या कहते हैं, सुना मुद्दा अभी तक नहीं?
3: मैं अभी सुन रहा था लेकिन ज्यादा टाइम आपका नहीं लूंगा, इसलिए कि और भी कॉलर बहुत ज्यादा इंतजार कर रहे हैं और ये बहुत मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे नहीं लगता कि मेरे से जो दूसरे पीछे लाइन में लगे हुए ना उनको तकलीफ हो।
0: खादिम भाई बात अगर किसी से अच्छी वाली हो रही हो ना तो कोई माइंड नहीं करता सुनने में, अगर कोई ऐसे ड्रैग कर रहा हो तो वो एक अलग बात होती है।
1: और आप तो हमेशा अच्छी ही बात करते हैं यार।
3: नहीं वो सफा बहन दरअसल बात ये कि एक अगर मैं 3 रिपीट करूं तो वो बात बहुत बुरी लगती है, और सिर्फ मुझे नहीं वो
0: सबको,
3: जितने भी सुनने वाले हैं सबको।
0: सर भाई आप ऊपर बोल रहे हैं।
1: सही तो क्या कहते हैं खादिम
3: भाई के ऊपर नहीं बोलो
1: आज के
3: सरवर भाई जो है वो तो हमारे लिए बैठे हुए और माशाल्लाह हम उनको सुनने के लिए बैठे हुए और सुन रहे हैं माशाल्लाह। सरवर भाई को सुनते सुनते हम बोर नहीं होंगे इंशाल्लाह।

0: जी मेरा भाई कैसा खादिम भाई, पैसा ही पैसा, तो क्या कहते हैं, क्या कहते हैं खामोश। खैर खादिम भाई
1: नहीं, तो दरमियानी
0: हाँ ने मतलब बहुत हिसाब किताब रखते हुए, अगर थोड़ा पीछे जाएं, जैसा कि आपने हमें फोटो भेजा था उस टाइम की अगर बात करें तो क्या कहते हैं।

0: मैं फिर बातों में एक बार आ गया तो फिर शुरू, फिर कुछ भी नहीं कर सकता. बहरहाल मैं सुनता ज्यादा हूँ और बातें बहुत कम करता हूँ.
1: अल्लाह ताला खैर वाफियत का मामला करे. और यही बड़प्पन की निशानी भी होती है, जब आप सुनते हैं ज्यादा और समझाने की कोशिश करते हैं तो वो बड़प्पन में.
0: सरवर भाई इधर एक बात ऐड करूं कि अगर आप ज्यादा सुनेंगे ना तो आपको सीखने का मौका बहुत ज्यादा मिलता है, और अगर आप बोलेंगे ना तो आपको सिखाने का भी नहीं मिलेगा और सीखने का भी नहीं मिलेगा.
1: सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही. मगर बात सुनने वाली हो खादिम भाई, इसके अंदर ये इम्पोर्टेंट.
0: जी जी बिल्कुल बिल्कुल. अगर सुनने वाली हो ना तो उनको सुनना चाहिए, उनको गौर से सुनना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए. उसमें अगर कुछ सुना रहे तो इसलिए सुना रहे हैं कि उसमें कुछ है, कुछ मतलब की बात.
1: सही सही. और उन्होंने
0: आप बैठे हुए जी, आज जैसे आप बैठे हुए इधर आप दोनों माशाल्लाह, अभी हम लोग आप लोगों से बहुत कुछ सीख रहे हैं. जैसे हम लोग नहीं नहीं ये मजाक नहीं है, ऐसे नहीं मजाक आप नहीं लेना. जैसे हम प्राइम स्कूल में बैठे हुए और टीचर हमारे सामने हैं और हम उनसे कुछ सीख रहे हैं. ऐसी बात है हमारे लिए. FM 107 तो हमारे लिए बहुत कुछ है, बहुत कुछ, बहुत सीखा हमने, बहुत कुछ सीखा इसे.
1: जज़ाकअल्लाह खैर. हम भी आपसे सीखते हैं खादिम भाई, दुआओं में याद रखिए.
0: शुक्रिया, थैंक यू, बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफिज़. अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि
1: व बरकातुहू.
2: अच्छा, फीडबैक्स बहुत जरूरी होते हैं, फीडबैक्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो. तो भाई फीडबैक आपका बहुत शुक्रिया. और अब सर भाई मूड को बदलते हुए, सर भाई फॉर्म में आते हुए
1: आगे आगे
2: क्या है ये.
1: मेघा बाजी, शक्ति सिंह और अजय एक दूसरे का साथ निभाते हुए कह रहे हैं आगे आगे, और आगे पता चलेगा कि कितना आगे. पेन एंड साउंड पे इस वक्त सर्वर और सफा आपके साथ, ओनली ऑन FM 107.

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी
2: एब्सोल्यूट सिनेमा।
3: ये है वो रिएक्शन जिसके लिए आप थिएटर जाना चाहते हैं, पर रिव्यूज वो आपको कई मर्तबा धोखा दे देते हैं और आप इंटरवल पहले ही घर पे होते हैं। पर डोंट वरी, मैं हूं ना। भरोसेमंद रिव्यू देने के लिए आपको बस सुनना है FM 107 पर रिव्यू ऑफ द वीक रोलिंग हर फ्राइडे शाम 7:15 में RJ फजील के साथ, ताकि एवरी मूवी एक्सपीरियंस बने एब्सोल्यूट सिनेमा।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: दोस्तों, समंदरी सफर के दौरान ऑयल प्लेटफॉर्म से दूर रहना कानून की पाबंदी और सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए बहुत जरूरी है। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर आवाम को याद दिलाती है कि वो समंदर में मौजूद ऑयल प्लेटफॉर्म्स, चाहे वो बड़े हों या छोटे, उनके करीब जाने से परहेज करें ताकि आप किसी भी कानूनी कार्रवाई का शिकार ना हों। 2004 के कानून नंबर 8 के तहत, जो कि मैरीटाइम पेट्रोलियम और गैस इंस्टॉलेशंस की हिफाजत से मुताल्लिक हैं, आर्टिकल नंबर 3 के मुताबिक कोई भी अनऑथराइज्ड शख्स किसी भी समुद्री फैसिलिटी के 500 मीटर के दायरे के अंदर नहीं जा सकता है। और इसी कानून के आर्टिकल नंबर 4 में कहा गया, समुद्री फैसिलिटीज के 500 मीटर अंदर मछलियां पकड़ना या फिशिंग गियर छोड़ना मना है। मिनिस्ट्री ने अपनी रिपोर्ट में वाजे किया है कि इस कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों पर सख्त जुर्माने और कैद की सजाएं दी जा सकती हैं। आपका ऑफशोर पेम इंस्टॉलेशंस के मुख्तलिफ ऑक्सिलरी यूनिट्स के करीब ना जाना आपको कानूनी कार्रवाइयों से महफूज रखता है। FM 107 आपसे कहता है कि अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए हमेशा होशियार रहिए।
3: उर्दू रेडियो FM 107 के अपने तमाम सामेईन को मुत्तला करता है कि दोहा और उसके निवाही इलाकों में जोहर की अजान का वक्त हो गया है।

0: only on FM 107. Dil se Desi.
1: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर एक बजे से सिर्फ एफएम 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं
2: हम भी वो हैं जो कभी

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ FM 7 पर दिल से देसी।
1: लीजिए साहब, हुई हमारी वापसी और साथ ही ये अपने कि आज का जो मौजू है वो बड़ा दिलचस्प है और बड़ा दिलचस्प आप लोगों ने बना भी दिया है, और वो ये कि आपको कम बोलने की वजह से या ज्यादा बोलने की वजह से किस तरह से लोग जो हैं वो समझ रहे हैं या जानते हैं, या फिर आपको गलत भी खुदा ना खास्ता समझ रहे हैं। यहाँ पर यार पहले इनसे बात कर लेंगे, अच्छा अब तो दूसरी लाइन
2: है कि चले गए,
1: क्योंकि काफी देर से ट्राई कर रहे हैं। हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम सलाम, क्या हाल है भाई जान, खैरियत है?
1: अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से हैं। कौन है हमारे साथ?
3: काशिफ भाई।
1: काशिफ भाई कैसे हैं आप, खैरियत? अरे अहलन वो सहलन, आपका नंबर तो हमेशा आएगा काशिफ भाई, कैसी बातें कर रहे हैं?
3: नहीं नहीं हमेशा नहीं आता है, लास्ट टाइम हमारी बात कब हुई थी?
1: अच्छा
2: पिछले हफ्ते? हाँ,
3: लेकिन एक हफ्ता पहले हुई,
2: एक हफ्ता पहले हुई थी,
3: हुई थी।
1: हाँ बिल्कुल। चलिए साहब, अहलन वसहलन, तो क्या वजह रही, बीच में आप मशगूल रह गई?
3: नहीं नहीं मेरा कॉल नंबर ही नहीं आया, मैंने बहुत बार ट्राई किया।
1: अच्छा अच्छा, वो बस क्योंकि शायद वक्त को मद्देनजर रखते हुए
3: रहता हूँ, लेकिन वो नंबर बहुत बार ट्राई किया मैंने, लेकिन मेरे से बहुत ज्यादा जल्दी वाले लोग भी हैं ना।
1: कहाँ से ताल्लुक है काशिफ भाई?
3: मैं कश्मीर से हूँ, पाकिस्तान कश्मीर।
1: माशाल्लाह,
2: वादियों से हैं, वादियों से,
1: ठंडी जगह से हैं, इसलिए बड़े कूल होके बात कर रहे हैं। क्या बात है भाई। तो क्या कहते हैं काशिफ भाई, क्या समझा जा रहा है आपके इस वक्त, मसले कैसे चल रहे हैं ज्यादा कम बोलने की वजह से?
3: ज्यादा कम बोलने की वजह से मसले मेरे थोड़े से जो है ना वो अलग सा सिस्टम है मेरा।
1: अच्छा, समझाना चाहते हैं।
3: ऐसा है ना कि अगर जो मेरे पुराने जानने वाले हैं दो चार बंदे, वो तंग हो जाते हैं कभी कभी,
1: मतलब ज्यादा बोलने की वजह से।
3: ज्यादा बोलने की वजह से, लेकिन जो फर्स्ट टाइम मिलता है या जिसके साथ पहचान थोड़ी है वो बोर हो जाते हैं।
1: अच्छा,
2: क्योंकि आप खामोश रहते हैं उनके सामने।
3: ये बंदा पता नहीं इसमें कोई एटीट्यूड है क्या, ये बात नहीं कर रहा है ज्यादा, किसी बात का लेना देना ही नहीं है इसका, ऐसे लग रहा है अलग दुनिया में है। लेकिन जो मेरे जानने वाले हैं उनको ये लगता है कि यार कम बोला करो तू, हर बात में तेरा कुछ ना कुछ जवाब रहता है।
2: काशिफ भाई, कहीं हम कुंभ के मेले में बिछड़े हुए भाई बहन तो नहीं है जुड़वा?
3: ऐसा ही लगता है।
2: मजाक के लिए कोई पहले मुझे देखे ना तो कहेगा भाई ये तो इसके अंदर तो कूट कूट के ऐसा पता नहीं कौन सी हूर परी, पता नहीं कहाँ से अपने आपको क्या समझती है। और जो जो, जो फ्रेंड सर्कल है ना वो कहते हैं भाई ये जिस जगह पे बैठ जाए ना उस जगह पे हम ना बैठ पाएंगे, फिर हम है ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करते फिर हम।
3: ऐसा ही है मेरा भी, मैं जहाँ बैठता हूँ वो फिर उनके साथ मेरा वो लंबा हो जाता है, लेकिन जो नए बंदे आते हैं उनको लगता है पता नहीं इसमें नखरा है क्या है,
2: एटीट्यूड
3: समझते हैं वो लोग।
2: तो हम जो है ना, हम जैसे लोग फिर इस चीज के मजे लेते हैं, हम दोनों चीजों के मजे लेते हैं।
1: हाँ एग्जैक्टली, मैं इसी पे आ रहा था। तो इस चीज को किस तरीके से लिया है आपने और इसका क्या इलाज है?
3: नहीं नहीं इलाज नहीं है, ज्यादा
2: मारी है क्या हमें?
3: नहीं, मैं जो जानने वाले उनके लिए तो मुश्किल नहीं है, जो नहीं जानने वाले एंड में उनको मैं बता जरूर देता हूँ।

0: अच्छा, और वो कैसे
1: मुझे फील होता है ना कि,
0: मतलब ज़बान से ही बताते
1: हो जाता है मुझे, हाँ मुझे महसूस हो जाता है कि यार ये बंदा जो है ना इसको अभी कुछ
0: नहीं, तो मैं ये
1: दिमाग में
0: मैं ये जानना चाह रहा था ज़बानी ही बताते हम जाते हैं या कोई और
2: रास्ता भी चल जाते
0: हैं, और रास्ता इख्तियार करते हैं?
1: नहीं नहीं हाथ पांव नहीं चलते मुंह से, मैं उसको ये इतना बता देता हूँ कि यार मेरी आदत नहीं है ऐसे, वो जिसके साथ जान पहचान नहीं है उसके साथ ज्यादा फ्री होने की, माइंड नहीं कर रहा है, ये नहीं है कि मैं आपसे बात नहीं करना चाहता था, अच्छी है कि मुझे आदत नहीं है बोलने।
0: वाह अच्छा है, अच्छा है, अच्छा।
1: जानने वाला वहाँ बैठा हो ना वो मेरे तरफ ऐसे आंखों से देखता है ना,
2: वो वाला सीन है कि जब कोई मेहमान आता है ना घर में तो छोटे बच्चे होते हैं ना वो ऐसे तमीजदार हो जाते हैं, भाई घर वाले परेशान के हमारा ही बच्चा है कि पड़ोसियों का आ गया है।
1: बिल्कुल यही बात है, कभी कभार मैं अगर अपनी फैमिली के साथ भी बाहर जाऊँ ना तो मैं देख के जो बड़ा है ना जो मेरे जानने वाले बड़े बुजुर्ग टाइप होते हैं, आपका लड़का बहुत शर्माता है, बहुत
0: घर वाले कहते होंगे कि जरा घर पे आइए फिर आपको पता चलेगा।
2: आप एक से दो दफा मिल लें इनसे, फिर आप खुद कान पकड़ के इधर उधर भागते फिरेंगे।
0: मैं तो यूजुअली कहता हूँ कि ले जाओ भाई ये बच्चे ले जाओ दो तीन दिन के लिए। चलिए साहब बहुत अच्छी बात है काशिप भाई, बड़ा अच्छा लगा आपने हमारे साथ कनेक्ट किया और आज आपसे बात हो गई, अल्लाह ताला आगे भी कनेक्ट होते रहिए, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच,
1: थैंक यू।
0: अल्लाह हाफिज, कॉल लेंगे मगर अब जरा सा मैसेजेस, क्योंकि अभी तक हमने मैसेज शामिल नहीं किए हैं। शुरुआत करते हैं यहाँ से, अस्सलाम वालेकुम सर। अरे भाई 853 पे मैसेज भेज दिया था इन्होंने आज और हमने अभी तक नहीं पढ़ा। 853 पे शो शुरू होना था हमारा 11 बजे। बड़ी मोहब्बत भाई, अस्सलाम वालेकुम कहते हैं सरूर भाई, आज नाश्ते में आलू पराठा है हमारे यहाँ। अच्छा इसीलिए भेज दिया सफा ताकि हम दे पड़े और आलू पराठा जब तक निपट चुका हूँ। मोहम्मद मुशीर आलम अगर हमें सुन रहे हैं तो ये ज्यादती है भाई, ये इंसाफ नहीं है, कैसे वो पराठा
2: हम धरना देंगे, हम अच्छा, जांच करेंगे।
0: इन्होंने ये भी नहीं कहा कि आइए नौशो तनावल फरमाइए नाश्ता हमारे साथ, खाली बता दिया आज हमारे पराठे हैं जरूर भाई, छिड़ के भाग गए कंकड़ी मार के। कहते हैं गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम सिस्टर, गुड मॉर्निंग वाई एंड सिस्टर, भैया वाई भाई लिखना चाहते होंगे शायद,
2: कुछ तो था जो हमें समझ में ना आया, कोई बात नहीं हम डिकोड कर लेंगे।
0: मोहम्मद इरफातुल इस्लाम, ओके कैसे हैं आप इरफात, अगर मैं कहूं है या इरफातुल इस्लाम पूरा ही नाम लेना पड़ेगा, मेरे ख्याल में तो पहली बार बात हो रही है आज आपसे।
2: इरफात है या अरफात है?
0: अरफात होंगे, मैंने गलत पढ़ दिया,
2: आई से आ रहा है ए से आ रहा है, क्योंकि मेरे भाई का नाम कहीं है वो वाले तो नहीं, उनको मैंने कहा था मेरे भाई का नाम भी अरफात है,
0: वही है इशफाक एंड अशफाक वाला मैटर ना, तो आप दोनों तरफ से बोल सकते हैं। तो अभी तो बहुत गर्मी है शमाल में, ओ बदी उस जमान, चलो शमाल वाला कोई तो जुड़ा भैया, अभी तक तो रिपोर्ट के मुताबिक हालात नहीं बदले शमाल के सफा।
2: देखिये गर्मी हो रही है ना, गर्मी का मकसद अगर हवा नहीं चल रही ना तो इसका मतलब वही है कि वो जो थोड़ा बारिश से पहले मौसम जो है ना वो दबा दबा सा हो जाता है ना, हम उसको अच्छे सेंस में लेंगे ना, अच्छे सेंस में लेंगे हम उसे
0: इंशाल्लाह ताला। कहते हैं गुड मॉर्निंग सरूर भाई एंड सफा सिस्टर, आई एम फ्रॉम पाकिस्तान एंड नाउ इन सऊदी अरब, आपका प्रोग्राम डेली सुनता हूँ और आपकी बातों से एंजॉय करता हूँ, आज का मुद्दा वेरी एंटरटेनिंग है, माय नेम इज अमजद निसार। अमजद भाई यार सबसे पहले तो बहुत सारी मोहब्बतें आपको कतर से और आप तक पहुंचे ये प्यार ये मोहब्बत, और इसी का जो बदल आप हमारे साथ कर रहे हैं हम नहीं कर पाएंगे भाई उतना ज्यादा, कि आप इतनी दूर से बैठ के हमारे साथ जुड़े हुए हमें सुन रहे हैं, अल्लाह ताला आपको खुश रखे और इसी तरह आप मोहब्बतें जो हैं वो बिखेरते रहें, यही हमारी दुआ भी है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए वंस अगेन। कहते हैं कहाँ से कहते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, गुड मॉर्निंग सफा जी और सरूर भाई, कैसे हैं आप दोनों, होप वेल, वेलकम यूसुफ भाई सन एंड साउंड में, और सभी को वेडनेसडे मॉर्निंग विश कर रहे हैं। कहते हैं मैं कम बोलने में बिलीव करता हूँ बट उतना भी नहीं कि जहाँ बोलना
2: चाहिए वाना बोले
0: है वहाँ खामोश हो जाऊं।
2: बड़ी गहरी बात ये भाई,
0: जहाँ खामोश रहना है वहाँ रहता हूँ और जहाँ पे बोलना है बहुत बोलता हूँ। वाह वाह वाह वाह वाह क्या बात है यार यूसुफ भाई,
2: तो आजकल कुछ बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग नहीं आ गए मार्केट में जहाँ बोलना
0: नहीं, यहाँ तक कि यूसुफ भाई को हायर किया जाता है कि भाई चलो जरा बात करनी है जो नहीं कर पा रहे,
2: ये हम लोग करते थे ना?
0: वो यूसुफ भाई को ले लेगा भैया आला जरा सा चार बातें यार यूसुफ भाई सुना दो, चार बातें अच्छी कर दो
2: सर भाई। मैं एक बात बताऊँ मजाक के अलावा, मेरे दोस्त ना मुझे

0: लेकर जाया करते थे शॉपिंग पर, पता है क्यों? खरीदारी में, हाँ ये चलेगी तो ऐसे चपड़ चपड़ बोलती है कि अगला इसी के ऊपर आकर टिकेगा।
1: ऐसा हर फ्रेंड सर्कल में होता है, हमारे पास तो ऐसा था, पैरों में गिर जाता था दुकानदार के, प्लीज अगली बार से मेरी वैल्यू कम हो जाएगी, मैं आया हूँ तो कुछ कम करो।
0: मैं तो ये कहती थी, मैं मुंह पे कहती, मैंने कहा भाई दे दो इतने में, वरना तो मेरी अम्मा आएंगी नेक्स्ट टाइम।
1: और सोचो वो मेरी अम्मा है,
0: वो मेरी अम्मा है।
1: अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है आपका? सफा मैम को भी सलाम। और सच तो बहुत गर्मी है, पता नहीं क्यों सॉन्ग सुनकर किसी की याद आ जाती है।
0: दिल जले,
1: अरवाज भाई दिल जले। एमबीबी आ गए और सलाम कहते हैं आपको और तमाम लिसनर को। गुड मॉर्निंग कदर सरवर जी,
0: कहते हैं सलाम करो।
1: मुझे छेड़ते तो रहते ही हैं ये। खैर सफा जी को भी यहाँ पर पूछा जा रहा है स्पेशली।
0: एमबीबी भाई आपको सलाम,
1: काफी दिन हुए आपसे बात हुए। ओके कहते हैं गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, होप यू आर डूइंग वेल। और सर मैं तो कम बोलो तो प्रॉब्लम, अगर ज्यादा बोलो तो प्रॉब्लम, वाइफ को टेंशन ही लगी रहती है मेरी इस बात से। तो क्या कहती हैं आप?
0: नहीं मुझे मुझे तो अगर मैं औरतों के हिसाब से देखूं ना तो ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं।
1: इकराम हसन है हमारे साथ।
0: हम औरतें जो है ना किसी हाल में खुश ना होती, कम बोलने वाला मिल जाए तो भी एक मसला है, ज्यादा बोलने वाला मिल जाए तब तो और डबल मसला है। आप कम बोलते हैं कि ज्यादा बोलते हैं?
1: ये आप तो जानती हैं। और ये क्या देखिए सगेरे सगेरे क्या आपके लिए?
0: भाई ये तो फालूदा टाइप कोई चीज लग रही है भाई।
1: फालूदा और खीर में मेरे ख्याल में डाल दिया, कस्टर्ड
0: बनाना में। कस्टर्ड पता
1: यार
0: नहीं क्या फालूदा है भाई,
1: आइसक्रीम भी है, ड्राई फ्रूट्स भी है, आइसक्रीम दो तीन तरीके की है, प्लस इसमें कुछ जेली काइंड ऑफ भी है, सिरप भी है। अस्सलाम वालेकुम भाईजान कैसे हैं आपके?
0: आइए आप यहाँ तो ना मिलता,
1: अब क्या फायदा खैरियत लेके इकबाल भाई ये सब दिखाने के बाद
0: बनाना बोर्ड टाइप का
1: हाँ कुछ वैसे ही सही सही। ओके कहते हैं 47 डिग्री टेम्परेचर है यहाँ तो, जी यहाँ तो जान
0: जान निकल रही है।
1: कौन है ये? रोहेल हैं। ओके अभी इस वक्त गाड़ी अल्लाह ताला सबको अपनी हिफाज़त में रखे। गुड मॉर्निंग सिस एंड ब्रो, अनुज है हमारे साथ या अनुज है हमारे साथ। ओके कैसे हैं आप और क्या कर रहे हैं, कहाँ हैं? शहजाद अहमद हमारे साथ। गुड मॉर्निंग सर एंड मैडम, मैं बहुत कम बोलता हूँ, कोशिश करता हूँ कि चुप ही रहूँ क्योंकि चुप अच्छी होती है, चुप्पी अच्छी होती है कहना चाहता
0: हूँ। काश की बात मुझे बचपन में मेरी अम्मा अब्बा ने सिखाई होती, वैसे उन्होंने सिखाई बहुत थी, मेरा मसला था कि मैं सीखी नहीं।
1: अदील भाई हमारे साथ कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सरवर भाई एंड सफा से, आपको और कतर में सब सुनने वालों को। ओके हम एक्चुअली इसको बोल नहीं पाएंगे बट लाइक वाइज बहुत बहुत मोहम्मद अदील की जानिब से जो मैसेज आया है। ओके सलाम, फिर दुकान वाला बोलेगा अम्मा मेरी अम्मा।
0: हाँ दुकान वाले, अच्छा पाकिस्तान में ना
1: अल्लाह इस बार सिंपल
0: है, देसी दुकान वालों के पास जाए ना वो जो खास तौर पे, अब मैं पाकिस्तान में बात करता हूँ करूँ तो लोग सुन रहे होंगे इनको पता चलेगा, उर्दू बाजार वगैरह की साइड पर आप जाओ ना, या वो जो बड़े बाजार होते हैं उनकी साइड पर आप जाओ तो वहाँ पर आप अम्मा की दोस्त झाड़ दो, अब नेक्स्ट टाइम आऊंगा ना तो अम्मा को लेकर आऊंगा, तो लोग वैसे ही घबरा जाते हैं।
1: चलिए भाई आप किसी को कनेक्ट कर दिया है, बहुत देर हो गई थी इससे पहले कि हमें सलावतें पढ़नी शुरू हो जाती कॉल ना उठाने पे, तो यहाँ कोई कनेक्टेड है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु सरवर भाई, क्या
1: वेलकम। हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, आप कैसे हैं?
2: जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ और सफा भी आप ठीक हैं?
0: मैं ठीक ठाक हूँ, मुझे ये तो समझ में आ रहा है कि कौन है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कौन है। आपका वो वाला मामला हो गया कि मैं दिल में तो आता हूँ लेकिन समझ में नहीं।
2: मेरा सर थोड़ा डिस्टर्ब था, मैं फैमिली को लेके, इसलिए मैं मतलब
1: क्या नाम बताया भाई ने?
2: नहीं नहीं अदील बात कर रहा हूँ सरवर भाई।
1: अच्छा अदील भाई, अदील भाई जी जी, क्या आप कुछ फरमा रहे थे फैमिली को लेकर?
0: परेशान है खैरियत?
2: हाँ वो ना अम्मी की तबीयत नहीं ठीक थी पिछले दिनों में, जब आप आए ना 15 को,
0: अल्लाह खैर करे।
1: ओके
2: बस वो थोड़ा डिस्टर्ब था, बात करना।
1: अभी कैसी हैं? अभी कैसी हैं?
2: अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, खुशहाल है।
1: अल्लाहुम्मा रब्बि रहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, अल्लाह ताला सेहत व आफियत से रखे और उनका साया बखैर व आफियत बइज्जत आपके ऊपर हमेशा बरकरार रखे भाई, बहुत ही कीमती चीज है, अम्मी को हमेशा याद रखिए और उनकी खिदमत हो सकती है जैसे भी हो सकती है, यहाँ रहकर दायरा आपके साथ तो नहीं होंगी गालबन, मेरे ख्याल में पाकिस्तान में ही होंगी।
2: जी जी बिल्कुल ऐसे ही है,
1: अल्लाह ताला खैर करे। अल्लाह ताला
2: लास्ट टाइम जो है ना तकरीबन 2012 में मैं दुबई में था, वो वाले साहब की डेथ हो गई थी, फिर मतलब मुझे वापस नहीं आने दिया था घर वालों ने,
1: अल्लाह ताला करे
2: रहमत करे। माइंड में ना वही चलता है।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: FM 107 टाइम चेक।
2: लीजिए साहब, बज गए हम सब के 12, 12 बज के सही 3 मिनट। फिलहाल एक नगमा आपके लिए।
3: आप सुन रहे हैं FM 107 पर।

0: विमेन इन स्पोर्ट्स आरजे सफा के साथ हर मंडे दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट आरजे महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीस सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीस, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीस टू हैबिट, हदीस टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।

0: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर दिल से देसी।
1: हाँ जी वेलकम बैक एलन वसेलन लीजिए साहब, हुई हमारी वापसी और वापसी ये के आज का मौजू बड़ा मज़ेदार रहा और जैसा कि लोगों ने बताया भाई कि सुनने सुनाने की बात नहीं है, अपने ऊपर बीती है और जब अपने ऊपर बीतती है तो फिर किस किस तरीके की चीज़ें सामने आती हैं ये हम सब जानते ही हैं। यहाँ पर कुछ मैसेजेस फिर जानेंगे कि डॉक्टर सफा के पास आज हमारे लिए क्या है खासम खास। कहते हैं सलाम फैसल की तरफ से है और इनकी तरफ से फैसल की तरफ। अच्छा माय बैड यार, मैं बहुत बुरा जोक किया मैंने, सॉरी। फैसल खुद कह रहे हैं सलाम फैसल की तरफ से एक्चुअली। वालेकुम अस्सलाम
2: वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज ना सर्वर भाई का दिमाग चला हुआ है।
1: कैसे हो आप फैसल भाई?
2: घास चढ़ने चला गया है।
1: कहते हैं अस्सलाम वालेकुम सर्वर भाई और सफा बहन, उम्मीद करता हूँ आप बहुत ही अच्छी होंगी। मुझसे पूछो तो मैं बताऊंगा आगे। उम्मीद करता हूँ आप बहुत
2: जलने वाले।
1: मैं पहले बहुत बोलता था, फिर मेरी जिंदगी में दो टेंशन आ गई, सो अब वो बोलती हैं और मैं सुनता हूँ। मैं समझ गया
2: कि बेगम और बेटी को बोल रहे हैं।
1: मैं समझ गया भाई, मैं समझ गया। आगे पढ़ दूं?
2: हाँ,
1: मेरी पहली टेंशन मेरी दूसरी बीवी है।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके।
1: और मेरी दूसरी टेंशन मेरी पहली बीवी है, तो दुआओं की ज़रूरत है आप लोगों से और दुआएं बनती भी हैं आपके लिए कासिम खान साहब। अल्लाह ताला आपको वाकई अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। और
2: देखिए मैं साइलेंट हूँ।
1: आगे बढ़ जाते हैं, मौजूद दूसरी तरफ चला जाएगा। नसीम भाई हमारे साथ, अस्सलाम वालेकुम और रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। क्या हाल है साहिबान? और कहते हैं सफा दादी आप हर मामले में शामिल हो जाती हैं, इनके साथ ऐसे
2: मसले। मतलब मैं यहाँ बैठी क्यों हूँ फिर? मुझे तरह किस चीज की मिल रही है फिर? Okay. अगर मैं शामिल ना हूँ तो
1: कहते हैं 50 डिग्री टेम्परेचर दिखाते हैं।
2: हाय हाय हाय,
1: अल्लाह रहम।
2: गाड़ी है कि क्या?
1: और हमें
2: है
1: वॉइस नोट भेजा है रोहिल ने, तो सुन लेंगे हम रोहिल थोड़ी सी देर में। और तो भाई ये थे कुछ मैसेजेस, अब बढ़ जाते हैं आगे। और अब टाइम हो गया कि हम आपके साथ गेम भी खेलेंगे।
2: तो आप हमें तो बहुत सारे गेम खेल गई है। एक हमें कि हमारे साथ भी खेल लो, कभी हमारे साथ महफिल लगाओ
1: और हम कॉल भी लेंगे इंशाल्लाह ताला। तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने हाल अहवाल भी बता सकते हैं और गेम भी खेल सकते हैं। नंबर आपको पता ही है 443-443-77 पे आप कॉल कर सकते हैं। और किसी वजह से अगर आप बिजी हैं ड्राइव करके, कहीं गाड़ी लगा के हमसे बात करना चाहते हैं और चाहते हैं कि मैं आपको कॉल बैक कर लूँ, सफा कॉल बैक कर ले, तो आप एक डॉट बना के भेज दिए, बाकी कुछ कहने की जरूरत नहीं, हम समझ जाएंगे कि आपको कॉल बैक भी करनी है। तो भाई क्या है आज गरम गरम ट्रिविया, सफा क्या कहती
2: है? देखें गरम गरम आज प्लेट में ये सर्व किया जा रहा है कि जो लोग ये कह रहे हैं ना 50 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिखा के कि हाय हाय हाय हाय हाय हाय क्या तो गर्मी है, उनको मैं बता दूं कि आज तक का जितना हाईएस्ट टेम्परेचर रिकॉर्ड किया गया ना वो है 56.7 डिग्री सेल्सियस। और ये कहाँ का था? डेथ वैली कैलिफोर्निया यूएसए का। अच्छा डेथ वैली का अगर आप कुछ और पढ़ें ना, वैसे आज मैं डेथ वैली के बारे में बात नहीं कर रही, लेकिन मैंने इसके बारे में पूरी पूरी डॉक्यूमेंट्री देखी है, तो इसको देखिएगा जरूर।
1: तो क्या चीज है खुलासा इसका?
2: अच्छा हाँ, मुख्तसर खुलासा मैं आपको बता देती हूँ कि दुनिया के कुछ सबसे गर्म ममालिक जो है ना वो वेस्ट अफ्रीका में।
1: इस बात को हम आगे कंटिन्यू करेंगे, एक कॉलर क्योंकि काफी देर से हमारे साथ लाइन पे हैं तो अच्छा नहीं लग रहा। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: अच्छा नहीं लगता मैं बात करूँ?
3: हेलो
1: हाय, हम हैं, हाँ हम हैं,
3: हम हैं आपके साथ।
1: शहजादा भाई कैसे हाल चाल है, खैरियत से हैं?
3: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आइए खाने के लिए, मैं बंद लेके बैठा हूँ हॉल में।
1: बारक अल्लाह खैर, अल्लाह हो बारक फी, और अल्लाह ताला ये खाने में और बरकत दे और आपको खैरियत से हजम भी कराए।
3: अब हमें कड़ी पकौड़ा और चिकन का सालन है,
1: ये हमें बता दिया ना आपने, इसलिए हम दुआ कर रहे हैं कि हजम हो जाए, खैरियत से हजम हो जाए।
2: ये बहुत गलत बात है भाई, ये बहुत गलत बात
1: गलत बात है। तो चलिए साहब जल्दी से गेम खेल लेते हैं ताकि आपके खाने के बीच में हम ज्यादा हाल ना रहे। तो उल्टी गिनती चल रही है शहजादा भाई, 917 से 907 जाना है आज, 900 का हिसाब किताब चल रहा है।
3: अरे बाप रे, 917 से 907।
1: हाँ
3: ओके
1: गली लगा लेता हूँ, एक सेकंड रुक जाए। ये ओके, तो चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 917, 918, 920, 920
1: कहाँ से आया
2: 11 के बाद? 100 पे आ गया
3: दूसरी।
2: लेकिन लेकिन विद द फ्लो चेक करें।
1: वाह वाह वाह भाई, क्या गिनती उल्टी गिनी है पूरे। असल में ये कह रहे थे कि साहब कौन देगा, 900 की बात हो रही है, फौरन 100 पे आ गए।
3: अरे हाँ, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया, गलती से
1: कंफ्यूज हो गया। चलिए साहब बहुत
3: मैम,
2: देर आए नहीं दुरुस्त नहीं आए,
1: देरी आए
2: दुरुस्त कहीं रह गया।
1: फिर से खेलना चाहेंगे क्या, दोबारा शुरू करूं?
3: दोबारा
1: हाँ, चलिए एक एक,
3: ना?
1: हाँ, एक एक मौका और देते हैं।
2: चिकन का सालन ठंडा करवाएंगे आज।
1: चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
3: 917, 916, 918, 920, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918, 918
1: वाटर कूलर छोड़ो, मैं पानी की बोतल ना दूं इस बात में। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। और मुझे मालूम है आपका ध्यान इस वक्त तो वो मुर्गी के शोरबे में ज्यादा है, तो लिहाजा आप उसमें गोते लगाइए। इंशाल्लाह ताला आपसे हम फिर बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।
3: ये जो टांगे है ना मुर्गियों की, बड़ी हसरत भरी निगाह से देख रही है।
1: ऑलराइट ऑलराइट ऑलराइट शादा साहब, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।
2: 911 के बाद ना उनकी नजर मुर्गी पड़ रही थी कि वो 910 भूल जा रहे थे।
1: यहाँ एक और चैंपियन हमारे साथ जुड़ गए। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो,
2: हैं के चले गए।
1: वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जी कौन है हमारे साथ?
4: मैं सादिक बात कर रहा हूँ।
1: सादिक
4: जी, जी
1: क्या बात है सच्चे भाई, कैसे हैं आप? रेडी गेम खेलने के लिए?
4: जी जी जी बिल्कुल।
1: चलिए ठीक है, तो आज हम 900 के हिसाब किताब में जुड़े हुए हैं, तो आपने 933 से 923 जाना है, ठीक है?
4: 33 से 30 तक।
1: 33 to 23, 33 से 23 तक।
4: अच्छा 33 से 23 तक।
1: एग्जैक्टली 10 पीछे जाना है, 933 से 923।
4: अच्छा,
1: इंग्लिश में चाहते हैं इंग्लिश में बोल सकते हैं या जिस लैंग्वेज में आप चाहते हो वो हम सफा हमारे साथ बैठी हुई ट्रांसलेट कर लेगी, कोई मसला नहीं है। उर्दू और इंग्लिश में समझ लूंगा, ठीक है?
4: जी जी।
1: किस में करेंगे?
4: एक मिनट मुझे थोड़ा सा समय देंगे, मैं ना पार्किंग करता हूँ अभी, गाड़ी चला रहा हूँ।
1: अरे यार ये तो गलत हो गया मामला, और नाम सादिक है। नाम सादिक है इसलिए सदक बात कर रहे हैं। तो आप आराम से लगाइए, हम होल्ड पर रहेंगे, हम वेट करेंगे आपका। आराम से लगाइए, आप आराम से लगाइए।
4: आराम से लगा रहा हूँ,
2: कोई जल्दी नहीं।
4: जी जी अच्छा आप शुरू करते हैं।
1: आपने गाड़ी पार्किंग में लगा ली है?
4: जी जी लगा लिया है।
1: चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, आगे से कभी भी आप कॉल करें हमेशा गाड़ी पार्किंग में लगा लीजिए अगर ब्लूटूथ वगैरह नहीं है आपके पास। तो जी सादिक भाई, तो 933 से 923 वापस जाना है, ठीक है?
4: ठीक है, शुरू करते हैं।
1: लिखना तो नहीं है, मतलब लिखा हुआ तो नहीं है कहीं चैट वैट की?
4: नहीं,
1: वो
4: नहीं,
1: मत लीजिएगा हेल्प। हाँ ठीक है, चलिए
4: लिखा नहीं हुआ है
1: सादिक भाई, है ना? तो सच बोलना है। चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
4: 933, 932, 933, 933, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929
1: 26 के बाद सीधे 23?
4: नहीं 25-26 कह दिया ना मैंने, 24 भी कह दिया था।
1: थोड़ा सा क्लियर करिए क्योंकि बहुत मजा नहीं आया। आप तेज हैं मगर क्लियर अच्छा। भी होना चाहिए कि गिनती समझ में आए।
4: वैसे
1: भी हाँ, मतलब ये कुछ ज्यादा ही तेज है। 933, 932, 931, 930, ये इतनी रफ्तार भी अच्छी है, इससे थोड़ा तेज और कर सकते हैं आप, मगर इतनी कि हम पकड़ लें, गाड़ी हमारी छूट ना जाए।
4: अच्छा
1: ठीक है, चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
4: 933, 932, 933, 930, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929
1: है ना इस गेम का, उसको कोई ब्रीड नहीं कर पा रहा है, और इन्होंने भी 6 सेकंड में ही किया है। क्या बात है भाई, क्या बात है, तालियां आपके लिए। तो मैं आपको बता दूं सादिक भाई कि इस गेम का जो रिकॉर्ड है अभी तक का पूरा वो 6 सेकंड का ही है, उससे नीचे अभी तक किसी ने खत्म नहीं किया है।
2: कि 5 सेकंड में किसी ने किया।
4: मैंने कर दिया था 5 सेकंड में, लेकिन क्लियर नहीं था पहली बार में।
1: नहीं तो वो तो मैं भी कर दूंगा, आप कहिए मुझसे गिनती दीजिए, मैं भी कर दूंगा 933 और 932 हो गया। चलिए साहब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, और ये हाईएस्ट स्कोर है और मुझे लगता है आज हाईएस्ट ही रहेगा क्योंकि ये हमेशा का ही हाईएस्ट स्कोर है। तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए भाई, थैंक यू सादिक भाई, वेलकम। तो भाई ये थे सादिक भाई हमारे साथ, चलिए एक और चैंपियन के साथ जुड़ जाते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
5: वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, कैसे हैं सर भाई?
1: अल्हम्दुलिल्लाह,

0: यार, कमाल है
1: सरवर भाई को, क्या मुझे भी टेम्प्ट
0: तो ये बताइए, मेरे ख्याल में आपने भी उनकी बात सुन के और आपकी भी तबीयत थोड़ी बिगड़ी है, इसलिए आप याद कर रहे हैं अभी तक और आवाज भी नहीं निकल रही है।
1: मैंने कहा ना ये ज्यादा खा ली,
0: अब निकल रही है, अब निकल रही है। तो चलिए गेम के लिए रेडी मुदस्सर भाई? चलिए साहब, आपका टाइम तो मैं शुरू करूंगा। स्लॉट आपको मैं दे रहा हूँ 947 से 937 47 to 37। आप इंग्लिश में या उर्दू में जैसे चाहें। अच्छा रेडी हैं, चलिए आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: ओके फिर से स्टार्ट करें क्योंकि मैं बोल नहीं पाया, फिर 6 सेकंड और।
0: मैं कहता हूँ चलिए अब पे शुरू हो जाएगा, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: ओके 9 47 9 46 9 45 9 44 9 43 9 42 9 41 9 49 9 39 9 38 9 37 9 39 9 38 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39 9 39
0: 8 सेकंड स्कोर किया मुदस्सर भाई ने, उसी के साथ सेकंड पोजीशन पे हैं अभी तक मुदस्सर भाई, क्या बात है।
2: ऐसे अगर हम लोग ऐसे अगर करके मतलब उसको बोले ना तो हम लोग बहुत जल्दी बोल देते, बट जब किसी के सामने शो करना हो या किसी से बात करके कि मतलब चैंपियनशिप में समझ लीजिए पार्टिसिपेट
1: तो
2: करना हो तो नर्वसनेस आ जाती है, तो इस वजह से जो है इंसान थोड़ा सा फंबल हो जाता है।
1: जब ऑन एयर की बत्ती हमें भी नजर आती है ना भाई लाल रंग की, तो हम भी ऐसे ही हो जाते हैं।
0: वाह वाह वाह, चलिए साहब बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। साहब बढ़ते हैं आगे, एक गाना सुन लेते हैं जल्दी से और यूं जाके यूं वापस आते हैं। फकत सफा गाना याद आ गया, कौन सा है
1: गाना तो पता है मुझे,
0: कौन सा बताओ? ये वाला तो है, फेवरेट सॉन्ग होगा ये तुम्हारा,
1: मुझे थोड़ा सा सुनने दो फिर, मुझे गजनी को थोड़ा टाइम लगता है पॉलिश होने में।
0: अभी आएगा देखो, ये म्यूजिक पे इसमें भी मुश्किल है, नेक्स्ट पे
1: रेस का है।
0: रेखा की आवाज है इतनी प्यारी, रेखा भद्वाज और जावेद अली के साथ ये गाना, आप भी इंजॉय कीजिए, हम भी आपके साथ बने हुए। ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: प्रगति नागपाल। चैलेंज कर रहा था मैं सफा को इस गाने में, नजरे तू मिला, फिर भी हिम्मत ना हुई, इस वक्त इग्लू बने बैठी हैं।
1: सोने का दिल कर रहा है मेरा तो इस गाने को सुनकर।
2: आप सुन रहे हैं सन एंड साउंड आरजे सरवर मिर्जा और आरजे सफा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर, दिल से देसी।
0: हाँ जी, वेलकम बैक हेलन व सहलन। एक छोटी सी अपडेट यहाँ पर, उसके बाद आगे बढ़ेंगे और सफा से जानने की कोशिश करेंगे जो बता रही थी आज गरम गरम ट्रिविया के हवाले से। तो साहब, कतर रेल ने अपने स्टाफ की सेहत और हिफाजत को और बेहतर बनाने के लिए एक खास प्रोग्राम शुरू किया है और जिसका मकसद ये है कि हर मुलाजिम को, हर स्टाफ को सेफ्टी को अपनी रोज़मर्रा जिम्मेदारी और ज़िंदगी में एक खास हिस्सा समझा जाए और उसको रखा जाए। इस प्रोग्राम में सेफ्टी रूल्स पर अमल और रेगुलर चेकिंग और मुमकिना खतरों की पहले से निशानदेही पर जोर दिया जा रहा है ताकि हादसात से बचा जा सके। दोहा मेट्रो और लुसेल ट्रैम के ऑपरेशंस में सेफ्टी को मजबूत बनाने के लिए इंस्पेक्शंस, स्टाफ ब्रीफिंग्स और रिपोर्टिंग सिस्टम को भी बेहतर किया गया है। कतर रेल ने सेफ्टी परफॉर्मेंस को नापने के लिए 10 अहम इंडिकेटर्स तय किए हैं जिनकी मदद से लगातार बेहतरी और मॉनिटरिंग की जा रही है। कंपनी का कहना है कि सेफ्टी सिर्फ रूल्स का नाम नहीं बल्कि एक सोच और कल्चर है जिसे हर साल और मजबूत बनाया जा रहा है। ये प्रोग्राम मुलाजमीन को खुलकर हजार्ड्स रिपोर्ट्स करने और एक दूसरे की सेफ्टी का ख्याल रखने की भी तरगीब देते हैं ताकि मुसाफरों और स्टाफ दोनों के लिए महफूज माहौल फराहम किया जा सके। तो सवा क्या था आज का हमारा गरम गरम ट्रिविया?
1: देखो भाई, अब तो ट्रिविया भी ठंडा हो गया।
0: अगर मैं आपको दिखा दूं इस वक्त तो मैं क्या ही बताऊं, आप लोग का दिन सेट हो जाएगा ऐसी अगर मैं फोटो भेज दूं इस वक्त सफा की।
1: यू सरल भाई, इस वक्त जो ना मेरी सिर्फ नाक नजर आ रही है, मेरी आंखें, मेरा मुंह, सारा कुछ ढका हुआ है, सिर्फ वो हिस्सा नजर आ रहा है माइक के पास है। मैं बिल्कुल इग्लू एस्किमो बनी हुई हूँ।
0: मुझे बहुत चीजें याद आ रही है इस वक्त तो मैं देख के। तो भारल, तो क्या है?
1: अच्छा भाई, आज हमारे पास फन ट्रिविया ये है कि देखें, दुनिया के कुछ सबसे गर्म मुल्क वेस्ट अफ्रीका में।
0: ओके।
1: जैसे कि आप कह लें कि बुर्किना फासो,
0: यस,
1: माली बहुत मशहूर है ना टूरिज्म की वजह से, और सिनेगल। अच्छा, सिनेगल का मुझे फर्स्ट टाइम पता चला था जब मैंने फुटबॉल देखा था।
0: ओके,
1: तो ये
0: मजबूत
1: टीम। हाँ, और ये जो है वो ममालिक हैं जहाँ कई एरियाज में साल भर टेम्परेचर काफी हाई रहता है। जब मैं कह रही हूँ ना काफी हाई,
0: काफी मीन्स काफी,
1: यस। और भाई अगर इनसे हटकर हमारे गल्फ रीजन में आए तो भाई गर्मी का अपना ही लेवल होता है यहाँ पर, बिल्कुल इन्हीं के जैसा। और कतर और यूएई में समर के दौरान टेम्परेचर्स आप कह लेंगे 45-46 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर चले जाते हैं नॉर्मली। अब अगर आपको मैं सुनाऊं कि भाई
0: वैसे हर मुल्क का अपना जो मौसम होता है उसका मिजाज भी अलग होता है, जहां तक मुझे लगता है।
1: डेजर्ट है ना,
0: जैसे हमारी गर्मियां इस हमारे ममालिक की अगर बात करें तो गर्मियां इस तरीके की नहीं होती हैं,
1: मतलब यहाँ होती है।

0: मेरे कहने का मतलब ये है कि डिफरेंट होती हैं, होती है हमारी तरफ भी है। यूपी में इतनी गर्मी पड़ती है कि बस वही वाली हालत है कि भाई अंडा तल्लो रोड पे और गाड़ी के टीन के ऊपर। तो मगर कुछ ना कुछ फर्क होता ही होता है।
1: ये चीज मुझे नहीं समझ में आती कैसा सिलसिला है। अच्छा मजे की बात ये वही 46-47 टेम्परेचर वहां पे भी होगा, नॉर्मली होगा, लेकिन यहाँ की गर्मी पता नहीं क्यों चमड़ी उधेड़ने वाली होगी क्या, या पता नहीं शायद ह्यूमिडिटी लेवल इतना ज्यादा बढ़ जाता है कि हमें और ज्यादा उस हब्स की वजह से ना, उस ह्यूमिडिटी की वजह से और ज्यादा तकलीफ होती है हमें, कुछ कुछ है। अच्छा अगर अगर हम बात करें ना एक और, अगर मैं आपको एक अमेजिंग सा फैक्ट बताऊं तो अर्थ के हाईएस्ट ऑफिशियली रिकॉग्नाइज एयर टेम्परेचर जो है ना वो 56.7 डिग्री सेल्सियस था। और जैसे कि मैंने उस वक्त बताया था कि पता है कहाँ का था ये, डेथ वैली का था, कैलिफोर्निया का, यूएसए का, जो कि रिकॉर्ड किया गया था ऑन 10th of July 1930 का रिकॉर्ड। तो डेथ वैली के बारे में तो यही है भाई कि मैं तो कहूंगी एक दफा जाकर जो है ना आप अपनी सर्च इंजन घुमाएं, और मोबाइल तो आपके 24 घंटे हाथ में होता ही होता है, डेथ वैली के ऊपर सर्च कर देखें, आपको बड़ी अमेजिंग, और कभी फुर्सत मिली तो आपको बताएंगे डेथ वैली क्या होती है एक्चुअली में, क्या है वहाँ पर। इट इज नोन एज डेथ वैली ड्यू टू सम रीजंस, क्योंकि यहाँ पे गर्मी बे इंतहा होती है भाई,
0: बे इंतहा होती है। देखते हैं कि इस वक्त बाहर का माहौल क्या है, कोई जुड़ गया है हमारे साथ। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
0: जी कौन है हमारे साथ,
2: फोन कहाँ लगाया आपका?
1: ये आप मिर्जा साहब को लगाया है, मिर्जा साहब को।
2: अच्छा दादी अम्मा कभी नहीं।
1: नफीस भाई नहीं, नसीम भाई नफीस भाई तुम्हारी न्यूज पढ़ते हैं, नसीम भाई।
2: याददाश्त बहुत तेज,
1: देखें फिर भी याद तो आ गए ना, बड़ी बात ये है कि गजनी को याद रह गए आप। दादी अम्मा के बाल सफेद कर दिए आपने, चार बचे थे बोल बोल कर, उनके से तीन तो ऐसे ही सफेद हो गए मेरे बाल।
0: लेकिन मैं कुछ नहीं बोलूंगा, ऐसे मैं कुछ नहीं बोलूंगा। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं?
1: अच्छा एक बात तो बताएं, आप बात ही ऐसे करते हैं परेशान हाल होकर, या वाकई में आप हमसे बात करने के लिए ऐसा कुछ मोड मीडियम अपनाते हैं?
2: थोड़ी आवाज
0: फंसी हुई ये, अब देखिए ये निकली आवाज, ये बात सुन के क्या कहने,
1: क्या कहने,
0: मतलब मशगूल हो जाते हैं हमारी प्यार मोहब्बत में, और क्या कह सकते हैं।
1: नसीम भाई की आवाज सुनकर ऐसा लगता है अभी तकिया सर के नीचे लगा हुआ होगा और बेडशीट के ऊपर लेटे होंगे। एक्चुअली है
0: क्या, वाकई आप इस वक्त रेस्ट पे हैं नसीम भाई?
2: लग तो रहा है।
1: अच्छा
0: ओके, तो चलिए गेम खेलने के लिए रेडी।
2: आवाज फंसी हुई है,
1: आवाज फंसी हुई है तो नंबर नहीं फंसे।
0: मैं रवा करवा दूंगा, जबी तो उल्टी गिनती करवा रहा हूँ आपसे, बेहतरीन सेट ग्रीस लगा के। चलिए तो 988 से 978 वापस जाना है, 988 से 978
2: उल्टी गिनती ऐसे ही गिनती उल्टी चल रही।
0: बस थोड़ी सी और करनी है,
1: ठीक है?
0: तो चलिए मैं घड़ी सेट रेडी है।
2: कहाँ से कहाँ तक?
0: 988 से 978
2: से
0: 78
2: ठीक है, देखते हैं।
0: चलिए ठीक है, आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 978, 989, 986, 985, 984, 983, 982, 982, 981, 982, 979, 978।
0: ये आज का लंच हमें नसीम भाई की तरफ से मिलेगा, क्योंकि इन्होंने टॉप किया है नीचे से लिस्ट में, कोई तो नीचे से भी टॉप करना था और उसमें हमारे नसीम भाई फर्स्ट आए।
1: ऊपर
0: भरोसा भी नहीं हो रहा, भाई ने पूरे 15 सेकंड लिए हैं जिसमें
1: सबसे लास्ट है लिस्ट में।
0: नहीं लास्ट नहीं है भाई, नीचे से देखा जाए तो टॉप कर रहे हैं।
1: नीचे टॉप कर रहे हैं, हम गलत बोल रहे हैं।
0: अच्छा
1: वो कह रहे मैं खुश हूँ बस, खैर है
0: भाई। वाह क्या कह रहा, क्या बात है भाई, क्या बात है। बहुत बहुत शुक्रिया नसीम भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ आज शेर वेर नहीं आए आपकी जानिब से, काफी दिन से नहीं आए, बल्कि आप शायर भी हैं एक्चुअली है कुछ?
1: आपसे, अरे भाई आपसे शेर सुनना चाह रहे थे, ये क्या हो रहा है,
0: सुना दी कुछ है तो
2: आपसे सुनना चाह।
0: अरे मैं तो कहाँ टूटा फूटा शायर, क्या करेंगे आप मेरी सुन के,
2: वही जो भी है सुना दीजिए
0: कुछ भी सुना।

0: दीजिए आप, जब ही तो कह रहा हूँ आप सुना दीजिए, अभी मौका है हमारे पास।
1: मेरे पास अभी नहीं है ना।
0: अच्छा, मेरे पास अभी नहीं, चलिए इंशाल्लाह ताला जब रेडी हो जाए तो फिर सफा और मेरे लिए लिखिएगा कुछ, ठीक है, और कल सुनाइएगा इंशाल्लाह, वीकेंड भी है तो जरा माहौल भी बन जाएगा, ठीक है। ओके ओके नसीम भाई, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। तो ये थे नसीम भाई हमारे साथ, और यहाँ पर उल्टी गिनती का सिलसिला जो है वो चल रहा है। सफा क्या कहती है, एक और चैंपियन को कनेक्ट करा जाए?
2: जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम।
3: वालेकुम अस्सलाम।
2: अरे भाई खुशबाश लोग आए हैं, खुशबाश लोग आए हैं। कौन, आसिफ भाई है? आरिफ भाई नहीं, क्या कौन?
3: आरिफ भाई।
2: देखा मैंने, सही पहचाना। आरिफ भाई कैसे हैं, ठीक ठाक हैं? मैं कह रही थी आरिफ भाई हैं, शरीफ सर भाई कहते नहीं आरिफ भाई नहीं, मैंने कहा नहीं आरिफ भाई हैं।
3: कोई मसला नहीं है
2: भाई, ये मस्त मौला आदमी है, कहता कोई मसला ही नहीं किसी बात का, जिंदगी जैसी चल रही है चलने दो। अच्छा आरिफ भाई ये बताएं इस वक्त कौन से एरिया में? इस वक्त कौन से एरिया में हैं?
0: कहाँ घूम रहे हैं?
3: के साइड में
0: हो। ओ, क्या हाल है?
2: इतना दूर।
0: वेदर क्या कह रहा है वहाँ का इस वक्त, कुछ है इम्कान बादल दिखने शुरू हुए?
3: नहीं, एकदम क्लियर,
2: धूप।
0: सफा को जरूरत है उसकी।
2: आए, हाए, हाए।
0: थोड़ी सी भेज दी है मैसेज के जरिए।
2: जो सरवर भाई ने जो अन्नी पाई हुई है ना यहाँ पे स्टूडियो में, तो उसको आकर देखे, जरा देखे 12-13 का टेम्परेचर रखकर आदमी मुझे कह रहा है कि एस्किमो भी ना बनो, मेरे तो हाथ पांव जम जाते हैं।
3: 40-41 का दिखा रहा है।
0: अच्छा चलिए अच्छी बात है भाई, इंशाल्लाह खैर होगी। तो अरे भाई गेम खेलने के लिए रेडी?
3: रेडी।
0: चलिए तो 964 से 954 जाना है।
3: 964 से 954।
0: आई वाह।
3: इसमें एक काम कर सकते हैं आप, 900 याद रखो, मैं 64 से 54 आ
0: जाऊंगा। आए है, आप एक काम करिए, मुझे फॉरन ट्रांसफर कर दीजिए जरा सा, मैं लंच कर लेता हूँ, आप फिर कल देखिए।
3: मुश्किल नहीं है, मेरा अभी
0: प्राइज
3: मनी बाकी है, उसमें से आप काट लीजिए।
0: अरे वो तो फिर इतने दिन भूखा रखवाओगे? इतने दिन भूखा रखवाओगे यार, ऐसे किए क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। चलिए तो 964
3: से कुछ अपडेट नहीं आ रहा है, मैंने भी छोड़ दिया।
0: नहीं,
3: मिलना होगा, मिल जाएगा
0: इंशाल्लाह, इंशाल्लाह इंशाल्लाह, उम्मीद पे दुनिया कायम है और मिलेगा जरूर भाई।
2: इन्होंने सोचा आपको लालच देंगे तो जल्दी आ जाएगा। मार्केट से सारा माल क्रेडिट में उठाऊंगा।
3: अरे
0: मेरा भाई कैसा, अरे भाई पे पैसा ही पैसा
2: भाई। चलिए तो अब शुरू, यही तो गड़बड़ है, ऐसे तो दोस्त नहीं होने चाहिए।
0: 964 से 954, ठीक है,
2: 900
0: रेडी।
3: एक बार आप बोलो
0: 964 से। अरे हाँ मेरा टेस्ट और ले लो आप, मैं तो सबको बीट कर दूंगा। रेडी हैं?
3: रेडी
0: नहीं हूँ,
2: पता नहीं क्या कहा, कुछ तो कहा।
3: नहीं मैंने बोला कि मैं रेडी हूँ।
0: अच्छा मैंने कहा शायद पाँव के नीचे रोड़ी वोड़ी आगे करे, रोड़ी वोड़ी रोड़ी। चलिए ठीक है। अच्छे यार मजाक समझते हैं। तो चलिए भाई आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: 964 965 966 969 970 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969 969
0: वैसे करना तो 54 तक था, करा भी अच्छा, खेला भी अच्छा, क्लियर था और आपने किया 8 सेकंड में.
2: नॉट बैड,
0: नॉट बैड.
2: मुझे तो 8 मिनट में भी ना हो सके.
0: 8 सेकंड में किया आरिफ भाई ने. बहुत बढ़िया खेले भाई आरिफ भाई, बहुत बढ़िया. और बहुत बढ़िया आपकी बातें, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी. ओके भाई, अल्लाह हाफिज. अल्लाह हाफिज. आप भी खुश रहिए भाई. थैंक यू सो मच. थैंक यू
2: सरवर भाई. वैसे एक बात तो बताओ, आपस की बात है.
0: हाँ,
2: ये साबुन डिटर्जेंट, कपड़े धोने वाले डिटर्जेंट की खुशबू सिर्फ मुझे आ रही है या ये मुझे जुम्मे की याद आ रही है कि जो है ना ऐसा लगे जुम्मा, मतलब जुम्मे के दिन कपड़े धोए जाते।

0: आते ना, तो मैं कह रही हूँ मुझे शायद जुम्मा कुछ पास आता हुआ नजर आ रहा है कि क्या है, कपड़े धुलने की स्मेल आ रही है भाई, तो क्या हो रहा है?
1: हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
2: वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह
1: जी, कैसे हैं और कौन है हमारे साथ?
0: वरहमतुल्लाह। कौन है हमारे साथ? नहीं, वो तो हम है जो FM 107 के साथ है, वो कौन है?
2: हम भी फैमिली है ना, 107 की हम फैमिली है ना।
0: ये तो है, लेकिन जैसे मेरा नाम फैमिली मेंबर का नाम होता है ना सफा, फिर फैमिली मेंबर का नाम होता है सर्वर, फिर दूसरे तीसरे और आ जाते हैं बाकी सब, तो नाम नाम
2: सफा मैडम, सर्वर भाई, मुदस्सिर भाई वगैरह वगैरह।
0: मुदस्सिर भाई, मुदस्सिर भाई वगैरह वगैरह। मुदस्सिर भाई, ये तो अच्छा ना हुआ, मतलब ये क्या बात हुई वगैरह वगैरह, मुदस्सिर भाई के साथ वगैरह वगैरह अच्छा नहीं लगता ना।
2: सिर्फ मजाक सरवर भाई कर सकते हैं, हम भी कर सकते हैं।
0: हाय, दिल पे ले ली भाई ने बात।
1: मुदस्सिर भाई के साथ सिर्फ सरवर वरवर अच्छा लगता है या वगैरह वगैरह अच्छे नहीं लगते, और वो भी जब ये खाने वाने का टाइम हो।
2: खैर खाने के तो आप बात की सरवर भाई, मेरा दांत में बहुत पेन है कल से।
1: आए ये क्या हो गया?
2: इन्फेक्शन है सरोर भाई, वो पता नहीं दो दिन से पेन में इन्फेक्शन, बिलीव मी बहुत ज्यादा दर्द है कसम से।
1: अल्लाह ताला भाई सेहत दे। तो आपने दिखा लिया मतलब डॉक्टर वगैरह को?
2: नहीं अभी फार्मेसी के पास गया था, मेरे पास वो हेल्थ कार्ड नहीं है इसलिए वो कुछ दवाई वगैरह नहीं दे रहा है।
1: अल्लाह ताला आसानी करे भाई, इसलिए अपनी चीज़ें मुकम्मल रखनी चाहिए हमें, और वक्त पे ज़रूरत पड़ती तो नहीं होती, तो पहले से ही हमें अपनी चीज़ें जो है रेडी रखनी चाहिए, ताकि खुदा न खास्ता कोई ऐसा मसला हो रहा है तो उसमें भाई आसानी हो। अल्लाह ताला आपके लिए आसानी करे भाई, यही दुआ है हमारी। कोई घरेलू नुस्खे तो आप कर ही रहे होंगे?
2: एग्जैक्टली, अभी भी कसम से वो धान के ऊपर मैंने जो चीज़ रखी है ना,
1: लौंग का तेल,
2: जानते होंगे। Exactly,
1: सब जानता हूँ यार मैं, सारे इलाज किए मैंने अपने करे।
2: देखो एक फार्मेसी के पास मैं गया था, वो इलाज नहीं करा, फिर मैंने डॉक्टर सर्वर से बात की, वो यही बोला कि
1: आपको सेदे, जब लौंग ये रुई ना लगाए हुए हो आप, तो फिर गुनगुने पानी में नमक डाल के गरारा करिए, उससे बहुत आराम होगा इंशाल्लाह। आप देखिए,
2: जो बिलीव मी आपको पता ही है, जो लौंग है ना इसकी स्मेल या इसका पानी बहुत कटा होता है, लेकिन पेन जो टीथ का जो पेन है बिलीव मी वो मैं ऊपर रखा है, लेकिन बिल्कुल बिल्कुल इसी वो दर जाता है बस।
0: अल्लाह खैर करे।
1: चलिए तो गेम खेलेंगे, इतनी ताकत है, आपने कॉल करा है यार, बहुत बड़ी बात है, गेम खेलेंगे।
2: जब तक सरोवर भाई, जब ताकत ना हो तो फिर कॉल करने की क्या जरूरत थी?
1: जब क्या कह रहे हैं?
0: कह रहे हैं जब कॉल करने की, जब जब खेलने की ताकत नहीं तो फिर कॉल करने की जरूरत क्या थी?
1: मैंने कहा कि हमें सलाम दुआ के लिए फोन कराओ, मेरा भाई मुदस्सिर भाई क्या कहने। चलिए तो रेडी, 928 से 918
2: ओके, जब आपने स्टार्ट करना है फिर मुझे बोलो।
1: ओके देन, ओके सो आपका टाइम शुरू होता है अब।
2: ओके, 928, 927, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929, 929,
1: क्या बात है भाई, ताली बजेंगी ताली बजेंगी। मुदस्सिर भाई के मुद्दी भाई आज तकलीफ में भी आए और खेले आपके लिए।
2: जरूर भाई, ये आप लोगों की मोहब्बत है और हमारे पास एफएम 107 के अलावा हमारे पास कतर में कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि हम अपना दुख दर्द वगैरह शेयर करें। यही एक फैमिली है, यही एक एफएम 107 है। तो मैंने जो मेरा पेन इट था वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, शायद इस वजह से मेरा वो पेन भी कम हो जाएगा
1: इंशाल्लाह। हम दुआगो हैं, अल्लाह ताला आपको सेहत दे, शिफा कामिल अता फरमाए और इसमें आपके दर्द में पूरे तरीके से आराम हो जाए, हर दर्द आपका दूर हो जाए के साथ इंशाल्लाह ताला। यही हमारी दुआ है, अपना ख्याल रखिए।
2: अल्लाह आप दोनों को हमेशा सलामत और खुश रखे। बहुत शुक्रिया,
1: जज़ाकअल्लाह खैरन, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज, दवाई वगैरह ले लीजिएगा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।
0: अच्छा एक चीज़ मुझे याद आई सर, मैं मुझे अभी मदसर भाई की बात से याद आया कि कभी कभी ऐसा होता है कि हेल्थ कार्ड अगर ना भी बनाओ तो अगर बहुत ज्यादा इमरजेंसी होती है ना,
1: इमरजेंसी
0: तो आप अपना कतर आईडी कार्ड लेकर जा सकते हैं।
1: बिल्कुल बिल्कुल
0: वैलिड है तो आपको इमरजेंसी में देख लिया जाता है। तो अगर आपके पास ये सहूलत है कि आपका कतर आईडी वैलिड है तो मदसर भाई एक दफा इमरजेंसी में जाकर देखिएगा, वो जरूर ट्रीटमेंट आपको कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट करते हैं, इतनी हेल्प करते हैं।
1: अल्लाह ताला खैर आफियत का मामला करे भाई। अब बस हम कॉल नहीं ले पाएंगे, कुछ आखिरी मैसेजेस और फिर इजाजत। इतना सैड सॉन्ग ना चलाओ भाई, वो

0: प्यार याद आता है जो कभी हुआ नहीं। काशिफ फ्रॉम कश्मीर के हमारे साथ कहते हैं ये इंडस्ट्रियल एरिया में ये हालत है इस वक्त टेम्परेचर की, 48 बता रहे हैं। ओके बढ़ते हैं आगे। बिकॉज इन गल्फ नो ट्रीज, अच्छा गर्मी की जो हम बात कर रहे थे उस वाले से, भाई गल्फ की अगर आप बात करें तो बात अलग है, मगर अगर आप कतर की बात करें तो आप आज देखिएगा खुल के कि माशाल्लाह से पिछले 5 साल के अंदर कितनी पेड़ लगाए गए हैं हमारे कतर में और कितने लगाए जा रहे हैं और कितने पेड़ लगने के बाद आपको ये जो सुकून की सांस है ये लेने का मौका मिला है।
1: की बात ये क्योंकि हम लोग तो बॉर्न एंड ब्रॉट अप यहां के, तो हमें पता है जीरो से यहां तक का सफर कैसा है, कितना है, क्या है,
0: तो आप देखिएगा। और
1: जब हमें कोई कुछ बोलता है ना कि नहीं पेड़ ज्यादा नहीं, तो हमारे दिल पे ना ठौक करके लगती है, हम कहते हैं
0: इसमें भी इंशाल्लाह ताला इजाफा होने वाला है। एनी हाउ भाई, आज के जो चैंपियन हैं वो हैं सादिक भाई एंड मुदस्सिर भाई, जिन्होंने 6-6 सेकंड में अपना स्कोर किया है। बाकी सेकंड पोजीशन पे आरिफ भाई, मुदस्सिर भाई मतलब मुदस्सिर भाई ए, मुदस्सिर भाई बी वाज वन,
1: छोटा मुदस्सिर बड़ा मुदस्सिर,
0: और शहजादा भाई ने तो बेहतरीन सालन कोरमा सभी खिला दिया था हमें, और प्लेयर्स नफीस भाई हमारे साथ थे 15 सेकंड पहुंचे थे। एनी हाउ बहुत बहुत शुक्रिया, और इसी के साथ अब आप लोगों से इजाजत ले लेते हैं और आपको इस गाने के साथ छोड़े जा रहे हैं।
1: अपना ढेर सारा ख्याल रखें और सुनते रहें FM 107
0: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ सिर्फ FM 107 पर। स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड में आप सभी का इस्तकबाल है। ये एक खास प्रोग्राम है जहां पर मैं मुख्तलिफ स्पोर्ट्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के बारे में जिक्र करता हूं। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन और आज का वर्ल्ड रिकॉर्ड जो है वो विराट कोहली के नाम है। जी हां दोस्तों, कोहली आज के दौर का वो नाम है जिन्होंने क्रिकेट की दुनिया में कंसिस्टेंसी, क्लास और रिकॉर्ड ब्रेकिंग एक्सेलेंस को नए मायार तक पहुँचा दिया है। अच्छा, जब भी मॉडर्न क्रिकेट की बात होती है कोहली का नाम सबसे ऊपर लिया जाता है, स्पेशली खास तौर पर उनका ओडीआई क्रिकेट में यानी वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ सेंचुरीज जो कि उनकी लेगेसी का सबसे अहम हिस्सा है। किसी ने तस्वीर भी नहीं किया होगा जब 2011 के इंडियन क्रिकेट स्क्वाड में 2011 में इंडिया वर्ल्ड कप जीती है और उस स्क्वाड में दिल्ली का एक नौजवान बैट्समैन को शामिल किया गया था, बहुत ही यंग था और उस लड़के का नाम उस दिन विराट कोहली था, लेकिन इतनी पहचान नहीं थी जो आज दुनिया के हर कोने कोने में जहां भी क्रिकेट खेला जाता है, क्रिकेट ऑफ द क्रिकेट किसी और स्पोर्ट्स में भी, वहां के स्पोर्ट्स पर्सन भी कहते हैं कि विराट कोहली इज वन ऑफ द लीडिंग यू नो लेजेंड्स हैं इंडियन क्रिकेट और स्पोर्ट्स के हवाले से अगर बात करूं तो सब कोई कोहली को रिस्पेक्ट ही करते हैं। 2011 की बात इसलिए कहा कि 2011 के स्क्वाड में सचिन तेंदुलकर, तब तक सचिन तेंदुलकर ऑब्वियसली कि एक साल के बाद ही रिटायर्स फ्रॉम क्रिकेट और विराट कोहली सचिन का बहुत बड़ा फैन था। तो आप तसव्वुर कीजिए कि उस वक्त कोहली जहां पे शुरुआत यू नो अपना क्रिकेट की जो जर्नी है वो शुरुआत करता है और सचिन तेंदुलकर ऑलमोस्ट एंड ऑफ हिज करियर है और बचपन से ही कोहली ने सचिन को बहुत फॉलो किया है। फॉलो से मुराद है कि आइडल बना लिया था। अब बात करता हूँ विराट कोहली के ओडीआई क्रिकेट में ये जो वर्ल्ड रिकॉर्ड है। जी हाँ दोस्तों, कोहली ने ओडीआई क्रिकेट में 50 से ज्यादा सेंचुरीज बनाकर एक ऐसा रिकॉर्ड कायम किया जो पहले सिर्फ लेजेंड सचिन तेंदुलकर के नाम था। तो इमेजिन करिए कि उनका ही आइडल सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़कर कोहली अब इस रिकॉर्ड का मालिक है। सचिन ने अपने करियर में 49 ओडीआई सेंचुरी स्कोर की थी जो एक अरसे तक अनब्रेकेबल समझा जाता था, लेकिन कोहली ने इस माउंटेन को, इस पहाड़ को सिर्फ क्लाइम नहीं किया बल्कि उसे क्रॉस करके नए स्टैंडर्ड्स सेट कर दिए। उनकी बैटिंग का सबसे बड़ा फीचर जो है यही है कि वो प्रेशर सिचुएशंस में भी रन बनाने की सलाहियत रखते हैं जो उन्हें बाकी प्लेयर से मुख्तलिफ बनाता है। प्रेशर सिचुएशंस में कोहली इज नंबर वन, अगर रन चेज हो तो कोहली इज द मास्टर। और कहते हैं ना कि रन चेज किंग जो है, अगर कोई है इस क्रिकेट की दुनिया में आज के दौर में, वो है विराट कोहली। ही इज इमैक्युलेट, ही इज जस्ट टू मच। रन चेज में कोहली का मुकाबला नहीं। विराट कोहली का ओडीआई करियर 2008 में शुरू हुआ जब उन्होंने श्रीलंका के खिलाफ अपना डेब्यू किया। शुरू में वो एक प्रॉमिसिंग यंग बैट्समैन थे, लेकिन वक्त

साथ वो दुनिया के सबसे कंसिस्टेंट रन मशीन बन गए। उनकी फिटनेस, डिसिप्लिन और चेज मास्टर टेक्निक ने उन्हें किंग कोहली का टाइटल दिलाया। ये बात कर रहा था मैं, रन चेज में कोहली इज द मास्टर। और इससे पहले एमएस धोनी को कहते थे कि एमएस धोनी रन चेज अगर है, इंडिया का रन चेज कर रही है तो कोहली है, और अगर धोनी है तो मुमकिन है। लेकिन मैं ये समझता हूँ हमेशा के लिए कि सचिन तेंदुलकर, उनका जो आइडल सचिन तेंदुलकर, वाज नॉट अ ग्रेट रन चेजर, विक्ट्री चेजर, अगर टू बी वेरी प्रिसाइज ओवर हियर, विक्ट्री चेजर। तो ओडीआई क्रिकेट में उनकी सेंचुरी सिर्फ नंबर्स नहीं है, बल्कि हर सेंचुरी एक स्टोरी, एक कहानी है। कभी इंडिया को मुश्किल सिचुएशन से निकालना, कभी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग अटैक्स के खिलाफ डोमिनेशन दिखाना, इसके पीछे ना सिर्फ कहानी है बल्कि इसके पीछे कोहलीज स्ट्रगल फॉर एक्सेलेंस, उस बात को भी हमें मद्देनजर रखना पड़ेगा कि हाउ ही मैनेज 50+ crores, हाउ ही मैनेज 50+ centuries इन ODI फॉर्मेट में। कोहली का रिकॉर्ड सिर्फ क्वांटिटी का नहीं, क्वालिटी का भी है। दोस्तों, कोहली ने अपनी ज्यादातर सेंचुरी सक्सेसफुल रन चेजेस में बनाई हैं। ये याद रखिएगा, इसी बात पर मैं तवज्जो मरकूज कर रहा हूं कि रन चेज में सेंचुरी स्कोर करना इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। आप प्रेशर में होते हैं, आप दबाव में होते हैं, बॉलर्स, टॉप बॉलर्स को हमको खेलना होता है, और उन्हीं बॉलर्स को फेस करते हुए आपको सेंचुरी बना रही है, और सेंचुरी के साथ साथ टीम को जितवानी भी है, ये थोड़ा सा हजम नहीं होता। लेकिन कोहली ने प्रूव किया कि दैट इज पॉसिबल, प्रोवाइडेड यू हैव दैट नैक ऑफ विनिंग एंड द विनिंग मेंटालिटी आपके दिमाग में है, अगर आपको टीम को जितानी है, साथ साथ आपकी सेंचुरीज भी हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वो तो सोने पे सुहागा वाली बात है, यू नो, आइसिंग ऑन द केक वाली बात है। तो कोहली ने ऐसा ही किया है, हर मैच में जिताने के बाद सेंचुरीज भी कंप्लीट यानी मुकम्मल करने के बाद, यू नो, कोहली प्रूव्ड दैट ही इज अ कंप्लीट बैट्समैन। उनको पता होता है कि ही हैज टू डिलीवर एंड ही हैज टू कंप्लीट द टास्क। कोहली इज दिस डेफिनेशन ऑफ, मेरे लिए अगर कोहली को डिफाइन करना होगा तो मैं ऐसे ही कहूंगा, ये उनकी मेंटल स्ट्रेंथ और मैच अवेयरनेस को शो करता है। और वो अक्सर सिंगल्स और डबल्स के जरिए इनिंग्स को बिल्ड करते हैं, और जब जरूरत हो तो बाउंड्री से गेम को फिनिश कर देते हैं। दिस इज विराट कोहली। आज भी विराट कोहली इज सो रेलिवेंट इन इंडियन क्रिकेट। हालांकि टेस्ट क्रिकेट से उन्होंने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया था, आज भी ODI क्रिकेट में विराट कोहली इज अ लेजेंड। और देखिए, अभी हाल ही में इंडिया में जो IPL क्रिकेट हुआ था, उसमें कोहली का एक अहम किरदार था टू मेक हिज टीम चैंपियन बैंगलोर को चैंपियन बनाने में कोहली का एक बहुत बड़ा रोल रहा है, और हर मैच में मुसलसल उसने स्कोर की। एंड इससे साबित होता है कि कंसिस्टेंसी इस एज में भी आकर कोहली इज सो परफेक्ट, इज सो कंसिस्टेंट। सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड ब्रेक करना दोस्तों सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन नहीं था। मैं ये नहीं कहूंगा कि सचिन का रिकॉर्ड तोड़ने में ही उनको एक ग्लोरीफाई किया गया, ऐसा कुछ नहीं है। विराट के जगह पे कोई और भी होता वो भी कर ही लेता। हाँ, इस शर्त पर कि वो बहुत ही टैलेंटेड बैट्समैन हो और बहुत ही फोकस्ड बैट्समैन हो। लेकिन यहाँ पर जो स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन, मैंने यूं क्यों कहा कि ये स्टैटिस्टिकल माइलस्टोन नहीं था, इसलिए कि क्रिकेट की हिस्ट्री में ये एक सिंबॉलिक मोमेंट था। मेरे हिसाब से आई फील दैट इट वॉज अ सिम्बॉलिक मोमेंट। सचिन को कहा जाता था कि एक इंडियन क्रिकेट के लिए एक तोहफा था। सचिन के 1989 में when he started his career against Pakistan in Pakistan, तो सबने कहा कि ये लड़का जो है आगे जाकर धूम मचाएगा, और किया भी। तो सचिन को इंडियन क्रिकेट का एक गिफ्ट माना जाता था उस टाइम में, 1989 में। और कोहली का उनका रिकॉर्ड तोड़ना इस बात का सबूत है कि मॉडर्न क्रिकेट में नए हीरोज का राइज जो है वो पॉसिबल है। आप समझ रहे हैं इस बात को। लेकिन इस कंपैरिजन के बावजूद दोनों खिलाड़ियों ने अपनी अपनी एरर्स के बेस्ट परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सचिन ने फाउंडेशन रखी है और विराट कोहली ने उसे नए लेवल तक ले गया। माजी में एक प्रोग्राम मैंने किया था, होस्ट किया था उस पॉडकास्ट में, वहां पर मैंने कंपेयर तो नहीं बल्कि इन दोनों क्रिकेटर्स के सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज के बारे में मैंने जिक्र किया था। और दोनों ही उस मकाम पर हैं, सचिन जब थे उस मकाम पर, उस लेवल पर, तो उन्होंने रन पर रन, रन भर भर के रन बनाया। और यहाँ पर विराट कोहली ने भी आज भी इज अनस्टॉपेबल। कहने से मुराद ये है कि मैंने अब कहा कि 2011 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब विराट कोहली को इंक्लूड किया गया था, 2011 की वर्ल्ड कप स्क्वाड में जब विराट कोहली को रखा गया, तो विराट कोहली ऐसे

मतलब सरप्राइजिंगली देखते थे सचिन को बैट करते हुए, क्योंकि वो उनका आइडल था। और एक दिन उन्हें क्या पता था कि इन्हीं आइडल को फॉलो करते करते वो आज एक मारूफ बल्लेबाज बन जाएंगे, वन ऑफ द लीडिंग लेजेंड्स बन जाएंगे और साथ ही साथ सचिन का ही रिकॉर्ड तोड़ देगा। तो ये मुमकिन हुआ है। तो दोस्तों, विराट कोहली की ओडीआई सेंचुरीज में एक और इंटरेस्टिंग चीज उनका स्ट्राइक रेट और कन्वर्शन रेट है। वो अक्सर हाफ सेंचुरी को सेंचुरी में कन्वर्ट करने के लिए मशहूर हैं। जब वो 50 रन तक पहुंच जाते हैं तो उनका कंसंट्रेशन और इंटेंसिटी डबल हो जाती है और इसी वजह से उन्हें चेज मास्टर और रन मशीन कहा जाता है। उनकी सेंचुरी सिर्फ इंडिया के लिए नहीं बल्कि वर्ल्ड क्रिकेट के लिए एक बेंचमार्क बन चुकी है। ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, हर टॉप टीम के खिलाफ कोहली ने सेंचुरी स्कोर की है। This is a fact, this is a statistics that proves his, you know, elegance, that proves his uniqueness. और ये उनकी adaptability और technique का proof है। हर condition में perform करना, हर pitch पर run बनाना और हर bowling attack को handle करना उनकी greatness को define करता है। यहाँ दोस्तों, विराट कोहली नाम ही काफी है। Fitness भी एक फैक्टर है। पिछले हफ्ते इसी प्रोग्राम में मैंने एक जिक्र किया था कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है। मैंने फेडरर के बारे में बात किया कि टैलेंट होना जरूरी नहीं है कि आप ग्रेटनेस के लेवल तक पहुंच सकते हैं, कोई गारंटी नहीं है। टैलेंट के साथ साथ यू नीड दैट फिटनेस, यू नीड दैट मेंटालिटी, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड एंड अ फोकस्ड ध्यान। ध्यान ये होना चाहिए कि आपको क्रीज पर जाकर, टेनिस कोर्ट पर जाकर, फुटबॉल फील्ड पर जाकर आपको गोल करना है। परफॉर्मेंस के लेवल को हर मैच में, हर लेवल पर यू हैव टू इंक्रीज दैट लेवल। और यही बात हर बड़े यू नो सुपरस्टार खिलाड़ी के साथ रहा है, हर टॉप परफॉर्मर्स के साथ रहा है। मैं तो अभी स्पोर्ट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, स्पोर्ट्स के बाहर भी अगर आप देखें जितने भी परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो आर्ट में हो, फिल्म में हो, कहीं पर भी हो, देखिएगा कि लेवल को जब तक आप इम्प्रूव नहीं करते हैं आप स्टक हो जाते हैं उस जगह पर। यू हैव टू इम्प्रूव योर लेवल, चाहे आप जर्नलिस्ट हो, चाहे आप यू नो यू आर अ कंपोजर, आपके लेवल को इम्प्रूव करना है, आपको एनालाइज, री एनालाइज, यू नो री इन्वेंट करने की बात है। तो विराट कोहली इज वन ऑफ द ब्राइटेस्ट एग्जाम्पल। जस्ट लाइक टेनिस की बात की थी मैंने, अबाउट रॉजर फेडरर, अबाउट रफाल नडाल, इन लोगों के बारे में मैंने जब जिक्र किया था कि रीडिफाइन करने की जो सलाहियत है वो हर एक में नहीं है। हर कोई कहता है कि सक्सेस तो मिल ही गया है, आप चुप बैठ जाते हैं और हम कमाई कर लेते हैं। लेकिन विराट कोहली जैसे खिलाड़ी, सचिन तेंदुलकर जैसे खिलाड़ी, ये हर लेवल को इम्प्रूव किया है। यू नो दे हैव इम्प्रूव देयर ओन वर्शंस एंड दैट इज व्हाट इज द सक्सेस की जो रीजन रहा है, दैट इज द रीजन कि आज वो महान मारूफ बल्लेबाजों में यू नो शुमार होते हैं। और यहाँ पे फिटनेस की बात जो मैंने की, फिटनेस भी कोहली की सक्सेस का बहुत बड़ा एक फैक्टर है। कोहली ने इंडियन क्रिकेट में फिटनेस रेवोल्यूशन स्टार्ट किया। उनका डाइट, ट्रेनिंग और लाइफस्टाइल डिसिप्लिन उन्हें लॉन्ग करियर सस्टेन करने में मदद देता है और इसी फिटनेस की वजह से वो प्रेशर सिचुएशंस में भी सेम इंटेंसिटी के साथ खेलते हैं, थकते नहीं है। आपने देखा होगा कोहली को बैट करते हुए, थकते नहीं है। इसके राज ये है कि यू हैव टू मेंटेन दैट लेवल ऑफ फिटनेस। इसके पीछे बहुत स्ट्रगल है दोस्तों। ऐसा नहीं है कि कोहली साहब आज उस मसनद में बैठे हुए हैं जहां पर आई मीन ऑब्वियसली ही हैज अर्नड अ लॉट। अगर पैसों की बात करें, फॉर्च्यून की बात करें, रिचनेस की बात करें, वेल्थ की बात करें, इसके पीछे बहुत मेहनत रहा है। ही हैज वर्कड हार्ड और ये हार्ड वर्क ही तो काम देता है। आई मीन शॉर्टकट मेथड तो नहीं है दोस्तों। विराट कोहली का ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड आज के नौजवान क्रिकेटर्स के लिए इंस्पिरेशन है। वो मुतासिर होते हैं कोहली को देखकर कि मैं भी कोहली बनूंगा, मैं भी यू नो इनके जैसा बैटिंग करूंगा। लेकिन दोस्तों यहां पर यह कि कॉपी बुक करने से बेहतर यह है कि आप उनके स्टाइल को फॉलो करें और इम्प्रोवाइज करें। कतर में भी बहुत से ऐसे पेरेंट्स हैं जो समझते हैं कि अपने यू नो बच्चों को क्रिकेट सिखाएं। यहाँ पे बहुत पॉपुलर है क्रिकेट कतर में। इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, नेपाल जैसे तमाम फैमिलीज हैं वो अपने बच्चों को क्रिकेट ही सिखाते हैं बिकॉज क्रिकेट इज अ पैशनेट गेम फॉर द देसी लोग। सो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चों को क्रिकेट सिखा रहे हैं और आपका बच्चा जो है वो कोहली को फॉलो करता है, लेट देम नॉट कॉपी कोहली, शॉट बाय शॉट कॉपी ना करें, उसकी इंटेंसिटी को कॉपी करें, उसके फिटनेस लेवल को कॉपी करें, उसके जो मैकेनिज्म है, जो सक्सेस के जो रेशियो है उसको कॉपी करें।

ना कि उनके शॉट को कॉपी करे, अब उनके स्टाइल को कॉपी करे कि कैसे वो बैठते हैं, कैसे वो बल्लेबाजी करते हैं, उनके जो यू नो जो स्ट्राइक लेते हैं, जिस तरह से वो आते हैं, वो सब छोड़ दीजिए। जैसे मैंने कहा, इंटेंसिटी को कॉपी करिए, उनके एग्जाम्पल जो है उन आपके सामने है वो बोलिए, आप लोग आपके बच्चों को बोलिए कि ये कॉपी करो, इनके डेडिकेशन को कॉपी करें, देन ओनली यू विल गेट द सक्सेस। आई मीन आपके जितने भी आई मीन जो अपने बच्चों को डालते हैं क्रिकेट कोचिंग कैंप्स में, सक्सेस तभी आपके पास मुमकिन है इफ़ यू फॉलो दिस लीडर्स, दिस आइडल्स ऑफ वर्ल्ड क्रिकेट, और कोहली उनमें से एक है। और ये जो ओडीआई सेंचुरी रिकॉर्ड के बारे में मैं बात कर रहा था कि ये दिखाता है कि टैलेंट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है डिसिप्लिन, हंगर और मेंटल स्ट्रेंथ। और यही मैं समझता हूँ कि आप लोग, आपके जो बच्चे हैं, आप लोगों के बच्चों को जो क्रिकेट सिखाते हैं आप लोग, उनको यही तालीम देनी चाहिए, तरबियत यही होनी चाहिए। हर सेंचुरी के पीछे कोहली का जो फोकस, प्रिपरेशन और विनिंग मेंटालिटी हमें जो देखने को मिला था, इसी चीज़ को कॉपी करने के बोलिए, आप देखिएगा सक्सेस ऑटोमेटिकली चलते चलते आपके दरवाजे पर पहुंच जाए। दोस्तों, आज विराट कोहली सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं बल्कि एक बेंचमार्क हैं। उनका ओडीआई सेंचुरीज का वर्ल्ड रिकॉर्ड क्रिकेट हिस्ट्री का वो हिस्सा है जो हमेशा याद रखा जाएगा। जब भी फ्यूचर में बैटिंग ग्रेटनेस की बात होगी, कोहली का नाम सचिन तेंदुलकर के साथ सबसे पहले लिया जाएगा। यहाँ उनका रिकॉर्ड सिर्फ तोड़ने के लिए ही बल्कि समझने के लिए कि कैसे एक खिलाड़ी अपनी कंसिस्टेंसी, पैशन और डिसिप्लिन से दुनिया के सबसे बड़े रिकॉर्ड्स में से एक अपना नाम लिखवा सकता है। तो ये आज की जो बात थी अबाउट वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ विराट कोहली इन ओडीआई, सबसे ज़्यादा सेंचुरी बनाने वाला यू नो वाहिद बल्लेबाज विराट कोहली के बारे में आज मैंने जिक्र किया। तो विराट कोहली लिव्स प्लेज बाई एग्जाम्पल। आप भी यानी आप अपने बच्चों से भी ये तालीम दे सकते हैं, ये तरबियत दे सकते हैं कि फॉलो विराट कोहली, नॉट हिज स्टाइल बट हिज डेडिकेशन, हिज फोकस, हिज मेंटालिटी एंड हिज फिटनेस, सक्सेस विल कम। अभी हम बात करेंगे दुनिया के जितने भी तमाम स्पोर्ट्स हैं, बाकी स्पोर्ट्स के बारे में भी तो बात करनी चाहिए ना दोस्तों, जैसे कि एथलेटिक्स हैं, जैसे कि बाकी जितने भी स्पोर्ट्स डिसिप्लिन हैं उनमें भी क्या क्या रिकॉर्ड्स हैं वो भी देख लेते हैं। ये दोस्तों एथलेटिक्स के बारे में बात हो रही है, तो और एथलेटिक्स दुनिया का सबसे पुराना और ट्रेडिशनल स्पोर्ट्स कैटेगरी है जहाँ स्पीड, एंड्योरेंस और स्ट्रेंथ का इम्तिहान होता है। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट से लेकर मैराथन तक हर इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। एथलेटिक्स हर चीज़ में एथलेटिक्स है, दौड़ भाग कूदना गिरना, चाहे वह फुटबॉल ले लीजिए, क्रिकेट ले लीजिए, किसी भी स्पोर्ट के लिए एथलेटिक्स कहते हैं कि एथलेटिक्स इज द मदर ऑफ ऑल स्पोर्ट्स। इसमें 100 मीटर स्प्रिंट से लेकर मैराथन तक हर इवेंट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स बनाए जाते हैं। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, उसैन बोल्ट का नाम आप लोगों ने सुना है। उसैन बोल्ट का 100 मीटर और 200 मीटर स्प्रिंट रिकॉर्ड एथलेटिक्स हिस्ट्री का सबसे मशहूर रिकॉर्ड माना जाता है। उसैन बोल्ट ने 100 मीटर सिर्फ 9.58 सेकंड्स में कंप्लीट किया, जो आज तक कोई ब्रेक नहीं कर सका। इट्स ही इज द फास्टेस्ट मैन ऑन द अर्थ। एथलेटिक्स में इस स्प्रिंट के अलावा लॉन्ग जंप, हाई जंप और जैवलिन थ्रो जैसे इवेंट्स भी हैं जहां एथलीट्स अपनी फिजिकल लिमिट्स क्रॉस करते हैं। मैराथन में इलियुड किपचोगे ने भी एक्स्ट्रॉर्डिनरी रिकॉर्ड्स बनाए हैं। और एथलेटिक्स के वर्ल्ड रिकॉर्ड्स टाइम के साथ बहुत मुश्किल होते जा रहे हैं, क्योंकि ट्रेनिंग, साइंस और न्यूट्रिशन इम्प्रूव हो चुके हैं। हर नया रिकॉर्ड एक नए ह्यूमन पोटेंशियल को रिप्रेजेंट करता है, और ये स्पोर्ट दुनिया भर में सबसे कॉम्पिटिटिव माना जाता है। दैट्स एथलेटिक्स इज ऑल अबाउट। वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स, ओलंपिक में एथलेटिक्स लोग बहुत इंटरेस्ट के साथ देखते हैं। Now let's move on to the swimming. जी हाँ दोस्तों, swimming बड़ा ही you know I would say fun sport के अगर लिहाज से देखूँ तो बड़ा ही fun sport है, क्योंकि water sports और बच्चे बड़े पसंद भी करते हैं इस swimming को। स्विमिंग में भी काफ़ी वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हम लोगों ने नोट किया है, देखा है। दोस्तों स्विमिंग एक ऐसा स्पोर्ट है जहां पानी के अंदर स्पीड, टेक्निक और स्टैमिना का टेस्ट होता है। माइकल फेल्प्स को स्विमिंग का ग्रेटेस्ट एथलीट माना जाता है, जिन्होंने ओलंपिक हिस्ट्री में सबसे ज्यादा मेडल्स जीते। यहाँ दोस्तों उन्होंने 23 गोल्ड मेडल्स जीत कर एक अनब्रेकेबल रिकॉर्ड बना दिया है। स्विमिंग में फ्री स्टाइल, बटरफ्लाई, बैक स्ट्रोक और ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट्स होते हैं। 100 मीटर और 200 मीटर फ्रीस्टाइल रिकॉर्ड अक्सर नए स्विमर्स के दरमियान ब्रेक होते रहते हैं, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स लंबे अरसे तक कायम रहते हैं। मसलन सेलेब ड्रेसल और

केटी लेडिस की जैसे स्विमर्स ने मॉडर्न एरा में नए वो रिकॉर्ड्स बनाए हैं। स्विमिंग में मिलीसेकंड्स का फर्क भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आई मीन ये आप लोगों को पता होगा। ट्रेनिंग, अंडरवाटर टेक्निक और ब्रीदिंग कंट्रोल स्विमर्स को चैंपियन बनाते हैं। लोग ये कहते हैं कि स्विमिंग पूल में कूद जाओ और स्विमर बन जाओ, इतना आसान नहीं है। इट्स नॉट अ डकलिंग टू द वॉटर, कहने से मतलब ये है कि इट्स नॉट ईजी। और ह्यूमन स्पीसीज को जो है ये एक सर्वाइवल मोड रहा है हमेशा से, सिंस द टाइम ह्यूमन हैव लर्न। इंसान जब यू नो सब कुछ सीखा, उसके साथ साथ पानी में तैरना भी, और तैराकी लोग जो भी हैं, जो प्रोफेशनल तैराकी हैं, वो लोग भी यू नो हाईएस्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस के जरिए हैव प्रूव दैट स्विमिंग कैन बी अ साइंटिफिक स्पोर्ट, एंड स्विमिंग इनफैक्ट इज अ साइंटिफिक स्पोर्ट। और जैसे मैंने कहा कि पानी पे यू नो कूदना, पानी पे जाकर, पानी पे स्विमिंग पूल पर आप कूद जाते हैं, आपको लगता है कि आई नो स्विमिंग, दो चार हाथ आपने घुमा दिए, आप लोगों को लगता है कि स्विमिंग इज ईजी। स्विमिंग इज नॉट ईजी। और बेसिक चीज़ जो पहली सिखाई जाती है वो है हाउ टू ब्रीद इन साइड द वॉटर और हाउ टू रिलीज दैट यू नो ब्रीद आउट। जो टेक्निक है, कैसे आप अपने इसको टेक्निक को बरकरार रखेंगे, तो स्विमिंग कोचेस बताते हैं। तो स्विमिंग बहुत ही साइंटिफिक है, बोथ फॉर द मेंटल यू नो मेंटली अगर देखें, अगर फिजिकली देखें, स्विमिंग रियली मोटिवेट्स योर माइंड एंड बॉडी। नाउ मूविंग ऑन टू पोलो। यहाँ दोस्तों पोलो एक रॉयल और एलिट स्पोर्ट माना जाता है जो घोड़ों पर खेला जाता है। यू नो व्हेन यू रन एंड यू हिट अ स्ट्राइक अ बॉल। इसका ओरिजिन सेंट्रल एशिया और पर्शिया से जुड़ा हुआ है, लेकिन आज ये अर्जेंटीना, बर्तानिया और मिडल ईस्ट में बहुत पॉपुलर है। इंडिया में भी पोलो इज वेरी फेमस। इंडिया में राजा बादशाह जितने भी थे पहले, महाराज ये सब जितने भी उनके डायनेस्टीज थे, वो पोलो के शौकीन थे। पोलो खेलना एक शान वाली बात, एक फख्र वाली बात होती थी। पोलो अगर नहीं खेला तो आप कुछ भी नहीं, किया आप बादशाह ही नहीं है, आप राजा नहीं है, महाराजा नहीं है, ऐसा आई मीन इंडिया देसी जो पहले के स्ट्रक्चर थे वहाँ पर समझा जाता था। पोलो आज भी इज अलाइव एंड किकिंग एक्चुअली। और मैंने एक जगह पर पढ़ा था कि पोलो की ओरिजिन इंडिया में अगर देखा जाए, इंडिया में अगर ओरिजिन देखे तो मणिपुर में हुआ था। कई ऐसे हिस्ट्री हैं, कैसे ऐसे स्टोरी हैं। और पोलो में वर्ल्ड रिकॉर्ड ज़्यादातर टीम अचीवमेंट्स और फास्टेस्ट मैचेस या हाईएस्ट हैंडीकैप प्लेयर्स से रिलेटेड होते हैं। अर्जेंटीना को वर्ल्ड पोलो का पावर हाउस माना जाता है, जहां अडोल्फो कैम्बियासो जैसे लेजेंड्स ने हिस्ट्री बनाई। पोलो का सबसे बड़ा रिकॉर्ड ये है कि कुछ खिलाड़ी ने 10 गोल्स हैंडीकैप लेवल अचीव किया, जो एक्सट्रीमली रेयर है। इस स्पोर्ट में घोड़ों की ट्रेनिंग भी प्लेयर्स जितनी इंपॉर्टेंट होती है। फास्टेस्ट गोल्स और लॉन्गेस्ट मैचेस भी पोलो रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। पोलो बहुत एक्सपेंसिव स्पोर्ट है, इसीलिए इसमें पार्टिसिपेशन लिमिटेड होती है, लेकिन इसकी लीगेसी बहुत स्ट्रांग है। जैसे मैंने बताया आप लोगों को कि पहले से बहुत पहले लोग शौकीन थे इस चीज को करने। यह स्पोर्ट स्किल, कोऑर्डिनेशन और हॉर्स राइडिंग मास्टरी का कॉम्बिनेशन है जो इसे यूनिक बनाता है। अभी हम बात करेंगे वॉलीबॉल के बारे में। वॉलीबॉल जी हाँ काफी फास्ट है, एक फास्ट पेस्ड टीम स्पोर्ट है जो इंडोर और बीच दोनों फॉर्मेट्स में खेला जाता है। इसमें वर्ल्ड रिकॉर्ड्स जो है स्पाइक्स, सर्व्स, ब्लॉक्स और लॉन्गेस्ट मैचेस से रिलेटेड होते हैं। कतर की बीच वॉलीबॉल टीम भी काफी मजबूत है। आपने सुना होगा शरीफ यूनुस के बारे में, तो वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स रह चुके हैं एंड वर्ल्ड नंबर वन भी। ब्राजील और यूएसए वॉलीबॉल की सबसे स्ट्रांग टीमें मानी जाती हैं। विल्फ्रेडो लियोन ने फास्टेस्ट स्पाइक सर्व का रिकॉर्ड बनाया, जो 130 किलोमीटर पर आर से भी ज्यादा स्पीड पर हिट होता है। वॉलीबॉल में लॉन्गेस्ट रैली और हाईएस्ट नंबर ऑफ कंसेक्यूटिव विंस भी रिकॉर्ड्स का हिस्सा हैं। बीच वॉलीबॉल में केरी वॉल्श, जेनिंग्स और मिस्टी मे ट्रेनर ने ओलंपिक डोमिनेशन के जरिए हिस्ट्री लिखी। और इंडोर वॉलीबॉल में हाइट, जंपिंग एबिलिटी और टीम वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। वर्ल्ड रिकॉर्ड्स ये शो करते हैं कि कैसे कोऑर्डिनेशन और टाइमिंग से गेम का रिजल्ट चेंज हो सकता है। दोस्तों मॉडर्न वॉलीबॉल में स्पोर्ट्स साइंस और एनालिटिक्स ने परफॉर्मेंस को नए लेवल पर पहुंचा दिया है, और ये स्पोर्ट दुनिया भर में बहुत पॉपुलर और कॉम्पिटिटिव है। अब चलते हैं बॉक्सिंग रिंग पर, देखते हैं क्या होता है। बॉक्सिंग एक कॉम्बैट स्पोर्ट है, जहां स्ट्रेंथ, स्ट्रेटजी और एंड्योरेंस का अल्टीमेट टेस्ट होता है। इस स्पोर्ट में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, नॉकआउट विंस, अनडिफिटेड स्ट्रीक्स और फास्टेस्ट नॉकआउट्स से रिलेटेड होते हैं। हम मोहम्मद अली को कौन नहीं जानता?

था। मोहम्मद अली को बॉक्सिंग का लेजेंड माना जाता है, लेकिन मॉडर्न एरा में फ्लॉयड मेवेदर जूनियर का 50 अगेंस्ट 0 अनडिफिटेड रिकॉर्ड सबसे आइकॉनिक है। मेवेदर

0: ही प्रूफ होते हैं। बॉक्सर्स अपनी लाइफ डिसिप्लिन और ट्रेनिंग पर डेडिकेट करते हैं। हर पंच एक स्ट्रेटेजी होता है और हर फाइट एक साइकोलॉजिकल बैटल होती है। याद रखिएगा, बॉक्सिंग हिस्ट्री में रिकॉर्ड्स हमेशा लेजेंड्स के नाम से ही जुड़े रहते हैं। मोहम्मद अली, माइक टाइसन, मेवेदर, फलाना फलाना। नाउ मूविंग ऑन टू स्क्वॉश और ये इंडोर स्पोर्ट है। काफी काफी फिटनेस की बात करूं तो स्क्वॉश आजकल हर कोई आजमाना चाहता है, स्क्वॉश खेलना पसंद करते हैं। स्क्वॉश एक फास्ट इंडोर रैकेट स्पोर्ट है जो बहुत इंटेंस और फिजिकली डिमांडिंग होता है। इसमें प्लेयर्स छोटी सी इनक्लोज्ड कोर्ट में बॉल को वॉल से हिट करते हैं। जहांगीर खान के बारे में तो सुना ही होगा, पाकिस्तान के मारूफ स्क्वॉश खिलाड़ी। जहांगीर खान को स्क्वॉश हिस्ट्री का सबसे बड़ा लेजेंड माना जाता है, जिन्होंने 555 कंसेक्यूटिव मैचेस जीतकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया जो आज तक ब्रेक नहीं हुआ। जहांगीर खान भी पाकिस्तान के एक और ग्रेट स्क्वॉश चैंपियन है जिन्होंने मल्टीपल वर्ल्ड टाइटल जीते। दोस्तों, स्क्वॉश में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स लॉन्गेस्ट रैलीज, फास्टेस्ट शॉट्स और मोस्ट टाइटल्स से रिलेटेड होते हैं। अच्छा, मॉडर्न एरा में इजिप्ट स्क्वॉश का पावर हाउस बन चुका है, जहां अली फराग और मोहम्मद अल शोरबागी जैसे चैंपियंस डोमिनेट कर रहे हैं। स्क्वॉश में फिटनेस, रिफ्लेक्सेस और स्टैमिना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये स्पोर्ट दुनिया के मोस्ट फिजिकली डिमांडिंग गेम्स में से एक है। रिकॉर्ड्स यहाँ कंसिस्टेंसी और मेंटल टफनेस का प्रूफ होते हैं। तो दोस्तों, आज हमने जिस रिकॉर्ड्स के बारे में हमने बात की, तो मेन रिकॉर्ड वाज ऑन विराट कोहली एंड विराट कोहली का जो ये ओडीआई इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज्यादा सेंचुरी बनाने का जो रिकॉर्ड है वो आज भी अनब्रोकन है। और अनब्रोकन इसलिए है क्योंकि विराट कोहली आज भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए बेहतर वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए खेल रहे हैं और आज रिटायर नहीं किया उन्होंने अभी। अच्छा, इसके साथ साथ एक ये भी बता दूं कि कोहली के नाम और भी बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं जो मैं इस प्रोग्राम में आज मैंने नहीं बताया, लेकिन वो कभी और बताऊंगा। फास्टेस्ट प्लेयर इन हिस्ट्री टू रीच 28,000 इंटरनेशनल रन्स और इन जस्ट 624 इनिंग्स में, और उन्होंने सचिन तेंदुलकर का ही रिकॉर्ड को ब्रेक किया। देखिए, वही यू नो आइडल का रिकॉर्ड ब्रेक करने में मजा आता है। और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने ओडीआई मोस्ट ओडीआई सेंचुरीज के बारे में बताया, वो भी सचिन का रिकॉर्ड था और कोहली ने तोड़ा है। इसके साथ एक और रिकॉर्ड जो है वो है 27,000 इंटरनेशनल रन्स और ये 594 इनिंग्स में विराट कोहली ने बनाया था। और तेंदुलकर हर रिकॉर्ड तेंदुलकर पे आगे क्यों, मुझे नहीं समझ आता। एनीवे, तेंदुलकर वाज वंस जैसे कि डोमिनेटिंग बैट्समैन रहे हैं और तेंदुलकर रिकॉर्ड जो था 623 इनिंग्स में इट वाज यू नो डन एंड कोहली ने इस रिकॉर्ड को तोड़ा। कई रिकॉर्ड्स हैं, बहुत सारे रिकॉर्ड्स हैं इस प्रोग्राम में, तो बताना बड़ा ही मुश्किल है। और तो मतलब मैं छोटा छोटा मतलब शॉर्ट में यही बता रहा हूँ कि रिकॉर्ड्स बनते हैं टूटने के लिए, लेकिन कुछ रिकॉर्ड्स बन जाते हैं ना टूटने के लिए और रह जाते हैं सदियों तक। जैसे कि मैंने शुरू में बताया था सर डोनाल्ड ब्राडमैन का एक रिकॉर्ड 99.96 का बैटिंग एवरेज वाली जो बात आप लोगों से मैंने किया था, वो रिकॉर्ड आज भी बरकरार है। और वैसे ही माइकल फेल्प्स का जो रिकॉर्ड है 23 गोल्ड मेडल्स इन ओलंपिक्स, मजमूई तौर पर 23 गोल्ड मेडल्स, वो भी आज अनब्रोकन है। वैसे ही विराट कोहली का ये रिकॉर्ड कौन तोड़ेगा, इसके ऊपर एक लॉट ऑफ क्वेश्चंस हैं, लॉट ऑफ स्पेकुलेशंस है कि ये फलाना क्रिकेटर है, ये वो फलाना क्रिकेटर है, ये वो तोड़ सकते हैं, लेकिन आज भी कोई क्लियर पिक्चर नहीं दे पा रहे बिकॉज कंसिस्टेंसी, वही बात है ना, कंसिस्टेंसी किसी के पास नहीं। तो एनीवे, आज का ये प्रोग्राम यहीं पर ख़त्म करते हैं और उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शहबाज अंसारी को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
2: हेलो,
3: क्या आप बिजनेस में इंटरेस्टेड हैं? क्या हो रहा है कतर की बिजनेस में? क्या हलचल है स्टॉक मार्केट में? बिजनेस की स्ट्रेटेजी, मार्केट का हाल, करेंसी अपडेट,
2: सुनिए कतर बिजनेस न्यूज विद आरजे सरवर मिर्जा डेली लाइव विद मॉर्निंग न्यूज बुलेटिन ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।
4: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राब्ता करें,
5: आज ही राब्ता करें
4: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa
1: FM 107 टाइम चेक चेक चेक चेक टाइम चेक इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के डेढ़ यानी ये वक्त हो चला है
2: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से दी
1: हां जी तो मेरी देसी ऑडियंस क्या हाल चाल है Yes, welcome, welcome, welcome. Assalamualaikum. FM 107 सुन रहे हैं आप. मैं हूँ आपकी A4 अमीता और आप सभी का तहे दिल से इस्तकबाल है on the show Escape Room. तो कैसे जा रहा है आपका आज का दिन? क्या क्या खास हो रहा है? क्या क्या आपको लग रहा है? हाँ, please share करो 6622107 6622107 पर. Well, आज का दिन बड़ा ही खूबसूरत शुरू हुआ लेकिन आज गर्मी बड़ी है बॉस. मतलब बाहर ऐसा लग रहा था कि हाय हाय हाय क्या हो रहा है. वेल, हर किसी की ना गर्मी की समर्स की डेफिनेशन डिफरेंट होती है बट मैं एक ही चीज़ कहना चाहती हूँ कि कुछ भी हो आप कुछ भी समझें लेकिन अपने आप को हाइड्रेटेड ज़रूर रखना. ठीक है, भूल मत जाना. एंड ऑन दिस नोट, क्योंकि अब हमें आगे बढ़ना है, चैलेंजेस का दौर शुरू होने वाला है, तो आज एस्केप रूम की सिचुएशन में आप कहाँ फंसना चाहेंगे? कौन सी वो जगह होगी जहाँ से आपको जद्दोजहद करनी पड़ेगी? देखो, आज कुछ भी करो, अब जैसे बैटरी सेल होता है ना, उसके में बैटरी कई बार बचानी होती है. ऐसे हम इंसानों को भी ना अपनी बैटरी इस गर्मी के मौसम में बचानी होती है. सो लेट्स सी कि आज हम अपनी बैटरी को बचाकर कैसे अपने आप को रिचार्ज करते हैं और कैसे आज के एस्केप रूम के चैलेंज से बाहर निकलते हैं. बस एक छोटे से ब्रेक के बाद ये चैलेंज आपके सामने आएगा और हम आपको ऑब्जर्व करेंगे. ठीक है, सो नंबर नोट करें 6622107 6622107 क्योंकि इसके जरिए ही हमारी बातचीत कंटिन्यूसली चलने वाली है. और अभी के लिए ये गाना खास तौर से हमारी दोस्ती के नाम आपको मैं डेडिकेट करती हूँ. सो एंजॉय वॉल्यूम बढ़ा के एंड स्टे ट्यून्ड टू FM 107 दिल से देसी.

0: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम एट FM 107 कतर। दिल से देसी।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीब। सुनिए हदीब टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीब सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीब, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीब टू हैबिट, हदीब टू हैबिट। दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।
3: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से दी
4: Yes, and now welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी A for अमिता। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं आज के एस्केप रूम की सिचुएशन की तरफ। वेल, आज का जो माहौल है ना, थोड़ा अलग है, थोड़ा भारी है, हैवी है। क्यों? क्योंकि आज हम किसी कैद खाने में नहीं हैं, बल्कि खुद की थकान में कैद हैं। उफ, ये सिचुएशन तो अपन ने कभी सोची नहीं होगी, पर यस, अब आज ये सिचुएशन हमारे सामने आ गई है क्योंकि हमारी बैटरी हो गई है डाउन। गर्मी बहुत ज़्यादा है, काम का प्रेशर है, न जाने कौन कौन से प्रेशर है लाइफ में, और जब थकान होती है तो कई बार इसके चलते एस्केप करना बड़ा मुश्किल होता है। चलो आज की सिचुएशन, पूरा दिमाग का जोर लगा दो और आज की सिचुएशन से एस्केप ज़रूर करो, ठीक है। वेल, क्या आपको अभी भी लग रहा है कि कमरे की रोशनी थोड़ी कम हो रही है? क्योंकि आप एक कमरे में आराम कर रहे हो, आप थके हुए, बहुत ज़्यादा थके हुए। वेलकम टू द बैटरी सेल। आज आपका थकान का कैद खाना, आज उस थकान के कैद खाने ने आपको कैद कर लिया है। बोले यहाँ की जो दीवारें हैं गहरी लाल लाइट से थरथरा रही हैं, ठीक है, बिल्कुल जैसे वार्निंग सिग्नल्स नहीं आते हैं उसकी तरह, जैसे कि खतरे के लिए आगाह कर रही है। अब आपकी जो फ्लैश लाइट है वो भी धीरे धीरे मध्यम पड़ रही है, कम हो रही है। फ़ोन की बैटरी भी अब कम बची है, और सच कहूँ तो आपके पैर बिल्कुल पत्थर जैसे ना भारी हो गए। उफ, गजब थकान। आज कोई लोहे की जंजीरें नहीं हैं, लेकिन हम एक ऐसी चीज़ में फंसे हैं जो दिखती नहीं है, दैट इज़ एग्जर्शन, एग्जॉशन, यानी बहुत ज़्यादा थकान। आप सोचेंगे अमिता आज पूरी एनर्जी हमारी डाउन कर रही है, बट यही तो चैलेंज है। देखो, सामने दरवाज़ा तो है पर वहाँ लिखा है इनसफिशिएंट चार्ज। ये तभी खुलेगा जब हमारी जो एनर्जी है ना वो 100% होगी। पर यहाँ एक ट्रैप है, जितनी बार आप फ़ोन चेक करते हैं ना, लाइट्स और डिम होती जाती है। ये कमरा हमारी एक्टिविटी पर पल रहा है। निकलने के लिए हमें कुछ करना नहीं बल्कि सिर्फ होना है, क्या, चार्ज्ड। अब आपने अभी एक मैप देखने के लिए स्क्रीन ऑन किया अपने फ़ोन का, और दीवारों का रंग और भी ज़्यादा लाल हो गया क्योंकि आपके फ़ोन की बैटरी भी जा रही है। अभी कितनी अजीब बात है ना कि जब हम थके होते हैं हम सुकून के लिए फ़ोन उठाते हैं, पर वो ब्लू लाइट और माइंडलेस स्क्रोलिंग हमारी जहनी ताकत को भी निचोड़ लेती है। तो एग्जैक्टली ये चीज़ हो रही है। हमने खुद को इतना पुश किया है कि अब सिस्टम क्रैश हो रहा है। अब इस थकान के लिए, इस फ्राइड फीलिंग के लिए एक खास लफ्ज़ है। चलिए, क्लू नंबर 1 आपकी राहों में आ चुका है, ध्यान से सुने। मैं वो हूँ जो तब होता है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, ठीक है। मैं वो हूँ जो तब होता है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। और ये जो नाम है इस चीज़ का, वो टर्न आउट से मिलता जुलता है। मुझे हराने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि बिल्कुल कुछ नहीं करना होगा। बताएं मैं क्या हूँ? देखिए, कंफ्यूज ना हो, मैं आपको तीन ऑप्शन देती हूँ, इन तीनों में से कोई एक सही जवाब है तो आपके लिए ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 रन आउट, ऑप्शन नंबर 2 टर्न आउट, एंड ऑप्शन नंबर 3 बर्न आउट। क्या सही जवाब होगा? एक बार फिर से क्लू नंबर 1 मैं दोहराऊंगी आपके लिए कि मैं वो हूँ जो तब होता है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं। मेरा नाम टर्न आउट से मिलता जुलता है। मुझे हराने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं बल्कि कुछ नहीं करना होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है रन आउट, टर्न आउट, बर्न आउट। इन तीनों में से सही जवाब क्या है सोचें और अपना जवाब दें 6662107 6662107 पर अपने नाम के साथ। और फिर देखते हैं कि आज कौन है जो अपनी थकान के इस चैलेंज से बाहर निकल के पहले पड़ाव को पार कर पाता है। और फिलहाल के लिए हाड़ी संधू एंड निकिता गांधी की आवाज का ग्रेट कॉम्बिनेशन, क्या बात है। एंजॉय द सॉन्ग, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से देखो।
1: यस जनाब, वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप। मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। क्या बात है भाई, एस्केप रूम की सिचुएशन में आज तो हम किसी कैद खाने के अंदर नहीं, अपनी थकान में कैद हो गए हैं। और ये कैद खाना बड़ा डेंजरस है क्योंकि हमारी बैटरी पूरी तरह से डाउन है। ठीक है, हमारा सेलफोन जो है उसकी भी बैटरी डाउन है। अब कोशिश ये करनी है कि हमें अपने आप को, जब तक हम एस्केप ना करें तब तक अपने दिमाग को जिंदा रखना है, अपने माइंड को पूरी तरह से इस्तेमाल करना है और घबराना नहीं है। आई नो पैर भी हम नहीं उठा पा रहे, इतनी थकान हो रखी है, एक कमरे में है, हर चीज़ ऐसा लग रहा है जैसे कि यू नो एक वार्निंग दे रही है, कमरे की लाइट बंद चालू हो रही है, मतलब एक वियर्ड सिचुएशन में फंसे हैं। बिल्कुल वैसा ही जैसा कि जब हम बहुत थके होते हैं हमको महसूस हो रहा होता है कि नहीं। अब अपनी ज़हनी ताकत का इस्तेमाल करके हमें क्लू नंबर 1 सॉल्व करना है।

क्लू नंबर वन कि मैं वो हूँ जो तब होता है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं. मेरा नाम टर्नआउट से मिलता जुलता है. मुझे हराने के लिए आपको कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बल्कि कुछ करना ही नहीं है. बताओ मैं क्या हूँ. मैंने आपको ऑप्शंस दिए, रन आउट, टर्न आउट, बर्न आउट. एंड लेट मी टेल यू कि ज़्यादातर हमारे लिसनर्स लिख रहे हैं रन आउट, कुछ ने लिखा है टर्न आउट और कुछ ने लिखा है बर्न आउट. मतलब तीनों ही ऑप्शन का इस्तेमाल कर लिया. चलो अब सीधा हम सही जवाब की तरफ रुख करते हैं. मैं वो हूँ जो तब होता है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं. कौन सी चीज़ है जब आप बिना ब्रेक लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं तो होती है? दैट इज़ बर्न आउट. यानी पूरी तरह से हमारी एनर्जी बर्न हो जाती है, जल जाती है और हम थक जाते हैं, थक के चूर हो जाते हैं. सो बर्न आउट इज़ द राइट आंसर. क्या बात है, जिन्होंने भी सही जवाब दिया, भाई देखो अपनी पीठ को थपथपा लो. यस, यू डिड अ गुड जॉब. आइए ज़रा नाम देखें जिन्होंने सही जवाब देने की हमें कोशिश की है. उनके नाम है अनवर, सोहेल, रूहान ने हमें सही जवाब दिया है. और कौन है, हमारे काफ़ी सारे लिसनर्स ने कोशिश की है सही जवाब देने की, बट थोड़ा सा इधर उधर हो गए. प्रिंसन ने हमें सही जवाब दिया है. और ये जनाब है नितुराम, नितुराम ने भी बिल्कुल हमें सही जवाब दिया है. मोहम्मद ने सही जवाब दिया है. सो गुड जॉब गाइज, आपने सही जवाब देके पहला पड़ाव पार कर लिया है. अब जो लाल पल्सेस हैं थोड़ी धीमी हुई हैं, ठीक है, लगता है हम सही रास्ते पर आए हैं. जब हम इस बैटरी सेल में होते हैं ना, हम इस थकान में होते हैं, तो हमारी बॉडी में एक खास हार्मोन ढूंढने लगता है. हमारी बॉडी एक्चुअली एक खास हार्मोन ढूंढने लगती है. ये स्ट्रेस केमिकल है जो इमरजेंसी में काम आता है, पर अगर ये कभी बंद ना हो तो हमारी नींद और खुशी दोनों छीन ली जाती है. मतलब बहुत सारी चीज़ें मिक्स हो रही है अभी हमारे अंदर, क्योंकि जब थकान होती है तो सारे हार्मोन्स सब कुछ मिक्स हो जाता है. हमें समझ में नहीं आता हम कर क्या रहे हैं. इसी पर हम क्लू नंबर टू सॉल्व करेंगे. और क्लू नंबर टू बहुत आसान है, बस ध्यान से सुने, कन्फ्यूज़ नहीं होना है, ठीक है. मैं आपके सर यानी हेड, मैं आपके सर के अंदर रहता हूँ और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ. सब कहते हैं कि मुझे तेज होना चाहिए, पर इस वक्त मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है. मेरा नाम क्या है बताएं. अब इससे पहले कि आप कंफ्यूज हो, मैं आपको थोड़े से ऑप्शन दे देती हूँ. ये क्या है, आपका दिमाग है, आपका दिल है या फिर खून है? हाँ बताएं क्या है. क्लू नंबर टू, मैं आपके सर के अंदर रहता हूँ और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ. सब कहते हैं कि मुझे तेज़ होना चाहिए, पर इस वक्त मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है. तो मैं क्या हूँ, मैं आपका दिमाग हूँ, मैं आपका दिल हूँ या फिर आपका खून हूँ? सही जवाब दीजिए 6662107, 6662107 पर अपने नाम के साथ और इस दूसरे पड़ाव को भी पार कीजिए. और फिलहाल वक्त एक छोटे से म्यूजिकल ब्रेक के बाद आपकी बड़ी मुलाकात होगी. सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: हाँ जनाब, एस्केप रूम का सेकेंड हाफ शुरू हो चुका है। इस वक्त हमारी स्टूडियो क्लॉक पे हुए दोपहर के 2:01। ये वो वक्त है जब हमें एक छोटा सा ब्रेक मिलता है और हम सोचते हैं कि अब ये जो आखिरी मोमेंट चल रहा है हमारे एस्केप रूम का, इस सिचुएशन से हम जल्दी एस्केप कर पाएं।
4: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन FM 107। दिल से देखिए
3: हाजरा, वेलकम वंस अगेन। FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। मुझे बताएं क्या हाल चाल है। मतलब आज इस थकान वाली कैद में कैद हो गए आप, मतलब अपनी ही थकान में हम कैद हो गए। आज एस्केप रूम की सिचुएशन ही बहुत अजीब गरीब है। एक कमरा दिख रहा है जहाँ पर लाल बत्तियाँ हैं, बंद चालू हो रही हैं, जैसे बैटरी का सेल डाउन है, तो जिस तरह का महसूस होता है या हम जो देख पाते हैं वो एग्जैक्टली हम महसूस कर पा रहे हैं। अब यहाँ से हमें निकलने के लिए बस अपने आप को थोड़ा सा ना नींद से जगा के रखना है और क्लू नंबर 1, 2, 3 सॉल्व करना है, ताकि तीनों पड़ाव सॉल्व करके हम इस थकान की कैद से बाहर निकल सकें, एस्केप कर पाएं। सो क्लू नंबर 1 हमने जैसे तैसे सॉल्व किया, सही जवाब था बर्नआउट। क्लू नंबर 2 पर अभी हम आए हैं और क्लू नंबर 2 ये था कि मैं आपके सर के अंदर, मतलब मैं आपके सर के अंदर रहता हूँ और हर वक्त कुछ ना कुछ सोचता रहता हूँ। सब कहते हैं कि मुझे तेज़ होना चाहिए, पर इस वक्त मुझे थोड़ा आराम चाहिए, मुझे थोड़े आराम की ज़रूरत है। मैं क्या हूँ? आपको मैंने ऑप्शंस दिए, दिमाग, खून या फिर दिल। क्या सही जवाब हो सकता है सोचें? खून ऑफ कोर्स नहीं हो सकता, दिल और दिमाग में क्या हो सकता है? ऑफ कोर्स इट्स योर दिमाग, यानी कि आपका ब्रेन। जिन्होंने भी सही जवाब दे दिया है, फील गुड, क्योंकि दूसरा पड़ाव आपने पार कर लिया है। वेल डन गाइज, वेल डन, सो प्राउड ऑफ यू। आइए जरा देखें हमारे लिसनर्स में से किन्होंने क्या क्या जवाब दिए हैं। ओके, आइए जरा, इनके नाम है, सबसे पहला नाम है सोहेल। सोहेल के लिए जोरदार तालियां हो जाए भाई सोहेल। सादत अफरीदी, और कौन है हमारे साथ, नॉनस्टॉप हमारे लिस्टर जुड़ते जा रहे हैं। मनदीप ने भी हमें सही जवाब दे दिया है, वेरी गुड। दिलबाग सिंह ने भी हमें सही जवाब दे दिया है और हरून अकबर ने भी हमें सही जवाब दिया है। आलिम ने भी सही जवाब दिया है, क्या बात है। इसी तरह जब आप सही जवाब देते हैं तो हर एक बुरी सिचुएशन से बाहर निकलते हैं। दिलबर ने भी सही जवाब दिया है, अनवर रूहान प्रिंसन ने सही जवाब दिया है, निक्रम ने सही जवाब दिया है, रिदा ने भी हमें सही जवाब दे दिया है। फातिमा ने क्या लिखा है, फातिमा ने भी सही जवाब दिया है एक प्यारे से स्माइली के साथ। ये फातिमा नाजिर है। और कौन है, और कौन है, अच्छा इनका नाम नहीं है बट इनके प्रोफाइल में फायरफ्लाई नाम लिखा है। भाई क्या कर रहे हैं, नाम ज़रूर लिखा करें, तभी तो कोई बात है कि नहीं। अशरफ नेपाल से, मोहम्मद यूसुफ खान और जीशान ने हमें सही जवाब दिया है, वेरी गुड। तो यहाँ पर सबका दिमाग जोर से चला और क्लू नंबर 2 सॉल्व हो गया, दैट्स फैंटास्टिक। तो फिर क्या हुआ जब क्लू नंबर 2 सॉल्व हुआ? अब जिस कमरे में हम हैं, अब डोर का जो सेंसर है ना वो अब ऊपर जा रहा है, ठीक है, क्योंकि अब हम थोड़े से सही जवाब दे रहे हैं, पड़ावों को पार कर रहे हैं, तो अब बैटरी चार्ज होगी, ठीक है, हमारी भी चार्ज होगी, इस कमरे की भी चार्ज होगी। तो 60% दिखाया पहले बैटरी ने, फिर 80% दिखाया, लेकिन अभी आके रुक गई है। 100% तक पहुँचने के लिए हमें वो काम करना है जो सबसे मुश्किल है, और वो सबसे मुश्किल काम क्या है, बिल्कुल शांत बैठना। इस भाग दौड़ भरी दुनिया में हम भूल गए हैं कि इंसान एक इंसान के लिए ना सबसे प्रोडक्टिव चीज़ क्या है। हम यहाँ वहाँ की चीज़ें ढूंढते रहते हैं, लेकिन प्रोडक्टिविटी को भी बढ़ाने के लिए वो प्रोडक्टिव चीज़ क्या है। जब आप फ़ोन दूसरे कमरे में रख कर आँखें बंद करके अपनी धड़कन को महसूस करते हैं, तब ये चीज़ आपको मिलती है। ये काम का बिल्कुल उल्टा है. तो क्लू नंबर थ्री आपके लिए क्या है जो आपको सॉल्व करना है, ये वो शब्द है, ये वो वर्ड है जो दिमाग को साफ और टंकी को फुल करता है. हाँ, मैं कोई लग्जरी नहीं, या यूं कहें मैं कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत हूँ. ठीक है, तो मैं क्या हूँ? आप सोचें, काम का बिल्कुल उल्टा क्या हो सकता है. ठीक है, ये वो चीज़ है जो हमें बहुत, जब थक जाते हैं हम तो ये करते ही करते हैं, हमें करना ही पड़ता है, क्योंकि नहीं करेंगे तो हम प्रोडक्टिव नहीं बन पाएंगे. तो थिंक और सही जवाब दें 666-22-107, 666-22-107 पर अपने नाम के साथ. एंड लेट्स सी कि आप में से कितने लोग ये आखिरी पड़ाव पार कर पाते हैं. और अभी दिलजीत दोसांझ एंड सिया इज हियर, चलिए इनके इस ग्रेट कॉम्बिनेशन को एंजॉय करते हैं. स्टे ट्यून्ड.

0: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ ओनली ऑन एफएम 107 दिल से दी।
1: यस नाउ वेलकम वंस अगेन एफएम 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूं आपकी ए फॉर अमिता। भाई एस्केप रूम का बिल्कुल आखिरी पड़ाव चल रहा है, यहाँ पर हम आखिरी मुकाम पर आकर रुक गए हैं। जनाब रुकना नहीं है, आज का जो कैद खाना है ना वो बड़ा, कहते हैं ना कि हमारे अंदर का ही कैद खाना है। हम इतने थकान से चूर हैं कि इस थकान की कैद में आ चुके हैं और अपनी इस थकान से अपने आप को बाहर निकालने के लिए हमें क्लूज सॉल्व करने हैं। ठीक है, हम एक कमरे में हैं जहाँ की जो बत्तियाँ हैं बंद चालू हो रही हैं, लाल रंग की बत्तियाँ हैं जैसे कि कोई अलार्म हो, है ना, और हमारी बैटरी बिल्कुल गुल हो रही है। लेकिन अभी हम यहाँ तक पहुँच गए कि हमने अपनी बैटरी को थोड़ा चार्ज किया है क्लूज सही तरीके से सॉल्व करके। सो क्लू नंबर वन का सही जवाब था बर्नआउट, क्लू नंबर टू का भी हमने सही जवाब दे दिया दैट वाज दिमाग, और क्लू नंबर थ्री पर आए हैं। देखिए अभी जो डोर दिख रहा है ना हमारे कमरे में जहाँ पर हम थक के चूर बैठे हुए हैं, उसके सेंसर में अभी 80% तक चार्ज हो गया है, ये शो हो गया है। लेकिन 100% तक पहुंचने के लिए हमें वो काम करना है जो सबसे मुश्किल है, और वो क्या है, बिल्कुल शांत बैठना। सो क्लू नंबर थ्री हमारे लिए ये था कि मैं वो हूँ जो दिमाग को साफ और टंकी को फुल करता है। यस, मैं

कोई लग्जरी नहीं हूँ, जरूरत हूँ, मैं क्या हूँ। और मैंने आपको बोला ही था कि ये काम का बिल्कुल उल्टा है। ये चीज क्या है? ऐसा होता है ना कि जब हम बहुत थक जाते हैं तो अक्सर हमने ये सुना है कि यार तुम बहुत थक गए हो, तुमको ये कर लेना चाहिए। क्या कर लेना चाहिए, वो चीज क्या है? कम ऑन, बहुत सिंपल है, बहुत आसान है। जब आप बहुत थक जाते हैं, बहुत ज्यादा थकचूर होते हैं, तो आप क्या करते हैं? कौन सी वो चीज है जो आपको फिर से रिचार्ज करती है? थिंक अबाउट 666-22107, 666-22107 ये हमारा नंबर है। इस पर अपने नाम के साथ हमें सही जवाब दें एंड आई एम वेरी सर्टन कि इतना मुश्किल नहीं है, ये आप कर सकते हैं। हाँ, सही जवाब दीजिए। आखिरी पड़ाव पर पहुंच गए हैं, एग्जिट डोर हमारे सामने है, 100% चार्ज होने वाला है। बस एक स्टेप हम पीछे हैं, एक सही जवाब हमें वहां तक पहुंचा सकता है। मैं वो हूँ जो दिमाग को साफ और टंकी को फुल करता है। मैं कोई लग्जरी नहीं, जरूरत हूँ। जब हम थक के चूर होते हैं तो हम क्या करते हैं? सोचें और सही जवाब दें। और सोचने के लिए मैं आपको एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक देती हूँ जो कि आपको पूरी तरह से रिचार्ज करेगा। एंड लेट्स सी कि आज आप अपनी थकान की कैद से बाहर निकल पाते हैं कि नहीं। पहले ये गाना तो आपको बिल्कुल एनर्जाइज कर देगा, तो थकान से तो आप यूं ही निकल रहे हैं। सो गिव मी द राइट आंसर। स्टे ट्यून्ड टू FM 107, दिल से देसी।

0: अरे मौसी जी, कतर के चप्पे चप्पे पे सुनाई देता है एक ही रेडियो, FM 107, दिल से देसी, दिल से देसी।
1: आप सुन रहे हैं एस्केप रूम ए फॉर अमिता के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
2: Yes, my Desi people, welcome once again. FM 107 सुन रहे हैं आप, मैं हूँ आपकी ए फॉर अमिता। और एस्केप रूम बिल्कुल अपने आखिरी मुकाम पर पहुंच गया है। आज हम जहां कैद थे वो कोई कैदखाना नहीं था, कोई पहाड़ नहीं था, कोई कमरा नहीं था, कोई म्यूजियम नहीं था, कोई हॉन्टेड जगह नहीं थी। आज हम अपनी थकान के अंदर कैद हो गए थे और यहां से हमें निकलना है 3 पड़ावों को पार करके। सो क्लू नंबर 1 का सही जवाब था बर्न आउट, क्लू नंबर 2 का सही जवाब था हमारा दिमाग। और जब हमने ये 2 क्लू सॉल्व किए तो जिस कमरे में हम कैद थे वहाँ जो डोर था, एग्जिट डोर, उसके सेंसर में हमने कुछ हलचल देखी कि सेंसर चार्ज होना शुरू हुआ 60%, 80%, 100% तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि अब क्लू नंबर 3 का सही जवाब हमें देना है। और जैसे ही सही जवाब देंगे ये एग्जिट डोर 100% चार्ज होके खुल जाएगा और हम आज़ाद हो जाएंगे। सो क्लू नंबर 3 कि मैं वो हूँ जो दिमाग को साफ और टंकी को फुल करता है। मैं कोई लग्जरी नहीं, ज़रूरत हूँ, मैं क्या हूँ, ये वो चीज़ है जो काम का बिल्कुल उल्टा है। ठीक है, अक्सर जब हम बहुत थके हुए होते हैं तो हमें किसी चीज़ की ज़रूरत होती है, वो एक चीज़ बहुत और बेहद इम्पॉर्टेंट है। तो वो चीज़ क्या है, आइए ज़रा देखते हैं हमारे लिसनर्स क्या सोचते हैं और क्या जवाब लिख रहे हैं। तो कुछ ने लिखा है पानी की ज़रूरत पड़ती है। हाँ ठीक है, गर्मी है तो पानी की ज़रूरत तो पड़ेगी, लेकिन आज का एस्केप रूम अगर आपने शुरू से सुना है तो जाहिर सी बात है कि आप कुछ सही गैस कर पाएंगे। चलिए, पानी किसी ने लिखा, कुछ ने लिखा खाना पानी रेस्ट। ओके, खाना पानी तो चाहिए ही होता है, लेकिन कौन सी चीज़ें जब आप बहुत थके होते हैं तो उसकी ज़रूरत होती है। यहाँ पर किसी ने लिखा है नींद की ज़रूरत होती है। हाँ, लेकिन नींद क्या हर वक्त हम ले पाते हैं?

में सही जवाब दिया है और इनका नाम असरफ, असरफ ने भी हमें सही जवाब दिया है, मनदीप ने भी हमें सही जवाब दिया है, फातिमा नासिर ने भी हमें सही जवाब दिया है और कौन शख्स है बिना नाम दिए हमारे लिसनर्स जवाब दे रहे हैं, यासीन ने भी सही जवाब दिया है, कुछ हमारे लिसनर्स हमारे साथ अभी जुड़ते जा रहे हैं, चलिए आपका बहुत बहुत इस्तकबाल है, लेकिन अब बिल्कुल वक्त हो गया हमारे जाने का। यूसुफ शमीम ने भी सही जवाब दिया है और कौन है, रूहान है, मोहम्मद सुहेल, फैंटास्टिक, आप सब ने बिल्कुल सही जवाब दिया। और ये जो कमरा जो कि आपकी थकान का कैद खाना था, सामने इसमें एक एग्जिट डोर है, ये फुल्ली चार्ज्ड हुआ और खुल गया और अब आप अपनी थकान की कैद से आज़ाद हो गए हैं। हाँ, तो कैसा लग रहा है फुली चार्ज्ड होके, रीचार्ज्ड होके, अच्छी फीलिंग तो आ रही होगी, है कि नहीं? ये होता है जब हम बहुत थके होते हैं और एक अच्छी नींद मिल जाए या आराम मिल जाए कुछ मिनटों का या कुछ घंटों का, तो एक वो कहते हैं ना कि पूरी बैटरी रिचार्ज हो जाती है और एक अच्छी फीलिंग आती है, तो वही फीलिंग के साथ अब हम आगे बढ़ते हैं। और जब हम थकते हैं ना तो एक्चुअली हमें ये इंडिकेशन देता है हमारी बॉडी की, भाई देखो जितना काम करना था कर लिया, अब अगर आपने अपने आप को आराम नहीं दिया तो फिर समझ लीजिए आगे क्या होगा। लेकिन कई बार हम क्या होता है, आराम की जगह और भाग दौड़ वाले काम करने लगते हैं और करक इन्जॉय करने लगते हैं और चीज़ें ऐसी करने लगते हैं जिससे हमारी थकान जो है वो दूर सिर्फ कुछ मिनटों के लिए होती है लेकिन पूरी तरह से नहीं। तो कोशिश करें कि जब थकें तो आराम ज़रूर करें। और अब जब आप आज़ाद हैं तो इस आज़ादी का जो हमारा लकी विनर है उसका नाम लेना तो बनता है भाई, उनका नाम है आज मोहम्मद, जो कि हमारे आज के लकी विनर हैं। मोहम्मद, कमाल कर दिया, नॉन स्टॉप आपने सही जवाब सबसे पहले देने की हमें कोशिश की, तो थैंक यू सो मच, क्या बात है, बहुत सारी मोहब्बत, बहुत सारी दुआएं आपके लिए और हमारे सारे लिसनर्स के लिए जो नॉन स्टॉप हमारे साथ जुड़ते रहे और हमें एस्केप रूम से बाहर निकालने की कोशिश करते रहे, वाह क्या बात है। अब इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त क्योंकि कल आपकी मेरी मुलाकात फिर होने वाली है दोपहर 1:30 बजे एक नए नवेले चैलेंज के साथ, तो देखते हैं कि आप में से कितने लोग अपनी जहनी वर्जिश के लिए तैयार है कि नहीं। फिलहाल हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ जाइए FM 107 के, और अमिता को भी आप सोशल मीडिया पर ढूंढ सकते हैं। और जाते जाते अब देखो एनर्जी पूरी भर गई है, आप लोग रिचार्ज हो चुके हैं, तो ये गाना तो बनता है, इंजॉय करो जी, फिर

Assalamualaikum साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन एफएम 107। साथियों, पानी हमारी जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत है, ये हम सबको पता है। खास तौर पर गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम सबको ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऑफिस हो, स्कूल हो, जिम हो, ट्रैवल हो, भाई कहीं पर भी हो, पानी की बॉटल हमारे साथ होनी चाहिए।

0: चाहिए क्योंकि गर्मियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी पीने की हमारी आदत का एनवायरनमेंट पर भी असर होता है? जी हाँ, होता है होता है। एक बार इस्तेमाल होने वाली वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, जो आप दुकान से खरीद लेते हैं, उसकी अनरी पैकेजिंग और पानी का वेस्ट, ये सब मिलकर एनवायरमेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं। तो भाई क्यों ना आज हम इको स्विच में इसी के बारे में बात कर लें, यानी सस्टेनेबल हाइड्रेशन हैबिट्स, यानी पानी पीने की ऐसी आदतें जो सेहत के लिए भी अच्छी हो और एनवायरमेंट को भी बेहतर बनाए। देखिए प्रॉब्लम को हाईलाइट करते हैं, जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखिए हाइड्रेशन जरूरी है, मैं ये मानती हूँ, ऐसा तो नहीं कि रूखे सूखे पत्ते की तरह हम घूमते रहें, लेकिन जिस तरीके से हम पानी को कंज्यूम करते हैं वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है ना। देखिए सबसे पहला और मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि सब कॉमन प्रॉब्लम मैंने पता है क्या देखा है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। हम अक्सर एक बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और फिर क्या करते हैं, वो बॉटल कहाँ गई? ये गई डस्टबिन के अंदर। अच्छा, इसके अलावा पानी को बेवजह वेस्ट करना, जरूरत से ज्यादा बॉटल्ड ड्रिंक्स खरीदना, रियूजेबल ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, ये सब छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन जब बहुत से लोग रोजाना ऐसी हरकतें करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है भाई। देखिए पानी बहुत कीमती रिसोर्स है, इसलिए हमें सिर्फ पानी पीना नहीं है बल्कि उसकी कदर भी करनी चाहिए। हर घूंट के साथ एक कदर होती है भाई, हर घूंट की। तो भाई इको स्विच सॉल्यूशन हमारे पास सस्टेनेबल हाइड्रेशन के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो हम सभी एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेंगे। पहली चीज ये कि रीयूजेबल वाटर बॉटल अपनाएं। सबसे आसान इको स्विच ये है कि अपनी रीयूजेबल बॉटल साथ रखें, स्टेनलेस स्टील हो गया या ड्यूरेबल बॉटल्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट इससे बहुत कम हो सकता है। दूसरी चीज ये कि बॉटल रिफिल करने की आदत अपनाएं। जहां पानी रिफिल की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां नई बॉटल खरीदने के बजाय अपनी बॉटल को दोबारा रिफिल करें, ये सिंपल सी हैबिट होती है और अगर आप इसे रोजाना के तौर पर या हर टाइम रिफिल के तौर पर आप ये चीज अपनाएंगे तो इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत कम हो जाता है। तीसरी चीज है पानी वेस्ट ना करें। देखिए सिर्फ पानी के लिए नहीं बल्कि घर के तमाम कामों में पानी की कदर करना सीखें। अपने ग्लास में उतना ही पानी डालें जितने की जरूरत हो, बचा हुआ पानी आप प्लांट्स को दे सकते हैं या किसी और दूसरी तीसरी चीज में उसको स्टोर करके रखें और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है उसे। ऐसा नहीं है कि बचा हुआ पानी आप सिंक में फेंक दें। साथियों चौथी चीज ये कि घर में पानी की बॉटल रेडी रखें। अगर घर से निकलते वक्त बॉटल साथ हो तो बाहर से प्लास्टिक बॉटल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती। ये आदत ट्रैवलिंग और डेली रूटीन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को पानी की कदर करना सिखाएं। बचपन से ही अगर बच्चों को पानी बचाने की या रीयूजेबल बॉटल्स यूज करने की आदत होगी ना तो ये उनकी जिंदगी भर की हैबिट्स को अच्छा बना सकती है। अच्छा, अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आजकल बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में सस्टेनेबल हाइड्रेशन अडॉप्ट कर रहे हैं। ऑफिस एम्प्लॉयज अपनी डेस्क पर रीयूजेबल बॉटल्स रखते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में अपनी वाटर बॉटल्स लेकर जाते हैं, फैमिलीज घर में रीयूजेबल बॉटल्स का सिस्टम बनाती हैं ताकि हर बार डिस्पोजेबल बॉटल्स खरीदने की जरूरत ना पड़े। जरा सोचिए अगर एक इंसान सिर्फ एक बॉटल पानी रोजाना कम यूज करे तो साल भर में कितना फर्क पड़ेगा भाई, लाखों करोड़ों। तो भाई छोटी सी आदत लेकिन एनवायरनमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है। तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज हमारा ये है कि अगले 7 दिन के लिए कोशिश करें कि बाहर जाते वक्त मेहरबानी करके अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल अपने साथ रखें ना, और हमें ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट वाटर बॉटल कौन सी है, स्टील बॉटल, ग्लास बॉटल या कोई कलरफुल रीयूजेबल बॉटल। मुझे तो वो स्टील वाला फ्लास्क अच्छा लगता है, उसके अंदर गर्म डालो गर्म रहता है, ठंडा डालो ठंडा रहता है। आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। याद रखिए पानी की हर बूंद कीमती है और हर छोटी आदत एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती है। छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें। सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।
1: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सादा जिंदगी गुजारने की अहमियत। सादा जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ हासिल ना करे, बल्कि ये है जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया जाए। अक्सर हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि इसी में खुशी है, लेकिन असल सुकून सादगी में होता है। इस्लाम हमें एतदाल और सादगी का दर्ज देता है। जब इंसान सिंपल लाइफ स्टाइल अडॉप्ट करता है तो उसका फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर होता है, जैसे इबादत, रिश्ते और इनर पीस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन स्ट्रेस का सबब बन जाते हैं, जबकि सादगी सुकून देती है। आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी में से किसी एक अननेसेसरी चीज को कम करें और सिंपल सोच को अपनाएं। ये था हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
0: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी। One step to
2: 2030. Welcome to our segment called One Step to 2030. मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिया।
3: One Step to 2030.
2: आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइंग कार्स एंड हाइपरलूप। देखिए, आज की दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। रोजाना लाखों लोग कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स के जरिए अपना सफर तय करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के कई चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं। इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ट्रांसपोर्टेशन के नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं। इनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप का। जी हाँ, फ्लाइंग कार्स एक ऐसे व्हीकल हैं जो रोड पर ड्राइव भी कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ सकती हैं। इनमें एडवांस इलेक्ट्रिक इंजन, AI सिस्टम और स्मार्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज़ की जाती है। कई कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और कुछ प्रोटोटाइप्स टेस्ट भी किए जा चुके हैं। जी हाँ, फ्लाइंग कार्स का सबसे बड़ा मकसद ट्रैफिक लोड को या ट्रैफिक कंजेशन को कम करना है और सफ़र को मज़ीद बेहतर बनाना है। सोचिए, अगर आपको ऑफिस पहुँचने के लिए रोड ट्रैफिक में 1 घंटा लगता है, तो फ्लाइंग कार शायद आपको 15 से 20 मिनट में आपकी मंजिल तक पहुंचा दे। वहीं हाइपर लूप क्या है? देखिए, हाइपर लूप एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें स्पेशली डिजाइन कैप्सूल्स लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती हैं। ये स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है। कि आपको घबराहट हुई ना? जी हाँ, हाइपरलूप को फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन और एरोप्लेन दोनों के फायदे कंबाइन करता है। इससे शहरों के, मुल्कों के दरमियान फासले बहुत

0: कम हो जाएंगे। इस टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज्यादा है। फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन किया जा सकेगा। दुनिया भर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन, वक्त का जाया होना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन। नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना सिर्फ सफर को फास्ट बना सकते हैं बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बना सकते हैं। अगर सफर का वक्त कम हो जाए तो लोग अपनी फैमिली को, एजुकेशन को और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकेंगे। बिजनेस भी शायद ज्यादा इफिशेंट हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले। वैसे इसके फायदे बहुत हैं। फास्टर ट्रैवल, जो हम और आप समझते हैं, दूर का सफर घंटों में, मिनटों में कवर करना, रोड्स पर व्हीकल कम होंगे, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे। वहीं बहुत से फ्यूचर मॉडल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा। वहीं रिमोट एरियाज और दूर शहरों को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट मिल सकता है। उसके बाद नई इंडस्ट्रीज, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी। वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं। शुरू में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे हैं। हर शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा। फ्लाइंग कार्स के लिए हवा में ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक्सीडेंट प्रिवेंशन एक बड़ा चैलेंज होगा। वहीं हाइपरलूप के लिए नए ट्रैक्स और टनल्स की जरूरत होगी जिस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। वहीं पर टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग स्टेज में है और कई टेक्निकल मसाइल भी सॉल्व करना बाकी होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट्स को नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। वैसे फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप हमारी ट्रैवलिंग हैबिट को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ऑफिसेज दूर होने के बावजूद लोग आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की स्मार्ट सिटीज और ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी। टाइम बचने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करे। तो देखिए, फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है बल्कि अब मुस्तकबिल की हकीकत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन टेक्नोलॉजीज में कुछ चैलेंजेस जरूर हैं लेकिन उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। अगर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाते हैं तो आने वाले सालों में सफर ज्यादा फास्ट होगा, सेफ होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है। मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के जरिए नहीं होंगे बल्कि वो दुनिया को पहले से ज्यादा कनेक्टेड और इफिशेंट बना देंगे। व्हाट यू से? वेल, अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: आप सुन रहे हैं FM 107,
2: दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488886 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, अक्सर लोग समझते हैं कि गाड़ी का ब्रेकडाउन सिर्फ एक टेक्निकल मसला है, लेकिन असल में ये एक इमरजेंसी सिचुएशन भी बन सकती है, खासकर जब आप हाईवे या रश वाले एरिया में हों। ऐसे में सिर्फ अपनी गाड़ी को ही ठीक करने पर नहीं, बल्कि अपनी और दूसरों की हिफाजत पर भी तवज्जो देना जरूरी है। अगर आपने पहले से इमरजेंसी आइटम्स जैसे रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल, टॉर्च, पावर बैंक और फर्स्ट एड किट अपनी गाड़ी में रखी हो, तो ऐसे वक्त में आप ज्यादा बेहतर रिएक्ट कर सकते हैं। ट्रैफिक सेफ्टी सिर्फ हेलमेट और सीट बेल्ट तक महदूद नहीं है, हर सूरत हाल में सोच समझ कर अमल करना जरूरी है। गाड़ी खराब हो जाए तो हमेशा अपनी और दूसरों की हिफाजत को तरजीह दें। आमतौर पर लोग पैनिक हो जाते हैं जब गाड़ी रास्ते में अचानक बंद हो जाती है, लेकिन अगर आप इजी रहें और कुछ सिंपल कदम उठाएं, तो आप और आपके साथियों की जिंदगी महफूज रह सकती है। आइए जानते हैं कुछ जरूरी स्टेप। सबसे पहले कोशिश करें कि गाड़ी को सेफ साइड पर ले जाएं। ऐसा करने से आप कानून की कार्रवाई से भी बचते हैं। गाड़ी की हैजार्ड लाइट्स को ऑन कर दें ताकि दूसरे लोग आपकी पोजीशन देख सकें। अगर आप सड़क पर हैं और गाड़ी साइड पे ले जाना मुमकिन ना हो, तो आप गाड़ी से बाहर निकलकर रिफ्लेक्टिव ट्रायंगल गाड़ी के पीछे 10 से 15 मीटर दूर रख दें और आप खुद सेफ जगह पर खड़े हो जाएं। इमरजेंसी नंबर 999 पर फौरन कॉल करें। ये मत भूलिए, आपकी जिंदगी किसी भी गाड़ी या ट्रैफिक से ज्यादा कीमती है। ड्राइव सेफ, सोचिए, समझिए और महफूज रहिए। FM 107 कहता है कि आपकी आगाही और एहतियात ना सिर्फ आपकी बल्कि आपके घर वालों की जिंदगी बचा सकता है।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।
4: सामीन, अरबी जबान की तंजिया और हिकमत भरी कहावत है, तूल तूल नखले वल अगल अगल लसखले, यानी कद तो खजूर के दरख्त जितना लेकिन अकल बकरी के बच्चे जैसी। इस मिसाल में खजूर के लंबे, सीधे और ऊंचे दरख्त की अलामत इस्तेमाल की गई है जो कद्दो कामत का निशान है, और असखला यानी बकरी के नन्हे बच्चे को कम अकल और लाइल्मी की अलामत बनाया गया। ये कहावत उस शख्स के बारे में कही जाती है जो जिस्मानी तौर पर मजबूत, लंबा, तड़ंगा मगर अकल, समझ और सलीके में कमजोर हो, जो अपने रवैये, बातचीत या फैसलों में बचगाना हरकतें करता हो। यूं कहा जाए तो शक्ल तो बड़े आदमी की मगर अकल छोटे बच्चे की। हमारे यहाँ भी कहते हैं, लंबा तो है लेकिन अकल घुटने में है। ये बहुत ही आम और तंजिया एक कहावत है। ये सब जुमले इस हकीकत को बयान करते हैं कि जिस्मानी कामत और जहनी कामत दो अलग चीजें हैं। इंसान की असल पहचान कद, ताकत या लिबास नहीं बल्कि अकल, समझ और सलूक है। अगर अकल ना हो तो लंबा कद भी फायदा नहीं देता। इसी हकीकत को अरब नहायत खूबसूरती से बयान करते हैं, अतूल तूलन खला वल अगल अगल अस खला, कद बड़ा मगर अकल बकरी के बच्चे जैसी।

0: में नुक्ताए नजर तब्दील करने की जरूरत है, जज्बात खुद ही तब्दील हो जाएंगे।
1: पैगाम ऑन FM 107।
2: आप सुन रहे हैं FM 107।
3: FM 107।
1: दिल से देसी।
4: कभी सोचा है आइंस्टाइन का हेयर स्टाइल जैसा था वैसा क्यों था? क्या बल्ब की खोज करने के बाद एडिसन की जिंदगी आसान हो गई थी? रेडियो के इन्वेंशन में जिनका नाम लिया जाता है, क्या वही इसके पूरे जिम्मेदार थे? ऐसी कई बातें हैं साइंटिस्ट की दुनिया की, जिनको अगर आसानी से बताया जाए तो साइंस आसान हो जाएगी। सुनिए साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ, ओनली ऑन FM 107, दिल से देसी।
5: अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। ख्वातीनो हजरात, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड में खुश आमदीद, जहां हम दुनिया भर के साइंटिस्ट और उनके कारनामों के बारे में बात करेंगे और उनकी हिस्ट्री को जानने के साथ ही साथ उनकी डिस्कवरी, इनोवेशन और पर्सनल लाइफ पे भी रोशनी डालेंगे। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिन्होंने इल्म और साइंस के मैदान में एक अजीम कामयाबी हासिल की, और उनका नाम है अल-बत्तानी। वो ना सिर्फ एक साइंटिस्ट थे बल्कि एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और स्कॉलर भी थे। आज हम इनकी जिंदगी और इनके काम का जायजा लेंगे और देखेंगे कि किस तरह से उन्होंने अपने वक्त की साइंस और टेक्नोलॉजी को नए दायरे दिए। तो चलिए आज के इस सफर का आगाज करते हैं और बात करते हैं इस अजीम इल्मदार के बारे में। दोस्तों, अल-बत्तानी का असल नाम अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्न जाबर अल-बत्तानी था, लेकिन दुनिया उन्हें अल-बत्तानी के नाम से ज्यादा जानती है। वो सन 858 में, जो कि आजकल का सीरिया है, उस वक्त के हर्रान शहर में पैदा हुए। हर्रान एक इल्मी मरकज था जहां पर सबसे बेहतरीन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट रहते थे। अल-बत्तानी का बचपन भी इल्म की रोशनी में गुजरा। उन्होंने अपनी तालीम अपने वालिद और कुछ और मशहूर इल्मदारों से हासिल की। उन्होंने अपने पहले इल्म का सफर अपने शहर के मसरूफ इल्मदारों से किया और उनकी तालीमात काफी गहरी और पूरी थीं। अल-बत्तानी की शख्सियत और सोच उनको उनके वक्त के बाज इल्मदारों से अलग करती है। आज भी उनका इल्मी सफर और इल्म को समझने का तरीका दुनिया भर के इल्मदारों के लिए एक मिसाल है। हर्रान में उनकी जिंदगी ने उन्हें वो फाउंडेशन दी जो उन्हें आगे चलकर एक अजीम इल्मदार बनने की राह पर ले गई। दोस्तों, नजर डालें अगर अचीवमेंट्स और एस्ट्रोनॉमी पर, तो अल-बत्तानी को उस वक्त की एस्ट्रोनॉमी के सबसे अजीम स्कॉलर्स में से एक माना जाता है। उनका सबसे बड़ा काम था एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की तैयारी। इसका मतलब है कि उन्होंने तारीखी तौर पर सबसे एक्यूरेट स्टार चार्ट्स और प्लैनेटरी मूवमेंट्स को ट्रैक करते हुए उनकी टेबल्स बनाई। इन टेबल्स में उन्होंने प्लैनेट्स के ऑर्बिट्स और उनकी मूवमेंट्स को कैलकुलेट किया, जो उस वक्त के लिए बहुत ही ज्यादा एडवांस था। जब हम बात करते हैं एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स की, तो हम उन टेबल्स का जिक्र कर रहे हैं जो उन्होंने स्काई के ऑब्जेक्ट्स को एक्यूरेटली मेजर करते हुए बनाई थीं। ये टेबल्स दुनिया की सबसे एक्यूरेट टेबल्स थीं, जो उस वक्त तक कभी नहीं देखी गई थीं। अल-बत्तानी ने अपनी रिसर्च और ऑब्जर्वेशंस के जरिए दुनिया को दिखाया कि कैसे प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट्स में घूम रहे हैं। उन्होंने जो कैलकुलेशंस किए, उनमें अर्थ की रोटेशन और एक्सल टिल्ट का भी तफसीली जिक्र किया। ये वो टाइम था जब यूरोप में और पूरी दुनिया में किसी को भी इस तरह की एक्यूरेसी का पता नहीं था। अल-बत्तानी ने अपने टाइम के साइंटिफिक अंडरस्टैंडिंग को नए दायरे दिए, और इसके बाद यूरोपियन स्कॉलर्स और साइंटिस्ट ने भी उनकी थ्योरीज को

बनाया। उनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था उनके एक्यूरेट कैलकुलेशंस के जरिए अर्थ एक्सेल टिल्ट का पता चलाना। अल्बतानी ने ये जाना कि अर्थ का एक्सिस 23.5 डिग्रीज पर टिल्ट होता है, जो कि पहले किसी ने नहीं जाना था। उनका ये काम आज भी एस्ट्रोनॉमर्स के लिए एक पिवोटल डिस्कवरी है। चलिए अब एक नजर डालते हैं कि अल्बतानी की कंट्रीब्यूशन मैथमेटिक्स के हवाले से क्या रही। तो अल्बतानी सिर्फ एक एस्ट्रोनॉमर नहीं थे बल्कि एक मैथमेटिशियन भी थे। उन्होंने ट्रिग्नोमेट्री की फील्ड में भी काफी अहम काम किया। ट्रिग्नोमेट्री उस वक्त काफी नई तहकीकात की तरफ जा रही थी और अल्बतानी ने इसको अपने ऑब्जर्वेशन के जरिए एक नया एंगल दिया। उन्होंने साइन, टेंजेंट और कॉन्टेजेंट के फॉर्मूलाज को बेहतरीन तरीके से डिफाइन किया। उनकी इस कंट्रीब्यूशन से हम समझ सकते हैं कि किस तरह उन्होंने अपने इल्म से पूरी दुनिया को नए तरीकों से सोचने पर मजबूर कर दिया। अल्बतानी ने अपने फॉर्मूलाज में एक्यूरेसी और प्रेसिशन को फोकस किया। ये वो दौर था जब मैथमेटिक्स की दुनिया में कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा था और अल्बतानी ने अपनी कैलकुलेशंस के जरिए वो सब कुछ डिफाइन किया जो बाद में यूरोपियन मैथमेटिशियंस ने अपनी रिसर्च में इस्तेमाल किया है। सबसे खास बात ये थी कि उन्होंने अपनी कैलकुलेशंस को एक्यूरेट तरीके से एग्जीक्यूट किया। आज भी उनका काम मैथमेटिक्स और एस्ट्रोनॉमी के स्टूडेंट्स के लिए एक वैल्यूएबल रिसोर्स है। उनकी मैथमेटिकल थ्योरीज और मेथड्स ने दुनिया को नई डायमेंशंस दिए और उनका कंट्रीब्यूशन हर दौर के इल्मदार के लिए मुफीद है। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, बारिश के मौसम में गाड़ी चलाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन अगर हम कुछ बेसिक ड्राइविंग टिप्स फॉलो करें तो हम अपनी और दूसरों की सेफ्टी को इंश्योर कर सकते हैं। आइए जानते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स जो आपको बारिश में ड्राइविंग करते वक्त मदद दे सकते हैं। सबसे पहले, ओवरटेक ना करें। बारिश में रास्ते स्लिपरी हो जाते हैं, इसलिए ओवरटेकिंग से बचना चाहिए। ऐसे में आपको किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से बचने में आसानी होगी। दूसरा ये कि स्पीड को कम रखें। बारिश में स्पीड लिमिट से तेज चलना बहुत खतरनाक हो सकता है। अपनी स्पीड को कम करें ताकि आप ज्यादा कंट्रोल में रहें और किसी भी सडन सिचुएशन का सामना कर सकें। हजार्ड का यूज ना करें। बारिश के दौरान हजार्ड लाइट्स का यूज करना जरूरी नहीं होता और ये दूसरे ड्राइवर्स को कंफ्यूज कर सकता है। ब्रेक्स धीरे धीरे लगाएं। अगर आपको ब्रेक लगानी हो तो इसे धीरे धीरे लगाएं। ज्यादा तेज ब्रेक लगाने से आपका कंट्रोल चला जा सकता है और गाड़ी के स्किड होने का खतरा बढ़ सकता है। सेफ डिस्टेंस रखें। बारिश में रोड स्लिपरी होती है और व्हीकल को रुकने में ज्यादा टाइम लगता है, इसलिए अपने आगे वाली गाड़ी से अच्छा सेफ डिस्टेंस रखें ताकि आप रेयर एंड कोलिजन से बच सकें। पडल से बचें। रास्ते पर पानी के जो भी पडल्स बन जाते हैं उनसे दूर रहें। इनको टेस्ट करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपकी व्हीकल पानी में फंस सकती है या एक्सीडेंट का शिकार हो सकती है। बारिश में ड्राइव करते वक्त इन गाइडलाइंस को फॉलो करना हमारे लिए सेफ ट्रेवल को इंश्योर करता है और एक्सीडेंट के रिस्क को कम करता है। आपकी सेफ्टी हमारी प्रायोरिटी है, इसलिए हमेशा इन टिप्स को याद रखें और ड्राइविंग में एहतियात बरतें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। अल्बतानी का काम सिर्फ वक्त में नहीं बल्कि बाद के लोगों के लिए भी एक इंस्पिरेशन रहा। जब यूरोपियन स्कॉलर ने उनकी बुक्स को रीड किया तो उन्होंने अल्बतानी के काम को अपनी रिसर्च का हिस्सा बनाया। उनका काम टॉलेमी के काम को

वाइफ करता था और उन्होंने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स को भी अपनी रिसर्च से नया डायरेक्शन दिया। उनका काम जब रेनेसेंस के दौरान यूरोपियन स्कॉलर्स के पास गया तो उन्होंने इससे काफी सीखा। एक तरफ उनकी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी की फाउंडेशन रखी और दूसरी तरफ उनके मैथमेटिकल मेथड्स ने ट्रिग्नोमेट्री और ज्योमेट्री में नए कॉन्सेप्ट्स को डेवलप किया। आज तक अल्बतानी की एस्ट्रोनॉमिकल टेबल्स को एक फंडामेंटल रिसोर्स के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। अगर हम आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉमी को देखें तो उनका काम हर स्टेप पर इन्फ्लुएंस करता है। उनकी एक्यूरेट मेजरमेंट्स और डेटा एनालिसिस ने पूरी दुनिया को साइंस और एस्ट्रोनॉमी की फील्ड में नई सोच का तरीका दिया। अल्बतानी की जिंदगी का एक और अहम पहलू ये था कि उन्होंने साइंटिफिक मेथड्स को अपनी रिसर्च में यूज किया। मतलब ये कि वो अपने हाइपोथेसिस को टेस्ट करते थे और फिर उनको वैलिडेट करते थे। ये उनका काम उस वक्त के ट्रेडिशनल साइंस के तरीकों से काफी आगे था। उन्होंने अपने ऑब्जर्वेशन और फाइंडिंग्स को साइंटिफिक मेथड के जरिए सिस्टमैटिकली ऑर्गेनाइज किया, जो उनके वक्त का एक रेवोल्यूशन था। जब हम साइंटिफिक मेथड्स के बारे में बात करते हैं तो हम समझते हैं कि किस तरह ऑब्जर्वेशंस, टेस्टिंग्स और डेटा एनालिसिस का यूज करते हुए हम अपनी फाइंडिंग्स को प्रूफ कर सकते हैं। अल्बतानी ने इस मेथड को अपनी रिसर्च में इंप्लीमेंट करते हुए अपनी थ्योरीज को वैलिडेट किया। आज हम जो साइंटिफिक मेथड इस्तेमाल करते हैं उसकी बुनियाद में अल्बतानी का काफी बड़ा हिस्सा है। उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशंस और एक्सपेरिमेंट्स को सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड किया, जो कि मॉडर्न साइंस का एक एसेंशियल हिस्सा बना। अल्बतानी का इल्म दुनिया भर में सिर्फ उनके वक्त तक नहीं बल्कि उनकी लेगेसी आज तक जिंदा है। बात करें गोल्डन एज की तो जब हम अल्बतानी की बात करते हैं तो हम उस जमाने की इस्लामिक गोल्डन एज के बारे में भी सोचने लगते हैं। ये वो दौर था जब इस्लामिक वर्ल्ड में इल्म, साइंस और टेक्नोलॉजी अपने पीक पर थी। इस वक्त दुनिया भर के स्कॉलर्स और साइंटिस्ट इंक्लूडिंग अल्बतानी अपने काम से दुनिया को नए तरीकों से सोचने का मौका दे रहे थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरा ये एरा भी डिक्लाइन होना शुरू हो गया। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, इंटेलेक्चुअल माइग्रेशन और कल्चरल चेंजेस ने इल्म के इस दौर को मानिए जैसे के रोक सा दिया। लेकिन इसके बावजूद अल्बतानी का काम आज तक जिंदा है। आज भी उनके काम को दुनिया भर की यूनिवर्सिटीज और रिसर्च इंस्टीट्यूशंस में इस्तेमाल किया जाता है। उनका नाम उन इल्मदारों में शामिल है जो दुनिया की साइंस को आगे लेकर गए हैं। दोस्तों, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। सुनते रहिए FM 107। दोस्तों, घर में एक फंक्शनल फायर एक्सटिंग्विशर का होना एक अहम सेफ्टी रिक्वायरमेंट है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है ये जानना भी बेहद जरूरी है। याद रखिए, आपकी आगाही आपकी सेफ्टी को बढ़ाती है। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करने से पहले कुछ बेसिक चीजें जरूरी होती हैं। सबसे पहले आपको फायर एक्सटिंग्विशर का टाइप समझना जरूरी है। हर फायर एक्सटिंग्विशर अलग अलग टाइप्स की आग के लिए डिजाइन होते हैं, जैसे कि ड्राई केमिकल, फोम, वाटर बेस्ड या CO2 एक्सटिंग्विशर। आपको ये इंश्योर करना चाहिए कि जो एक्सटिंग्विशर आपके पास है वो आपके घर की सेफ्टी नीड्स को पूरा करता हो। फायर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते वक्त एक सिंपल एक्रोनिम PASS का ध्यान रखें। PASS, जिसका मतलब होता है P फॉर पुल, यानी सेफ्टी पिन को खींच कर निकालें। दूसरा है A, यानी एम, नोजल को आग के बेस की तरफ फोकस करें, ना कि आग के ऊपर। नंबर 3 है S, जो के है स्क्वीज, हैंडल को धीरे से स्क्वीज करें ताकि एक्सटिंग्विशिंग एज

आपकी खुशहाल जिंदगी की ख्वाहिश करता है। वेलकम बैक, अहलन व सहलन, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड सरवर मिर्जा के साथ। अल्बतानी को वसत इस्लामी दुनिया के सबसे अजीम और मशहूर एस्ट्रोनॉमर्स में से एक माना जाता है। उन्होंने अपने जमाने के किसी भी दूसरे एस्ट्रोनॉमर के मुकाबले में रात के आसमान का ज्यादा एक्यूरेट मुशायदा किया। वो हाउस ऑफ विजडम के बनाए जाने के बाद 8वीं सदी के एक नए दौर के इस्लामिक एस्ट्रोनॉमर्स के पहले शुमार होते हैं। उनकी तदरीस और तरीके से किए गए मुशाहिदे दूसरों को उनके नताइज का जायजा लेने में मदद देते हैं, लेकिन उनके कुछ हवाले जो प्लैनेट्स की हरकतों के बारे में दिए गए वो पूरे तरीके से लिखे नहीं गए और उनमें कुछ गलतियां भी थीं। अल्बतानी को कभी कभी टॉलेमी ऑफ द अरब्स भी कहा जाता है। उनके काम से ये साबित होता है कि वो टॉलेमी के जियोसेंट्रिक मॉडल पर ईमान रखते थे। उन्होंने टॉलेमी की अलमेजेस्ट में दिए गए मुशाहिदों को रिफाइन किया और सूरज और चांद के नए टेबल्स तैयार किए जो पहले से ही ऑथोरिटेटिव समझे जाते थे। अल्बतानी ने अपना खुद का ऑब्जर्वेटरी रक्का में बना लिया था। उन्होंने ये तजवीज दी कि उनके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स 1 मीटर से ज्यादा लंबा हो ताकि ज्यादा प्रिसाइज मेजरमेंट की जा सके। ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स जो ज्यादा बड़े थे उनमें छोटी वैल्यूज को मेजर करने की सलाहियत थी और ये पहले के इंस्ट्रूमेंट से ज्यादा प्रिसाइज थे। उनके कुछ मेजरमेंट्स रेनेसेंस के दौरान पॉलिश एस्ट्रोनॉमर्स और मैथमेटिशियंस निकोलस कॉपरनिकस के मुकाबले में भी ज्यादा एक्यूरेट थे। इसकी वजह ये समझी जाती है कि रक्का में उनकी ऑब्जर्वेशन का मकाम ज्यादा करीब था अर्ध के इक्वेटर के, जिससे सन और एक्लिप्टिक ज्यादा आसमान में उठे होते थे और एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के असरात कम होते थे। उनके एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स की केयरफुल कंस्ट्रक्शन और अलाइनमेंट ने उन्हें एक्विनॉक्सिस और सोलस्टिसेस के मुशाहिदे में वो एक्यूरेसी दी जो पहले कभी भी नहीं देखी गई थी। अल्बतानी उन पहले एस्ट्रोनॉमर्स में से थे जिन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि जमीन और सूरज के दरमियान फासला साल भर के दौरान तब्दील होता है, जो इस बात का सबब बना कि उन्होंने समझा कि एनुलर सोलर एक्लिप्स ऐसे होते हैं। उन्होंने देखा कि वो जगह जहां सूरज का एंगुलर डायमीटर सबसे छोटा था वो अब उस जगह से नहीं था जहां टॉलेमी ने उसे रखा, और ये टॉलेमी के वक्त से लेकर लॉन्गिट्यूडनल पोजीशन 16 डिग्री तक बढ़ गया था। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कैसे अल्बतानी ने अपने इल्म, रिसर्च और कंट्रीब्यूशन से दुनिया को नए तरीकों से सोचने पर मजबूर किया। उन्होंने ना सिर्फ एस्ट्रोनॉमी और मैथमेटिक्स में बेहतरीन काम किए बल्कि उनकी डिस्कवरीज और मेथड्स आज तक साइंटिस्ट और स्कॉलर्स के एक रे ऑफ लाइट हैं। उनकी जिंदगी और उनके काम से हम ये सीखते हैं कि कोई वक्त और सूरत नहीं होती। अगर हम अपनी रिसर्च को ढंग से करें तो हम भी अपने इल्मी सफर में नए रास्ते तलाश कर सकते हैं। आज के इस प्रोग्राम को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे नेक्स्ट एपिसोड में हम फिर से किसी और इल्मदार की कहानी आप तक पहुंचाएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए और इल्म के सफर में अपना हिस्सा डालिए। के साथ प्रोग्राम साइंटिस्ट वर्ल्ड का ये एपिसोड इख्तिताम को पहुंचता है। इंशाल्लाह, जैसा कि मैंने कहा, अगले हफ्ते हम मजीद दूसरे साइंटिस्ट और उनकी दिलचस्प तारीख को तलाश करेंगे जो हमारी नॉलेज में मजीद इजाफा करेगी। अगर आपने हमें सोशल मीडिया में अभी तक फॉलो नहीं किया है तो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, एक्स, यूट्यूब, टिकटॉक पर सिर्फ और सिर्फ आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107।

0: तो अगली मुलाकात तक के लिए साउंड डिजाइनर नदीम अंसारी और सरवर मिर्जा को दीजिए इजाजत। सुनते और देखते रहिए FM 107 दिल से देसी।
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: FM 107 Time Check.
1: टाइम क्या चेक करना है, किसी का अच्छा चल रहा है किसी का बुरा चल रहा है, अपने अपने हालात है फिलहाल। वैसे अगर घड़ी में देखो तो 4:01 हो रहा है।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: वेल, जैसे टाइम भी बड़ी बेहतरीन चीज है भाई साहब, आपका टाइम कितना भी अच्छा चल रहा हो, कुछ लोग आसपास ऐसे होते हैं जो टाइम को खराब कर देते हैं उस वक्त तक के लिए। मतलब मिसाल के तौर पे अगर आप देखें, आप ऑफिस में मजे कर रहे हैं, घर गया है तो मूड खराब, घर में मजे कर रहे हैं ऑफिस आए तो एम्प्लॉय को देख के मूड खराब है ना। फिर उसके बाद आप खाना खाने गए, टाइम बहुत अच्छा, खुशी में खाना खाने गए भाई कि आज खुशी, आज बर्थडे मनाएंगे किसी का, अपने बच्चे का मनाएंगे, अपनी बीवी का मनाएंगे, अपने हस्बैंड का मनाएंगे। और फिर उसके बाद दिमाग खराब हो जाता जब बेकार खाना आ जाए। अरे भैया नमक ही नहीं है, अरे प्याज तो रखो भाई साहब, अमा यार आपने अदरक इतना झोंक के डाल दिया, बीच में ही प्यास लगने लग गई। तो ये टाइम है भाई साहब। तो टाइम का तो बस ये है कि टाइम चेक, घड़ी वाली टाइम देख लो, 4:02 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, और ये खास शो आपके लिए भाई डिजाइन किया गया है जिसका नाम है द रिक्वेस्ट शो, जहां पर आपके अपने मर्जी के गाने चलेंगे और ये मर्जी के गाने थीम पर बेस्ड होते हैं। जिनको नहीं पता उनको बता दें, ये जो शो है, इस शो में खास तौर पे हर दिन एक नया थीम होता है, और अभी तक सिर्फ आतिफ असलम भाई साहब रिपीट करे गए हैं, वरना तो कोई भी अभी रिपीट नहीं हुआ है। हाँ ये हो सकता है कि किसी मूवी का थीम रहा हो और किसी दिन किसी सिंगर का थीम रहा हो, तो मूवी वाले में उसी सिंगर का गाना प्ले हो गया जो किसी और दिन सिंगर था। आए समझ में? छोड़ो रहने दो यार, इन सब में छोड़ दो, आज हम थीम पर बात कर लेते हैं डायरेक्ट किसका गाना प्ले होने वाला। एक सिंगर है जिनका नाम है राहत फतेह अली खान साहब, इनके गाने आज प्ले होंगे, मजा आने वाला है। एक से बढ़कर एक गाने इन्होंने गाए हैं, और कुछ तो गाने इन्होंने नुसरत साहब के भी गाए हैं, लेकिन राहत नए जमाने के गाने भी गा रहे हैं, और उनका जो स्टाइल है वो थोड़ा मॉडर्न है। नुसरत साहब क्या है, वो बहुत लंबे लंबे गाना गाया करते थे, और उनकी कॉम्पोजिशन नहीं होती थी उनकी, बस देखो दो चार यू नो लोग हुआ करते थे और उसी में खूबसूरती वो शामिल कर दिया करते थे, अपनी आवाज़ से, अपने रियाज से, अपनी कलाकारी से। वो एक अलग लेवल के आर्टिस्ट थे, वो उस जमाने के आर्टिस्ट थे, लेकिन आज के ज़माने के आर्टिस्ट राहत फतेह अली खान साहब। ऑल्दो मैं कहीं पर भी इन दोनों को बराबर नहीं रखता, नुसरत साहब की जगह हमेशा पहले नंबर। बाकी हाँ ये है कि आप एरा के हिसाब से करें, मुझे लगता है कि आज के एरा वाले भी छोड़कर नुसरत साहब को पहले प्रेफरेंस देंगे, लेकिन राहत साहब को इसलिए क्योंकि वो नए जमाने के गाने गा रहे हैं, तो 2008 है ना, उनको समझ में नहीं आएगा कि वो नुसरत साहब कौन थे और उन्होंने क्या किया है। जब पहली बार आप उनका गाना सुनते तब सब किया है, इन्हीं सुनूंगा मैं। तो चले शुरू करते हैं, आज हम राहत फतेह अली खान साहब के गाने प्ले करेंगे, बहुत ज्यादा सेट की तरफ नहीं बढ़ेंगे, थोड़ा अच्छे रिन गाने और बेहतरीन कॉम्पोजिशन वाले, जबरदस्त लिरिक्स और गायकी तो है ही गजब की। नुसरत खान साहब के कुछ गाने भी प्ले करेंगे जो गाए राहत साहब ने, है ना।
2: आप सुन रहे हैं द रिक्वेस्ट शो मेरे यानी फजील के साथ, ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।
1: अच्छा आप ये भी सोच रहे होंगे ना कि यार साहब साहब कैसे करके बात कर रहे हैं। देखो यार क्या है कि कुछ लोगों के लिए ऐसे रिस्पेक्ट निकलती है भाई, ठीक है आपके जहन में उन लोगों के लिए रिस्पेक्ट ऐसे ही है, साहब लगाते हैं आप, जी लगाते हैं, है ना, वो बस ऐसे ही इसीलिए होते क्योंकि वो आर्टिस्ट, और मैं भी आर्टिस्ट आदमी हूँ, तो आर्टिस्ट आर्टिस्ट की अलग तरह से रिस्पेक्ट करता है, ठीक है। अब कई ऐसे आर्टिस्ट हैं जो बहुत ज़्यादा वेल नोन नहीं है, लेकिन मेरे दिल में बड़ी इज्जत है भाई साहब। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं, और ऑलरेडी बहुत सारा मैसेज जो है वो आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई, वालेकुम अस्सलाम, नाम लिखते जाओ तो हम नाम भी पढ़ जाएंगे। आकिब अब्बास सिंह का नाम है, प्रोफाइल में जाना पड़ता है फिर टाइम लग जाता है। फिर बॉडीगार्ड मूवी का एक गाना सुनना चाहते हैं, ये नाम है मिस्टर खान साहब। तो मैं जैसे ऐसे रिक्वेस्ट आएगी और मुझे लगेगा कि गाना ऑलरेडी मौजूद है तो हम उधर ही पहुंच जाएंगे। फिर आबिद भाई हैं, अस्सलाम वालेकुम, मेरे दोस्त मामून हैं दूध मिया की रिक्वेस्ट है, ये कौन है, प्लीज प्ले जरूरी था, ओके हाँ तो ये डायरेक्ट लिख दो उसके बाद जो बीच में लिखा वो समझ नहीं आया। फिर उसके बाद यूसुफ भाई का मैसेज है, जरूरी था, ठीक है यूसुफ भाई, और साथ में आबिद भाई, इन दोनों के गाने सेम ही हैं। फिर एक और मैसेज है, तेरे बिन दिल नहीं लगता मेरा डोल, तेरे बिन नहीं लगता दिल में है, दिल भर अली की रिक्वेस्ट है, बहुत अच्छा गाना ये। बाकी सलाम अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम, तो ये तीन

अपने पर बढ़ते हैं और फिर बाकी लोगों के मैसेज भी हम लेंगे। सबसे पहला जो गाना आ रहा है वो रिक्वेस्ट किया है तेरे मेरे सॉन्ग फ्रॉम बॉडीगार्ड। ओके, बॉडीगार्ड मूवी का ट्रैक है, लेट मी चेक। बॉडीगार्ड भाई साहब, तेरी मेरी, राहत फतेह अली खान। ठीक है, तो हमें पहला गाना तो मिल गया है, ऑब्वियसली बॉडीगार्ड का ये गाना मिलेगा ही, और मुझे लगता है कि इनके तो सारे गाने होंगे, अब इक्का दुक्का हो सकता है गाने ना हो। अब ज़रूरी था भी ढूंढना है क्योंकि आबिद और यूसुफ भाई की रिक्वेस्ट है। तड़पना भी जरूरी था, आ जाओ भाई। हाँ, तो ये भी हमारे पास आ गया है, बैक टू लव, राहत फतेह अली खान, 2014 का है ये गाना। वैसे इसके और भी गाने हैं, मैं देखता हूँ अगर वही वाला निकलना चाहिए ना। और फिर दिलबर भाई की रिक्वेस्ट, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। तो शुरू करते हैं, बाकी गाने अपन धीरे धीरे ढूंढते रहेंगे और आपके मैसेज आते रहने चाहिए। FM 107 के व्हाट्सएप नंबर 6667।

0: राहत फतेह खान और असीज कौर की आवाज में ट्रैक सुना आपने, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। और ये ट्रैक एक्चुअली में नुसरत साहब का है, लेकिन ऑफिशियल वर्जन ये सिम्बा मूवी का ट्रैक जिसे राहत साहब ने गाया। एक बार फिर से इस्तकबाल है आप सभी का FM 107 पे। 4:22 हमारे स्टूडियो की घड़ी में, बाकी तीन गाने भी हमने निकाल लिए और ये तीनों गाने एक से बढ़कर एक है। सबसे पहला जो गाना आ रहा है वो है मेरे ब्रदर की दुल्हन, इश्क रिस्क। क्या था इश्क रिस्क? हाँ, इश्क रिस्क। असल में सलाम करने के बाद भाई ने लिखा है, सरफराज इनका नाम है, कैसा ये इश्क है, मैं इसी नाम से ढूंढ रहा था। फिर बाकी सर्च रिसर्च में पता चला हो ये एक्चुअली में मेरे ब्रदर की दुल्हन मूवी का ट्रैक है, इश्क रिस्क। ठीक है, कैसा ये इश्क है, ये भी बहुत ही गजब का गाना है। उसके अलावा मुमताज भाई ने रिक्वेस्ट किया है मेरे रश के कमर, ये भी गजब का गाना है। असल में नुसरत साहब का गाना है लेकिन इसे रिक्रिएट किया है मेरे रश के कमर। मैं तो वैसे जब भी सुनना होता है ये गाना तो मैं नुसरत साहब की आवाज़ में ही सुनता हूँ, घर पे लगा देता हूँ और फिर 15 से 17 मिनट के आपको जो सुकून का एहसास होता है तबला और पियानो के साथ, उसके अलावा ये जो है ना भाई, ये आपको सिर्फ नुसरत साहब की आवाज़ में ही मिलेगा। उसके बाद तीसरा जो गाना आ रहा है वो है तू इतनी खूबसूरत है, ये भी बहुत ही खूबसूरत सा गाना। सो सबसे पहले इश्क रिस्क, देन मेरे रश के कमर और फिर तू इतनी खूबसूरत है। जो तीसरा गाना है वो मियां इलियास साहब ने रिक्वेस्ट किया और पहला गाना है सरफराज और दूसरा गाना मुमताज़ भाई की रिक्वेस्ट पे। तो ये तीन गाने बैक टू बैक तो हैं, लेकिन एक और शख्स थे जिन्होंने मेरे रश के कमर कहा है प्ले करने को, उनका नाम मैं ढूंढ रहा था अभी, तो यहीं थे। जैसे ही नाम ढूंढने लगा गायब हो जाते हैं, इससे पहले सब दिख रहे होते थे। तेरे मस्त मस्त दो नैन, फजल भाई आप चीटिंग कर रहे हो, मैं भी तो आपको सेंड किया। अरे भाई तेरे मस्त मस्त दो नैन जो है वो कुछ दिन पहले प्ले हो चुका है और आपका मैसेज थोड़ा लेट आया, बाकी लोगों का मैसेज भी प्ले करना है तो ये मसला है। और फरहत साहब ने भी कहा था मेरे रश के कमर, हाँ ये तो मेरे रश के कमर, ये इनका भी गाना जो है अपने पास आएगा और मस्त मस्त दो नैन भी प्ले हो जाएंगे। फिर इकबाल साहब कह रहे हैं आफरीन आफरीन, जहाँ तक मेरा आइडिया है वैसे तो ये नुसरत साहब का, लेकिन क्या आफरीन आफरीन, हाँ गाया है शायद, मेरे ख्याल से राहत साहब ने भी गाया। हाँ राहत का गाना है ये मोमिना मुश्तहसन के साथ और कोक स्टूडियो का ये ट्रैक है, लेकिन ये थोड़ी देर में आएगा अगर हमारे पास वक्त बचा तो। तो सबसे पहले ये गाना प्ले करते हैं, तेरे मस्त मस्त दो नैन अगर आ गया तो आ गया, और फिर इकबाल भाई की रिक्वेस्ट पे ये जो गाना है ये भी अगर आ गया तो आ गया। फिर एक और भाई हैं, इनका भी इनकी भी रिक्वेस्ट देख लेते हैं। ये है इमरान साहब का दर्द से मेरे है तुझको, ये कौन सा गाना है इमरान भाई, पूरा और लिखो। सलाम वालेकुम सलाम, दर्द से मेरे है तुझको, क्या है पूरी बात इसमें है नहीं मेरा भाई, थोड़ा और क्या ना डिटेल से लिखो तो मेरे को समझ में आए। फिलहाल किसी के ब्रदर के दुल्हन के मूवी से ट्रैक राहत फतेह खान साहब की आवाज में,
1: रामपुर मेरठ और इटावा से।
0: हाँ।
1: संगीत है सोहेल सेन का,
0: सही
1: बोल है डॉक्टर इरशाद कामिल के, पेश करते हैं हर आशिक के दिल को कुरेदने वाला गाना, कैसा ये इश्क है अजब सा रिस्क है।
0: FM 107 दिल से सही।

क्या कहने हैं। राहत फतेह खान साहब की आवाज में ये गाना सुना आपने FM 107 पे, और ये लाजवाब गाने आपका आपकी शाम एक्चुअली बना रहे होंगे। और राहत फतेह खान साहब नुसरत के काफ़ी गाने गा चुके हैं, और उनके जो गाने यानी कि नुसरत साहब के कोई ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। तो क्या होता है कि जब एक फेमस गाना है उसको दोबारा रीमेक करके गा दो तो फिर उससे पैसे आ जाते हैं।

तो वैसे भी लेकिन राहत अली खान साहब तो अच्छा गाना गाते भी हैं। लेकिन अब जो दो गाने हैं वो दो गाने भी बड़े ही गजब के हैं, और ये दोनों गाने राहत के ओरिजिनल हैं। एक है आफरी आफरी और एक है तेरे मस्त मस्त दो नयन, और ये दोनों गाने लोगों ने रिक्वेस्ट किए थे। तो पहला गाना है अहमद सैम ने जो कहा है, और साथ ही आसिफ के किसी का नाम है, आसिफ भाई ने कहा है आफरी आफरी जो है वो प्ले कर दिया जाए। तो ये गाना जो आ रहा है ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, लेकिन उससे पहले आफरी आफरी भी किसी ने कहा था, और वो है इकबाल भाई की रिक्वेस्ट पे। ये दो गाने आपके लिए एफ एम 107 पे। और राहत साहब दुनिया के मोस्ट सेलिब्रेटेड साउथ एशियन प्लेबैक और सूफी डिवोशनल कव्वाली सिंगर जो हैं वो हैं, और हिस्टोरिकल म्यूजिकल गाने जो इन्होंने गाए हैं वो गजब के हैं। ऐसा नहीं है कि आज इनका बर्थडे है तब हम कर रहे हैं, वैसे अगर बर्थडे होगा तो 9 दिसंबर को आपको सुनने को एक बार दोबारा मिलेगा, क्योंकि इनका असल में जो बर्थडे है वो 9 दिसंबर का है। गजब की कव्वाली है इनकी, और इन्होंने ट्रेन किया नुसरत साहब के साथ जो कि इनके अंकल थे। तो अब जब नींव बहुत कर्री हो, मजबूत हो, ताकतवर हो, तो पेड़ बहुत ऊँचा होता है। तो नुसरत साहब तो ऊपर थे ही, लेकिन उनके साथ साथ जो ब्रांचेज हैं यानी कि जो राहत साहब हैं वो गजब के सिंगर हैं, और पाकिस्तान के ये सिंगर एक से बढ़कर एक बेहतरीन सॉन्ग जो है वो हमें दे चुके हैं। चाहे वो आफरी आफरी हो, तेरे मस्त मस्त दो नैन हो, चाहे वो ज़रूरी था हो, बहुत ही ज़्यादा फेमस ये गाना हुआ था, इतना ज़्यादा फेमस कि ज़रूरी था का दूसरा एक वर्जन वो भी लाना पड़ा था। सरप्राइज कि वो गाना लोगों ने रिक्वेस्ट नहीं किया, लेकिन ठीक है, ऑब्वियसली एक गाना जो प्ले हो गया है उसके अलावा हम नहीं प्ले कर सकते। हाल ही में एक गाना और भी ज़्यादा चला था, एक तो जग घूमिया फिर और पिया, तो ये सारे गाने बहुत ही ज़्यादा हिट रहे हैं। फिलहाल अभी ये दो गाने आ रहे हैं, इससे इन्जॉय करें एफ एम 107 पे। पहला है आफरी आफरी बाय राहत, और फिर है तेरे मस्त मस्त दो नए। तो उसके बाद जब वापस आएंगे तो हम खेलेंगे गेम पहचान कौन।

राहत अली खान साहब और शिया ने गाया है ये खूबसूरत ट्रैक। दिल तो है और है कि यार और थोड़ा सा प्ले कर दिया जाए, लेकिन वक्त की कमी ने मजबूर कर दिया है, मेरा हाथ बांध दिए हैं। यार मैं सोच रहा हूँ बॉलीवुड का राइटर ही बन जाऊँ क्या। हबीबी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। एफएम 107 पर इस्तकबाल है आप सभी का, और ये शो द क्विज शो, और वक्त है पहचान कौन खेलने का। बड़ा सिंपल सा है ये गेम, जहां पर आपको लिरिक्स बस पहचाननी है और आपको हुक बताना है या फिर गाने का नाम बताना है। हुक अगर याद है तो, वरना गाने का नाम भी बता सकते हो, और वैसे भी गाने का नाम हुक एक ही होता है, सिमिलर ही होती है मोस्टली, तो सिमिलर ही होता है। तो आज क्योंकि थीम है राहत फतेह खान साहब की, तो राहत के ही गाने जो हैं मैं यहाँ पर कट करके प्ले करने वाला हूँ, उसे सुनिए और आप बताइए कि राहत के वो कौन से गाने हैं जो मैंने प्ले किए हैं। तो सबसे पहला गाना जो आ रहा है वो है ये।

भाई साहब देखिए मैंने आसान रखा नहीं है, लेकिन जिस तरह के यार राहत साहब गायकार हैं, आप उनको पहचान ही जाएंगे, है ना, उनके गाने को पहचान जाएंगे, फेमस ही इतने कर दिए हैं इन्होंने। चलो तो शुरू हो गया है, आपको हमारे व्हाट्सएप नंबर 6662107 पे आना है, 6662107। मोबाइल चार्ज है? हाँ अरे भैया 94 पर, नया मोबाइल जब से आया भाई साहब एकदम ही जिंदा रहता है।

क्या बात है। तो सबसे पहले जो जवाब आया है उस पर बढ़ते हैं और पहली रैंकिंग में फलक एसआर के आ गए हैं आज, उसके अलावा इलियास भाई दूसरे नंबर पे आए हैं, तीसरे नंबर पे हैं कैसर साहब, चौथी रैंक है नहीं तो माजरत हेशाम भाई हैं। फिर उसके बाद ये जवाब सही नहीं है या फिर ये इन्होंने रिक्वेस्ट करी है, अगर रिक्वेस्ट भी करी है तो भी गलती है एक तरह से क्योंकि अब तो वक्त है नहीं रिक्वेस्ट का, अगर जवाब दिया तो भी गलत है। फिर उसके बाद अहमद सैम ने कहा है बिल्कुल सही कहा है, जो जवाब दिया बिल्कुल सही दिया है। और ये जवाब एक और है हमारे पास, थैंक्स भाई, अच्छा ये दूसरा थैंक यू आया है और उसके साथ जो जवाब आया बिल्कुल सही, आसिफ भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया, यूसुफ भाई थोड़ा लेट कर गए लेकिन बिल्कुल सही जवाब है। और अच्छा यूसुफ भाई ने क्या लिखा है, फजील आपने तो माशाल्लाह इतना प्यारा आलाप लिया है लाइक प्रोफेशनल सिंगर, आप अच्छा गा लेते हैं, इतनी प्यारी आवाज़ तो है। देख रहे हैं इंसान अपने गाने प्ले करवाने के लिए क्या नहीं करता है। अरे मैं बहुत बेहतरीन सिंगर हूँ, कुछ अगर कोई पैसे ऐसे दे तो मैं सिंगर जो है वो बन जाऊँ, लेकिन ये वाला काम चलता रहेगा, मुझे पता है कि वो वाला काम हो सकता है किसी दिन खराब हो गया तो ये तो चलता रहे। देखो भाई स्मार्ट फैसला लेने में मैं बहुत आगे हूँ, ठीक है, क्या पता किसी को सिंगिंग पसंद ना आए तो मेरा आलाप कहे अरे भैया आपका आलाप जो है वो आलाप हो नहीं रहा है। तो फिर मैं वो आलाप छोड़ूंगा ना। फिर जीशान भाई ने भी बिल्कुल सही जवाब दिया है। और उसके बाद गुड आफ्टरनून सलमान साहब, गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग हो रहा भाई, बहुत देर हो गया यार जागे हुए, आपकी टाइमिंग अलग, आप 12 बजे सोकर उठते हैं आपको लगता है 4 या 5 अगर बज रहा है तो गुड आफ्टरनून होगा, ऐसा है नहीं। तौसीफ भाई ने कहा है वंस अपॉन टाइम इन मुंबई, बस ये लिखा हुआ है, गाने का नाम लिखना है लेकिन कोई बात नहीं, गाने का नाम क्या है वो मैं बता देता हूँ, गाने का नाम तुम जो आए।

तुम जो आए राहत और तुलसी कुमार की आवाज में गाना था, बहुत ही उम्दा लोगों ने जज किया। दूसरे सॉन्ग पर आएंगे लेकिन उससे पहले एक भाई सीबी इनका नाम है, इन्होंने कहा भाई एक सॉन्ग प्लीज सिंग, गाना गा दो, ये कहा है। कितनी हिम्मत है लोगों में भाई, कह रहे हैं गाना गा दो। अरे भाई क्यों रेडियो बंद करवाना चाह रहे हो? एक तो लोग स्टेयरिंग लेकर गाड़ी चला रहे हैं, कहीं उनको बुरी आवाज लगी, एकदम से दाएं बाएं कर दिया तो फिर दाएं बाएं हो जाएगा मामला। भाई मेरा भी काम दाएं बाएं हो जाएगा, काहे के लिए? भाई देखो अच्छा खासा कान के पर्दे आपके काम कर रहे हैं, बेवजह खून निकल आएगा। मत ये रिस्क मत लो मेरा भाई। दूसरे सॉन्ग पे हल्के हाथ से जंप कर लेते हैं।

यहाँ पर मुझे लग रहा है मैंने फंसाया लोगों को, बट लेट्स सी, लोगों के जवाब तो आ रहे हैं खैर. लेकिन कुछ तो चेंज हुए हैं रैंकिंग. ठीक है, जो मैं देख पा रहा हूँ, एक आया मैसेज, सलाम वालेकुम, 890 का गाना सुना दो. है 800? ये भाई ये कोई मूवी वूवी भी है? ये कौन से, ये कब से होने लग गया भाई के गाना गाने के नाम से नहीं है और वो नंबर से, न्यूमेरिक नंबर से आ रहे हैं? यार कैसे हो रहा भाई, मुझे नहीं समझ में आ रहा. मैंने तो आज कुछ ऐसा खाया भी नहीं है या पिया भी नहीं है कि मुझे कुछ अलग सा दिखे भाई. एकदम सही दिख रहा है. उसमें 890 का गाना सुना दो, यार ये क्या है भाईजान? बसीर साहब आप क्या लिखना चाह रहे हैं? खैर, रैंकिंग में चेंज है ये मैं बता दूं.

0: सर साहब नंबर वन पे आ गए हैं, इलियास भाई दूसरे नंबर पे आ गए हैं, फलक एसआर के तीसरे नंबर पे पहुंच गए हैं, और अहमद सैम जो है वो तीसरे नंबर पे हैं, चौथे नंबर पे, सॉरी फलक एसआर के चौथे नंबर पे। फिर इसके बाद हिशाम सही जवाब देते हुए आसिफ के किसी ने सही जवाब दिया है, उसके अलावा एक और हैं, ये का नाम लिखा है यासीन, इन्होंने भी सही जवाब दिया है। ज़ुबैर साहब कहते हैं दिल में है तुमको आँखों में तुम सिंगिंग सॉन्ग, भाई ये अब रिक्वेस्ट नहीं प्ले हो रही है, माजरत के साथ। फिर उसके बाद एक मैसेज डिलीट किया है तो सीफ भाई ने, याद नहीं आ रहा यूसुफ भाई को कि ये गाना कौन सा है, एक बार फिर से प्ले करें, किसने लिखा है, ठीक है मैं प्ले कर देता हूँ। नाम इन्होंने लिखा नहीं, सलमान नाम है।
1: खुलती फिजाए, खुलती घटाए, सर पे नया है आसमान।
0: बताइए गाने का नाम। इसी के साथ मिनाज और जीशान ने भी बिल्कुल सही जवाब बताया है। अब जो गेम ये चल रहा है आखिर मोड़ पर आ गया है। अब ये तीसरा जो गाना मैं प्ले करने वाला हूँ इसका जवाब अगर आपने सही दिया, और इससे पहले भी अगर आपने दो जवाब सही दिए, तो आपकी रैंकिंग पहले दूसरे और तीसरे पे आ सकती है। बहुत तेज़ होना है आपको लिखने में, और नेट भी तेज़ होना चाहिए भाई साहब, कहीं ऐसा ना हो 2G पे चल रहे हो तुम तो बहुत देर हो जाएगी। लिखा तो जल्दी था भैया, मैसेज देर में पहुंचा। तीसरा सॉन्ग है राहत फतेह खान साहब की आवाज़ में। ये गाना आज प्ले नहीं हुआ, लेकिन एक बंदे ने रिक्वेस्ट जरूर किया था और मैंने बताया भी था। गाना पहचानिए, गाने का नाम बताइए, और गाना है ये।

ओए होए, पूरे चेंज हो गए। लग रहा है खेल यहाँ पर बिल्कुल तेजी से चेंज हुआ है। पहली रैंकिंग से ही आते हैं हम, ठीक है। ये रैंकिंग जो है जीशान की सबसे पहले पे आ गई है और फिर अहमद सैम की सबसे दूसरे पे आ गई, जबकि ये थे ही नहीं लाइन में, है ना। पहले सॉन्ग तक तो लाइन में थे नहीं, दूसरे पे पहले पे आए, फिर उसके बाद अभी सैम सेकंड नंबर पे आ गए हैं अहमद सैम, और कैसर साहब जो पहले नंबर पे थे वो अब तीसरे नंबर पे आ गए। तो तीसरी रैंक कैसर साहब की है, दूसरी सैम की है, और पहली जो लाइन में ही नहीं थे जीशान भाई, बहुत देर में आए लेकिन दुरुस्त आए। तो तीनों गाने बिल्कुल सही पहचाने हैं। आसिफ के कैसी हैं जिन्होंने सही जवाब दिया है उससे, और लेट मी टेल यू, यूसुफ भाई सबसे पहले थे जवाब देने में आज का ये जो तीसरा, लेकिन उन्होंने सिर्फ दो सही जवाब दिए, तो यूसुफ भाई भी लाइन में होते अगर वो तीन के तीन सही जवाब देते। तो इलियास ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, फिर फलाक एसार के ने सही जवाब दिया है, शाम ने सही जवाब दिया है, और फिर तौसीफ ने भी सही जवाब दिया है, मिनाज ने सही जवाब दिया है, मोइन ने सही जवाब दिया है, और फिर जुबैर जुनैद ने सही जवाब दिया और बताया है कि गाने का नाम है।

बहुत ही सही खेल का मुजाहरा किया है आपने. पहला सॉन्ग था जो आप लोगों ने पहचाना वो ये. और दूसरा सॉन्ग था ये. और तीसरा सॉन्ग था. बाकी अब आप रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कौन सा गाना है इनमें से मैं प्ले करूं. मेरा दिल है तुम जो आए का. बाकी अब आपकी जो मर्जी होगी वही होगा FM 107 के इस शो में. बहुत कम वक्त बचा है, जल्दी से बताएं कौन सा सॉन्ग प्ले करें. यही सॉन्ग बजा दो भाई. यही सॉन्ग मैंने तीन बजा दिए हैं, अब कौन सा बताऊं बजाऊं मैं. ये सॉन्ग मिस्ड हो गया, कोई मसला नहीं है मेरा भाई. ओरे पिया कहा है एक भाई ने प्ले करने को, लेकिन ये बहुत लंबा गाना है, आई गेस 6 मिनट का गाना है. मैं तुम जो आए प्ले करना चाहूंगा क्योंकि ये थोड़ा छोटा भी है और ज्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि 4 लोगों ने तुम जो आए कह दिया है. नाम जल्दी से पढ़ा, नाम का भी वक्त नहीं है. चलो इसी के साथ एंजॉय करो FM 107 की ये शाम, और इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल शाम 4 बजे आपके अपने मर्जी के गानों के साथ.

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें,
1: आज ही राबता करें
0: हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
2: FM 107 टाइम चेक।
3: क्लास क्लास एवरीबडी प्रिंसिपल सर राउंड में अभी बता रहा हूँ, सबके फोन चेक करेंगे, सबके फोन चेक होंगे। जिन्होंने भी व्हाट्सएप नहीं किया वो लोग पिकनिक पे नहीं जाएंगे, पहले बता दे रहा हूँ मैं। कैसी क्लास है ये, कैसी। नीचे बैठो, नीचे बैठो। अरे अभी प्रिंसिपल फोन निकालो सबके सब। जिन्होंने भी क्लास अगेन फिर से बता रहा हूँ व्हाट्सएप नहीं किया, मैं बता रहा हूँ सीधा बाहर खड़ा कर दूंगा मैं, हाथ ऊपर करके, और बैग रख दूंगा सर पे। परेशान कर दिया मुझे यार, परेशान कर दिया। नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं, कोई नहीं, कोई सुनने को राजी नहीं है भाई। आप लोग सुन रहे कि नहीं सुन रहे, मेरी बात को सुना करो, माना करो। मैं अच्छा टीचर हूँ और आज आपको टीचर कुछ बहुत ही ख़ास देने वाले हैं, इसलिए जो है मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि अपने व्हाट्सएप ज़रूर ज़रूर निकालें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब चलाओ म्यूजिक, अब चलेगा।
4: हम भी वो हैं जो कभी किसी के पीछे नहीं खड़े होते।
3: हाँ बिल्कुल,
4: यहाँ खड़े हो जाते हैं
3: वहीं से,
4: वहीं

हाँ भाई, आपका एंटरटेनमेंट का सिक्योरिटी गार्ड हाजिर है। और भाई सबने व्हाट्सएप निकाल लिए, नहीं निकाले जिस तरह नहीं निकाले, मैंने कह दिया भाई पिकनिक पे नहीं ले जाऊंगा, साफ सीधी बात हो गई, सीधी बात है, नो बकवास। बाकी व्हाट्सएप मैसेज आ रहे हैं मेरे पास भर भर के सबको पिकनिक में जाना भाई एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, मेरे अटेंडेंस सर्वर भाई लगा देंगे। ये कितने शैतान बच्चे, सर्वर भाई क्यों लगा देंगे दादी भाई, सर्वर को बुलाओ, आज भी नहीं आया ना वो क्लास में, सर्वर घुसने मत देना कल से क्लास में, बताता हूँ उनको, तुम्हारे दोस्त है ना वो। एक मैसेज है मलिक वकास साहब का, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, गुड इवनिंग, कल वाली स्टोरी जो मैंने खुद से फील किया क्योंकि अच्छा ओके ओके ओके टाइम से पहले ट्रीटमेंट, भाई थैंक यू सो मच फॉर फीलिंग द स्टोरी एज वेल, जजाकल्ला, एंड आई होप कि सब कुछ ठीक रहे आपके साथ। अब्दुल करीम भाई वालेकुम अस्सलाम, मैसेज आया मुबीन बुखारी साहब, मुबीन बुखारी साहब वालेकुम अस्सलाम, और यूसुफ भाई वालेकुम अस्सलाम, कह रहे हैं आज स्कूल के प्रिंसिपल साहब हैं बहुत ही स्ट्रिक्ट हैं, बहुत ही स्ट्रिक्ट वो जो है ना वो तार जो है वो आगे से नंगे करके फिर मारते हैं। वालेकुम अस्सलाम मोहसिन भाई, कैसे हैं भाई, सब बढ़िया भाई। और इनके बाद मैसेज किया प्रेजेंट सर, आजी आप भी आजी, कब्बू भाई लिखा उन्होंने, मकसूद भाई ने, थैंक यू सो मच। और सैयद हमजा भाई लिखते हैं कल ही पिकनिक पर जाने का प्रोग्राम है, कैंसिल हो जाता अगर मैसेज नहीं आता, आज मैं बताऊँ आपको, मैंने भी जाना है सर ट्रिप पर, बढ़िया अवेश भाई लेके जाएंगे आपको। और मैं कम इन सर, एक सेकेंड, कौन बच्चा है, एम के कहाँ थे बेटा आप, कहाँ थे, ये बंक मारने का टाइम था आपका, क्लास से बाहर घूमने सारे बच्चे अंदर हैं, मैं आए कमेंट कर रहे हैं, बताओ ये डायरी पे लिखवा के लाओ ठीक है, कल पापा साइन कराओ। एक मैसेज है, हाजिर है सर, वालेकुम अस्सलाम मोइन भाई, और भाई कह रहे हैं रोज़ रोज़ बच्चा रुला के शाबाशी देते हो, ये कोई हिसाब हुआ वेलकम वेलकम, थैंक यू इजाम साहब, वालेकुम अस्सलाम, जज़ाकल्लाह। लगता है मेरे को ऐसा लगता है कि ट्रिप में किसी को रोस्ट किया है, नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं ऐसा मोहम्मद भाई, किसी को रोस्ट नहीं किया, मैं बड़ी मोहब्बत के साथ सरवर भाई को रोस्ट कर सकता हूँ, मुझे पूरी परमिशन है, तो मैं उनको जब चाहूँ रोस्ट कर सकता हूँ। तो एक मैसेज है, पाजी मैं अभी उधर, हाँ जी कैद साहब क्या हाल है मेरे भाई के, एम के भाई लिखने, लव यू सर, लव यू तो कुछ नहीं होगा बेटे, आपको साइन करा के लाना पड़ेगा, आप क्लास में लेट आए, बंक मार रहे हैं आप, वो भी मेरी क्लास में, मेरी क्लास में कोई बंक नहीं मार सकता प्लीज़। अच्छा मैं आपको बता दूँ बिफोर आई इवन बिगिन, आज की जो कहानी है क्या प्रूफ दो रोस्ट करने का ये मैं मैसेज में दूं चलेगा आपको, मतलब वहाँ पे। वालेकुम अस्सलाम बासित भाई जब भी मैसेज करते हैं तो मैं आराम से कह देता हूँ, मेरे अमेरिका से मैसेज आया ब्रो, सीधा केंटकी से, इतने फैंसी फैंसी लोग, बड़े बड़े लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, माय गॉड इतनी तारीफ है कि मैं कहाँ जाऊँ। शकील अहमद साहब सॉरी लिख रहे हैं मैसेज है, आप लेट आए, ये लो ये टीचर को ही कह रहे हैं आप लेट आए। शकील बहुत आपकी वो शिकायतें आ रही हैं बेटे, मैं बताऊं आपको, समझ में आई, ये लास्ट बेंच पे जाके जो आपने पराठे खाए हैं, हाँ बताऊं मैं अभी प्रिंसिपल को, बदतमीजी की हद होती है। एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम, कल डॉक्टर थे आज क्या हैं आज दुग्गल साहब पायलट बनेंगे शमशाद भाई और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम उस्ताद उमर अली विद स्टूडेंट शमीम फ्रॉम LNP पार्किंग, भाई हो गई पार्किंग तो हो गई थी, ड्राइविंग टेस्ट बचा था। माज भाई क्या सरवर भाई तो अपने हैं, ये देखो सरवर भाई ने अपने पूरे इलेक्शन का इंतजाम किया हुआ है, मुझे प्रूफ नहीं दे सकता मैं। एक मैसेज सर, आज क्या है, आज कहाँ हैं, आज कहना नहीं लाकर घर पे आपसे कहला दें, मैं समझा को नहीं कामरान भाई ये बात, वोट ओनली फॉर कबीर भाई, थैंक यू सो मच मलिक वकास साहब, हमारा नेता कैसे हो, मेरे तो चुनाव चिन्ह भी बनवा लूँगा आज मैं एक भाई लिखते हैं कबीर भाई एक तरफ क्यों हुआ भाई, अच्छा सॉरी मैंने गलत पढ़ लिया, कह रहे बाकी सब एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ, थैंक यू सो मच, अखा बॉलीवुड वाली लाइन मारना चाह रहे थे बट ओके। एक मैसेज है, अबू बकर पास हो गया आज शमीम की बारी है, भाई ऑल द बेस्ट भाई, जिनके भी ड्राइविंग टेस्ट चल रहा है भाई, बहुत दुख होता है भाई जब किसी का टेस्ट नहीं होता ना क्लियर, पर मुबारक हो जिनका हो गया है क्लियर। अच्छा मैं अब आपको कहानी के बारे में बता देना चाहता हूँ, बिकॉज आज आपका फोकस मुझे पूरा का पूरा चाहिए, पूरा फोकस चाहिए मुझे, समझ रहे हैं आप, अब मेरी बात सुनिए गौर से, आज की कहानी जो है ना एविएशन की स्टोरी है और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग स्टोरी है, कभी मैंने शायद किसी कहानी के लिए नहीं बोला होगा, आज की कहानी बहुत फ्रस्ट्रेटिंग है भाई मतलब हर मोमेंट पे आपको लगेगा मैं स्टीयरिंग निकाल लूँ अपनी गाड़ी की, ऐसी फ्रस्ट्रेटिंग कहानी है। सो इफ़ यू आर रेडी फॉर समथिंग रियली रियली डिफरेंट और एविएशन की कैटेगरी में, तब तो आपको मेरे साथ रुकना चाहिए, क्योंकि ये कहानी आपको सच में मौज करा देगी भाई, मतलब आएगा आपको मज़ा तो आएगा पर फ्रस्ट्रेशन भी उतनी होगी, तो गेट रेडी फॉर सम फन ठीक है। 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलेंगे आपसे और बढ़िया करके भाई सीधा कहानी में कूदेंगे। और ये कह रहे हैं ट्राई करूंगा फोकस का, ट्राई व्राई कुछ नहीं होता भाई मोहसिन भाई, करना पड़ेगा भाई। और कह रहे हैं तो गाड़ी चलाते हुए सुने या साइड रोक दें, माज भाई अगर टैम टूम हो तो भाई साइड में रोक के सुन लो भाई, बढ़िया लगेगा भाई। और

0: आपने जो मुझे मैसेज किया आइडिया का, उसके बाद माज में माज भाई मैं शो के बाद बताऊंगा मुझे। हाँ मेहनत कर रहे हैं क्या है बाकी बच्चों, भाई दुआएं दुआएं पूरी दुआएं। और सैयद हमजा भाई कह रहे हैं कल के लिए पहले से माजरत, कल तो बंक है। सैयद भाई ठीक है, अब आप पहले छुट्टी ले रहे हैं तो ठीक है। हाजिर जवाब, हाजिर जनाब, वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज किया है फराम भाई ने, थैंक यू सो मच। और एक भाई ने वही मैसेज किया जो मैंने सोचा था कह रहे आपको आज तक देखा नहीं है मैंने सामने से, तो मैं कैसे मान लूं कि आप असली हैं फरकान भाई मैं असली हूं भाई, ये मैं कैसे प्रूफ करूं ये प्रूफ करना बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। यूसुफ भाई कह रहे हैं अक्खा बॉलीवुड एक तरफ, कबीर भाई एक तरफ, थैंक यू। फुरकान भाई कह रहे हैं कह रहे मैंने आपको देखा ही नहीं, मैं कैसे मान लूं आप हैं। तो भाई फिर ये एआई है और क्या है, एआई है भाई, फिर तो मैं कुछ कह ही नहीं सकता। एक में से ये तो कल वाली स्टोरी जैसा हो गया कि मैं जिंदा नहीं हूं, वही वाला सीन है। माज भाई माने को नहीं भाई, ये कह रहा ये तो एआई है। ठीक है भाई, फिर प्रॉम्प्ट दे देना, कहानी अपने आप चल जाएगी भाई। 11 मिनट 2 सेकंड के बाद मिलते हैं। ये मेरे ही शो में मेरे साथ क्यों होता है, समझ में नहीं आता। मिलते हैं शाम का, प्रॉम्प्ट तो दो, प्रॉम्प्ट दो अगले का, दे दिया। अच्छा ठीक है, मैं भी थोड़ा स्लो एआई हूं ना ये लो
1: दिन भर की मसरूफियात और थकन के बाद जब कोई शाम को अजगार का एहतमाम करता है तो ये महज जिक्र के चंद अल्फाज नहीं होते, बल्कि अल्लाह ताला से ताल्लुक को मजबूत करने और रूहानी व नफ्सियाती तवानाई को ताज़ा करने का जरिया बनते हैं। आइए समाअत कीजिए शाम के अज़कार FM 107 पर।

दोहा से कोचिन की ये 4.5 घंटे की जर्नी है, और लैंड होने की जो टाइमिंग थी वो सुबह के 5:30 बजे के करीब थी, वेरी अर्ली मॉर्निंग। अब जो कैप्टन थे जो इस जहाज को उड़ाने वाले थे वो थे 40 साल के, और उनको जो एक्सपीरियंस था वो 6,000 घंटों का था, गुड अमाउंट ऑफ एक्सपीरियंस। और उन्होंने अपनी फ्लाइट स्कूल में सारी पढ़ाई खत्म करके कुछ ही टाइम में ज्वाइन कर लिया था जेट एयरवेज को, और यूं समझिए कि इस जहाज के बोइंग 737 के वो मास्टर थे। अब इनके साथ में जो थे, जो को पायलट थे, फर्स्ट ऑफिसर थे, ये इनके मुकाबले काफी नौजवान थे। फर्स्ट ऑफिसर जो थे, को पायलट, वो जूनियर थे, 25 साल के थे और 1500 घंटों का ही एक्सपीरियंस था। एक तिहाई एक्सपीरियंस जो था वो 737 पे था। ये दोनों ही पायलट बहुत आराम कर चुके थे, अच्छे खासे वेल रेस्टेड थे इस फ्लाइट के लिए, दोनों के एकदम क्लीन रिकॉर्ड थे। और एयरलाइंस जेट एयरवेज काफी सक्सेसफुल एयरलाइंस थी उस टाइम पे, 100 एयरक्राफ्ट थे इनके एंड 70 से ज्यादा इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस कवर करते थे ये लोग। तो फिर जहाज में सब बोर्ड हुए और 6 क्रू मेंबर्स जो इस एयरलाइंस के थे इस वक्त, उन्होंने सबको प्रॉपरली बिठाया, सब बैठे। बाहर भी जहाज के सीन जो था वो बहुत ज्यादा बिजी चल रहा था, बैगेज लोड किए जा रहे थे, फ्यूल भरा जा रहा था। अब इस कहानी में मेरा साथ दीजिएगा, बिकॉज नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू कि आप एक एक चीज पे ध्यान दें। मैं कोशिश करूंगा एक एक टेक्निकल चीज जितनी आसानी से समझा सकूं उतना समझाऊं। तो कमर्शियल फ्लाइट जो होती है ना, कमर्शियल फ्लाइट जिसमें हम अपने अपने मुल्कों में जाते हैं, इसका जो फ्यूल होता है, जो उसके अंदर पेट्रोल, देसी भाषा कर देते हैं, जो उसके अंदर तेल डलता है ना उड़ाने के लिए, वो बड़ा कैलकुलेटेड होता है। वो कुछ चीजों पर डिपेंड करता है, जैसे कि फ्लाइट जो है वो कहां से कहां तक जा रही है, हवाएं कैसी हैं, मौसम कैसा है। अगर लैंड वहां पर नहीं हो पाया खुदा ना खास्ता, तो इसका ऑल्टरनेट रूट क्या होगा, जैसे कोचिन नहीं तो फिर कहीं और जाना पड़ जाए तो उसके लिए भी, और वजन जहाज का, ये सब कुछ कैलकुलेशन में आता है। और उसके बाद एक कमर्शियल एयरलाइन में, जहाज में पेट्रोल भरा जाता है, तेल डाला जाता है, ठीक है। इसीलिए कैलकुलेट करा गया। अब ये जहाज जो था ये दोहा से उड़ने वाला था, कतर से, और कोचिन तक इसे पहुंचना है, तो इसके अंदर कैलकुलेशन बिठाया गया। 216 किलो 216 kg फ्यूल लगेगा कहां से कहां तक, बोर्ड करने के बाद टैक्सिंग करते हुए रनवे तक आने के लिए, सिर्फ और सिर्फ रनवे तक आने के लिए 216 kg। उसके बाद 11.1 टन फ्यूल जो है वो लगेगा कोचिन तक जाने के लिए। इसके ऊपर टॉप किया जाता है, थोड़ा सा और डाला जाता है, 0.5 टन, और वो इसलिए ताकि कहीं जरूरत पड़ जाए खुदा ना खास्ता तो काम आ जाएगा। और उसके ऊपर 2 टन अगर कोचिन में नहीं उतर पाए तो बैंगलोर की तरफ चले जाएंगे और बैंगलोर में फ्लाइट को लैंड कर लेंगे। और एक और चीज होती है जिसके लिए 105 किलो तेल भरा जाता है, वो होता है एपीयू। एपीयू मतलब फ्लाइट के अंदर जो हम एसी के मजे लेते हैं, एसी और इंजन को चालू करने के लिए, इन सब के लिए 105 किलो एक्स्ट्रा। और 1 टन और एक्स्ट्रा फ्यूल होता है, तेल डाला जाता है, वो होता है रिजर्व। जैसे गाड़ी रिजर्व में पहुंच जाती है ना, तो जहाज के लिए भी 1 टन फ्यूल रिजर्व में रखा जाता है कि भाई बिल्कुल लास्ट के 30 मिनट की उड़ान पे अगर नौबत आ गई तो ये काम आएगा, बेसिकली फ्यूल इमरजेंसी। अब सब मिलाकर, सब कुछ मिलाकर इस जहाज में डाला गया था फ्यूल 15,295 kg, जो कि बहुत ज्यादा है। और ये काफी है कि एक जहाज जो है, जो दोहा से कोचिन जा रहा है, वो आराम से आसमान में 5 घंटे और 53 मिनट 53 मिनट्स आराम से उड़ सकता है। अब जरा मौसम की बात कर लेते हैं। उड़ान से पहले चेक किया जाता है कि मौसम कैसा है। तो मौसम जो कोचिन का था वो थोड़ा सा अलग हो रहा था, थोड़ा सा मिस्टी था। वो होता ना, तो बारिश के बाद थोड़ी सी मिस्ट आ जाती है, थोड़ा सा, थोड़े से बादल छाए रहते हैं, थोड़ा सा हल्का सा कोहरा होता है, वैसा वाला मौसम था। तो कैप्टन ने कहा एक काम करते हैं, 7.5 kg और भर लेते हैं जहाज में। तो 750 kg इस जहाज में और भरा गया कि कहीं लैंड नहीं हो पाए तो जहाज वापस होल्डिंग में जाएगा। होल्डिंग मैंने कितनी बार कहानी में बताया ना कि अगर नहीं लैंड कर पाया तो जहाज पीछे जाएगा, वापस घूम के ट्राई करेगा। तो उस होल्डिंग, उसे होल्ड

उन लोग पायलट्स क्रू मेंबर्स और पैसेंजर्स को मिला के और इसमें फ्यूल बैगेज और सब कुछ। दोहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से इसे पुश बैक किया गया, टैक्सिंग आउट हुई। दोहा का मौसम खूबसूरत था और अगस्त के महीने में नॉर्मली हल्का गर्म ज़रूर होता है लेकिन इट्स ब्यूटिफुल वेदर इन टोटैलिटी, तो उड़ने के लिए एकदम अच्छा मौसम है। चेकलिस्ट पूरी की गई और उसके बाद रनवे पर जहाज खड़ा हुआ। क्लियरेंस मिली ATC से रात के 11:15 पे और कुछ ही देर में जहाज के इंजन दहाड़ने लगे और फिर जहाज एयरबॉर्न हो गया आसमान में। जहाज जब एयरबॉर्न हुआ आसमान में था तो कैप्टन ने ईस्ट की तरफ जहाज को किया, ईस्ट की तरफ उनका राउट था कोचिन की तरफ जाने के लिए। जहाज के फ्लैप्स को रिट्रैक्ट किया, बंद किया और जैसे जैसे रफ्तार तेज हो रही थी उन्होंने ATC से परमिशन ली कि वो जहाज को ऊपर ऑल्टीट्यूड मिले जाए और ऊंचाई पर क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड। ऑटो पायलट कनेक्ट कर दिया गया। ऑटो पायलट कनेक्ट होने के बाद अब पायलट्स का मेन काम हो चुका है, अब उन्हें मॉनिटर करना है, ATC की बात सुननी है और मोस्टली पूरी जर्नी सीधी सादी है। ये लोग क्रूजिंग ऑल्टीट्यूड पे पहुंचे 33,000 फीट, और कैबिन क्रू ने पीछे कैबिन में सारे पैसेंजर्स को खाना पीना सर्व करना शुरू किया। कई सारे पैसेंजर्स ऑब्वियसली रात की फ्लाइट है तो अक्सर नींद आ जाती है, तो बहुत सारे लोग अभी अपनी गहरी नींद में चले गए और कैबिन की लाइट्स को बंद कर दिया गया। कॉकपिट में भी रिलैक्सेशन था, पायलट्स बैठे हुए थे एंड जब वो अरेबियन सी के ऊपर थे, उड़ान भर रहे थे, तो उन्होंने उस वक्त सोचा कि एक मर्तबा जरा कोचिन का मौसम चेक कर लेते हैं। तो उन्होंने चेक किया और उन्हें एक बुरी खबर मिली। कोचिन में जो विजिबिलिटी थी वो 2000 मीटर की थी, बारिश हो रही थी और मिस्ट थी, फैले हुए स्कैटर्ड बादल थे 600 फीट पे और तूफान वाले बादल थे 2500 फीट पे। ये उनका अनुमान भी था, मतलब इट्स लाइक एन अजम्पशन कि इतना बुरा हाल वहां पर है, इससे ज्यादा भी हो सकता है। इसका मतलब ये था कि उन्हें कोचिन में अगर जहाज को रनवे पे उतारना है तो बहुत करीब जाना पड़ेगा, उसके बाद उन्हें रनवे दिखेगा। इट्स नॉट ईजी। इसलिए दोनों पायलट्स एक बात के लिए खुश थे कि उन्होंने एक्स्ट्रा फ्यूल, एक्स्ट्रा तेल जहाज में भरवाया है कि भाई अगर कुछ नहीं हुआ तो बेंगलोर तो चले ही जाएंगे, वहां का मौसम तो ठीक है। खैर, जहाज जो था वो 3 घंटे आराम से उड़ा, कोई टेंशन नहीं। फिर सुबह के 4 बजे मॉर्निंग लोकल टाइम पायलट्स ने कॉन्टेक्ट किया कोचिन के ATC वालों से और सबसे पहली चीज जो पूछी वो था मौसम, और उनका डर सही निकला। ATC वालों ने कोचिन में लैंड करने से पहले दोनों पायलट्स को बताया कि विजिबिलिटी है 3500 मीटर, 3500 मीटर, हेजी सा मौसम है, बादल थे 1500 फीट पे और स्कैटर्ड बादल 8000 फीट पे। अब ठीक ठाक है, मतलब है तो ये भी बुरा, लेकिन रनवे को अप्रोच किया जा सकता है, मतलब रनवे तक जाने की कोशिश की जा सकती है। उन्हें बताया गया कि आप आ सकते हैं रनवे 27 पे, ये यूज कर सकते हैं कोचिन का। पायलट्स अब लेने वाले थे ILS अप्रोच। मैंने जानता आपने कितनी दफा कहानी सुनी, मैं हर बार इस वर्ड को यूज करता हूं, फिर इसे देसी भाषा में समझाता हूं। ILS अप्रोच का मतलब होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। क्या होता है ये सिस्टम, के 2 हिस्से होते हैं, ठीक है। जैसे जहाज जो है अब आ रहा है तो जहाज को ये सिस्टम पकड़ के रखेगा, कनेक्ट करके रखेगा और इस जहाज का काम है सीधा सीधा इसको फॉलो करते रहना और 320 फीट तक इसको साथ में चलना है और उसके बाद नीचे रनवे दिख जाना चाहिए। तो करंटली ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, ये काम इतना मुश्किल नहीं है। 5:10 हो रहे थे सुबह के, फ्लाइट 555 जेट एयरवेज 4000 फीट पे थी इस बार एयरपोर्ट के, अप्रोच ले रहे थे रनवे 27 की तरफ। कैप्टन ने जहाज को और डिसेंड किया 3000 फीट पे और स्लोली नीचे ले जाने लगे लैंडिंग के लिए। फ्लैप्स जहाज के खोल दिए गए और अब मैं आपको समझाता हूं ILS सिस्टम क्यों जरूरी है। सो ILS
ये होता है इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम। इसके दो मेन हिस्से हैं, एक कहलाता है लोकलाइजर। क्या होता है लोकलाइजर? एक किस्म की रेडियो बीम होती है, यूं समझ लीजिए कि इनविजिबल सा ना दिखने वाला एक रास्ता है।

जो अगर कनेक्ट हो जाए जहाज के सिस्टम से तो उसको गाइड करता है कि भाई इधर आओ, इधर है रनवे। ये एक इनविजिबल सी लाइन है जो जहाज का सिस्टम रीड करता है। इसी का दूसरा हिस्सा होता है ग्लाइड स्लोप। ग्लाइड स्लोप भी एक किस्म का एक इनविजिबल रेडियो बीम है। ये क्या करता है, जहाज को नीचे की तरफ लाता है। तो एक हिस्सा क्या कर रहा है, जहाज को रनवे दिखा रहा है कि भाई इधर है रनवे, और इसका दूसरा हिस्सा वो जहाज को नीचे की तरफ ला रहा है। ये ढलान को फॉलो करो ये जहाज को बता रहा है। दैट इज ILS सिस्टम। इसके दो हिस्से ये है। अब जहाज तैयार है ILS अप्रोच के लिए। पायलट ने दोनों बीम से कनेक्ट कर दिया जहाज के सिस्टम को। अब गियर भी लोअर कर दिए, जहाज के पहिए भी नीचे कर दिए। कैबिन क्रू ने तैयारी कर ली पूरी तरह से लैंडिंग की। पैसेंजर्स भी तैयार हो गए, भैया अब उतरेंगे घर जाएंगे। पायलट जो थे वो मिस्ट से, पूरा जो बारिश की वजह से मिस्ट हुई हुई थी, उससे निकले और सोच रहे थे कि अब रनवे दिख जाए, रनवे दिख जाए, रनवे बस जल्दी से दिख जाए। कैप्टन ने ऑटो पायलट पे जो था अभी रखा हुआ था, क्योंकि रनवे दिख नहीं रहा था और ऐसा हो रहा था कि उन्हें ऑटो पायलट पे रखना पड़ेगा क्योंकि उन्हें सिस्टम भी मॉनिटर करना है कब क्या हो जाए। जहाज सी से चलना चाहिए ना। लास्ट मिनट में उन्होंने सोचा, लास्ट मिनट में मैं बंद कर दूंगा और फिर जहाज को कंट्रोल में कर लूंगा। उन्होंने चार्ट्स में देखा कि 332 फीट तक वो जा सकते हैं, ये लिमिट है। इसके बाद भी अगर रनवे नहीं दिखा 320 की फीट पे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। वो उम्मीद कर रहे थे कि बिल्कुल मैं पास आ जाऊंगा तो दिख जाएगा। अब जो मेजरिंग सिस्टम होता है, इक्विपमेंट लगा होता है जहाज में, उसने अनाउंस करना शुरू किया 1000 फीट, 500 फीट, 400 फीट, लेकिन रनवे दिख ही नहीं रहा। बहुत कोशिश कर रहे हैं। तो कैप्टन साहब जो थे, उन्होंने इधर उधर देखा बाकी सिस्टम्स पे और वो सोच रहे थे बस किसी भी मौके पर अब दिख जाएगा, अब दिख जाएगा रनवे। लेकिन जो वो लिमिट थी 320 फीट की, रनवे दिख ही नहीं रहा, दिखा ही नहीं। तो कैप्टन ने ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए जहाज को गो अराउंड का सोचा और फिर पहले सोचा कि चंद सेकंड रुकूं क्या, लेकिन बिल्कुल नोक पे आ गई थी बात और उन्होंने 260 फीट पे फुल थ्रस्ट दिए और जहाज को यहां से वापस आसमान की तरफ ले गए, क्योंकि रनवे दिखाई नहीं, उतारे कहां जहाज को। अब पायलट्स ले गए जहाज को वापस 2500 फीट पे और कोचिंग के होल्डिंग बीकॉन तक कनेक्ट कर दिया। मतलब अब वापस गो अराउंड करने वाले हैं, करना पड़ेगा, कोई चारा नहीं है। और इन कंडीशन में ऐसा होता है कि भाई रनवे नहीं दिख रहा, मौसम खराब है, तो हम वापस एक बार घूम के आएंगे, कोशिश करेंगे। तो पायलट सभी सर्कल कर रहे थे, ऑप्शंस के बारे में सोच रहे थे। उनका जो फ्यूल था वो उन्हें दिखा रहा था कि अभी 4.7 टन फ्यूल बाकी है, इतना तेल है जहाज के अंदर। और बैंगलोर का उन्होंने चेक किया तो बैंगलोर का मौसम ठीक है और बैंगलोर एक ऑप्शन है, वहां जा सकते हैं। वहां पे जाने के लिए इन्हें 3.3 टन फ्यूल चाहिए, जो कि अच्छा खासा है, पर फैसला जल्दी लेना पड़ेगा। अभी सोच रहे थे क्या करें, होल्डिंग पैटर्न में थे, जहाज घूम रहा है। इन्होंने इतने में नोटिस किया, इन्हें पता भी लगा कि एयर इंडिया की एक फ्लाइट और आई कोचिन की तरफ और ये भी मिस कर गई। ये भी बेचारे अनलकी थे, इनको भी रनवे नहीं दिखा। अब कैप्टन सोच रहे थे कि यार क्या करें, चलो दूसरी बारी सही, फ्यूल अभी है, अभी ट्राई करने के लिए फ्यूल बाकी है, कोई टेंशन नहीं है। तो क्रू ने बोला चलो एक और ट्राई करते हैं। तो पायलट जो थे ये सोच रहे थे अगर ये भी मिस हुआ तब की तब देखेंगे। और कैप्टन ने बोला फर्स्ट ऑफिसर से कि अगर अभी भी नहीं हुआ ना तो बैंगलोर नहीं जाएंगे, त्रिवेंद्रम उतार देंगे। त्रिवेंद्रम भी साउथ इंडिया में एक जगह है, तो उन्होंने कहा वहां पे हम उतार देंगे, पास में ही है, उधर का मौसम भी बेहतर ही होगा। फर्स्ट ऑफिसर जो काफी यंग था इस कैप्टन के मुकाबले, बेचारा जूनियर भी था, तो उसने बताने की कोशिश करी, सर लेकिन उधर ILS अप्रोच नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया ILS अप्रोच थोड़ी इजी रहती है, वो बीम्स जो होती हैं सिस्टम से कनेक्टेड होती हैं और जहाज को रास्ता दिखाती हैं। तो उसने बताया सर त्रिवेंद्रम में ILS अप्रोच नहीं है सर, वहां तो विजुअल अप्रोच है और वो एक्यूरेट नहीं होती है। मौसम कैसा भी हो हम रिस्क कैसे ले सकते हैं। पर कैप्टन साहब जो थे वो बोले 3000 मीटर की विजिबिलिटी काफी है यार, ले लेंगे अप्रोच, एंड ऑफ डिस्कशन, और अपने जूनियर को चुप करा दिया और उन्होंने बैंगलोर की जगह त्रिवेंद्रम को बना दिया उनका ऑल्टरनेट। मतलब यहां

नहीं उतरा तो वहां चले जाएंगे। फिलहाल कोचिंग का अब अटेम्प्ट नंबर 2 था। एक और बार वापस ILS से कनेक्ट हुए, वापस उसे फॉलो किया, वापस उम्मीद कर रहे थे कि दिख जाएगा रनवे और जाते रहे नीचे, वापस गियर्स डाउन, वापस फ्लैप्स खोले। इस बार मिस हुआ तो कोचिंग वाला चांस खत्म। 500 फीट 400 फीट कोशिश कर रहे हैं दिख जाए। पहली बार की तरह भी इस बार कुछ नहीं दिखा। वापस जहाज को ऊपर खींच लिया गया, वापस जहाज होल्डिंग पैटर्न की तरफ बढ़ रहा था और अब मामला संगीन होता जा रहा है। बैंगलोर का चांस अब खत्म। बैंगलोर नहीं जा सकते, अब बैंगलोर दूर है, उसके लिए फ्यूल चाहिए। त्रिवेंद्रम 100 नॉटिकल माइल दूर है और एक और ऑप्शन है कोयंबटूर जो कि 64 नॉटिकल माइल्स दूर है। कैप्टन जाना नहीं चाहते बैंगलोर, बोले बात खत्म, हम वहां नहीं जा सकते, वी कैन नॉट टेक द रिस्क। और फिर इस होल्डिंग पैटर्न में आते हुए उन्होंने अपने जूनियर से बोला कि अभी सूरज निकलेगा ना कुछ देर में तो ये मिस्ट छट जाएगी। वो हम कहते हैं ना सूरज आएगा कोहरा छट जाएगा, तो उनके दिमाग में यही चल रहा था। उन्होंने बोला एक और ट्राई करते हैं, अगर नहीं हुआ इस बारी तो हम त्रिवेंद्रम पक्का चले जाएंगे। इस वक्त बहुत बड़ी बात हुई है। फर्स्ट ऑफिसर ने फिर से बोला कि सर मिस्ट जाएगी या नहीं इस बात की श्योरिटी नहीं है ना सर, त्रिवेंद्रम में हमें विजुअल अप्रोच लेना पड़ेगा, मुश्किल हो जाएगी, अगर वहां भी बुरा हुआ तो हम कैसे उतरेंगे। मगर कैप्टन साहब जो थे ऐसा लग रहा था कि अपने दिमाग में अपने आप से शर्तें लगा रहे हैं, पता नहीं क्या चाह रहे हैं। कैप्टन ने बोला अगर ये भी प्लान फेल हुआ तो हम कोयंबटूर चलेंगे, उधर का मौसम भी देख लेंगे। पर मौसम चेक ही नहीं किया, दोनों ने ही चेक नहीं किया, ना फर्स्ट ऑफिसर ने और ना कैप्टन ने। अभी जहाज में 3,900 kg फ्यूल था। और इसके बाद आती है एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, जो मुझे सुन रहे हैं कहानी में। एयरलाइंस की पॉलिसीज बहुत मैटर करती हैं। जेट एयरवेज की एयरलाइंस की जो पॉलिसी थी वो बाकियों से बहुत अलग है। दूसरी एयरलाइन, दुनिया की कोई भी एयरलाइन, उसकी रूल बुक में लिखा हुआ है कि अगर आप लैंड नहीं कर पा रहे हैं रनवे पर, दो से ज्यादा बार मिस हो चुका है, तो आपको कहीं और ही जाना पड़ेगा। एंड ऑफ डिस्कशन, इसमें कोई बहस नहीं है, इसमें किसी की सुनवाई नहीं हो सकती, आपको डाइवर्ट करना ही पड़ेगा। लेकिन जेट एयरवेज में उनकी रूल बुक में लिखा ही नहीं है, क्योंकि बाकी एयरलाइंस होती तो अभी तक पायलट बिना कुछ डिस्कशन किए बैंगलोर की तरफ मुड़ जाता। मगर इनको अलाउड था जेट एयरवेज वालों को कि तुम्हारी मर्जी, करते रहो कोशिश। सुबह के 6 बज गए, 5:30 बजे उतरना था सबको, सुबह के 6 बज चुके थे और पायलट बोल रहा था, कैप्टन बोल रहा था कि त्रिवेंड्रम चले जाएंगे, थोड़ी देर और देखते हैं, धूप आ जाएगी। कंट्रोलर से पूछा, कंट्रोलर ने कहा ओके यू वांट टू ट्राई अगेन। फ्लाइट 555 होल्ड में रही, नीचे से एक और एयरक्राफ्ट निकला और वो भी मिस कर गया रनवे, वो भी कहीं और चला गया। कंट्रोलर ने उल्टा पूछा कि क्या करना है आपको, कैप्टन ने कहा इधर कुछ पॉइंट नजर नहीं आ रहा रुकने का, मिस हुआ तो त्रिवेंद्रम चलेंगे। अब तीसरी मरतबा अटेम्प्ट कर रही है, थर्ड टाइम ही इज ट्राइंग, जो कि होता नहीं है नॉर्मली। बहुत प्रेशर था, 6:15 सुबह के, अगेन ILS कनेक्ट, अगेन रनवे 27, अगेन गियर्स आउट, फ्लैप्स ऑन। अब लोगों के मन में सवाल आएगा जो एयरलाइंस के बारे में जानते हैं कि ऑटो लैंडिंग पे सेट क्यों नहीं किया जहाज को, टेक्नोलॉजी कोई घास काटने के लिए थोड़ी है। मगर यह समझने की जरूरत है आपको कि कोचिन में ILS जो है वो मदद तो करेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं कर पाएगा। वो जहाज को 290 फीट तक ला सकता है, पूरा ऑटो लैंड नहीं करा सकता, इसकी रनवे की भी लिमिटेशन है, उसके बाद मैनुअल ही करना पड़ेगा। बहरहाल 500 फीट पे जहाज था, तीसरा अटेम्प्ट था, विंड स्क्रीन से सिवाय बादलों के कुछ नहीं दिख रहा, ना किसी किस्म की लाइट, कुछ नहीं। रनवे के करीब है कि नहीं, नहीं पता। फिर से रनवे नहीं दिखा, फिर से दे क्लाइम्ड, फिर से थर्ड टाइम।

अभी जहाज में फ्यूल था 2644, परमिशन ली और निकल गए त्रिवेंड्रम की तरफ। अब इन्हें सच्चाई का सामना करना पड़ेगा। कुछ भी प्लानिंग नहीं है, बस जहाज उड़ रहा है, तुक्केबाजी चल रही है। फर्स्ट ऑफिसर ने त्रिवेंड्रम के एटीसी से कांटेक्ट किया और जानने की कोशिश करी कि वहां का मौसम कैसा है, और यहां से इन्हें बेहद खराब खबर मिली। उन्होंने बोला कि विजिबिलिटी बेहद खराब है, कोचिन वाला ही हिसाब यहां पर है और आपको विजुअल अप्रोच लेनी पड़ेगी रनवे 14 की तरफ। कैप्टन ने मैनेजमेंट सिस्टम भी डाला चार्ट्स को फॉलो करके, एंड वो कोशिश कर रहे थे कि ये बस काम कर जाए। सो ही वॉज जस्ट प्लेइंग विद द सिस्टम राइट नाउ। कैलकुलेशन वो करने की कोशिश तो कर रहे थे, मगर ये बहुत भारी कैलकुलेशन था। अब कैलकुलेशन करने के चक्कर में इन्होंने एक और दिक्कत कर दी, बहुत बड़ी दिक्कत। ये जहाज उड़ता रहा, कैप्टन साहब कैलकुलेशन करते रहे, और इतने में जहाज जो था वो 12,000 फीट पे था और 25 मील दूर था। टेक्निकली जहाज चाहकर भी अभी इस रनवे पे नहीं उतर सकता। उन्हें अंदाजा हुआ कि अभी जहाज एकदम से नीचे नहीं जाएगा, हमें ऑर्बिट करना पड़ेगा। वापस से जहाज को 360 डिग्री इन्होंने टर्न मारा। इस टर्न में लगे 8 मिनट, और क्या खर्च हुआ? जहाज में फ्यूल खर्च हुआ। और इन्हें अंदाजा हुआ कि फ्यूल इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ेगी। रनवे 14, और अब अगर मिस हुआ तो बहुत दिक्कत होगी। विजिबिलिटी थी 2000 मीटर की। 6:45, चौथा ट्राई ओके, रनवे की तरफ ये निकले, एक्सटेंड किए फ्लैप गियर नीचे। आईएलएस होता तो बिल्कुल प्रिसाइजली कम से कम नीचे जा पाते, लेकिन यहां तो वो भी नहीं है। यहां विजुअल अप्रोच है, पायलट को खुद ही देखना पड़ेगा और इनको 560 फीट से के आसपास ही देखना पड़ेगा अबव सी लेवल, यानी कि 560 फीट अबव सी लेवल का मतलब हुआ एयरपोर्ट के 540 फीट ऊपर इन्हें दिख जाना चाहिए, कोई चांस नहीं है 1000 मीटर। अब फर्स्ट ऑफिसर देखना चाहता था बाहर से कोई दिख जाए रनवे, पर नीचे आते रहे, दिखा कुछ भी नहीं। रनवे 14 दिख ही नहीं रहा, और करीब आए, देखने की कोशिश करी, नहीं दिख रहा। फिर से गो अराउंड, फिर से जहाज को वापस आसमान में ले जाना पड़ा। जितने भी लोग कैबिन में पीछे बैठे हुए थे पैसेंजर्स, वो कंफ्यूज्ड थे, टेंशन में थे। उन्हें एक घंटा पहले उतर जाना चाहिए था, वो क्या कर रहे हैं जहाज में? और अभी जहाज में बचा था 1300 किलो फ्यूल, उससे नीचे आ रहे थे। 30 मिनट है बस इनके पास, 30 मिनट्स लास्ट। इन्होंने मेडे डिक्लेयर कर दिया एमरजेंसी। अब एक ही ऑप्शन है, आप कहीं पे जा भी नहीं सकते, द ओनली ऑप्शन इज त्रिवेंड्रम। बस कैप्टन को अब कुछ भी करना पड़ेगा। जो उन्होंने चार्ट देखा वो कहता है कि 2000 फीट पे जाएं और होल्ड में जाएं और फिर रनवे को अप्रोच करें। कैप्टन ने पूछा कि क्या मैं अपने तरीके से करूं, और एटीसी वालों ने कहा बिल्कुल। कैप्टन ने राइट लिया और एक अप्रोच लेके, विजुअल अप्रोच लेने की कोशिश कर रहे थे। इनको ये अंदाजा था कि एयरपोर्ट का जो रनवे है वो समुद्र के साइड में है, मतलब अभी अंदाजा है बिकॉज रनवे तो दिखा नहीं है, तो इन्हें अंदाजा था कि हाँ ये जो समुद्र है उसकी कोस्ट लाइन के पास ही है ना, क्या दिक्कत है, जरा ये करके देखता हूं मैं। अब उन्होंने जहाज को समुद्र तो जो दिख रहा था अंदाजन उसके साथ पैरेलल उड़ाने लगे। कोई चारा नहीं है, यही करना पड़ेगा। अब जहाज वापस नीचे आ रहा है, लैंडिंग गियर फिर से, फ्लैप्स वापस ऑन, 1000 मीटर देखने की कोशिश कर रहे हैं। एटीसी वाले भी परेशान है कि क्या किया जाए। वो सोच रहे थे ये कहां से आएंगे। एटीसी वालों को नजर आई एक बहुत ही खतरनाक चीज, ये लोग बिल्कुल अलग जा रहे थे। मतलब यूं समझिए, आपके सामने इमेजिन कीजिएगा, जहाज जो है वो लेफ्ट में उड़ रहा है और राइट हैंड साइड पे रनवे है, तो ये गाड़ी तो है नहीं कि आप यू टर्न मार लेंगे। जहाज है पूरा का पूरा, और आपको टर्न लेने के लिए, इतना शार्प टर्न लेने के लिए जहाज को और आगे जाना पड़ेगा, और इन्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं है।

फ्यूल ही नहीं है। तो कैप्टन ने क्या किया, कैप्टन ने लिटरली इसको गाड़ी की तरह मोड़ा है, इतना शार्प टर्न मारा उन्होंने राइट में आने के लिए जब उन्हें अंदाजा हुआ कि राइट लेना है, बट इट इज इम्पॉसिबल। पर एक अच्छी चीज हुई कि रनवे हल्का सा दिखा, पिछली यूं समझ लीजिए पहले 6 घंटों में पहली मरतबा रनवे दिखा इन्हें। पर ये समझ गया उतरना बहुत मुश्किल है, एक तो अभी जहाज की हाइट ज्यादा है और कुछ ज्यादा ही रनवे राइट में है। कैप्टन ने फिर से जहाज को आसमान में ले लिया और अब महज 900 kg फ्यूल बचा है। अब सवाल रिजर्व और इमरजेंसी अनाउंस करने के नहीं, अब सवाल जिंदगी और मौत का है। एटीसी से फिर से कांटेक्ट किया और एटीसी ने कहा कि आपको बहुत प्रिसाइसली करना पड़ेगा। वापस थ्रेशहोल्ड में जहाज वापस लैंडिंग के लिए तैयार हुआ। कैप्टन ने इस बार कहा कि पैनिक नहीं करूंगा, आगे ले जाऊंगा जहाज को, आगे से मोड़ के लाऊंगा। आगे ले गए और फिर टर्न लिया। इस बार ही वॉज डिटर्मिंड कि अब गलती होने का कोई चांस नहीं है। मगर इस बार भी कुछ अलग हुआ, रनवे जो पहले दिख रहा था वो नहीं दिख रहा है। दे वर हॉरिफाइड, आंखों में जो डर था वो देखने लायक था। इस बार इसलिए नहीं दिख रहा था क्योंकि पायलट साहब को पहले जो राइट में रनवे दिख रहा था अब वो लेफ्ट में आ गया, ये ज्यादा राइट में आ गए थे। मगर अब देयर इज नो चांस, अब कुछ भी किया नहीं जा सकता। रनवे इज ऑन द लेफ्ट हैंड साइड। पायलट ने बुरी तरह से लेफ्ट जो जहाज को मारा है, ये बिल्कुल ऐसा था जैसे यू टर्न लेना स्पीड में। पैसेंजर्स चिल्ला रहे हैं, चीख पुकार मची हुई है क्योंकि उन्हें दिख रहा है, उन्हें दिख रहा है खिड़की के बाहर के ग्राउंड कितना करीब है। जहाज के सिस्टम था जो बैंक एंगल बताता है वो भी बता रहा था, क्योंकि जहाज इस वक्त 270 किलोमीटर की स्पीड से था। ₹660 kg फ्यूल बचा है, बस कुछ मिनट बचे हैं, बस उसके बाद ये जहाज पतंग की तरह हो जाएगा बिना इंजन का। पायलट जो थे उन्होंने दिमाग लगाया, वो आगे की तरफ ले गए जहाज को। उन्होंने बोला मैं ऑपोजिट साइड से आऊंगा, अब बिल्कुल दिस इज द लास्ट। फ्लैप्स वापस ऑन, गियर वापस नीचे, और कैप्टन इतना लो उड़ा रहे थे जहाज को, इतना नीचे कि सेंसर्स जहाज के बज रहे थे, पुल अप पुल अप पुल अप पुल अप। नॉर्मली तो किसी को भी डर लगेगा, लेकिन इसके अलावा कुछ किया नहीं जा सकता था। ये डेस्पिरेशन थी, नीचे सब कुछ नजर आ रहा था, पेड़ पौधे घर सब कुछ। फर्स्ट ऑफिसर ने चुपचाप वार्निंग को बंद किया। दिस वॉज द फाइनल अटेम्प्ट। पैसेंजर्स ने अपनी सीट को कस के पकड़ा और नीचे सब दिख रहा था। 50 फीट के ऊपर था जहाज, सिर्फ 50 फीट अबव, मतलब 50 फीट समझ रहे हैं आप, जहाज का जो विंग स्पैन होता है उससे भी ज्यादा कम ऑल्टीट्यूड पे जहाज उड़ा था। फर्स्ट ऑफिसर सोच रहा था कैप्टन को शायद सब पता होगा, उसने पूछा कैप्टन वी आर डूइंग राइट है ना। कैप्टन ने बोला नहीं, दिस इज ऑल ब्लाइंडली, I'm just doing it blindly. उन्होंने ऑटो पायलट हटाया, राइट में जहाज को लिया, फिर लेफ्ट में लिया और फिर उन्हें लाइन दिखी रनवे की। एंड फाइनली कैप्टन ने सेंटर लाइन से रनवे को अलाइन किया, रनवे 3-2, और फिर 9:07 पे ये जहाज फाइनली जाके टच डाउन हुआ। ये किसी तुक्के जैसा था, सारे के सारे पैसेंजर्स, सारे के सारे क्रू मेंबर्स, सब के सब एकदम सेफ थे। एन इनक्रेडिबली, और बहुत ही हैरानी की बात ये थी कि वापस इस जहाज में तेल भरा गया और वापस सेम पायलट साहब और फर्स्ट ऑफिसर इनको कोचिन भी छोड़कर आए, मगर इन्वेस्टिगेशन पूरी तरह से शुरू हुई। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर्स, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, हर चीज का हिसाब किताब लिया गया। दोनों के दोनों पायलट्स को सस्पेंड कर दिया गया। इनफैक्ट पहले पायलट

को जो कैप्टन थे उनको डिमोट कर दिया गया कुछ वक्त के लिए, और पूरे डिसीजन मेकिंग के दौरान उनको दूर रखा गया। पायलट साहब पे कुछ जुर्माने भी लगे क्योंकि उनके बहुत ही वियर्ड डिसीजंस थे, मगर ये भी पाया गया कि डिसीजंस पॉलिसी की वजह से थे, उनके खुद के सारे फैसले नहीं थे। जेट एयरवेज को अपनी सारी की सारी जो पॉलिसीज थी उन्हें बदलना पड़ा, क्राइटेरिया बदलना पड़ा, और सिम्युलेटर्स में जहां पर हर कंडीशन को अपलोड किया जाता है वहां पे ऐसी कंडीशन को भी अपलोड किया गया जो पायलट्स ने जिसका सामना किया। देखो, एक्सपीरियंस अपनी जगह है, मगर डिसीजन मेकिंग, फैसला लेना सही टाइम पे, सही फैसला किसी को भी ला सकता है, और किसी कम एक्सपीरियंस वाले का फैसला किसी एक्सपीरियंस्ड बंदा या बंदी पर भारी पड़ सकता है। कई मर्तबा ज्यादा दिमाग लगाना भारी पड़ता है। यह था आज का किस्सा और यह कहानी अब आपके हवाले। 666-22-107 यह नंबर है। अब आप बताइएगा कि ये कहानी आपको कैसी लगी, और मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ 666-22-107 पर। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर कोई अभी छुट्टी पर जाने के लिए तैयार था। I'm just sorry लो मूड बदल देता हूँ। करण ओजला बादशाह, और जहां से उधर के कैसा लग रहा है आपको 666-22-107 पे जरूर बताएं।

हाँ जी, मैसेज बहुत बढ़िया आ गए हैं। एक मेरे पास मैसेज आया है कहानी सुनने के बाद, दानियाल काशिफ साहब का, वो लिखते हैं कि जस्ट फिनिश लिसनिंग टू द स्टोरी यू टोल्ड ऑन 16th, वाज इंटरेस्टिंग एंड ब्यूटीफुली नरेटेड, और आज एक और एविएशन स्टोरी सुनाते टाइम मैंने इंटरनेट पे पढ़ा लेकिन उधर मज़ा नहीं आया जितना आपके सुनाने में आया, एंडिंग मालूम होकर भी टेंशन थी कि लैंड होगा कि नहीं होगा। अरे मेरा भाई, दिस इज सच अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू सो मच। और फरहत भाई कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इतने दिन से अच्छी स्टोरी सुना रहे थे, जैसे ही छुट्टी जाने का प्लानिंग हुई आपने शुरू कर दिया एरोनॉटिक्स। चलो भाई, मजे तो आए ना। मुबीन भाई कह रहे हैं, भाई साहब दिल गुर्दे जान सब एक जगह पे इकट्ठा हो गया। और एक मैसेज किया है मास भाई ने, मास भाई ये कह रहे हैं, ये तो कल वाली स्टोरी

ऐसा हो गया कि मैं नहीं, क्या कह रहे, इतना गुस्सा आया कि अगले 5 साल ट्रैवल प्लान कैंसिल. अरे भाई साहब. और नाजिया में लिखती है, नाइस स्टोरी ऑफ जेट एविएशन एज आई नो देयर पायलट्स रियली ब्रिलियंट ऑल्दो नो मोर एयरलाइन. और अरबाज भाई वालेकुम अस्सलाम मिर्जान, लिखा है जब मीटिंग नहीं होती 5 बजे लॉग आउट करता हूँ, आज मीटिंग नहीं थी तो 6 बजे. अरे रे रे रे रे, क्या लिखा है, थैंक यू सो मच वैसे कल की कहानी मैसेज करने के लिए, और ये लुसैल हबीब को बताने के लिए बताता हूँ कुछ देर में, क्योंकि अभी कुछ मैसेज जल्दी जल्दी पढ़ने पड़ेंगे. नसीम साहब कहते हैं सब बच गए यही बहुत है भाई. उमर भाई कह रहे हैं एक्सट्रीमली हॉरिबल, मैं सोच रहा था कि प्लेन तो गयो बट अल्हम्दुलिल्लाह बचा लिया भाई आपके भाई ने एंड में जाके. और शैफुल उदय साहब थैंक यू सो मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया. और हमेशा चलो बच गए, प्रिंस खान साहब की जान में जाना है. एक भाई कह रहे हैं क्या ये अजय देवगन वाली रनवे 3-4, नहीं भाई वाली मूवी नहीं है विवेक भाई, ये दूसरी है. और क्या, बहुत थैंक्स सबको बचा लिया. आसिफ भाई कह रहे हैं बट चलो, कहानी जमी ना आपको, मेन बात ये है भाई, देखो कहानी जमनी चाहिए, मजा आनी चाहिए, वो इंटेंसिटी बढ़ाने के ही तो पैसे हैं ना भाई. अमार साहब वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच. एक भाई कह रहे हैं कि भाई मैं सच में, मुझे ऐसा लगा मैं सीट नंबर WD में बैठा हुआ हूँ, जान अलग में आ गई. वेरी गुड, गुड जॉब कबीर. मिलते हैं कुछ देर में, अजान के बाद इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी. जाना आपने ही नहीं है, और कोई मैसेज कोई ना, स्टोरी में सबको मार देना, कह रहे कल की स्टोरी सबको निपटा देना. ठीक है, जैसा आपका हुक्म भाई, जाना नहीं एंड स्टे ट्यून्ड.

0: हाँ कुछ मैसेजेस है मेरे पास. नसीर भाई ने लिखा है, कबीर भाई मैं तो कलमा पढ़ने लग गया था. आई एम योर साइलेंट लिसनर. अमेजिंग नसीर साहब, बहुत सारा प्यार भाई को. थैंक यू सो मच मेरी जान. थैंक यू सो मच, लॉट्स ऑफ लव. और एक और भाई, वो भी साइलेंट लिसनर रहे हैं काफी वक्त तक, हसन शाह साहब, इनका नाम है सैयद हसन रजा. और लिखते हैं, एवरी डे लिसनिंग बट फर्स्ट टाइम मैसेजिंग ऑन रेडियो 107. और लिखा है कि भाई कार में भी जहाज वाली फीलिंग आ रही थी, कार पायलट वाली फीलिंग आ रही थी. सुपर्ब. और आपका स्टाइल मोर ऑसम, कमाल का. थैंक यू सो मच भाई. और उन्होंने बोला आपका एक्सेंट अच्छा लगता है. थैंक यू सो मच भाई, मीन्स अ लॉट. एक कॉल आ रही है, कॉल ले लेते हैं. एक सेकेंड. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम सलाम कबीर भाई, क्या हाल है?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार. आप सुनाएं.
1: अल्लाह का एहसान, बढ़िया अल्हम्दुलिल्लाह. आप सेफली आज लैंड करा दिया आपने.
0: भाई मैं तो हमेशा सेफली लैंड कराता हूँ.
1: नहीं, आप कहानी में एक दो को तो कम, वैसे दूसरी कहानी में एक दो को मार देते हैं.
0: नहीं भाई, पूरे पैसेंजर मैंने बिल्कुल सूझ समझ लौटा दिए भाई.
1: नहीं आज बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह.
0: चलो अल्हम्दुलिल्लाह.
1: एक बात, बगैर टिकट के आपने फ्लाइट में बैठा दिया और फिर लैंड करा दिया आराम से सेफली, अल्हम्दुलिल्लाह.
0: अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुझे पता था कि ये कहानी ऐसी है ना कि ये अगर समझ में आ गए तो लोग साथ में रहेंगे, मतलब लगेगा कि हाँ वो भी फ्लाइट में. वैसे वाली फील आनी चाहिए सुनते सुनते. तो
1: नहीं, अच्छी है, उसमें नॉलेज भी रहता है आदमी को थोड़ा.
0: हाँ नहीं देखो,
1: नॉलेज भी होता है ना.
0: अभी अभी सुनने के बाद बहुत सारे लोगों को जहाज के सिस्टम तो पता लग गए होंगे, मतलब इतनी सारी कहानियां सुनाई हैं, कुछ तो पता लग गया होगा.
1: आधे से ज्यादा तो पायलट बन गए हम लोग.
0: आप मुझे पूरी उम्मीद है कि अभी कम से कम बहुत सारे सिस्टम समझ में आ गए होंगे.
1: और बच्चों को जो आप और सिखा देंगे भाई.
0: भाई पूरा सिखा देंगे, पूरा
1: पूरा बना के छोड़ने का पायलट
0: जमा जहज बना देंगे भाई. टेंशन को नहीं भाई, एकदम बढ़िया.
1: ठीक है, टेंशन को नहीं, सही बात.
0: थैंक यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया. मुझे अच्छा लगा. ओके मेरे भाई, वालेकुम सलाम. वालेकुम सलाम. और यूसुफ भाई कहते हैं, और हाँ हम सिर्फ एक बार उस लाइन से गए थे, ये थोड़े अरसे बाद बंद हो गई. जी भाई यूसुफ भाई, बंद ही हो गई वो. उस्मान औरंगजेब साहब लिखते हैं, स्टोरी भेजो जी भाई. और क्या मैसेज था मेरे पास, एक सेकेंड. ये मैसेज आया है फरहत भाई का, कह रहे हैं चलो बच गए, बढ़िया हो गया. एक और मैसेज है, एक भाई ने लिखा है कि भाई अब तो मुझे लगता है कि मैं सब कुछ जान चुका हूँ जहाज के बारे में आपकी वजह से. सो थैंक यू सो मच. बहुत ही क्या कहते हैं, क्या बहुत ही थ्रिलिंग थी, लेकिन नॉलेज भी मिली. भाई मैं वही तो कह रहा हूँ, नाउ यू नो अ लॉट अबाउट प्लेन्स. नहीं अभी लगता होगा कि यार मैं अभी पायलट से थोड़ी बात तो कर ही सकता हूँ. करने मत चले जाना, मगर अगर मौका मिले तो आप बहस तो बढ़िया कर लेंगे पायलट से. इस बात की पूरी गारंटी मैं दे रहा हूँ आपको. टेंशन को नहीं भाई, वैसे पायलट तो सब बन गए, फिर एयरप्लेन कब ले रहे हो भाई. बस भाई अगले बर्थडे पे प्लेन ही लेके आऊँगा सीधा मैं. और एक मैसेज, आज आपका नाम पायलट कबीर. मैं भाई जब भी कहानी सुनाता हूँ मोहम्मद भाई, तो मेरा नाम पायलट ही हो जाता है. कयामुद्दीन साहब लिखा है, मैं फ्लाइट उड़ा सकता हूँ शायद. ये शायद वायद मत किया करो, ये जो कहानियाँ बनी ना ये शायद के चक्कर में बनी है. मुझे लग रहा है ये पायलट भी कह रहा है शायद उड़ा ही लूंगा, शायद लैंडिंग ही तो करनी है यार, कर लेंगे उसमें क्या है. कह रहे उड़ा के दिखाओ. और गरीब भाई कह रहे हैं, आपके साथ रहते रहते हम भी प्लेन उड़ा सकते हैं. सिस्टम तो पता लग गए होंगे, उड़ाने का मैं नहीं कह सकता. कह रहे उड़ा के दिखाओ तो मैं जानूं. अच्छा आसिफ भाई देखो, आपका भाई जहाज़ कम से कम स्टार्ट तो कर लेगा, उड़ा पाए वो बात दूसरी है. और नसीर भाई कहते हैं, कबीर भाई मुझे तो लगता है कि कैप्टन की बैंगलोर में कोई होगी जिसने छोड़ दिया होगा, इसलिए वो बैंगलोर नहीं गया. मुझे भी ऐसा लगा नसीर साहब, उसे ना पायलट को अंदर गाना चलाना चाहिए था. जब भी कोई बैंगलोर बोलता गाना चलता, मेरा इंतकाम देखेगी. कि नहीं बैंगलोर नहीं जाऊंगा, बैंगलोर नहीं जाऊंगा, वहां उसने मुझे धोखा दिया था. कह रहे जान मुझे तो लाखों पाए, लौट के पायलट घर को आए. एग्जैक्टली अदर भाई, वेरी नाइसली पुट मेरे भाई. और आसिफ भाई ने क्या मैसेज किया, आसिफ भाई तो हंस रहे हैं अभी. और एक भाई कह रहे मुझे भी ऐसी लगता है कि ये बिल्कुल धमाल वाला सीन था, वो सैड बातें करता रहा होगा और फ्लाइट बैंगलोर नहीं ले जा पाया. एक बड़ा कमाल का मैसेज है, यू हैव टू लिसन टू दिस. भाई का नाम जेसन है, जेसन भाई है सीधा बैंगलोर से. भाई कह रहे मैं बैंगलोर से हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा है कि हमारे यहाँ क्यों नहीं आया. जेसन भाई आपकी गलती है, आपकी गलती है भाई. बैंगलोर वाले बड़े छटपटा रहे हैं, यार हमारी ये गलती है, हम इतने अच्छे लोग हैं यार, हमारी तरफ क्यों नहीं आया. और मैसेज है तौहीर अहमद भट्ट साहब का, जानी वालेकुम असलम.

लव यू, स्टे ब्लेस्ड, नाइस स्टोरी, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. और एक भाई कह रहे हैं अगले 10 साल की छुट्टी कैंसिल, मैं यहीं हूँ यहीं रहूँ. और एक और मैसेज, भाई मज़ा आ गया सबको, चलो मुझे मुझे सुना के मज़ा है, आपको सुन के मज़ा है, आई एम हैप्पी फॉर दैट. एक मैसेज है, आज तो भर के मैसेज, हाँ भर के माशाल्लाह, कल भी भर के मैसेज आते हैं, कल वाली कहानी पे भी लोग एकदम इस भाई को क्या तकलीफ है भाई, वही मैं समझ पा रहा हूँ. मुझे दो बैंगलोर वालों ने मैसेज किया है और दोनों ये जानना चाहते हैं ये पायलट बैंगलोर में क्यों नहीं ले गया. भाई मैं मैं काश बात कर सकता, मैं पूछता उससे क्या दिक्कत है, इतने प्यारे तो लोग हैं बैंगलोर के, उतार देते यार वहीं पर ही. पर ये नसीर साहब ने भी सही कहा, भाई हो सकता है कि किसी ने पायलट का दिल तोड़ा होगा बैंगलोर में, अगर मैं कहीं भी चला जाऊंगा मैं सीधा ऊबर का टिकट कटवा लूंगा, लेकिन मैं बैंगलोर को नहीं जाऊँ भाई. एक मैसेज है, कह रहे पायलट जाट होगा बुद्धि घूम गई बेचारे की. एक मैसेज है, भाई बस क्या एक बार इंजन स्टार्ट करना सिखा दो. भाई इंजन स्टार्ट मैं सारे बटन बता दूंगा आपको अब्दुल करीम भाई, सारे के सारे. एक मैसेज है, अगर पायलट है, पायलट क्यों बिहार से होना चाहिए था, मैं समझा नहीं क्यों. और कह रहे आज के बाद जब भी घर जाऊंगा आपकी वजह से डर रहेगा. नहीं नहीं आपको तो उल्टा मोहम्मद भाई, आपको उल्टा ट्रेनिंग मिल चुकी है, जहाज जरा जरा जरा सा भी राइट और लेफ्ट हुआ आप बोलोगे पायलट मेरे को आने दो, दरवाजा खोलो मैं आ रहा हूँ मैं आ रहा हूँ, मुझे पता कैसे उड़ता है जहाज, आईएलएस कहाँ है आईएलएस. और कह रहे अगर बैंगलोर में उतर जाता वहाँ के लोग उसके ऊपर मूवी बना देते, बात तो सही है, पिक्चर तो डेफिनेटली बननी चाहिए इस पर. और बाकी एब्सोल्यूट सिनेमा, ये मैसेज क्या रियान भाई, रियान भाई बहुत बहुत शुक्रिया. और एक मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई क्या हाल है, बढ़िया भाई सुभाष भाई एकदम चंगा. और भाई अगर कोई कतर एयरवेज का हो तो प्लीज़ बात करें, बिकॉज एविएशन की कहानी सुनाऊँ और एयरलाइन वालों को जुड़ जाए तो मज़ा आता है बात करने में. आई हैव बीन वेरी फैसिनेटेड जहाज़ के मामले में, तो मुझे जब भी एविएशन की स्टोरी सुनाता हूँ मैं खुद बड़ा एक्साइटेड होता हूँ कि मज़ा आएगा भाई आज एविएशन की सुनाएंगे. एक और मैसेज है अफजल उस्मानी भाई का, अफजल भाई जब से आए हो यार, मतलब लौट के हैं, डीपी वीपी चेंज हो रही है, स्टाइल स्टाइल झाड़ो, क्या बात है अफजल भाई है, क्या चल क्या रहा है, बता दो यार मैसेजेस में, किसी को नहीं बताएंगे भाई. एक मैसेज, भाई बेंगलुरु जाएगा ना तो कन्नड़ा बोलना पड़ेगा इसलिए नहीं गया होगा. सुभाष भाई कह रहे हैं उसको डर लग रहा होगा, अब बेंगलोर जाएगा तो बोलेंगे पहले बोल कन्नड़ा में बात कर, अरे जहाँ से उतारने तो नहीं पहले बात कर कन्नड़ा में बोल. ये मीम मटेरियल है भाई ये कहानी, मैं आपको बताऊं ये मीम मटेरियल कहानी है. नसीम साहब कह रहे हैं कबीर भाई पहले जन्म में पायलट थे क्या. नहीं भाई कल की स्टोरी में रॉकेट उड़ा दो बेंगलोर में भी, मैं कुछ ना कुछ बेंगलोर की कहानी लेके आऊँगा, बहुत हो गया अब लानी पड़ेगी. अफजल भाई कह रहे हैं फॉग चल, हाँ अफजल भाई मैं समझ रहा हूँ, कति मूड में आयो यूपी से, यूपी रिटर्न मेरा भाई. और एक मैसेज है, मैं जब इंडिया जाऊँगा मुझे वही पायलट चाहिए. कह रहा पायलट का, मुझे वही पायलट चाहिए, वकील साहब कह रहे हैं. ये कौन सी बात हुई यार, एक कॉल आ रही थी कट गया, आई एम रियली सॉरी, मैसेज पढ़ रहा था मैं. तो कोई अगर कॉल करना चाहे तो 4434377 है, 4434377, सो यू कैन ऑलवेज गिव अ कॉल. कह रहे हैं नहीं आज तो बेंगलुरु के ऊपर बात बन गई. भाई आज तो कोई बेंगलोर वाला सोच रहा होगा अचानक से हमारे बारे में क्यों बात हो रही है, ये तो दिल्ली का है. और नसीम भाई कह रहे हैं कि एक नेपाल की स्टोरी लेके आओ. भाई मैं नेपाल की स्टोरी सुनाई थी मैंने, वो भी एयरलाइन वाली कहानी थी, आई डोंट नो आपने सुनी कि नहीं सुनी. एक मैसेज है, बीवी की याद आ गई होगी इसलिए नहीं गया. ये अब भाई अलग. अब्दुल समद भाई कह रहे हैं देखो पायलट के इंटरनल फीलिंग्स को समझो, उसे अपनी बीवी की याद आ गई होगी और इसलिए नहीं गया होगा. ये आदमी सबको फंसा रहा है एक साथ अपने एक सेंटेंस से. मैं तुम्हारे साथ नहीं हूँ अब्दुल समद, मैं बताऊँ तुम्हें ठीक है, अच्छी बात नहीं है ये, शादी नहीं हुई ना तुम्हारी अभी तक, तभी ऐसी बातें कर रहे हो. एक और मैसेज है, अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं सोच रहा था एविएशन में करियर बनाऊँगा लेकिन आपने इतनी कहानियाँ बनाता नहीं भाई, मैं कहानी असली हुई है तो मुझे लगता है कि मैं अभी एविएशन की तरफ जाने का बिल्कुल नहीं सोचूंगा. सोचो ना, क्यों नहीं सोच रहे यार, आप जहाज उड़ाओगे नहीं तो कहानी कहाँ से मिलेगी मुझे, मेरी रोजी रोटी का तो सोचो, हाथ धो गई यार. और एक और मैसेज है, ये अजय देवगन वाली मूवी थी, नहीं नहीं नहीं वो रनवे 37 है भाई, वो रनवे 37 है, वो ये वाली कहानी नहीं है, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी. वो जो फ्लाइट थी वो जिस पर मूवी बनी थी

0: रनवे 37 अजय देवगन वाली, वो फ्लाइट दुबई से उड़ी थी, कतर से नहीं उड़ी थी, वो फ्लाइट वहाँ वाली थी, इसलिए फ़र्क है. बढ़िया. 666-22107 इज द नंबर. मैं दोहा वाला कबीर आपके साथ. एंड क्या मैसेज आया भाई, सब के सब आज जो है मज़े ले रहे हैं. बिल्कुल फील में है. एक भाई ने लिखा है कि भाई अब मुझे ऐसा लगता है कि मैं पायलट साहब से बात करना चाहूँगा, जब भी फ्लाइट में जाऊँगा मुझे आपकी याद ज़रूर आएगी. मैं वापस आ रहा था एक मरतबा और आपकी कहानी सुन ली थी, तब से अब तक जब भी मैं फ़्लाइट में बैठता हूँ मैं हमेशा कॉकपिट के दरवाजे की तरफ देखता हूँ कि कैप्टन साहब से मेरी बात हो सके. बात क्यों करनी है आपको, मेरी शिकायत करनी है? पायलट साहब एक बंदा है धरती पर, वो धरती पे रेडियो पे कुछ ना कुछ बोल रहा है आपके बारे में, मेरे से बर्दाश्त नहीं हो रहा पायलट साहब. क्या बात क्या करनी है पायलट साहब से, ये तो बताओ. इफ़ यू रियली वॉन्ट टू टॉक अबाउट इट तो बचाना ज़रूर. ओके, बाकी तामे जी एक गाना किधर गया वाला, मैं गाना ढूंढ रहा था वो चलाऊँ. किधर है किधर है किधर है किधर है. खुड़ी ये नहीं तेरी वाइब, एक सेकेंड मुझे टाइप ही करना पड़ जाएगा वरना आज जहाज़ की बात होती रह जाएगी. देखो भाई, जो लोग छुट्टी पे जा रहे हैं प्लीज़ बी सेफ. बाकी ये कहानियाँ तो होती रहती हैं, सुनाते रहेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है. कुछ भी कहना चाहें तो कह सकते हैं, और अगर जिसने मैसेज नहीं किया तो गब्बर आ जाएगा, पहले बता रहा हूँ.
1: कितनी,
0: अरे कतर वालों मैसेज करो, अगर मैसेज नहीं किया तो कभी आ जाएगा पायलट बन के और जहाज उड़ा.

0: नाम से विलन और काम से हीरो।
1: अब मैं ये कह रहा था ये गाना नहीं चलाऊंगा, नहीं नहीं नहीं, दिस इज द रॉन्ग वन, ये पुराना, ये वाला नया, ये वाला सुनो। और इस पे जिन्होंने अभी तक कमेंट नहीं किया, आई नीड द कमेंट।

0: हमारे एक भाई हैं, मुझे लगता है ये जानते नहीं मुझे. पता है क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं हर किसी को नहीं मिलता प्यार यहाँ, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, ये गाना चला दो. जानते नहीं ना, तो समझ गया, तो समझ गया. लगता है नए आए हो है? और एक मैसेज आया है, जब ये सॉन्ग लगता है मुझे पता लग जाता है भाई आ गया. भाई यही तो बात है भाई, मोहसिन भाई बहुत सारा प्यार भाई मोहसिन को, क्या हाल है. और एक भाई लिखा है हाय, हाय जी सोनू भाई, बढ़िया भाई. और एक मैसेज सलाम वालेकुम भाई, कैसे हो? बढ़िया भाई, आप भी बढ़िया होंगे. सलमान भाई क्या चल रहा है? और हर किसी को नहीं मिलता प्यार यहाँ, बताइए. क्या आपकी जिंगल में अमिताभ बच्चन वाला डायलॉग बिल्कुल झूठ है, क्योंकि स्कूल में इनको सबसे लास्ट में ही खड़े रहना पड़ता होगा हाइट वाइज. भाई क्या पॉइंट है, क्या पॉइंट. रेहान भाई यार, यार रेहान भाई ऐसा मत करो यार, इतनी मेहनत से लगाया डायलॉग यार, आप तो यार चौपसी कर रहे हो यार. क्या आज ना भाई मेरे साथ एक शॉट हो गया, रात भर नहीं सोया. क्या हो गया भाई, क्या क्या सीन क्या हो गया? और ये क्या भेज रहे हो भाई? अफजल उस्मानी भाई क्या लेके आए हो? एक सेकंड, ये मेरे लिए क्या? अरे बढ़िया सा अफजल भाई, ये आप जरा छुपा के रखिएगा, ये मुझे आपसे लेना है, ठीक है, ऑनेस्ट लेना है. कॉल बताऊंगे एक सेकंड भाई, ये कुछ बताना चाह रहे हैं, इनको पहले कॉल करेंगे हम. क्या इतनी सीरियस स्टोरी को आप कॉमेडी स्टोरी बना दिया? यूसुफ भाई सब मजे ले रहे हैं, बताइए. बैंगलोर वाले खुद हैरान है इसमें. मुझे भाई मेरे को दो बार मिला है, वो भी जबरदस्त वाला प्यार. अरे क्या बात है भाई. जमाना बदल गया है. मैसेज लव यू कबीर भाई, लॉट्स ऑफ लव मेरे भाई. आपका नाम आपने लिखा नहीं, वरना मैं नाम भी बोलता. और एक मैसेज है, कॉल बताऊँ मैं आपको, कॉल कर लेता हूँ यार, क्या टेंशन है यार, अभी मिला रहा हूँ मैं कॉल आपको, एक सेकंड. वो ये अभी आसिफ भाई पता क्या कर रहे हैं, सड़कों पे घूम रहे हैं, जो भी बांग्लादेश से हैं उनको पकड़ पकड़ के पूछ रहे हैं केमोना चीता था, केमोना चीता, उन्हें तंग कर रहे हैं ये. अभी इनको धरते हैं, बहुत हो गया. एक मैसेज है, आज स्टोरी सुन रहे कबीर भाई, कृष्ण राय और मुझे स्टोरी भेज देना. भेज देंगे भाई. कह रहे हैं आज पता लगा मेरे साथ ही काम करता है सेम कंपनी में. अस्सलाम वालेकुम.
1: वालेकुम अस्सलाम
0: भाई, क्या परेशानी है?
1: भाई कुछ नहीं परेशानी है, इसकी तुम्हारी याद आ रही थी भाई.
0: अरे हर किसी को नहीं मिलता.
1: बैंगलोर वाले भी तुम्हारे को पकड़ेंगे एक दिन दिल्ली आके.
0: भाई
1: बोले भाई
0: दिल्ली इज नॉट फॉर क्या कहते हैं किड्स, यू नो दिस राइट?
1: नहीं भाई, बाकी तुम सब उतारे क्यों नहीं, वो सवाल रह गया सबका.
0: कौन सा?
1: बैंगलोर वालों का.
0: कौन सा सवाल रह गया?
1: तुमने हमारे सिटी में उतारे क्यों नहीं प्लेन?
0: भाई पायलट माने को नहीं. पायलट करा नहीं, मैं नहीं जाऊंगा.
1: और कबीर भाई क्या हाल चाल?
0: बढ़िया भाई, एकदम शानदार. आप सुनिए आज भाई क्या चल रहा है भाई, किस चीज ने जगा के रखा मेरे भाई को रात भर, जो आपने मैसेज किया?
1: भाई मेरे को ना खराटे मारने का एक मतलब आदत सी हो गई, खराटे मारता हूँ मैं नींद में.
0: अच्छा,
1: तो मेरा जो रूममेट अभी आया है तो वो मतलब पहले खराटे नहीं, मतलब मैं खराटे मारता था भाई.
0: ठीक है.
1: तो उसको मेरे को अकेले को नहीं मालूम पड़ता था.
0: ओके.
1: तो वो क्या, उसको क्या लगा कि मैं खराटे नहीं मारता, वो आया बेचारा नया नया आदमी रहने के लिए. तो मैं खराटे मारने लगा बहुत जोर जोर, कोई सोच के अरे यार क्या हो गया. फोन आ भाई, एक मिनट में तुमको फोन करता हूँ मैडम का फोन.
0: अरे भाई भागो भागो भागो भागो, सबसे प्यारी रोजी रोटी. एक और मैसेज है, ये कह रहे भाई आप जब बहुत पहले क्या, भाई आप जब पहले बहुत दिन पहले इन क्या करते थे उस टाइम गाना बजता था. हाँ एंटर करते पहले गाना बजता था, वो गाना बजा. कौन सा गाना था वो, मुझे याद नहीं आ रहा. कोई ना था क्या? कोई ना, वो जरा भी गाना था. और एक मैसेज आया मेरे पास एहसन कमाल खान साहब का, वो कह रहे हैं कि भाई यू आर स्टिल डूइंग द थर्सडे सेशंस. नहीं भाई अभी तो वो जो सेशंस थे वो अभी नहीं हो रहे हैं स्टूडियो में. एहसन भाई जब होंगे इंशाल्लाह आपको जरूर बताएंगे. एक मैसेज, प्लीज़ ऐड मी ऑन योर स्टोरी सेंडिंग ग्रुप. अफजल भाई नो प्रॉब्लम भाई, आपका स्टोरी आएगी भाई, टेंशन को नहीं भाई. और एक मैसेज है, कसम से मैं ये मैसेज करने वाला था कि ये जो भाई कॉल पर कहानी सुना रहा है इसको बोले जल्दी सुनाए, कॉल सुबह पल में निकलना है उतरने में. मैडम का फोन आ गया, कोई इंसिडेंस. और एक क्या है, हमको तो एक बार भी नहीं मिला प्यार. ये बताओ उम्र क्या है तुम्हारी, है मोहसिन? मोहसिन भैया एज कहाँ है तुम्हारा, 24 के हो ना, नौकरी पे ध्यान दो ठीक है. प्यार नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है. हाँ बताओ.

ये कोई बात होती है? और वो आपको पता है वो क्या कहते हैं, वो जो आंटी होती है ना जो रिश्ते करवाती हैं, उनका नंबर देता हूँ मैं आपको। नौकरी नहीं कर पाओगे फिर इस बात की पूरी गारंटी।

0: रेडियो। हाँ भाई सब स्टोरी सुना रहे हैं आजकल, क्या हमें नहीं चाहिए
1: मौसम जी पढ़ाई पे ध्यान दो ठीक है, बेटे नौकरी करो अभी, प्यार नहीं हुआ ने वो नहीं हुआ ने ये नहीं हुआ, 24 साल के हैं बताइए ये, और कह रहे हैं आज तक मुझे प्यार नहीं हुआ। टाइम लगेगा, 2026 चल रहा है, थोड़ा सा समय तेज है, और आप अभी समय जहाँ पे स्लो चल रहा है वहाँ पर हैं अभी तो हम जितने भी लोग यहाँ पर हैं हमें इस बारे में नहीं सोचने का, ओके पिन ड्रॉप साइलेंस। तो मौसम की बात कर लेते हैं ज़रा, अभी आज का मौसम ठीक ठाक है भाई, मतलब ठीक है गर्मी है मगर उस प्रकार की नहीं है जिस प्रकार की कुछ दिनों पहले हो रही थी। अभी 35 डिग्री सेल्सियस फॉर नाउ, मिनिमम 31 एंड मैक्सिमम 42। वेंसडे से आने वाला जो वेंसडे है, ये वाला नहीं अगले हफ्ते वाला, थोड़ी सी हवा चलेगी एंड मौसम थोड़ा सा बदलेगा। फिलहाल कल के मुकाबले अगर मैं ह्यूमिडिटी का लेवल बताऊं आपको तो 56%, कल 54 था, 2% के फर्क से कोई ज़्यादा फर्क आएगा नहीं। हालांकि अभी आपको टेम्परेचर 8 डिग्री ज़्यादा लगेगा, सिर्फ एक डिग्री ज़्यादा लगेगा क्योंकि थोड़ी गस्ट ऑफ विंड ज़्यादा है, तो गर्म गर्म हवाओं की वजह से हो सकता है कि आप थोड़े बेचैन और परेशान हो जाएं। एक मैसेज है, हम लोग उन्हें क्या मोशाता कहते हैं जो लोग रिश्ते कराते हैं ना, ये रिश्ते जो कराते हैं इनको भेज दो, ये हमारे मोहसिन भाई हैं सऊदी अरब से मैसेज कर रहे हैं, इनको प्यार व्यार नहीं हो रहा, इनकी सीधा ब्याह ही कराऊंगा। एक मैसेज है, भाई जॉब भी है पैसे भी आते हैं फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ भाई मैं कोई ठंडे पहाड़ पर बैठा हुआ बाबा थोड़ी हूँ, मुझे क्या पता यार कह रहे मेरे बस बाबा मुझे ये बताओ मेरे पास जॉब भी है पैसे भी आते हैं फिर भी मैं गरीब क्यों हूँ, इसी सोच की वजह से एक मैसेज है, प्यार मुगले आजम में ख़त्म हो गया, लो लो सुन लो आ गए समीर भाई की एंट्री हो गई नहीं वही वाले दोस्त है ना, वाले दोस्त नहीं होते बोले कहाँ जा रहे हो, जाना तो कहीं नहीं है जिंदगी थम सी गई है, अरे मैं पूछ रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, तुम बोले थे ना अभी कहीं जाना है तुम्हें, कहाँ जाना है सफ़र तो उसके साथ ही ख़त्म हो गया ये समीर भाई वैसी वाली बात करी है आपने। एक मैसेज है, देखिए हम दोनों ने सेम जवाब दिया है, बात तो सही है, बात तो सही है, मैं आपसे बिल्कुल अग्री करता हूँ। एक और मैसेज है, भाई एक नंबर गिनने हैं क्या, हर महीने होता था दिल्ली में थे ना, या एक सेकेंड मतलब मैं समझा नहीं, कन्फ्यूज़ कर दिया आपने मुझे भी इस बात से। 666-22107 नंबर है, कन्फ्यूजन जारी रहनी चाहिए मगर मैसेज भी जारी रहने चाहिए, और बताइएगा कि कहाँ पे ट्रैफिक है और लेट्स रिपोर्ट दैट। और आज भी काफ़ी सारे इंटरनेशनल दिन हैं उनके बारे में बात करेंगे, मुझे कितनी बार प्यार हुआ ये मेरे से पूछ रहे हो, प्यार का नंबर गिनना है क्या, हर महीने होता था, कह रहे हर महीने होता था जो दिल्ली में रहता था, आजकल शून्य हो गया है अफजल भाई खुश रहो बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी बातें मैं मैसेज में कर लूँगा वही कह रहे हैं कबीर भाई अस्सलाम वालेकुम, लगता है हर क्या हम आधा पायलट बन जाएंगे, ट्राई करेंगे कि जब जाएंगे पायलट को बोलेंगे वही हमको थोड़ा जहाज चलाने सिखा दो, वाह वाह वाह कह रहे हैं पायलट के पास जाऊँगा, बोले थोड़ा एक तो हमको जहाज थोड़ा मोड़ने दीजिएगा प्लीज, ये थोड़ा लेफ्ट में लीजिए बहुत मज़ा आ रहा है, थोड़ा और लेफ्ट में लीजिए, आ हा हा हा हमको भी दीजिए हैंडल हम भी मोड़ के देखें जहाज को। एक मैसेज है, मुगले आजम के पगले आजम, ये क्या बात हुई और एक मैसेज है, बहुत दिनों बाद किसी को टपकाया नहीं है आपने, हर कहानी में बचा रहा हूँ मैं ठीक है, हर कहानी में अगर आप नोटिस करें तो, एक तो मैं इतनी शराफत से कहानी सुना रहा हूँ। एक मैसेज है, क्या हाल है जी, बढ़िया मणि भाई जमा जहज उड़ा रहे हैं भाई सब बढ़िया चल रहा है, बाकी एक काम करते हैं इस भाई को चलाते हैं, बहुत टाइम से मैंने भाई को प्ले नहीं किया है, बाकी हम मैसेज करते रहें और वो उन भाई को मदद करते हैं, एक भाई ने सवाल पूछा हम सबसे आप उनकी मदद नहीं कर रहे, वो कह रहे हैं मेरे पास नौकरी भी है पैसा भी आ रहा है मैं फिर भी गरीब क्यों, जवाब दो भाई उनको हेल्प करो प्लीज़, वो परेशान घूम रहे हैं बेचारे, वो मेरे पास तो उनकी समस्या का कोई भाई समाधान है नहीं, तो अगर आप मदद कर पाएँ तो प्लीज़ कर दीजिएगा, बाकी तो क्या कर सकते भाई, उन्हीं के लिए गाना मचाएंगे। याया भाई कह रहे हैं भाई ट्रैफिक रोड पर ही है जॉइंट लेट, वाह वाह वाह वाह थैंक यू याया भाई जिंदगी ले ली आपने मेरी, क्या छुट्टी के वक्त भाई का हालचाल पूछ ऐसी दुनिया है भाई ऐसी दुनिया है। व्हाट्सअप व्हाट्सअप ये भाई कहने गरीब है तो गरीब ही रहेगा और ये देखो
2: जो नहीं नाचते उसको भी नचाएंगे
0: नचाएंगे
2: लेट्स डू इट।

मचाएंगे। हाँ जी, तो बंटा की पब्लिक बोली तो तकलीफ।

हाँ तो भाई कुछ दिन है आज के, जरा बताता हूँ, इंटरनेशनली मार्क्ड दिन है। कुछ दिनों से आपको मतलब होगा, कुछ है खामा खाएं एग्जिस्ट करते हैं या कर सकते हैं। तो आज भाई साहब स्पेन में वो वाला फेस्टिवल मनाया जा रहा है जिसमें टमाटर फेंक फेंक के मारते हैं। फेस्टिवल का नाम है ला थोमाटीना। तो ला थोमाटीना आज ये फेस्टिवल मनाया जा रहा है, आज के दिन ही होता है। तो इसमें टमाटर फेंक फेंक के जश्न मनाते हैं, और जिनको इसका एग्जाम्पल दिखना है वो ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा देख लेना, उसमें दिख जाएगा फैंसी तरीके से आपको। ऋतिक रोशन पे भी टमाटर गिर रहे हैं, बताइए क्या दिन आ गए। तो ये उस मूवी में प्रॉपरली आपको नजर आ जाएगा, वरना वीडियोस बहुत सारे हैं। सेलिब्रेट करने मत निकल जाना कि टमाटर आज मैं टमाटर फेंक के सेलिब्रेट करूँगा, वो नहीं करना है। ला थोमाटीनो थोमाटीना फेस्टिवल आज के दिन है। आज है चेरी पॉपसिकल डे। पॉपसिकल्स खाई हैं आपने बचपन में? मुझे यहाँ के पता लगा उन्हें पॉपसिकल कहते हैं भाई। एक मैसेज है भाई, ये फेस्टिवल तो पॉलिटिशियंस के लिए बेस्ट है। रियान भाई एकदम सही। और आज है लेगेसी वीक, मतलब बेसिकली शुरू हो चुका है, 5 सितंबर में जाए खत्म हो जाएगा। और आज है नेशनल क्या है, गॉट चेक्ड डे। भाई मेडिकली जिन्हें चेकअप वेकअप कराना है करा लिया करो भाई, फुल बॉडी चेकअप की बिल्कुल मैं भी इसके साथ ही हूँ, बहुत बढ़िया चीज़ है। और आज है स्पोर्ट्स सैम्पलिंग डे। आज है स्पार्क द वर्ल्ड डे, है क्यों ना, ओके। और इसके साथ एक और नहीं, बस इतना ही दिन है ना, ठीक है। कल है बाकी दो दिन, ठीक है। यही दिन मनाए जा रहे हैं भाई, ला थोमाटीनो फेस्टिवल है आज। टमाटर से खेलने वाला, ये मैं सोचता हूँ अक्सर कि खेलने में मज़ा आता हुआ ही नहीं, कि मतलब हाउ डज इट गो भाई। मेरा कभी ऐसा नहीं हुआ कि ओ मैं भी जाऊँगा और टमाटर भी पिक के मारेंगे। कुछ लोगों का होता है कि एक बार स्पेन में जाना है, ला थोमाटीना फेस्टिवल देखना है। आई डोंट नो, मन होता है आपका ये वाला फेस्टिवल दे, क्योंकि काफ़ी मशहूर है, हम देशों तक भी ये फेस्टिवल पहुंच चुका है, एटलीस्ट हमें पता है कि क्या होता है इसके अंदर। मैं तो नहीं खेल सकता भाई, इतने सारे टमाटर बरसाते हैं वो। एक मैसेज है, कैसे हो भाई? मैं बढ़िया भाई, वालेकुम अस्सलाम। ये मैसेज किया मोहम्मद आसिफ भाई ने। भाई आसिफ के बाद एक मैसेज आया, शेर हाँ सुनाओ सुनाओ, शेर सुनाओ। अब्दुल समद भाई सुना दो वेटिंग। और एक मैसेज है 14 सेकेंड का उन्होंने मुझे भेजा, तो अभी जब तक वो शेर लिख रहे हैं मैं बाकी जो है आगे बढ़ जाऊँगा। एक सेकेंड, एक और मैसेज है, हम तो अच्छे अच्छे टमाटर बीन बीन कर लेकर जाएंगे और आलू की सब्ज़ी में डालकर मस्त खाएंगे। बहुत बढ़िया,

जियोंदर, जीते रहो जीते रहो, जियोंदर है पुत्र। और एक मैसेज है, कबीर भाई मेरा मन करता है कि मैं भी इस फेस्टिवल में जाऊं, लेकिन वही बात, सैलरी भी आ रही है, नौकरी भी है, लेकिन फिर भी गरीब हूँ। अरे यार आज सबके सब मेरे मेरे लिए दुखड़ा क्यों रो रहे हैं, मुझे ये बताइए क्या टेंशन है, क्यों जाना है टमाटर के साथ खेलने के लिए, व्हाट इज़ द इशू हियर। एंड एक मैसेज और है, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप कहानी ज़रूर भेजिएगा। भेजूंगा भाई, बिल्कुल भेजूंगा। एंड अ वेरी गुड एक मैसेज, आप स्विमिंग क्या है, अब मैं स्विमिंग जा रहा, भाई बिल्कुल तैरने जाओ, समंदर की भी कहानी सुनाऊंगा एक दिन। क्या ये गरीब वालों को सबको मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो गरीब हो ना वो अपनी आदत से गरीब हो। अरे ये तो सुनाने लगे यार रियान भाई, तो पकड़ के सुनाने लगे, सुना गरीब है ना अपनी वजह से, बताऊँ अभी। एक मैसेज है, सलामत रहे हर चीज़, आप दिल से कहते हैं, आप सुन के हम परदेसी समझते हैं कि हम घर वालों के साथ हैं। शहजाद भाई यार आप बड़ी बात कह दी, शहजाद भी कह रहे हैं आपको सुन के लगता है कि हम घर वालों के साथ हैं, दैट्स अ ह्यूज कॉम्प्लीमेंट, थैंक यू मेरा भाई। तो अब्दुल समद भाई ने शेर भेजा है, उसने कहा कि इश्क का खुलासा तो बता दो, मैंने लफ्ज़ दर्द साथ लिख दिया। अरे रे मेरे आशिक, ये मोहम्मद आपने जो करी है मेरे शो में होती नहीं है यूजुअली, क्योंकि इसके बाद जो गाना चलेगा ये शेर को सुना के उतना ही दुख होगा आपको। जस्ट इमेजिन कि मैं ये शेर पढ़ रहा हूँ, उसने कहा कि इश्क का खुलासा तो बता दो, मैंने लफ्ज दर्द साथ लिख दिया, और उसके बाद ही चल जाए प्यार धरा का धरा रह जाओ भाई, बहम ना पालियो

अरे मैं नू कर रहा था भाई, बढ़िया चल रहा है सब। उच्चारण और साथ में बादशाह। मेरे पास बहुत मजेदार मैसेज है। एक तो मुझे फरद भाई ने बोला है, फरद भाई कह रहे हैं भाई आपने तो ये एविएशन की कहानी सुनाई थी, जैसे ही मैं अजान के बाद वापस लौटा ये प्यार मोहब्बत की बातें कहाँ से शुरू हो गई। पता नहीं भाई कहाँ कहाँ से बात निकली और कहाँ कहाँ तक चली गई, मुझे खुद नहीं पता। वो था ना कि मुझे यहाँ लाया गया है, मैं आया नहीं हूँ भाई, मुझे लाया गया है, मुझे भी नहीं पता ये बात कब प्यार मोहब्बत की बन गई। और एक मैसेज है काशिफ भाई, काशिफ भाई कह रहे हैं ये जो बार बार लोग मैसेज कर रहे हैं कि हम गरीब हैं, हम गरीब हैं, सैलरी आने वाली है। मुबारक हो भाई जिन जिनकी पगार आ चुकी है। और एक भाई ने मैसेज किया, शेब भाई तो आगे निकल गए। शेब भाई कह रहे हैं ये जो टमाटर वाला फेस्टिवल है स्पेन में होता है, मैं वहां जाना चाहता हूँ लेकिन वापस नहीं आना चाहता।

0: सवासी बहुत बहुत शुक्रिया आपने निशाबाशी दी उसके लिए, बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ। और एक भाई ने मुझे मैसेज किया, मैं खुद डर गया जब इनका मैसेज पढ़ा मैंने। उन्होंने मुझे वॉइस नोट भेजा और ये हमारे भाई हैं, इनका नाम है मोहम्मद आसिफ। वो कह रहे हैं कि आपका वो जो कॉन्टेस्ट है उसको थोड़ा चेंज कर दिए। मैं कहा मेरा कौन सा कॉन्टेस्ट आ गया भाई? तो बोल रहे इसमें आप गाना गैस करने के लिए गए थे। मैं कहा मैंने कब कॉन्टेस्ट किया ये? तो कन्फ्यूजन हो गई काशिफ भाई, मैं तो कोई कॉन्टेस्ट करता ही नहीं भाई, मेरे बस की कौन नहीं भाई कॉन्टेस्ट करना, उतनी अकल नहीं है मेरी। तो मैं करता ही नहीं भाई कॉन्टेस्ट। पता नहीं, अब शायद हमारे कुछ चार्जेस करते हैं हमारा कॉन्टेस्ट, तो उन तक आप बात आपके पहुंचा दूंगा मैं डेफिनेटली। ओके, तो अब वक्त है जरा आपको कुछ मैं बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसी मूवीज़ जो आपके हमेशा जहन में होनी चाहिए अगर आप ट्विस्टेड मूवीज़ की तलाश में हैं जिनके एंड में बहुत ही ज़बरदस्त ट्विस्ट होता है। आई नो आपको शटर आइलैंड किसी ने बता दी होगी, सो मैं शटर आइलैंड नहीं बताने वाला, आई विल नॉट गो देयर। मैं आपको दो मूवीज़ बताना चाहता हूँ, ठीक है? दो या तरह हाँ, दो बता देता हूँ। तो एक तो है आई एम मदर, अगर आपने ये नहीं देखी है देखिए आप, एंड में जो ट्विस्ट आएगा आप पूरे ट्विस्ट हो जाएंगे ये क्या था। दूसरी मूवी है, इनफैक्ट तीन बता देता हूँ चलो, एक है ओब्लिवियन, OBLIVION, ओब्लिवियन, और तीसरी है हाइड एंड सीक, अगर आपने नहीं देखी है। सबने प्रीडेस्टिनेशन आई गेस देख ली होगी, प्रीडेस्टिनेशन से ज़्यादा बढ़िया ट्विस्ट तो भाई मैंने देखा नहीं वो, और मैं बहुत मूवीज़ देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि प्रीडेस्टिनेशन का जो एंड है भाई कतई अलग ही है, वो भेजा घूम जाएगा। अगर आपने नहीं देखी है तो फर्स्ट सबसे पहले प्रीडेस्टिनेशन देखना, ठीक है, एंड उसके बाद आई एम मदर देखें, ये एंड में ट्विस्ट आएगा बढ़िया वाला, पूरी कहानी आपको बांध के रखेगी। और तीसरी है ओब्लिवियन, ये आज के तीन मेरे रिकमेंडेशंस हैं अगर आपने नहीं देखी है। और इनमें से कोई भी ऐसा नहीं है कि बहुत ही हॉरर है, नहीं नहीं नहीं, नॉर्मल मूवीज़ हैं मगर फिर भी आपको बहुत मज़ा आएगा। अगर एक चाहिए थोड़ी सी साईफाई मूवी, एक भाई ने मुझे मैसेज किया कोई साईफाई बताएं, तो मैं आपको बताता हूँ एक्स मशीना ही बोलता हूँ मैं तो भाई। ये देखो ये वो स्कूल के दोस्त होते ना मजाक करते करे, आर यू मदर हैं, अरे
1: पिक्चर का नाम है सरदार, इनको उठवा लें क्या, रिहान नाम है इनका,
0: अभी बताता दूंगा। मजे ले रहेगा ना तुम, अगर चिल्ला चिल्ला करो आई एम मदर आई एम मदर। मूवी है आई एम मदर, अच्छी मूवी जाके देखिएगा। एंड एक्स मशीना इज अ साईफाई थ्रिलर ही बोलूंगा भाई मैं इसको, थ्रिलर ही है, यस, एंड वेरी वेल मेड यार, वेरी वेल मेड। अगर आपने नहीं देखी है ना तो ट्विस्ट के लिए और साईफाई मूवीज की लिस्ट में इसको आप अपने आप ऊपर रख देंगे। सो एक्स मशीना, दूसरी मूवी हुई आई एम मदर, तीसरी हुई ओब्लिवियन, और इसके अलावा प्रीडेस्टिनेशन। तो ये मेरी रिकमेंडेशन लिस्ट पे, बाकी आपकी मर्जी। वैसे भाई एक मराठी मूवी है तुम्बाड़, भाई तुम्बाड़ देखिए भाई, बिल्कुल देखिए भाई। हॉरर कॉमेडी पसंद करने वालों के लिए कौन सी तुम्बाड़ची मंजुला मराठी मूवी है, मुझे लगा तुम्बाड़ अलग बता रहे हैं आप तो बच्चा, तुम्बाड़ची मंजुला मराठी मूवी कौन समझाएगा बैठ के सुभाष भाई मेरे को। आई नो मराठी सिनेमा बहुत बढ़िया है, मराठी सिनेमा से बहुत सारी मूवीज़ निकली, मैंने देखी भी है। आई थिंक एक कोर्ट रूम ड्रामा भी था, वो भी मराठी मूवी थी, एक्सलेंट यार, बहुत ज़बरदस्त काम करता है मराठी सिनेमा हमारी कंट्री में। बट ये सब टाइटल्स के साथ है तो बताओ फिर तो बात भी कर पाऊँ मैं इस बारे में। और एक मैसेज है फ्री और प्री, तो फेल भाई क्या मतलब, टुडे गिव ब्रदर स्टोरी, आई गिव यू एवरी डे स्टोरी ब्रदर, नॉट अ सिंगल डे आई स्किप, ओके। और प्री डेस्टिनेशन हाल ही बता दू, प्री तो फेल भाई मैं प्री लिख के देता हूँ, प्री डेस्टिनेशन ये भाई मूवी का नाम। और एक मैसेज है, ये तो बैंगलोर वाली इंग्लिश थी भाई, मेरी यहाँ पे अंग्रेजी से हो चुकी है क्या ही बताऊँ आपको, बट मैं भेजूंगा स्टोरी जिसको भी नहीं बोली, डोंट वरी अबाउट इट। एनीवे भाई

बता दो भाग्य सुभाष भाई, सुभाष भाई से पूछ रहा हूँ मैं, जब से ये जो मराठी मूवी आपने बताई है तुम्बाड़ची मंजुला, ये किधर? अच्छा चलो ढूंढना मेरा काम, मैं ढूंढ लूंगा, पर मुझे ये बता देना कि क्या कहते हैं उसको, ट्रांसलेशन है क्या कहीं भी मिलेगा तो लेट मी नो। कि आज तो फुल मूड में कबीर हो भाई, मैं तो डेली मूड में होता हूँ भाई, डेली सुना करो आप। मैं से बता रहा हूँ आपका 500 ml खून ना बढ़ा दिया तो नाम नहीं मेरा। और एक मैसेज है वो तो कॉन्टेस्ट फजील भाई करते हैं, आई थिंक फजील भाई करते हैं कॉन्टेस्ट, आई थिंक सुबह सुबह भी कॉन्टेस्ट करती हैं नाजिया, तो आई डोंट नो, मैंने सुबह मैं उठता नहीं हूँ भाई तो मुझे सुबह का नहीं पता है, बट आई गेस सुबह भी कोई कॉन्टेस्ट होता है जहाँ तक मुझे पता है। और शाम को आई थिंक हमारे फजील भाई भी एक कॉन्टेस्ट करते हैं लास्ट में शायद, उस वक्त भाई मैं बाहर चाय पी रहा होता हूँ तो मुझे ज़्यादा अंदाज़ा नहीं है, बट इतना ही हेल्प कर सकता हूँ। ओके, सोशल मीडिया हैंडल्स FM107 Qatar, FM107 Qatar, इस नाम से हम हर जगह मौजूद हैं, आप चाहें तो मुझे भी ढूंढ सकते हैं, दोहा वाला कबीर के नाम से मिल जाऊंगा आपको टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे, सो दोहा वाला कबीर KABIR। और एक भाई ने मैसेज किया है, हाँ जी नाजिम करती, हाँ मतलब मुझे हल्का हल्का अंदाज़ा था कि कॉन्टेस्ट करते हैं लोग, हम एक दूसरे को सुन नहीं पाते भाई क्या करें। एक मैसेज, अरे सफ़ा मैम और सरवर भाई भी करते हैं, अच्छा वो भी करते हैं क्या सेम, मतलब कॉन्टेस्ट क्या उनका, वो गानों वाला कॉन्टेस्ट है क्या? बिकॉज आई डोंट नो भाई पर्सनली, हम एक दूसरे को सुन ही नहीं पाते सुनना छोड़ो मिल ही नहीं पाते, शाम को बस मैं कल ही होता हूँ भाई ऑफिस में। एक मैसेज है, हाँ भाई इंग्लिश सबटाइटल्स में है, चलो फिर तो बढ़िया भाई, सुभाष भाई मैं देख के बताऊँगा आपको ठीक है, वो हर हफ्ते चेंज करते हैं, सुनना पड़ेगा। मैंने हमारे आर्जेस को ये अभी नहीं सुन पाया मैं, बट दैट्स बैड, सुनना चाहिए। इस्माइल भाई वालेकुम अस्सलाम। ओके, ऑन दैट नोट 7 बजे आप सुनेंगे न्यूज़ बुलेटिन और मेरी आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह, आप कल सीधा मिलते हैं शाम 5 बजे। बातों बातों में पता नहीं कब ऐसे वक्त निकल जाता भाई, मैं तो करता रहूं जो मेरे बस चले तो, बट फॉर नाउ दिस इज़ दुआ वाला कबीर साइनिंग ऑफ, अपना ख्याल रखिएगा क्योंकि आप बेहद बेहद ज़रूरी है। मां सलामा।

0: अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाही वबरकातुहु। दोस्तों, मेरे यानी सरवर मिर्जा के साथ आइए जानते हैं वजारत दाखला से वीकली अपडेट।
1: हर हफ्ते की सबसे जरूरी अपडेट लेकर आ रहे हैं आरजे सरवर एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में। एमओआई वीकली अपडेट प्रोग्राम में वजारत दाखला की हर एक एक्टिविटी, जरूरी खबरें और आपकी फैमिली के लिए इम्पोर्टेंट अवेयरनेस, सब कुछ मिलेगा यहाँ, कुछ मिलेगा यहाँ। और जानिए वो सब जो आपके लिए मैटर करता है। एमओआई वीकली अपडेट, एमओआई वीकली अपडेट, आपका वीकली डोज ऑफ न्यूज एंड मच मोर विद आरजे सरवर। विद आरजे सरवर।
0: एस्टेब्लिशमेंट्स और अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट के जेर इंतजाम स्पोर्ट्स सिक्योरिटी सेक्शन ने दोहा बैंक स्टार्स लीग के लिए सिक्योरिटी और इंतजामी किरदारों के इत्तेहाद के उनवान से दूसरा सालाना फोरम मुनक्किद किया, जिसमें रियासत में खेलों की तकरीबात के इंतजाम और सिक्योरिटी से मुतालिक मुख्तलिफ इदारों के नुमाइंदों ने शिरकत की। फोरम में डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अल हानी और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द कतर स्टार्स लीग हानी तालिब बल्लान ने शिरकत की। फोरम के दौरान सिक्योरिटी और सेफ्टी प्लान्स, सिविल डिफेंस प्लान्स और मेडिकल प्लान्स पर तफसीली बातचीत की गई। इसके अलावा मुतालिका इदारों के दरमियान राबते और हम आहंगी के तरीकाकार पर भी जायजा लिया गया, ताकि एक महफूज खेलों का माहौल फराहम किया जा सके जो स्पोर्ट्स सेक्टर के लिए रियासत कतर की विजन के मुताबिक हो। फोरम के अख्तिताम पर डायरेक्टर ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट्स एंड अथॉरिटीज सिक्योरिटी डिपार्टमेंट ब्रिगेडियर जनरल स्टाफ खालिद बिन अहमद अल थानी ने शिरकत करने वाले इदारों को फोरम की कामयाबी में उनकी कोशिशों के एतराफ में तकरीबी शील्ड और तकरीमी असनाद पेश की। वजारत दाखला ने आवाम को तंबीह की है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या एआई के जरिए तैयार की गई गलत या गुमराह कुन मालूमात से बचने के लिए डिजिटल हिफाजत के उसूलों पर अमल करना नहायत जरूरी है। इदारे के मुताबिक इंटरनेट और सोशल मीडिया पर ऐसी तस्वीर, वीडियोस और पैगामात सामने आ सकते हैं जो देखने में बिल्कुल हकीकी लगते हैं, लेकिन असल में एआई की मदद से तैयार किए गए होते हैं। इसलिए किसी भी मालूम को शेयर करने से पहले उसके जराए और असलियत की तस्दीक करनी चाहिए। इस हवाले से एक मिसाल दी जा सकती है। फर्ज करें कि किसी शख्स को सोशल मीडिया पर एक वीडियो मिलती है जिसमें किसी मशहूर शख्सियत से मंसूब एक अहम बयान नजर आता है। वीडियो देखकर वो फौरन इसे अपने दोस्तों और फैमिली ग्रुप्स में शेयर कर देता है। बाद में मालूम होता है कि ये वीडियो एआई के जरिए तैयार किया गया था और उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। इस तरह गलत मालूमात चंद मिनटों में हजारों अफराद तक पहुंच सकती है। वजारत दाखला ने जोर दिया है कि आवाम हमेशा मुअद्दबर और रस्मी ज़राए से मालूमात हासिल करें और किसी भी कंटेंट पर अंधा एतमाद ना करें। मिनिस्टर ऑफ स्टेट ऑफ इंटीरियर अफेयर्स शेख अब्दुल अजीज बिन फैसल बिन मोहम्मद अल थानी ने रियासत कतर में रिपब्लिक ऑफ कोरिया के सफीर होंग जेपियो से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान कतर और रिपब्लिक ऑफ कोरिया के दरमियान तआवुन के ताल्लुकात, खासतौर पर सिक्योरिटी के शोबों में मुस्तहकम रवाबित का जायजा लिया गया और उन्हें मजीद फरोग देने के तरीकों पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर दो तरफा बहामी दिलचस्पी के कई दूसरे उमूर पर भी बातचीत की गई। सामीन, अपनी गाड़ी के टायर्स को अच्छी हालत में रखना सिर्फ गाड़ी की परफॉर्मेंस के लिए ही जरूरी नहीं, बल्कि आपकी और दूसरों की हिफाजत के लिए भी बहुत अहम है। खराब या घिसे हुए टायर्स ब्रेकिंग को कमजोर कर सकते हैं, गाड़ी पर कंट्रोल कम हो सकता है और हादसात का खतरा बढ़ सकता है। टायर्स की बेहतर मेंटेनेंस के लिए इन बातों का ख्याल रखें। सबसे पहले टायर्स की हवा यानी एयर प्रेशर बाकायदगी से चेक करते

रहें और कंपनी से बताए गए एयर प्रेशर को हमेशा जहन में रखें। घिसे हुए या खराब टायर्स को फौरन तब्दील करवा लें। टायर्स की ट्रेड डेप्थ चेक करते रहें ताकि सड़क पर बेहतर ग्रिप बरकरार रहे। टायर्स की रोटेशन और व्हील अलाइनमेंट वक्त पर करवाएं। सफर से पहले टायर्स में कट्स, बल्जेस या किसी भी किस्म के नुकसान का जायजा लें। गर्म मौसम में टायर्स की हालात पर खास तवज्जो दें क्योंकि ज्यादा गर्मी टायर फेलियर का सबब बन सकती है। याद रखें, टायर्स आपकी गाड़ी और सड़क के दरमियान वाहिद राबता होते हैं। उनकी मुनज्जम देखभाल हादसात से बचाव और महफूज सफर की बुनियाद होती है। वजारत दाखिला का कहना है कि गाड़ी के टायर्स का ख्याल रखना आपकी रोड सेफ्टी को बेहतर बनाता है। रियासत कतर ने जमहूरिया तुनिशिया में अरब वज़राए दाखिला काउंसिल के जनरल सेक्रेटरेट के मरकज पर मुनक्किद नवी अरब कॉन्फ्रेंस ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ नेशनलिटी एंड सिविल स्टेटस डिपार्टमेंट्स की कार्रवाईयों में शिरकत की। वजारत दाखिला के वफ्द की क्यादत डायरेक्टर ऑफ द नेशनलिटी एंड ट्रेवल डॉक्यूमेंट्स डिपार्टमेंट मेजर जनरल हमद अब्दुल वाहब अल मुतवा ने की। कॉन्फ्रेंस में एजेंडा में शामिल मुख्तलिफ मौजूदात पर गौर किया गया और उनके हवाले से मुनासिब सिफारिशात मंजूर की गईं। इस कॉन्फ्रेंस का मकसद अरब ममालिक के दरमियान नेशनलिटी और सिविल स्टेटस से मुतालिक तजुर्बात के तबादले और मुश्तरका तआवुन को मजीद मजबूत बनाना था। समीन, गाड़ी के अंदर बच्चों की हिफाजत के लिए जरूरी है कि हमेशा उनकी उम्र और कद के मुताबिक मुनासिब चाइल्ड सीट का इंतखाब किया जाए और सीट बेल्ट को सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। बच्चों को गाड़ी में कभी भी बगैर सीट बेल्ट या चाइल्ड सीट के सफर नहीं कराएं। सफर छोटा हो या लंबा, हिफाजती कवायद पर अमल करना उनकी जान बचाने में अहम किरदार अदा करता है। बच्चों की उम्र और वजन के मुताबिक चाइल्ड सीट इस्तेमाल करें। चाइल्ड सीट को गाड़ी में ठीक तरीके से इंस्टॉल करें। सीट बेल्ट को हमेशा सही तौर पर बांधें। छोटे बच्चों को मुमकिन हो तो पिछली सीट पर बिठाएं। सफर से पहले चाइल्ड सीट और सीट बेल्ट की जांच करा लें। वजारत दाखिला का कहना है कि हमारे लिए आपके बच्चों की सलामती सबसे अहम है। उनकी हिफाजत आज का एहतियात और कल की मुस्कुराहट है। दोस्तों, आपका ट्रैम से मुतालिक ट्रैफिक साइंस और सिग्नल्स का ख्याल रखना आपकी पब्लिक सेफ्टी और ट्रैफिक रूल्स की पाबंदी दिखाता है। हमेशा होशियार रहें और इन तदाबीर पर अमल करके सबकी हिफाजत को यकीनी बनाएं। आइए कुछ जरूरी एहतियात जानते हैं। कीप क्रॉसिंग क्लियर। ट्रैम के क्रॉस होने वाली जगह को हमेशा खाली रखें। इसे ब्लॉक करना मुसाफिर के लिए खतरा पैदा करता है और सर्विस में रुकावट बन सकता है। ट्रैम वे लुक बोथ वेज। ट्रैम दोनों तरफ से आ सकती है। क्रॉस करने से पहले दोनों तरफ देखना जरूरी है। ट्रैम ओनली लेन। ये लेन्स सिर्फ ट्रैम के लिए होती हैं। ड्राइवर्स को चाहिए कि इनमें गाड़ी ना चलाएं। शेयर ट्रैम एंड व्हीकल लेन्स। ऐसे एरियाज में गाड़ी एहतियात से चलाएं और हमेशा ट्रैम को तरजीह दें। कीप द क्रॉसिंग एरिया क्लियर। ट्रैम के गुजरने वाली जगह को हमेशा साफ और खुला रखें। अपनी और दूसरों की हिफाजत के लिए ट्रैफिक रूल्स और रोड एटिकेट का पाबंद रहना जरूरी है। रियासत कतर स्कॉटलैंड के दारुल हुकूमत एडिनबर्ग में 7 से 29 अगस्त तक मुनक्किद होने वाली रॉयल एडिनबर्ग मिलिट्री टैटू 2026 की सरगर्मियों में शिरकत कर रही है। इस बैनुल अक्वामी फेस्टिवल में रियासत कतर के सफीर बराए यूनाइटेड किंगडम शेख अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन सऊद अल्फानी और लीगल एडवाइजर टू द मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर और जनरल सुपरवाइजर ऑफ द पुलिस अकेडमी मेजर जनरल डॉक्टर अब्दुल्ला यूसुफ अलमाल ने शिरकत की। कतर की शिरकत में वजारत दाखिला की पुलिस अकेडमी के नुमाइश परफॉर्मेंस शामिल हैं, जो दुनिया भर की अस्करी और सेरेमोनियल बैंड्स के साथ अपने फन और सलाहियतों का मुजाहिरा कर रही है। इस अहम बैनुल अक्वामी इवेंट में कतर की शिरकत मुल्क के उस अज़्म को जाहिर करती है जो आलमी फोरम में मुअस्सर मौजूदगी, तआवुन और तजुर्बात के तबादले को फरोग देने और कौमी सलाहियतों को दुनिया के सामने पेश करने के लिए मुसलसल कोशिश कर रही है।
सामीन, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी आपकी और दूसरे रोड यूजर्स की हिफाजत के लिए बहुत जरूरी है। फास्ट लेन यानी सबसे बाईं तरफ वाली लेन में मुकर्रर करदा कम अज कम रफ्तार से कम स्पीड पर गाड़ी चलाना ट्रैफिक की रवानी को मुतासर कर सकता है और कानूनी खिलाफ वर्जी का सबब भी बन सकता है। फास्ट लेन का इस्तेमाल सिर्फ मुनासिब रफ्तार के साथ करें। मुकर्रर करदा मिनिमम स्पीड से कम रफ्तार पर गाड़ी चलाने से गुरेज।

0: करें, लेन डिसिप्लिन का ख्याल रखें और बिला वजह फास्ट लेन में ना रहें। दूसरी गाड़ियों के लिए रास्ता खुला रखें ताकि ट्रैफिक बआसानी रवा रहे। ट्रैफिक साइंस और स्पीड लिमिट्स पर हमेशा अमल करें। वजारत दाखिला का कहना है कि याद रखें, ट्रैफिक कवायद की पाबंदी सिर्फ जुर्मानों से बचाती नहीं बल्कि सड़कों पर बेहतरीन नज्म जब्त और सबकी सलामती को भी यकीनी बनाती है। महफूज ड्राइविंग करें और जिम्मेदार रोड यूजर बने। सामईन, इसी के साथ मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर की वीकली अपडेट का सिलसिला अपने अख्तिताम को पहुंचा। अगली मुलाकात तक के लिए प्रोग्राम डिजाइनर शहबाज अंसारी और सरवर मिर्जा को इजाजत दीजिए और याद रखिए, कानून की पासदारी और एहतराम कीजिए, कानून आपकी हिफाजत करेगा।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: कतर का सबसे ज्यादा सुना जाने वाला रेडियो स्टेशन
1: FM 107 दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही रابطہ करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
3: दोस्तों, हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की ई गेट सर्विस सफर करने वालों के लिए एक मॉडर्न

और फास्ट फैसिलिटी फराहम करती है। इस सिस्टम के जरिए आपको लंबी लाइंस में वेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि आप अपने पासपोर्ट, आईडी कार्ड या कतर डिजिटल आईडी

इस सर्विस का मकसद सफर करने वालों के लिए प्रोसेस को ज्यादा कन्वीनियंट, क्विक और यूजर फ्रेंडली बनाना है। वजारत दाखिला का कहना है कि ई गेट सर्विस की वजह से एयरपोर्ट पर भीड़ कम होती है, क्यूज छोटी होती हैं और हर एक मुसाफिर का एक्सपीरियंस स्मूथ और स्ट्रेस फ्री बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: इलाज सिर्फ दवा नहीं,
2: परहेज और रोजमर्रा की देखभाल भी जरूरी है। प्रोग्राम हेल्थ गाइड में डॉक्टर फौजिया शफीक देती हैं वाज़े रहनुमाई,
1: मिथ्स की खोल, प्रैक्टिकल टिप्स, हर उम्र के लिए सेहत के मशवरे,
2: कंसल्टेंट और स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के साथ।
1: FM 107 पर पेश करते हैं प्रोग्राम हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ, ओनली ऑन FM 107। दिल से देसी।

0: है, हार्ट के अंदर होता है, तो जब भी बॉडी की कोई भी वेन या आर्टरी ब्लॉक हो जाती है तो उसकी वजह से आपके जो है खून उस आप पार्ट को नहीं पहुंच सकता
1: जी।
0: और आपको पता है जो मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है जो इससे नशोनुमा होती है सारे पार्ट की, जिसको ब्लड सप्लाई जो पहुंच रही है वो जब ब्लॉक हो जाती है तो वो पार्ट जो है वो डेड हो जाता है, जिसको हम इस्कीमिया
1: जी
0: इस तरह कहते हैं। तो इसी तरह आंख के अंदर दो टाइप की आर्टरीज और वेन्स, सेंट्रल रेटिनल वेन्स और सेंट्रल रेटिनल आर्टरीज जो है वो फ्लो करती हैं
1: जी।
0: जो आंखों की जो शरियाने हैं उनको एंड आर्टरीज या एंड वेन्स भी कहा जाता है
1: जी।
0: मतलब ये कि वो उसके बाद आगे जाके किसी को सप्लाई नहीं करती, वो आंख में आके एंड हो जाती हैं। इसीलिए अगर कोई भी स्ट्रोक यानी कोई भी आर्टरी या वेन अगर ब्लॉक हो जाए तो उसकी वजह से वो जो आंख का पार्ट है वो बिल्कुल डेड हो जाता है
1: जी।
0: और जैसे कि हमें पता है कि आंख का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो मैकुला और जो के सेंटर ऑफ द आंख का है, जिसकी वजह से हमारी नजर बनती है, तो उसकी वेन जब ब्लॉक हो जाती है उसे हम रेटिनल वेन ओक्लूजन कहते हैं।
1: अच्छा।
0: अब वो आंख के किसी के भी वेन की ब्लॉकेज हो सकती है, यानी सेंटर वाले पार्ट की, मैकुला वाले पार्ट की, या पेरिफ्री के अंदर भी ब्लॉकेज हो सकती है
1: जी।
0: सो उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं नॉर्मली, सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन और ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन के अंदर
1: जी।
0: सो वो डिफरेंट टाइप्स की जो वेन ओक्लूजन है और कितना पार्ट में वो अफेक्ट हुआ है उसकी वजह से उसको डिवाइड किया जाता है डिफरेंट टाइप में, लेकिन इसको आप स्ट्रोक ऑफ द आई भी कह सकते हैं। इसी तरह आंख की अगर आर्टरी ओक्लूड हो जाए तो उसको सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन कहा जाता है। तो एक रेटिनल वेन ओक्लूजन है और एक रेटिनल आर्टरी ओक्लूजन। आज हम सेंट्रल रेटिनल वेन यानी रेटिनल वेन ओक्लूजन की ज्यादा बात कर रहे हैं, क्योंकि बड़ा ही कॉमन है यंग पेशेंट्स के अंदर और हमारे कतर के अंदर काफ़ी ज़्यादा इंसिडेंट है उसका, और हमारे पास काफ़ी ज़्यादा पेशेंट आते हैं इमरजेंसी के अंदर रेटिनल वेन ओक्लूजन्स के डिफरेंट वजूहात की वजह से
1: जी। जी सबसे पहले तो ये आपने बता दिया कि है क्या, कि स्ट्रोक को तो सब जानते हैं मगर आई के हवाले से, आँख के हवाले से, और ये कि इसकी वजूहात क्या क्या हो सकती हैं, कि क्या कॉजेज जो हैं वो हो सकती हैं।
0: सो इसकी जो सबसे नॉर्मल कॉज जो होता है वो नॉर्मली ब्लड प्रेशर होता है।
1: अच्छा।
0: अगेन नॉर्मली 50 ईयर ऑफ एज के प्लस कहा जाता है, लेकिन हमारे पास काफ़ी यंग पेशेंट्स भी आते हैं, सडन इंक्रीज ऑफ ब्लड प्रेशर। जैसे आप देखें आपका जो स्ट्रोक की मेन वजह आपके हार्ट में या आपके ब्रेन में भी ब्लड प्रेशर है। जब आपका ब्लड प्रेशर हाई राइज होता है यानी एकदम से हाई हो गया, फॉर एग्जांपल आप ब्लड प्रेशर के मरीज नहीं है और ब्लड प्रेशर हाई हो तो उसी तरह वो वेन वो या आर्टरी जो है वो क्लॉट हो जाती, क्लॉग हो जाती है।
1: अच्छा।
0: बंद हो जाती है, अफेक्टेड हो जाती है। सो उसकी तरह आंख के अंदर भी जब ब्लड प्रेशर हाई होता है, क्योंकि आंख का जो प्रेशर है वो डिफरेंट यानी
1: वो अलग
0: होता है और छोटी होती है रगें, तो इस वजह से उसके क्लॉग होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। सो सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर, फिर शुगर की वजह से, फिर कभी कभी आपके आंख के अपने प्रेशर के हाई होने की वजह से, प्लस कुछ दूसरी चीजें जैसे आपको कोई आर्थरोस्क्लेरोटिक डिजीजेज हैं जिस वजह से आपके हार्ट की आर्टरीज भी क्लॉग होती हैं, वेन क्लॉग होती है, इसी तरह आंख की भी और शरियाने क्लॉग हो सकते हैं।
1: सॉरी डॉक्टर साहब, यहाँ आप एक सवाल पूछना चाहूँ, जैसे कि आमतौर पर हम कहते हैं कि इस तरह अगर किसी का हार्ट का जैसे आपने कहा तो उसमें कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई है और उसमें जो प्लेक्स वो बन जाते हैं,
0: बिल्कुल,
1: तो क्या इसमें भी इसी तरह से होता है?
0: क्योंकि देखें जब आपकी जो आंख की सप्लाई बेसिकली आ रही है वो कैरोटिड के ऊपर से होते हुए यानी आपके नाक गर्दन से होते हुए आंख की तरफ आती है, सो बेसिकली वो आती हार्ट से ही। जैसे सारी चीज शरियाने आपके इफेक्ट होती हैं, जैसे आपके पाँव की भी, आपके किडनीज की भी, इसी तरह आंखों की भी उसी वजह से अफेक्टेड होती है। इन वो जो एक सिस्टेमिक प्रोसेस है वो जैसे सारी बॉडी को अफेक्ट करता है इसी तरह आंख को भी अफेक्ट करता है। तो ये सारी सिस्टेमिक डिजीजें यानी वो डिजीजें जो पूरी बॉडी को अफेक्ट कर रही
1: है,
0: ब्लड प्रेशर, शुगर, इस तरह की बीमारियां, कोई कोलेस्ट्रॉल जैसे आपने कहा
1: जी।
0: ये सारी चीजें आपकी पूरी बॉडी के अंदर अफेक्ट करती हैं, तो क्योंकि शरियाने आंख की बड़ी छोटी होती है तो उसमें थोड़ा सा भी अफेक्ट वो आपके पूरे पार्ट को अफेक्ट कर सकता है और नजर को अफेक्ट कर सकता है।
1: ठीक है, बिल्कुल, कि इस तरह जो कोलेस्ट्रॉल है वो हाई है तो उसमें आंख की जो वेन्स हैं
0: वो भी आहिस्ता आहिस्ता, जैसे शुगर की वजह से भी ऐसे ही होता है, वो एकदम से नहीं होता। जैसे ब्लड प्रेशर की वजह से क्या होता है, आपका सडन राइज हुआ तो वो एक सडन लॉस होता है। शुगर की वजह से क्या होता है, आपकी शरियाने आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता कमजोर होती जाती है, जिसको वीकनेस आ जाती है, जिस वजह से वीक होते होते वो ये क्लॉट हो जाती है, और जब क्लॉट आ गया या वो बंद होगी किसी वजह से तो वो जो है उसकी वजह से वो जो पार्ट है आपका आंख का वो बेसिकली अफेक्टेड हो जाता है और उसके अंदर लीकेज हो जाती है
1: जी.
0: जो आपका फ्लूइड है शरीयानों से निकल के रेटिना के अंदर वीक हो जाता है और आपको वो जो पार्ट है उस तक खून की सप्लाई नहीं जा सकती, जिसकी वजह से वो पार्ट जो है डेड हो जाता है, जिसको हम इस्कीमिया मेडिकल टर्म में कहते हैं. यानी वो पार्ट के अंदर ऑक्सीजन नहीं जा रहा, ना जा रहा है और ना वापस आ रहा है, तो इस वजह से वो जो पार्ट है वो आहिस्ता आहिस्ता आपके जो लीकेज की वजह से वो आहिस्ता आहिस्ता जो अफेक्ट होना शुरू हो जाता है और जो आपकी नज़र एकदम से अफेक्टेड हो जाती है.
1: ठीक ठीक. यानी डायबिटीज में आपने ब्लड प्रेशर का बता दिया कि अगर वो सडन राइज हो जाता है तब. डायबिटिक्स जो है या क्रोनिक डिजीज
0: इवन प्रोटीन एस और प्रोटीन सी डिजीजेज, जैसे आपको एंटी फॉस्फोलिपिड सिंड्रोम्स हैं जिसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर ज्यादा हो जाते हैं. जो भी क्लॉटिंग फैक्टर से मतलब ये कि जो आपके खून जम जाए जिसकी वजह से.
1: ठीक.
0: सो वो कोई भी चीज ऐसी जो है वो आपके बॉडी के अंदर अफेक्ट कर सकती है, वो आंख के अंदर भी अफेक्ट कर सकती है प्रेगनेंसी के अंदर, क्योंकि प्रेगनेंसी में आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स जो है वो ज्यादा हो जाते हैं, ब्लड प्रेशर थोड़ा ज्यादा हो जाता है. इस तरह इस चीजों की वजह से अगेन आपका प्रोटीन सी और प्रोटीन एस, क्योंकि इसके अंदर आपके क्लॉटिंग फैक्टर्स वगैरह जो है वो इंक्रीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपके जो है वो शरियाने जो है वो एकदम से क्लॉट होने यानी जमने का खतरा होता है.
1: जी ठीक. हाई कोलेस्ट्रॉल जो है वो इसमें भी जैसे
0: अफेक्ट कर सकता है.
1: बिल्कुल. और इसमें जैसे आपने कहा कि प्रेशर है, जैसे ग्लूकोमा की हम बात करें
0: जी.
1: तो वो भी हो सकती
0: है. ये दोनों तरफ से ये कह लें कि से आपका जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन की वजह से भी ग्लूकोमा हो सकता है और ग्लूकोमा की वजह से भी रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो सकता है.
1: अच्छा.
0: तो ये दोनों एक दूसरे को अफेक्ट करते हैं. तो होता क्या कि अगर आपकी आंख का प्रेशर हाई है तो फिर वही बात, जैसे ब्लड प्रेशर हाई होता है जैसे आंख का प्रेशर हाई होता है, तो उसमें भी ये एकदम से क्लॉट होने का यानी उसका बंद होने का खतरा होता है. क्योंकि होता क्या आर्टरी और वेन्स एक दूसरे की क्रॉस कर रही होती है आंख के अंदर. तो अगर आपकी आर्टरी को भी कोई प्रॉब्लम हुई या आपकी वेन को प्रॉब्लम हुई है तो वो क्रॉसिंग की वजह से दूसरे को अफेक्ट कर सकते हैं, बंद कर सकती हैं बेसिकली. सो इस वजह से ग्लूकोमा जो है वो दोनों तरफ से वो यानी रेटिनल वेन ऑक्लूजन ग्लूकोमा कर सकते हैं, ग्लूकोमा रेटिनल वेन ऑक्लूजन कर सकते हैं.
1: क्योंकि वो प्रेशर ही
0: ज्यादा मेन हो गया वो, क्योंकि इतनी छोटी होती हैं शरियाने कि वो एकदम से जो है उस पे कोई भी कह लें कि अब नॉर्मेलिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट करती है. स्पेशली जो हमारी एंड यानी आर्टिक जो सिस्टम है, सर्कुलेशन सिस्टम, जैसे किडनी का हो गया, आंखों का हो गया, स्पेसिफिकली ये सारी सिस्टेमिक डिजीज से सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होती है. इसलिए किडनी और आंखों की डिजीजेज नॉर्मली को रिलेट करती हैं काफ़ी ज़्यादा.
1: अच्छा ठीक ठीक. ये किडनीज जो है वो भी इफेक्ट होते हैं और
0: ब्लड प्रेशर से, जैसे आपको पता किडनीज काफी ज्यादा, अगर आपका रेगुलर ब्लड प्रेशर हाई है, रेगुलर शुगर हाई है, आपको पता डायबिटिक नेफ्रोपैथी, डायबिटिक रेटिनोपैथी, सो ये दोनों चीजें
1: बहुत बात करते हैं कि इसकी एग्जामिनेशन जो है बहुत जरूरी होता है कि वो आंखों का जो है, और उसमें ये एक बड़ी वजह हो सकती है उनकी ब्लॉकेज की. जी डॉक्टर साहब, उसमें अगर किसी को पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम है या कभी कोई स्ट्रोक हुआ है तो उसके चांसेस होते हैं, रिस्क होता है कि जो है आईज हैं वो भी इफेक्ट हों?
0: बिल्कुल. उसके अंदर स्पेशली जो है ना आंख के अंदर अगर आप कहेंगे हार्ट की वजह से वो सेंट्रल रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन होती है. सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, क्योंकि वेन आपकी जब बंद होती है ना आपके पास फिर चांस होता है रिकवर होने का. जब अगर आपकी आर्टरी सेंट्रल रेटिनल ऑक्लूजन जिसे हम कह रहे हैं CRAO कहते हैं, अगर एक दफ़ा आपकी आर्टरी बंद होगी तो वो नॉन रिकवरेबल है. वो आप कह लें कि आपका जो आंख जो है वो ख़त्म होगी. ख़त्म होने से मुराद ये कि आपका जो विजन है वो लॉस है, क्योंकि एक दफ़ा वो क्लॉट बन गया और वो ब्लॉक हो गया और इस्कीमिया हो गया तो वो आप रिकवर नहीं कर सकते. क्योंकि आप देखिए हार्ट के अंदर अगर आपको कोई स्ट्रोक होता है, कुछ होता है, आप स्टेंट डाल सकते हैं, आप इस तरह की चीज़ें कर सकते हैं, एंजियोप्लास्टी होती है, सारा कुछ. लेकिन आंखों के अंदर वो शरियाने इतनी छोटी हैं, आप उसके अंदर ऐसे कोई चीज़ नहीं कर सकते.
1: अच्छा,
0: तरीके हैं कि आप वो जो थ्रोम्बस है जो कि वो आ गया है, क्लॉट आ गया है, उसको किस तरह डिसलॉज कर सके, बट उसके चांसेस बहुत बहुत कम होते हैं. मैं ये कहूँगा कि अगर आप पहले 2 घंटे से 3 घंटे के अंदर इमरजेंसी में पहुंच गए तो फिर बड़ा रेयर चांस होता है. नॉर्मली पेशेंट इतनी जल्दी नहीं पहुंचता इमरजेंसी के अंदर. इसलिए हार्ट के स्ट्रोक की वजह से यानी जिसको हम कह रहे हैं क्लॉटिंग की वजह से आर्टरी ऑक्लूजन काफ़ी ज़्यादा कॉमन है, हार्ट की आर्टरी की रिलेटेड. और अगर आपको सेंट्रल आर्टरी ऑक्लूजन हो गई यानी थ्रोम्बस आ गया आर्टरी के अंदर,
1: बंद हो गई है
0: सो आपके लिए दूसरी चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जान बचाना. जान बचाने से मुराद ये, क्योंकि थ्रोम्बस आँख में आ गया तो थ्रोम्बस आपके हार्ट में भी जा सकता है, आपके लंग्स में भी जा सकता है, आपके किडनी में भी जा सकता है। तो इसलिए जो हम पहला काम करते हैं जब हमारे पास कोई पेशेंट सीआरएओ का आता है तो उसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज करते हैं कि उसका कार्डियोलॉजी वर्कअप और ये वर्कअप मेडिकल वर्कअप बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अब हम सिर्फ आंख नहीं

0: बचा रहे उस पेशेंट की जान बचा रहे क्योंकि आंख का तो जो हो गया लेकिन जब वो अगर वो थ्रोम्बस कहीं और चला गया तो इंसान की जो है वो जान भी जा सकती है तो इस वजह से इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उसके जैसे कैरोटिड डॉपलर उसका हार्ट का सारा कुछ एको कार्डियोलॉजी के ओपिनियन लेना और मेडिकल वर्कअप करना सारा वर्कअप वो सबसे मोर अटेंशन जो सीकिंग है वो कार्डियक वर्कअप है उस टाइम तक क्योंकि आंख के अंदर वो इररिवर्सिबल होता है लॉस उसको नहीं सिकट से CRAO के अंदर यानी आर्टरी ओक्लूजन के अंदर वेन ओक्लूजन के अंदर फिर भी चांस होता है रिकवरी होने का डिपेंडिंग वो डिफरेंट टाइप के होते हैं वो जिस पे हम बात करेंगे अभी यानी CRVO और BRVO क्योंकि एक ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है एक सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन होता है सेंट्रल रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब कि आपकी जो आर्टरी जो मेन वेन है वो ब्लॉक हो गई और ब्रांच रेटिनल वेन ओक्लूजन का मतलब है कि आपके जो साइड वाली वेन है वो ब्लॉक हो गई जो स्मॉल ब्रांचेस हैं उसकी वो
1: और उसमें ये है कि वो जो वही पार्ट जो है रेटिना का वो इफेक्ट होता होगा
0: तो थोड़ा पार्ट ब्रांच के अंदर थोड़ा पार्ट इफेक्ट होता है जो सेंट्रल रेटिनल वेन के मेन ब्रांच जो है अफेक्टेड होती है लेकिन दोनों केसेस में जो मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है कि आपका जो मैकुला है वो फिर भी अफेक्टेड होता है क्योंकि उसके अंदर जो आपकी लीकिंग की वजह से उसके अंदर पानी जमा हो जाता है जिसको हम मैकुलर एडीमा कहते हैं सो मैकुलर एडीमा जो है आहिस्ता आहिस्ता क्योंकि लीकिंग आ जाती है आपकी वेन ब्लॉक हो जाती है सो आप कह लें एक तरह का पाइप ब्लॉक हो गया तो सारा पानी जो है वो बाहर निकल आया क्योंकि मैकुला जो आपका सेंट्रल पार्ट होता है तो वो सारा उसके अंदर आके जमा
1: हो जाता है बिल्कुल डॉक्टर साहब इसमें ये एज रिलेटेड होता है कि या जो मुख्तलिफ जो वजूहत आपने बताई हैं सिर्फ वही होती हैं कि एज के साथ साथ भी ऐसी होता है
0: नॉर्मली कहते हैं 50 इयर्स ओल्ड के अंदर ज़्यादा रिस्क होता है
1: अच्छा
0: 50 इयर्स ओल्ड के अंदर देखें सारी क्रॉनिक डिजीज़ का ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन जो कि पेशेंट्स हमारे पास काफ़ी ज़्यादा आते हैं अगेन वो यंग पेशेंट भी काफ़ी ज़्यादा आता है अगेन डिफरेंट फैक्टर की वजह से हो सकता है जैसे हमने बात की स्मोकिंग हाइपरटेंशन लेकिन ज़्यादा जो क्रॉनिक रिस्क है वो 50 प्लस ईयर ओल्ड्स के अंदर आता है जिनके अंदर क्रॉनिक डिजीजेस की हिस्ट्री है सो अगेन एज ऑफकोर्स द एज मोर चांसेस होते हैं उसके कि CRVO BRVO हो सकता है लेकिन ये कि ये नहीं कह सकते कि यंग पेशेंट में नहीं होता इवन पेशेंट जिसको कोई कॉमोर्बिडिटी नहीं है एक्चुअली आपके पास पेशेंट आता है जिसको कोई बीमारी नहीं एक्चुअली आपको जब CRVO हो गया यानी रेटिनल वेन ओक्लूजन हो गई BRVO CRVO तब आपको पता लगता है कि आपको हाइपरटेंशन थी क्योंकि ऑलरेडी यानी ब्लड प्रेशर का अफेक्ट आंख पे आ गया होता है
1: क्योंकि जो है इसको साइलेंट किलर भी कहते हैं
0: बिल्कुल
1: ऐसे प्रेशर है कि कोई भी सामने जो है वो नहीं पता चलता हमें कि क्या है पेशेंट अपने आप को नॉर्मल ही समझता है मगर सडन कोई ना कोई कॉम्प्लिकेशन जो है सामने आए तो वो बिल्कुल मुश्किल हो जाता है जी डॉक्टर साहब आपने कहा कि जहाँ पे पेशेंट्स हैं यंग पेशेंट्स भी काफ़ी ज़्यादा मतलब आपके पास होते हैं तो क्या आप क्या समझते हैं कि उनमें क्या खास कोई वजह है
0: नॉर्मली सबसे इम्पोर्टेंट जो नॉर्मली होता है उनके साथ स्ट्रेस फैक्टर कैलिंग काम की स्ट्रेस हो गई किसी इस तरह की चीज़ हो गई कोई दूसरी इमोशनल स्ट्रेस हो गई तो उसके अंदर होता क्या कि आपका ब्लड प्रेशर सडन राइज होता है सो जब वो ब्लड प्रेशर सडन राइज होता है तो उसकी वजह से आपकी जो है ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा मैलिग्नेंट हाइपरटेंशन जिसे हम कहते हैं यानी आपका ब्लड प्रेशर 200 से ऊपर सिस्टोलिक 200 प्लस चला गया और डायस्टोलिक 100 प्लस चला गया सो उसके अंदर होता क्या वो ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो गया कि आपकी जो रगें हैं वो बर्दाश्त नहीं कर सकती वो प्रेशर को और फट जाती हैं एक तरह की जैसे आपकी स्ट्रोक ब्रेन के अंदर होता है सेम उसी तरह सो ऐसी आंखों के अंदर भी वैसी होता है कि वो आपकी जो वेन है वो फट गई कह लें आप एक तरह सो ब्लड प्रेशर सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है ऑफकोर्स यंगस्टर्स में सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर आपको सडन राइज ऑफ ब्लड प्रेशर जो है वो मिलेगा फिर दूसरी चीज प्रोटीन सी प्रोटीन एस जैसे हमने बात की कुछ सिस्टेमिक डिजीज इवन होमोसिस्टिन यूरिया के पेशेंट्स होते हैं कभी कभार उसके अंदर इस तरह की तो ये ऐसी चीजें हैं कि जो आप कह लें कि आपको पहले से नहीं पता लगता यंगस्टर्स के अंदर स्पेशली डायग्नोज नहीं होता पहले
1: ठीक
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: जेनिसन से आज हम बात कर रहे हैं कि जो आई स्ट्रोक है वो भी होता है और आम स्ट्रोक की तो हम बात करते ही हैं, मगर उसमें क्या क्या उसकी वजूहत हो सकती हैं डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया, पूछना चाहेंगे डॉक्टर साहब इसकी अलामत क्या होती हैं, पेशेंट क्या महसूस करता है।
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ विजन लॉस, इसको कहेंगे हम पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन। जैसे हम कह लेंगे रेटिनल अटैचमेंट में भी हमने कभी बात की कि पर्दा जो आपका फट जाता है, ये रेटिना की जो भी डिजीजेज होती है नॉर्मली पेनलेस होती हैं। तो आपका जो मेन वजह होती है उसे हम कहते हैं पेनलेस डिक्रीज ऑफ विजन। सो आपका कमजोर होगी, आपको दर्द वगैरह सच नहीं होती अनटिल के ग्लूकोमा के साथ रिलेटेड हो। ग्लूकोमा के केसेस में क्योंकि आपके आंख का प्रेशर हाई हो जाता है सो आपको पेन आती है साथ, पर नॉर्मली रेटिनल वेन ऑक्लूजंस के अंदर पेन नहीं होती। सो आपको एकदम से आपको विजन डिस्टॉर्टेड यानी आपको धुंधलापन आ गया, आप बैठे बैठे एकदम से आपको लगा कि आपके आंख के आगे जो है धुंधलापन आ गया, हो सकता है वो धुंधलापन पूरा हो सकता है कोई एक पार्ट के अंदर हो,
0: अच्छा
1: साइड पे हो, यानी आपको हो सकता है आपका सेंटर ठीक हो लेकिन आपको एक साइड पे साफ नजर नहीं आ रहा,
0: ये भी हो सकता है साइड से साफ हो या सामने
1: से नजर नहीं आ रहा, डिपेंडिंग कि किस पार्ट पे हो रहा है। लेकिन क्योंकि मैकुला नॉर्मली अफेक्टेड होता है तो सेंट्रल आपका विजन नॉर्मली डिस्टॉर्टेड होता है यानी ब्लर्ड होता है। सो सबसे इम्पोर्टेंट जो अलामत इसके अंदर यही आती है कि आपको जो है धुंधलापन काफी ज्यादा नजर आता है, कभी कभार आंख लाल भी हो जाती है अगर आपका ब्लड प्रेशर या ग्लूकोमा है, तो आंख के अंदर लाल जो हो गई यानी रेडनेस भी आ गई, इंजेक्टेड हो गई आपकी आंख, आपका ब्लड प्रेशर हाई हो गया तो उसकी वजह से भी कभी कभार आंख लाल हो सकती है। सो ये सारी चीजें उसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट जो पेशेंट को महसूस होती
0: जी।
1: बट सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपको देखिए, कभी भी आपको एकदम से धुंधलापन आ गया तो आप ये सोचते हैं कि एकदम से हुआ क्या, रेटिनल डिटैचमेंट होगी, डायबिटिक मैक्युलर एडिमास हो गए, रेटिनल वेन ऑक्लूजन हो गई, इवन रेटिनल आर्टरी ऑक्लूजन हो गई, उसके अंदर भी आपकी जो नज़र है एकदम से अफेक्टेड होती है। ये नहीं होता कि आपको पहले से स्लोली स्लोली कुछ हो रहा है, ये एकदम से आपको महसूस होता है कि मेरी नज़र
0: जो है
1: लॉस ऑफ विजन हो गया, पेनलेस लॉस ऑफ विजन,
0: पेनलेस। ठीक ठीक, इसमें और इसमें और क्या अपने सारे ये विजन से ही रिलेटेड है, पेन नहीं है मतलब, ये बहुत
1: बेसिकली मेन जो पेशेंट आता है आपके पास वो इस वजह से आता है कि मुझे नजर नहीं आ रहा उसके अंदर आंख के अंदर।
0: डॉक्टर साहब वो जो बार दफा वो फ्लोटर्स नजर आते हैं या डार्क स्पॉट्स हैं वो ये नहीं होते कुछ और चीज़?
1: देखिए नॉर्मली वो विट्रियस चेंजेस ज्यादा होती हैं फ्लोटर्स के अंदर।
0: अच्छा,
1: फ्लोटर्स के अंदर क्या होता है कि आपके आंख के अंदर एक जेल होती है, वो जब वो जेल
0: आमतौर पर कहते हैं वो
1: मक्खी सी आती है जिसको हम पीवीडी कहते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो जेल है उसके अंदर चेंजेस आ रही। नॉर्मली आपकी वो जेल पानी की तरह शफाफ होती है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब आपके उस जेल के अंदर चेंजेस आती हैं तो आपको एक कोई छोटा सा मक्खी सा नजर आ रही है, ये नजर आ रही है, वो आपकी जेल के अंदर चेंजेस ज्यादा होती है फ्लोटर्स के अंदर। फ्लैशेस, फ्लोटर्स ये नॉर्मली रेटिनल डिटैचमेंट की अलामत हो सकती है या आपके रेटिनल होल की अलामत हो सकती है। होता क्या कि आपके आंख के अंदर जो जेल है वो अटैच है रेटिना के साथ, सो जब वो जेल के अंदर चेंजेस आती हैं जैसे आपने कहा मक्खी आ गई या कोई चीज आ गई, सो आपके पर्दे के ऊपर खिंचाव आ जाता है।
0: अच्छा।
1: वो खिंचाव की वजह से या तो पर्दे के अंदर होल बन जाता है, अगर उस होल का इलाज ना किया जाए या आप लेट हो गए तो डिटैचमेंट के तौर पर यानी आपका पर्दा फट जाता है जिसको हम कह लें। सो अगर उस होल को बंद कर लिया जाए तो पर्दा फटने तक की नौबत नहीं आती।
0: अच्छा।
1: अगर हमने उस होल को सील नहीं किया तो फिर जो पर्दा फट जाता है, इसलिए फ्लोटर्स, फ्लैशेस ऑफ लाइट नॉर्मली पेशेंट जिन मायोपिक होते हैं इस तरह के पेशेंट्स के अंदर ज्यादा अलामतें होती हैं। सो इसलिए हम उन पेशेंट्स को भी जिसको फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट है स्पेशली कहते हैं कि आप वेट ना करें, आप डॉक्टर को जरूर दिखाएं, हो सकता है कुछ ना हो बट बेटर टू चेक। लेकिन एज रिलेटेड भी फ्लोटर्स आते हैं यानी आहिस्ता आहिस्ता आपकी जो जेल है उसके अंदर एज के साथ चेंजेस आ गए, तो आपको मक्खी नजर आ रही है, आप कहते हैं मैं ऊपर देखता हूँ, या कभी कभार कोई कहता है मैं यानी रकू में जा रहा, फॉर एग्जांपल मुझे धूप में ज्यादा नजर आ रहे हैं,
0: ब्लैक स्पॉट्स
1: नजर आते हैं, कभी कभार ड्राइनेस के साथ भी आपको ब्लैक स्पॉट्स नजर आते हैं। लेकिन आपको जो है सीरियस डिजीज को रूल आउट करने के लिए बेहतर है कि उस टाइम आप दिखाएं जरूर, ताकि आपको ये पता लगे कि कोई सीरियस डिजीज नहीं है, क्योंकि आप उसको जितना जल्दी कैच करेंगे उतना बर वक्त इलाज होगा। हो सकता है कुछ ना हो सकता है सिर्फ ड्राइनेस हो, या हो सकता है सिर्फ जेल के अंदर चेंजेस हो लेकिन कोई ब्रेक वगैरह या होल्स वगैरह ना हो रेटिना के अंदर, बट इट्स बेटर कि वो आप उसको एक दफा चेक करा लें और रूल आउट कर लें कि कोई सीरियस डिजीज नहीं।
0: ठीक है जी डॉक्टर साहब, जैसे आपने बताया कि इसमें जो है डिफरेंट टाइप लॉस ऑफ विजन जो है वो, मगर डॉक्टर के पास जाना उस वक्त भी जरूरी है जैसे कि आपको कुछ ब्लैक स्पॉट्स नजर आ रहे हैं या फ्लोटर्स
1: फ्लैशेस ऑफ लाइट। जी फ्लोटर्स फ्लैशेस ऑफ लाइट, आपको एक साइड से धुंधलापन नजर आ रहा है, कोई भी चीज आपके विजन में नॉर्मल नहीं है
0: जी,
1: आपको जाके एक दफा चेक जरूर कराना चाहिए कि हुआ क्या। अगेन इमरजेंसी हो भी सकती है और इमरजेंसी नहीं भी हो सकती, बट आपको इस

0: बात का वेट नहीं करना चाहिए कि वो कुछ सीरियस चीज की तरफ चला जाए। आपको कोई ट्रॉमा हुआ है, फॉर एग्जांपल आपको चोट लगी है, आपको साफ नजर नहीं आ रहा, आपकी आंख के अंदर धुंधलापन आ गया। काफी बार लोग होते हैं समझते हैं कि धुंधलापन है, मैं एक दिन वेट करूंगा ठीक हो जाएगा, आंख साफ करने की कोशिश करते हैं, या फॉर एग्जाम्पल अगर ऐनक वगैरह लगाते हैं वो साफ करने की कोशिश करते हैं, ऐसे लगता है आपको मेरी ऐनक खराब है इस तरह की चीज हो गई, या आप वेट करते हो अभी ठीक हो जाएगा इस तरह की। लेकिन कभी कभार वो डिजीज जितना जल्दी आप चेक कराएंगे उतनी जल्दी उसकी तशखीस होगी और उतनी जल्दी उसका इलाज बर वक्त हो सकता है।
1: ठीक है, लिसनर्स आज हम बात कर रहे हैं कि आई में भी जिसके वेसल जो हैं वो ब्लॉक हो जाती हैं और स्ट्रोक होने के चांसेस होते हैं, स्ट्रोक हो जाता है तो आई में भी इसी तरह है, क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी अलामतें क्या हैं और कब डॉक्टर के पास जाना ज़रूरी है, ये भी डॉक्टर साहब ने डिटेल में बताया। अब हम बात करेंगे कि इसकी तशखीस, जैसे डॉक्टर साहब ने अभी कहा कि अगर जल्दी डायग्नोज होगा तो उसके मैनेजमेंट, उसका इलाज भी जल्दी होगा और उसके चांसेस भी बेहतर हैं इलाज के। डॉक्टर साहब कैसे डायग्नोज कैसे करते हैं कि यही स्पेसिफिक जो है इसकी वजह है या ये डिजीज है?
0: स्पेशली आजकल रेटिना की डिजीज़ के अंदर काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न इन्वेस्टिगेशंस काफ़ी ज़्यादा आ गई
1: जी,
0: सो मैं कहूँगा कि इसकी तशखीस वगैरह के अंदर भी काफ़ी, अब एक तो बर वक्त बड़ी जल्दी हो जाती है तशखीस, आपको वेट नहीं करना पड़ता, और ये कि उसका इलाज भी बर वक्त होने के चांसेस। सो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, पेशेंट जब आपके पास आता है और बताता है कि मुझे साफ नज़र नहीं आ रहा, धुंधलापन नज़र आ रहा है, सबसे पहली चीज़ विजन
1: जी।
0: आप उसके विजन चेक करते हैं, आप दोनों आंखों का विजन सेपरेटली चेक किया जाता है, यानी पहले एक आंख का फिर दूसरे आंख का। तो अगर आपकी कोई दोनों के अंदर फर्क है, यानी डिस्क्रिपेंसी, यानी आपने एक आंख को बंद किया और 6/6 है, दूसरे आंख को किया वो तकरीबन 660 कह लें कि उसको सिर्फ एक या दो लाइनें नजर आ रही, सो ये आपकी सबसे पहली अलामत है कि कोई प्रॉब्लम है।
1: ठीक है,
0: फिर दूसरी चीज डायलेटेड फंडस एग्जाम, फिर आप उसका प्रेशर चेक करते हैं, ऑफ कोर्स जो हम आंख का प्रेशर होता है उसको स्पेसिफिकली चेक किया जाता है, दोनों आंखों के अंदर कोई फर्क तो नहीं, बराबर है। नॉर्मली आंख का प्रेशर आप कह लें 8 से 20 तक होता है, ठीक है, हम उसको एक स्पेशल डिवाइस होती है जिसको टोनोमीटर कहते हैं, उसके थ्रू चेक करते हैं डाई डाल के, अगेन सिंपल प्रोसेस है, स्लिट लैम्प के ऊपर किया जाता है, यानी माइक्रोस्कोप के ऊपर चेक किया जाता है, उस 8 to 20 के अंदर आपका प्रेशर है तो इसका मतलब है नॉर्मल प्रेशर है।
1: ठीक है,
0: ऑफ कोर्स ये हिस्ट्री अगर आपकी कोई नहीं है, कोई आपको क्रॉनिक डिजीज नहीं है, बहुत सारी जरूरी है। तीसरी चीज डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करना जरूरी है। डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन इसलिए किया जाता है क्योंकि आपको नॉर्मल आंख के अंदर पर्दा पूरा नजर नहीं आता, सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज डायलेटेड, यानी आप कह लें कि पुतली को जो है बड़ा किया जाता है, प्यूपिल को बड़ा किया जाता है इस वजह से, ताकि आप पूरे रेटिना के पार्ट को देख सके। उसके लिए एक स्पेशल लेंस होता है जिसके थ्रू हम रेटिना को चेक करते हैं,
1: उसमें वो इंजेक्शन वो भी लगाते हैं कुछ या डाई चेक
0: नहीं, उसके अंदर जो चेकअप के लिए उसके अंदर आजकल डाई की जरूरत, ऑफ कोर्स डायलेटेशन के लिए ड्रॉप्स
1: डालते हैं,
0: डायलेटेशन के लिए लगते हैं 20 से 30 मिनट कह लें, आधा घंटा लगता है, उसके बाद आप पेशेंट को वेट करा के डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन करते हैं।
1: ठीक है,
0: उसके बाद रेटिना को आप चेक किया जाता है, रेटिना के अंदर जो इंपॉर्टेंट चीजें आपके ऑप्टिक डिस्क जो कि आपके ऑप्टिक नर्व है, यानी आंख की जो नर्व है वो, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपका मैकुला, उसको एग्जामिन किया जाता है कि उसके अंदर कोई पानी तो नहीं, कोई अबनॉर्मैलिटी तो नहीं। तीसरी चीज आंख का वेस्कुलेचर यानी शरियाने, उसके अंदर, क्योंकि आपको जो है उसके अंदर खून नजर आएगा। नॉर्मली आंख के अंदर खून नहीं होता, जैसे ब्लड क्लॉट हो जाता है, जैसे आंख आपको जो वेसल है आपको नजर आएगा कि वो क्लॉट हो गई, ठीक है, यानी वो अबनॉर्मल हो गई। सो उसकी वजह से अगर आपके पास, जैसे हमने बात की, दो टाइप के रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, सेंट्रल और ब्रांच, अगर ब्रांच है तो उसमें एक ब्रांच जो है वो अफेक्टेड होती है, सेंट्रल के अंदर आपकी सारी ब्रांचेस जो है आपके पूरे रेटिना के अंदर खून के धब्बे बन जाते हैं
1: जी,
0: ब्रांच रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर थोड़ी जगह पे धब्बे बन जाते हैं खून के, सो उसकी वजह से आप उसको दोनों को डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि कौन सा यानी टाइप का है। फिर तीसरी चीज यानी डायग्नोसिस के बाद कि आपके पास आ गया कि आपके आंख के अंदर रेटिनल वेन ऑक्लूजन है, उसके बाद जो दूसरी चीज की जाती है जो कि कभी काफी फास्ट है, वो ओसीटी है। ओसीटी आंख का अल्ट्रासाउंड होता है, एक तरह का स्पेशल मशीन होती है उसकी, ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी, जो कि हर जगह अवेलेबल है, हर आजकल क्लिनिक के अंदर, ऑप्थाल्मोलॉजी क्लिनिक के अंदर काफी ज्यादा अवेलेबल है।
1: ठीक है,
0: उसके अंदर आप स्कैन करते हैं आंख का, पहले अल्ट्रासाउंड करते हैं जो कि जिस पे सिर्फ 1 से 2 मिनट लगते हैं,
1: ठीक है,
0: वो स्कैन करके आप, वो एक्चुअली स्कैन होता है सिर्फ आपके मैकुला के पार्ट का,
1: अच्छा,
0: जो सेंट्रल पार्ट
1: कि उसमें क्या स्वेलिंग है जैसे आप बता रहे हैं,
0: उसके अंदर ये देखी जा सकती है, क्योंकि क्लिनिकल एग्जामिनेशन में कभी कभार, क्योंकि आंख इतना छोटा पार्ट है, मैकुला उससे भी छोटा पार्ट है, सो आपको पता नहीं लगता कि उस वो

0: उसके अंदर सूजन है कि नहीं है. सो आपको वो जो मशीन है अल्ट्रासाउंड वाली, वो आपको दिखा देगी कि उसके अंदर कोई पानी है, जैसे हमने बात की स्वेलिंग है वो है. सो नॉर्मली रेटिनल वेन ऑक्लूजन के अंदर, उसके अंदर पानी जैसे हमने बात की जमा हो जाता, जिसको मैकुलर एडिमा कहा जाता, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है विजुअल लॉस के लिए. आपका विजन क्यों लॉस यानी कम होता है, क्योंकि आपका मैकुला अफेक्टेड हो जाता है.
1: ठीक है.
0: क्योंकि आपके यहाँ मैकुला के अंदर पानी चला जाता है, आप एक स्पॉन्ज की तरह इसको अलामत लें. स्पॉन्ज नॉर्मली जो उसके अंदर स्पॉन्ज के अंदर पानी चला जाता है तो बड़ा हो जाता है.
1: ठीक है.
0: जिसके वजह से मैकुलर के जो नॉर्मल सेल्स हैं, नॉर्मल जो टिश्यू है, वो काम नहीं कर सकता
1: जी.
0: और आहिस्ता आहिस्ता अफेक्ट होना शुरू हो जाता है, कह लें कि उसके जो पावर है वो कम हो जाती है.
1: डॉक्टर जी, थोड़ा सा अपने डिस्टेंस ज़ाहिर उन्हें पता है, मगर फिर मैं पूछना चाहूँगी क्या है
0: मैकुला. आंख का सेंट्रल पार्ट होता है.

0: आपका सबसे पावरफुल पार्ट होता है यानी रेटिना का सो जो आपका पर्दे का पावरफुल पार्ट है कि जो थोड़ा सा भी उसमें कोई फर्क पड़ जाए तो आपकी नजर अफेक्टेड हो जाती है तो इस वजह से मैकुला जो भी हम रेटिनल डिजीजेस है वो एट द एंड मैकुला के ऊपर डिपेंड करती है कि आपका मैकुला अफेक्टेड हुआ है कि नहीं हुआ अगर आपकी पेरिफेरल डिजीज जैसे वन डायबिटिक रेटिनोपैथी में और कभी कभार रेटिनल इनक्लूजन में भी आपका मैकुला बच जाता है कभी कभार तो अगर वो बच गया तो इसका मतलब है आपका प्रोग्नोसिस बेटर है यानी आपके सही होने के चांसेस
1: ज्यादा हैं
0: आपके नजर बेहतर होने के चांसेस और ज्यादा हैं जितना आपका मैकुला बचेगा जितना आपका मैकुला कम अफेक्ट होगा उतने आपके नजर अच्छे होने के चांसेस उतने ज्यादा होंगे
1: ठीक
0: करने के बाद फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल मैकुलर एडीमा तो उसका इलाज किया जाता है
1: ठीक है
0: जो रेटिनल वेन ऑक्लूजन जैसे हमने सीआरवी और बीआरवीओ की बात की सीआरवीओ के अंदर दो टाइप होती हैं उसको हम इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक कहते हैं इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक का मतलब ये होता है कि आपका कितना टिश्यू डेड हो गया और कितना टिश्यू बच गया इसको सिंपल टर्म के अंदर
1: ठीक है
0: उसको चेक करने के लिए हम एक डाई होती है उसको कहते हैं फंडस फ्लोरोसिन एंजियोग्राफी
1: ठीक है
0: जैसे आप कह लें कि हार्ट की एंजियोग्राफी होती है सारी चीजें इस तरह एक फ्लोरोसिन डाई होती है जिसको हम इंजेक्ट करते हैं और स्पेशल कैमरे के थ्रू पिक्चर ली जाती है उसके अंदर पिक्चर लेने का मकसद क्या होता है वो आपके आंखों की रगों से जाके आपको बताएगी कौन सी ब्लॉक है कौन सा पार्ट डेड हो गया है कौन सा पार्ट डेड है जैसे ब्लॉकेज होती है आप एक उसको इस तरह ले लें वो डाई जाती है पूरी आंख में से होके आपको बता देगी कहाँ ब्लॉकेज है और कहाँ है उसके टाइमिंग के ऊपर डिपेंड करता है अगेन वो हम नॉर्मली फर्स्ट स्टेप के तौर पे नहीं किया जाता वो सेकंड स्टेप के तौर पे किया जाता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज ओसीटी है अगर आपके ओसीटी के अंदर मैकुलर एडीमा आ गया तो आपको जल्द अज जल्द उसका इलाज कराना जरूरी है फ्लोरोसिन के इलाज बाद में कराया जाता है जैसे आपका टिश्यू के अंदर कोई न्यू वेसल्स तो नहीं बन गई न्यू वेसल्स का मतलब होता है कि वो शरियाने जो कि नॉर्मल नहीं है आपके आंख के अंदर जो नॉर्मल वेसल्स हैं वो कुछ इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं करती ऑफ कोर्स लेकिन जो न्यू वेसल्स जो कि नॉट नॉर्मल होती हैं वो उसके फटने के चांसेस ज्यादा होते हैं जिसकी वजह से आपकी आंख के अंदर खून आ सकता है फिर उसके बाद आपकी आंख के अंदर ट्रैक्शन हो सकती है आंख पर्दा भी फट सकता है ये कह लें कि उसकी कॉम्प्लिकेशंस है क्रॉनिक कॉम्प्लिकेशंस हैं रेटिनल वेन ऑक्लूजंस की अब कभी कभार इलाज कराएं भी तो ये हो जाता है और अगर आप इलाज ना कराएं तो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आपकी आंख की जो पावर है वो कम होना शुरू हो जाती है और क्योंकि आपकी मेन वेन ब्लॉक हो जाती है सो आंख अपनी ये गैर जरूरी जो शरियाने उनको बनाना शुरू कर देती है ये गैर जरूरी शरियाने जो हैं ये बेसिकली अच्छी नहीं होती आंख क्योंकि ये बहुत फ्रेजाइल होती है यानी बहुत नाजुक
1: होती है
0: तो वो जब फट जाती है
1: चांसेस बहुत ज्यादा ब्लीडिंग
0: के हैं बिल्कुल
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी

0: जिसमें आज हम बात कर रहे हैं कि आई स्ट्रोक जो है वो क्या होता है. डॉक्टर साहब बड़ी डिटेल में हमें बता रहे हैं कि उसकी क्या क्या वजूहत हो सकती हैं, उसकी अलामत क्या हैं. इसके अलावा उसकी जो डायग्नोसिस है वो बहुत अहम है, और जैसे कि जल्द अगर तशीस कर दी जाए या डायग्नोस कर दिया जाए तो किस तरह से किया जाए वो सारे डॉक्टरों ने बताया. तो अब हम चलेंगे कि उसकी जो ट्रीटमेंट है वो क्या हो सकता है, और उसकी जो एम जो है वो यही कि क्या है कि उसको इलाज कर दीजिए, ठीक हो या कॉम्प्लिकेशन को रिड्यूस किया जाए. जी डॉक्टर साहब.
1: ठीक, जैसे हमने बात की पहले भी कि हम इसकी ट्रीटमेंट को दो चीज़ों में डिवाइड कर लेंगे. एक ट्रीटमेंट होगी के आंख की,
0: ठीक है.
1: एक ट्रीटमेंट होगी ओ डिजीज की जिसकी वजह से ये हुई.
0: जी
1: सही. हमें दोनों चीज़ों को करना चाहिए. तो एज पहले भी हमने बात की एक सिस्टेमिक डिजीज़ है. सो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि जैसे ब्लड प्रेशर, शुगर, ग्लूकोमा या कोई भी डिजीज़, कोलेस्ट्रॉल या कोई आपको दूसरी इश्यूज़ हैं, उसका इलाज कराना बहुत ज़रूरी है.
0: जी,
1: क्योंकि अगर आप उसका इलाज नहीं कराएंगे सो आपके दूसरे बॉडी के पार्ट्स और आपकी दूसरी आँख भी अफेक्टेड हो सकती है. पर्दा जब भी आंख का अफेक्टेड होता है वो कभी भी 100% अपनी वो नॉर्मल उस पर नहीं आता. तो इस वजह से आपका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप अपनी दूसरी आंख को बचाया जाए. दूसरी चीज़ फिर आंख का इलाज करने के लिए, जैसे हमने बात की, हम इलाज कर रहे हैं मैकुलर एडीमा का. मैकुलर एडीमा के लिए स्पेशल

0: ड्रग्स बने जिसे हम एंटी वीजीएफ ड्रग्स कहते हैं।
1: अच्छा,
0: एंटी वीजी देर दो टाइप के इंजेक्शंस दिए जाते हैं आंख के अंदर।
1: अच्छा,
0: ये क्योंकि पर्दे की जो सबसे इम्पोर्टेंट और कह लें कि ड्रॉप्स जो है पर्दे तक नहीं पहुंच सकते, सो इस वजह से ड्रॉप्स से इसको कोई फायदा नहीं होता। हमें आंख के अंदर यानी रेटिना के अंदर विट्रियस जेल के अंदर दवाई डालनी पड़ती है।
1: ठीक है,
0: वो हम स्पेशल एक इंजेक्शन होता है, एंटी वीजीएफ इंजेक्शन मैंने बात की, दो टाइप के इंजेक्शन, एक एंटी वीजीएफ इंजेक्शन होता है और एक स्टीरॉइड्स का इंजेक्शन होता है, डिपेंडिंग के सेवियरिटी कितनी ज्यादा है, उसका एडिमा कितना
1: डिपेंड
0: करता है, ओसीटी के ऊपर डिपेंड करता है और एडिमा पे डिपेंड करता है। और फर्स्ट लाइन पे कभी कभार आपको एंटी वीजीएफ देना पड़ता है, कभी कभार आपको स्टीरॉइड्स देने पड़ते हैं, डिपेंडिंग किस पे, लेकिन उसका तरीका दोनों का देने का एक ही है।
1: अच्छा ठीक, आप क्योंकि आमतौर पर जैसे अगर पेशेंट को कंप्लेन करते हैं जैसे डायबिटिक्स हैं ज़्यादा, तो वो कि इंजेक्शन लगा रहे हैं, मगर उन्हें ये नहीं पता कि इंजेक्शन जो है वो क्या, तो वो ही आपके थ्रू पूछना चाहूँगी। आप अपने लिसनर्स को जो है वो मालूमात में इजाफा होगा कि टू टाइप्स के इंजेक्शन होते हैं।
0: बिल्कुल, डायबिटीज के अंदर भी ये एंटी वीजीएफ के ही इंजेक्शन लगाए
1: अच्छा,
0: जाते हैं।
1: ठीक,
0: क्योंकि आपकी जब शरियाने, क्योंकि डायबिटीज के अंदर भी आपके शरियानों को अफेक्ट हो रहा है और आपको मैकुलर एडिमा हो रहा है, सीआरवीओ और बीआरवीओ में भी आपको मैकुलर एडिमा हो रहा है, सारे मैकुलर एडिमा का इलाज वो इंजेक्शन ही है।
1: ठीक है,
0: वो टाइप ऑफ इंजेक्शन जो है उसमें एक दो, जैसे हमने बात की एंटी वीजीएफ से और स्टीरॉइड्स हैं, वो डिपेंडिंग कि आपको क्या डिजीज है। नॉर्मली सीआरवीओ के अंदर स्टार्ट जो है वो एंटी वीजीएफ से ही किया जाता है, लेकिन अगर आपका एडिमा बहुत ज्यादा हो तो उसमें स्टीरॉइड्स दिए जाते हैं। जो एंटी वीजीएफ इंजेक्शन है उसका कोर्स होता है, तीन या चार होते हैं, यानी आपने हर महीने एक इंजेक्शन लगाना है।
1: ठीक है,
0: सो आपको वो इंजेक्शन लगा के, तीन इंजेक्शन लगा के, चार इंजेक्शन लगा के, डिपेंडिंग कौन से टाइप का इंजेक्शन लगा रहे हैं, उसके बाद आप ओसीटी को रिपीट करते हैं।
1: अच्छा,
0: अगर आपका मैकुलर एडिमा सही हो गया तो आप रोक देते हैं, अगर मैकुलर एडिमा नहीं सही हुआ तो आप कंटिन्यू करते हैं।
1: ठीक है,
0: स्टीरॉइड्स इसके अंदर
1: उसमें कुछ वक्फा देते हैं क्यों, तो
0: एक महीना इंजेक्शन के अंदर एक महीने का वक्फा,
1: तो उसके बाद जो टेस्ट किया जाता है
0: तो फिर एक महीने के बाद, तो यानी आपने तीन इंजेक्शन लगाए एक महीना, यानी एक एक महीना, उसके बाद एक महीने के बाद आपने ओसीटी दोबारा रिपीट की।
1: ठीक
0: देखिए, ताकि आप उसको देखें कि उसका फर्क कितना पड़ा। अगर मैकुलर एडिमा रिजोल्व हो गया, ठीक हो गया, तो कोई इंजेक्शन, अगर मैकुलर एडिमा नहीं रिजोल्व हुआ तो आप इंजेक्शन कंटिन्यू करें। और अगर आपको लगता है कि मैकुलर एडिमा को बिल्कुल ही फर्क नहीं पड़ा और बल्कि ज्यादा हो गया, तो फिर आप उसमें कोर्टिजोन, क्योंकि स्टीरॉइड्स मोर स्ट्रॉन्गर ड्रग्स है।
1: अच्छा,
0: स्टीरॉइड्स का फायदा क्या है, वो एक इम्प्लांट होता है, वो आंख के अंदर जब आप डालते हैं वो तीन से चार महीने तक आंख के अंदर रहता है, आपको बार बार देने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन स्टीरॉइड्स के साइड इफेक्ट्स हैं। स्टीरॉइड्स के आंख के अंदर साइड इफेक्ट्स क्या हैं? एक तो आपको आंख का प्रेशर हाई होने का चांसेस है।
1: अच्छा,
0: और अगर आपका कैटरेक्ट का ऑपरेशन नहीं हुआ अभी तक तो आपको कैटरेक्ट इंक्रीज होने के चांसेस। सो आपको वो फिर कह लेंगे प्रोज एंड कॉन्स देखने पड़ते हैं, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हैं। ये जो इंजेक्शन हम लगाते हैं इसका सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है इन्फेक्शन का।
1: अच्छा,
0: जैसे आपको पता है कोई भी हम आंख बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाए, सर्जरीज कराएं, कोई भी चीज, आपको पता है सूचर लगाएं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम जो प्रिवेंट कर रहे होते हैं पोस्ट किसी भी चीज के प्रोसीजर के, वो इन्फेक्शन है। क्योंकि हम बॉडी को एक तरह का ओपन कर रहे हैं
1: जी,
0: सो बाहर से कोई बैक्टीरिया एंड वायरस कोई भी चीज आंख के अंदर जा सकती है। सो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, ऑफ कोर्स हम काफी ज्यादा ख्याल रखा जाता है आंख के अंदर बीटाडाइन के ड्रॉप्स, यानी जो आपके पोविडाइन होती है उसके स्पेशल ड्रॉप्स होते हैं जो डाले जाते हैं ताकि आंख की जितनी भी आंख के अंदर बैक्टीरिया वायरसेस हैं वो खत्म हो सके। एंटीबायोटिक ड्रॉप्स भी दिए जाते हैं, लेकिन कभी कभार फिर भी साइड इफेक्ट आ जाते हैं। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है वो चांसेस उसके काफी ज्यादा है, 1 in 100,000 यानी। लेकिन जो सबसे डेवस्टेटिंग साइड इफेक्ट किसी भी प्रोसीजर का आंख के अंदर, वो इन्फेक्शन पर्दे के अंदर का है, जिसको हम एंडोफ्थाल्माइटिस कहते हैं।
1: ठीक,
0: यानी आंख के आप पर्दे के अंदर, आप कह लें कि आपके अंदर आपके जो विट्रियस कैविटी उसके अंदर इन्फेक्शन हो गया। क्योंकि एक जब बैक्टीरिया आंख के अंदर चला जाए या वायरस आंख के अंदर चला जाए, सो वो एनवायरनमेंट काफी बेहतर होती है बैक्टीरिया के ग्रो करने के लिए।
1: ठीक,
0: सो जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा प्रोलिफरेट कर जाता है और वो काफी ज्यादा डेवस्टेटिंग होता है। अगेन चांसेस, जैसे मैंने आपको कहा, काफी कम है, इसका इंसिडेंट काफी कम होता है, बट वन ऑफ द कॉमन साइड इफेक्ट कह लें और सबसे डेवास्टेटिंग साइड इफेक्ट्स है. बाकी इतना खास कोई साइड इफेक्ट्स इन्फेक्शन का, आपको एलर्जी हो सकती है ड्रग्स से, प्रेशर वगैरह कभी बार थोड़ा सा बढ़ सकता है, इस तरह की.
1: पेनफुल तो नहीं होता है?
0: दे पेनफुल इस सेंस में कि उसमें आपको ड्रॉप्स दिए जाते हैं, टॉपिकल एनेस्थीसिया.
1: अच्छा अच्छा.
0: एनेस्थीसिया डाला जाता है, पूरा स्टीराइल प्रोसीजर किया जाता है. स्टीराइल से मुराद ये खास सफाई का ख्याल रखा जाता है, स्पेशल रूम होता है, फिर उसके बाद आंख के अंदर ड्रॉप्स डाला जाता है, सारा कुछ करके ग्लव्स यानी जैसे आप एक प्रोसीजर स्टीराइल प्रोसीजर कर रहे हैं उसका खास ख्याल रखा जाता है. दर्द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है.
1: अच्छा.
0: मैं आपको बताऊं कि कुछ पेशेंट्स को महसूस होता है, कुछ पेशेंट को पता भी नहीं लगता. जैसे आप लगा लें कि बॉडी के अंदर इंजेक्शन लगाया जाता है, कुछ पेशेंट को महसूस होता है, कुछ पेशेंट को नहीं. बट उसको एनेस्थीसिया जरूर दिया जाता है जो कि ड्रॉप्स के जरिए दिया जाता है.
1: अच्छा.
0: आजकल आपको पता है कैटरेक सर्जरीज भी टॉपिकल एनेस्थीसिया के थ्रू हो रही है, वो सेम एनेस्थीसिया इसमें भी दिया जाता है.
1: और
0: कभी कभार बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है, कभी कभार आपको थोड़ा सा महसूस होता है, बट ऐसा सच नहीं है कि आप कहें कि बहुत सख्त दर्द होती है, ऐसा नहीं. थोड़ी सी आपको चुभन जैसे एक सुई का अंदर जाने की जरूरत कभी होती है, और कभी कभार आपको पता भी नहीं लगता क्या हुआ है.
1: ठीक ठीक. किस तरह इसमें डॉक्टर जैसे कि हर चीज के, जैसे आई में लेजर ट्रीटमेंट बहुत सुना भी जाता है, तो क्या इसमें भी लेजर का इस्तेमाल होता है? लेजर ट्रीटमेंट है इसमें भी
0: जी,
1: या ये स्पेशल जो इंजेक्शन हैं वही होते हैं?
0: नहीं, पुराने जमाने में जब सीआरवी और बीआरवी होता था, क्योंकि ये इंजेक्शन इन्वेट नहीं हुए थे, तकरीबन 15 साल पहले की बात है.
1: अच्छा.
0: तो उसके अंदर क्या करते थे, ये जो पार्ट से आपका जो कह लेंगे आपकी जो वेन ब्लॉक हो गई है
1: जी,
0: उसके साइडों पे लेजर कर दिया जाता था. लेजर क्यों किया जाता था, आप समझ लें एक डैम बना दिया जाता था
1: जी,
0: ताकि वो जो पानी है वो मैकुला तक ना जा सके. वो काफी ज्यादा इफेक्टिव नहीं था, बट उस टाइम कोई इलाज नहीं था, तो ये इलाज किया जाता था, उसको ग्रिड लेजर कहा जाता था. ये पर्दे की लेजर की बात कर रहा हूँ, नजर वाले लेजर की नहीं. पर्दे का स्पेशल लेजर होता है, पैनरेटिनल फोटोकोएगुलेशन उसे कहा जाता है. सो वो लेजर आप समझ लें कि एक जगह से पानी आ रहा है, सो हमने उसके इर्द गिर्द डैम बना दी, उसको ब्लॉक कर दिया. तो वो लेजर करके पर्दे के उस हिस्से को खत्म कर दिया जाता था कि वो हिस्से से पानी ना आए, बट फिर भी क्योंकि वो पानी कहीं ना कहीं से लीक होके आ जाता था, वो इतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं था. अब जो है पैन रेटिनल फोटोकोगुलेशन यानी जो लेजर है उसका रोल डिफरेंट हो गया
1: जी.
0: जैसे हमने पहले बात की, जो पहले पार्ट में हम इंजेक्शन लगाते हैं मैकुलर एडिमा के लिए, फिर दूसरे हमने पार्ट में बात की फ्लोरेसिन की. जब आप फ्लोरेसिन करते हैं, आपको अगर किसी पार्ट में लगे, जैसे हमने न्यू वेसल्स की बात की थी, वो शरियाने जो कि नॉर्मल नहीं होती
1: जी,
0: वो बन गई है, सो उन शरियानों को खत्म करने के लिए जो है लेजर किया जाता है. होता क्या है कि आपका जो, जैसे हमने कहा कि जो टिश्यू डेड हो गया है वो एक फैक्टर बनाता है जिसको हम कहते हैं VGF, वैस्कुलर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर. वो VGF जो स्पेशल टिश्यू बना रहा है वो एक्चुअली बॉडी को प्रमोट कर रहा होता है कि मैं डेड हो गया हूँ, सो मुझे नई ब्लड वेसल्स की जरूरत है. लेकिन वो जो नई ब्लड वेसल्स बेसिकली बनती है वो नॉर्मल नहीं होती, वो एबनॉर्मल होती है, वो फ्रेजाइल होती है. तो उसको जो है खत्म करने के लिए हमें जो है लेजर करना पड़ता है उस पार्ट को खत्म करने के लिए कि वो VGF सेक्रीट ना करें. इसमें दोनों चीजें काम सकती हैं, जैसे आपने इंजेक्शन दिया तो वेसल खत्म हो सकती है, और आप लेजर करके भी उस पार्ट को यानी खत्म कर सकते हैं. सो दोनों का काफी ज्यादा रोल है. सो जैसे हमने इस्कीमिक और नॉन इस्कीमिक की बात की, उसके अंदर होता है कि अगर आपके पास काफी ज्यादा रेटिना का एरिया डेड हो गया है, सो सारी जगह पे आपको लेजर करके उसको खत्म करना पड़ता है कि ताकि वो VGF ना बनाए, क्योंकि इसकी एक और बहुत बड़ी कॉम्प्लिकेशन है सीआरवीओ को, जिसको हम कहते हैं न्यू वास्कुलर ग्लूकोमा.
1: ठीक.
0: न्यू वास्कुलर ग्लूकोमा में क्या होता है,
1: प्रेशर जो है ना वो ज्यादा
0: होता क्या है कि वो शरियाने जो है सिर्फ पर्दे के अंदर नहीं बनती, वो शरियाने आपकी आयरस में जो आपका कलर्ड पार्ट है आंख का, और आपके जो एंगल्स हैं वो सारे पार्ट्स में बनना शुरू हो जाती हैं, जो कि आके आपके सारे उसको ब्लॉक कर देती हैं एंगल्स को, जहाँ से आपके आंख का पानी का फ्लो होता है, जिसकी वजह से आपका प्रेशर जो है आंख का वो काफी हद तक बढ़ जाता है.
1: वो
0: जब बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो आपकी काफी ज्यादा दर्द होती है. वन ऑफ द कॉम्प्लिकेशंस कह लें कि सीरियस कॉम्प्लिकेशन ऑफ सीआर रेटिनल वेन ऑक्लूजन, जो नॉर्मली सीआरवीओ के साथ होती है, बीआरवीओ के साथ कॉमन नहीं है, ये काफी ज्यादा कॉमन है सेंट्रल रेटिनल वेन ऑक्लूजन के लिए.
1: सो
0: इस के अंदर एक्चुअली लेजर का बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि जब आपका वो पार्ट डेड हो जाता है, सो आपकी ये शरियाने जो है बनने के चांसेस काफी ज्यादा कम हो जाते हैं. इसलिए लोग इंजेक्शंस और उसके बाद लेजर इसका कॉम्बिनेशन, अगर आपके फ्लोरोसिन में कोई आपको शरियाने नजर आ गई सो उसमें लेजर भी कर देते हैं ताकि ये शरियाने आगे ना बढ़े।
1: ठीक,
0: क्योंकि अगर वो आगे बढ़ गई और आपका ग्लूकोमा हो गया, क्योंकि ये काफी पेनफुल होता है, ग्लूकोमा जो है निवास्कुलर ग्लूकोमा जो है वो कह लें कि पेशेंट को काफी ज्यादा दर्द होती है, उसका फिर ट्रीटमेंट का प्रोसेस काफी ज्यादा लंबा है, आपको एक तो आपकी नर्व भी डैमेज हो जाती है, आपका रेटिना भी डैमेज हो जाता है, प्लस आपको पेन हो गई, सो काफी ज्यादा उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है ना आपके विजन रिकवर होने के काफी कम हो जाते हैं।
1: ठीक,
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: दोस्तों, बिजली से लगने वाली आग का खतरा हर जगह होता है, लेकिन इससे बचाव मुमकिन है अगर हम कुछ अहम सेफ्टी मेजर्स को फॉलो करें। सबसे पहले, हमेशा ओरिजिनल और सर्टिफाइड वायर्स, सॉकेट्स और इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स ही इस्तेमाल करें जो कतर या इंटरनेशनल सेफ्टी स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना न सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेस की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
2: स्पोर्ट्स की दुनिया के हैरतअंगेज रिकॉर्ड्स और जबरदस्त कहानियां सुनिए स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन के साथ हर बुध को दोपहर 1 बजे से सिर्फ FM 107 पर स्पोर्ट्स वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, जहां रिकॉर्ड्स बनते भी हैं और टूटते भी हैं।
3: आप सुन रहे हैं हेल्थ गाइड डॉक्टर फौजिया शफी के साथ ओनली ऑन FM 107 दिल से देसी।

0: लिसन से अभी जैसे डॉक्टर डॉक्टर साहब ने मैनेजमेंट या ट्रीटमेंट जो है वो हमारे साथ हमें बताया और बहुत सारी नई चीज़ें जो हमें मालूम है। डॉक्टर साहब सबसे अहम बात प्रिवेंशन होती है, तो क्या इसकी में भी हम कोई ऐसी तदाबीर इख्तियार कर सकते हैं कि हम यहाँ इस लेवल तक ना पहुँचे, यानी क्या उसकी बचने के कोई चांसेस हो सकते हैं?
1: देखें अगेन जितना सारी चीज़ें कुछ हद तक जैसे हमने बात की क्रोनिक डिजीजेस के अंदर स्पेसिफिकली जो है यानी प्रिवेंटेबल है, इवन आपके स्ट्रेस फैक्टर रेगुलर चेकअप आपका कोई भी कहूँगा कि आपको हर साल में एक दफ़ा चेकअप कराना चाहिए, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, आपको डिफरेंट स्ट्रेसेस हैं, कह लें कि आजकल हालात की वजह से आपको लग रहा है कि आपको स्ट्रेस ज़्यादा हो रही है, आपके सर दर्द ज़्यादा हो रही है, आपके पीछे गर्दन में दर्द हो रही है जो कि ब्लड प्रेशर ज़्यादा होने की अलामतें हैं, आपकी शुगर आपको पता है आपको है, आप उसको रेगुलर चेक कराएं। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आप चेक करा के उसको प्रिवेंट या उसको कंट्रोल किया जा सकता है।
0: ठीक है,
1: दूसरी चीज़ लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लग गया फॉर एग्जांपल कि आपकी कोलेस्ट्रॉल हाई हो गया या आपको पता लग गया आपको शुगर हो गई है, इस तरह की कोई चीज़ होगी, एक्सरसाइज आपके खाने पीने की रोज़मर्रा की आप जो डाइट है, आपका स्ट्रेस लेवल है, आपकी नींद है, ये सारी चीज़ें किसी ना किसी तौर पे जैसे जैसे आप कह लें कि उम्र बढ़ती जाती है और सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं वो बड़ी इंपॉर्टेंट कि आप उसको उसके हिसाब से मॉडिफाई किया जाए। सेडेंटरी लाइफस्टाइल है जैसे आपको पता है आजकल डिजिटल लाइफ हो गई है काफ़ी ज़्यादा, टैब्स मोबाइल्स बाहर निकलना मुश्किल हो गया, कह लें कि आजकल मौसम जो है गर्मी ज़्यादा हो गई है, लेकिन ये कि आप देखिए अब पार्क्स भी ऐसे बन गए हुए हैं जिसके अंदर एयर कंडीशनड पाथवेज हैं, मॉल्स के अंदर आजकल काफ़ी ज़्यादा प्रमोट किया जाता है वॉक वगैरह को, फास्ट फूड को कम किया जा सकता है, आप उसको ये ना करें कि रोज ही आप फास्ट फूड खा रहे हैं या इस तरह की चीजें खा रहे हैं जो कि मुजरे सेहत है, ठीक है, ड्रिंक्स हो गए, सॉफ्ट ड्रिंक्स हो गए, इस तरह की चीजें हो गए जो आपकी शुगर को बढ़ा सकते हैं जो कि आपके लिए ठीक नहीं है,
0: लाइफस्टाइल चेंजेस जो है
1: लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
0: ठीक है, एक्सरसाइज है तो
1: एक्सरसाइज है बिल्कुल, और एक्सरसाइज रेगुलर अगेन ये नहीं कि रोज की जा सके बट आप उसको जितना बेहतर कर सकते हैं और जितना अपनी हर एक अपना टाइम है अपने हर एक का जितना उसको बेहतर कर सकता है थोड़ा सा भी टाइम दे अपने आप को तो अपने जिस्म को कह लें ये बेहतर तौर पे तो इम्पोर्टेंट है।
0: ठीक है, इसमें डॉक्टर साहब आप जो हम मैसेज क्या होगा जैसे कि क्या ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लाइफस्टाइल चेंजेस से और बाकी जैसे आपने कहा किसी को क्रॉनिक डिजीज हैं तो हम सब उनको कंट्रोल करते हुए इससे बच सकते हैं?
1: सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जैसे हमने कहा कि जी क्रॉनिक डिजीजेस हमें उसको एक तो चेकअप कराना बहुत ज़रूरी है, रेगुलर चेक कराएं, जब आपको कोई आंख के अंदर कोई ऐसी चीज़ नज़र आए उसको चेक कराएं, सो ये इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप उसको ये ना करें, एक तो डिले ना किया जाए,
0: ठीक है,
1: आपको कभी भी आंख के अंदर ऐसे लगता है आपका नज़र धुंधलापन आ गया है और कह लें कि आधे घंटे में नहीं जा रहा और इस तरह नहीं हो रहा, सो आपको फौरन जो है जाके चेक कराना चाहिए, एमरजेंसी 24/7 ओपन होती है, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट उधर अवेलेबल है, हर हॉस्पिटल के अंदर अवेलेबल है एक्चुअली में, सो हर आपको उधर जाके चेक कराना चाहिए, अपनी जो भी आपको अगर कोई क्रोनिक डिजीज़ है उसको बेहतर तौर पे तरीके से उसकी ट्रीटमेंट करानी चाहिए, रेगुलर ट्रीटमेंट करानी चाहिए, अपॉइंटमेंट्स नहीं मिस करनी चाहिए, मेडिकेशन नहीं मिस करनी चाहिए
0: जी,
1: और अपने जितने भी हम कह लें कि बेहतर तरीके से लाइफ को लीड कर सकते हैं सेहतमंदाना तौर पे उसको लीड करने की कोशिश करनी चाहिए, और आंखों का चेकअप हमने हमेशा कहा है कि आपको साल में एक दफ़ा अगर आपको नहीं कोई बीमारी और जिस तरह अगर आपको डॉक्टर कहता है कि आपको चेक कराना चाहिए एक दफ़ा ज़रूर चेक करानी चाहिए, डायलेटेड फंडस एग्जामिनेशन, रेटिना का चेकअप, आपका विजन, आपकी डिफ्रैक्शन, आपके आंखों का नंबर, सारी चीज़ें, आंख का प्रेशर, क्योंकि ये साइलेंट डिजीजेज हैं कभी कभार आपको पता नहीं लगता अंटिल के कोई सीरियस उसकी कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए।
0: ठीक है डॉक्टर साहब, इसमें ये तो ज़्यादातर एज रिलेटेड ही है जैसे कि एज की जो जैसे जैसे चेंजेस आती हैं तो आई में भी चेंजेस हैं मोस्टली ये होता है
1: जी, बेसिकली जो है एज रिलेटेड है, गला ने जो लेंस बनाया उसमें आहिस्ता आहिस्ता एज के साथ उसमें थोड़ा सा कह ले धुंधलापन सफेदपन आ गया, सो आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता वो जो सफेदपन ज्यादा होता जाता है लेंस के जो चेंजेस हैं वो मेन एज रिलेटेड, बट ये कि अगर आपको कोई ट्रॉमा हो गया है, आपको कोई मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे फिर वही बात शुगर की आ गई, ब्लड प्रेशर है, उससे ज़्यादा हो सकता है। कुछ लोगों को कंजेनिटल तौर पे बचपन में से ही कैटरेक्ट हो जाता है, कोई मेटाबॉलिक डिजीज हो गई, होमोसिस्टिन यूरिया, इस तरह की कोई चीज़ उसकी वजह से हो सकता है। सो उसके अंदर दूसरी वजह भी हो सकती है, बट मेन वजह एज रिलेटेड है।
0: ठीक, इसमें डॉक्टर साहब जैसे ऑपरेट कर दिया तो उसकी थोड़ी जो है क्या क्या हमें एहतियाती तदाबीर होनी चाहिए,
1: नॉर्मली
0: क्या केयर करनी चाहिए, वो पूछना चाहूंगी आपसे। कितने दिन ड्राइव नहीं करना, कितने दिन इस तरह, ये भी जरूर बताइए।
1: मैं आपको बोलूंगा जी, आजकल ना ये डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड में डिफरेंट गाइडलाइंस होती
0: हैं, ठीक है,
1: क्योंकि हर एक पार्ट का मौसम डिफरेंट है, हर एक जगह की चीजें डिफरेंट है। आजकल कुछ लोग यानी फॉर एग्जाम्पल ऐसी जगह पे जहाँ के मौसम गर्म नहीं है
0: जी जी,
1: और लोग कह लें कि कोई सर्द इलाके में अच्छे मौसम, ऐसा मौसम जिसमें पसीना ज्यादा नहीं आता, इस तरह कुछ है, सो उस जगह पे एक्चुअली एक से दो दिन में आपको कहते हैं कि कोई मसला नहीं। हम लोग इधर नॉर्मली एक हफ्ता से एक हफ्ता पेशेंट को कहते हैं कि रेस्ट करना चाहिए। पहले दिन नॉर्मली आंख को पैच किया जाता है, यानी बंद किया जाता है, नेक्स्ट दिन डॉक्टर खुद उस पैच को खोलता है। कुछ जगह पे जहाँ कह लें कि जो बड़े मुल्क हैं जिसमें पेशेंट काफी दूर दराज इलाके से आते हैं, दोबारा वापस नहीं आ सकते डॉक्टर के पास किसी वजह से, सो उनको नॉर्मल कहते हैं कि आप घर पे ही खोल लें और जिस ड्रॉप स्टार्ट कर लें।
0: खुद
1: क्योंकि वो पेशेंट आप कह लें, हम बात कर रहे हैं कतर में जिधर सब कुछ एक्सेसिबल है, यानी आप कह लें कि कोई भी लोग हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं, सो इतना मुश्किल नहीं है। लेकिन कुछ जो बड़े मुल्क हैं जिधर को कह लें कि घंटों के सफर है, इस तरह का है, सो कई बार पेशेंट वापस नहीं आ सकता, जैसे कैंप्स लगते हैं, कैटरेक्ट के कैंप्स लगते हैं जिसमें हजारों के हिसाब से पेशेंट होते हैं, तो हर पेशेंट का पैच खोल के देखना मुमकिन नहीं होता। लेकिन जैसे हम इंडिविजुअल्स की बात करें तो एक दिन के लिए पैच करते हैं, उसके बाद अगले दिन उस पैच को खोला जाता है, फिर उसका ऑफकोर्स एग्जामिनेशन किया जाता है, देखा जाता है सबको इन्फेक्शन तो नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इन्फेक्शन कोई नहीं, जैसे पहले भी हमने बात की एंडोफ्थाल्माइटिस की, कि आंख के अंदर कोई इन्फेक्शन तो नहीं चली गई, इसकी भी वही सबसे बड़ा साइड इफेक्ट है। उसके बाद जो है सबसे इंपॉर्टेंट चीज, उसको ड्रॉप्स दिए जाते हैं। सो ड्रॉप्स जो है नॉर्मली एंटीबायोटिक ड्रॉप्स होते हैं, और यानी स्टीरॉइड्स के ड्रॉप्स होते हैं, ताकि इन्फ्लेमेशन को कम किया जा सके,
0: स्वेलिंग जो है,
1: स्वेलिंग क्योंकि आप एक कह लें कि ओपनिंग कर रहे हैं, यानी आप उसके अंदर खोल रहे हैं, तो जिसकी वजह से वो एक बॉडी का रिकवरी भी होती है, जिसके वजह से इन्फ्लेमेशन होने के चांसेस होते हैं। दूसरी चीज एहतियात, जैसे आंख में पानी नहीं जाना चाहिए, साबुन नहीं जाना चाहिए, नॉर्मली पेशेंट को कहते हैं बाहर ना जाए, हम एक शील्ड लगाते हैं आंख के ऊपर, प्लास्टिक की शील्ड होती है, ताकि आंख के अंदर कोई चीज ना चली जाए, हवा चल रही है, गर्द गुबार से। नॉर्मली एक हफ्ता नॉर्मली पेशेंट को कहा जाता है। पेशेंट के अगर कोई ऐसा आपको लगे कि पेशेंट फॉर एग्जांपल एक ऐसी जगह पे रहता है जो कि हाइजीनिक नहीं है, तो दो हफ्ते भी उसको किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल कोई ऐसे लोग हैं जो मिल के साथ रह रहे हैं, और तीन चार लोग साथ रहते हैं, या ज्यादा बंदे भी साथ रहते हैं, और हाइजीन का इतना ज्यादा ख्याल नहीं रखा जा रहा उस जगह पे, तो कभी कभार ज्यादा भी कह देते हैं, कोई बंदे बाहर से आ रहे हैं, हवा चल रही है, इस तरह की चीजों पे ग्लासेस या शील्ड आंख के ऊपर लगाई जाती है। फिर वो एक हफ्ते के बाद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता स्टीरॉइड्स को कम कर दिया जाता है, एंटीबायोटिक स्टॉप कर दिए जाते हैं, लेकिन वो कि वो अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के आंख की कंडीशन कैसी है। नॉर्मल रिकवरी पीरियड एक हफ्ते से 10 दिन होता है, आप कह लें मैक्सिमम 2 हफ्ते के अंदर आंख जो है अल्हम्दुलिल्लाह अपनी एक नजर जो है उसकी बेहतर होना शुरू हो जाती है।
0: जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये बिल्कुल छोटी छोटी सी मैयत है जो कि अपना कर हम फिर
1: बिल्कुल
0: ये जो और बिल्कुल सही जो
1: दूसरी चीज ये
0: आंख भी हमारी आई साइड भी बिल्कुल सही बिल्कुल हो जाती है।
1: हाँ बस ये, लेकिन कैटरेक्ट का मतलब ये नहीं कि आपने कल कैटरेक्ट कराया तो आपको नजर आया, कैटरेक्ट क्या दूसरी चीज नजर की वो रेटिना भी है
0: जी।
1: इसका मतलब ये है कि आपने अगर मोतिये का ऑपरेशन करा लिया, इसका मतलब ये नहीं होगा कि आपकी नजर 6x6 हो जाएगी, इसका मतलब ये है कि आपके पर्दे का मजबूत होना भी बहुत जरूरी है, आपका पीछे से अगर पर्दा मजबूत नहीं है, जैसे हम पुराने कैमरे की फिल्म की बात कर रहे हैं, तो तस्वीर भी आगे से अच्छी नहीं आएगी। सो सिर्फ नजर के अंदर एक कैटरेक्ट या सिर्फ पर्दे का या कॉर्निया का पार्ट नहीं होता, सारों के एक पूरे पार्ट का अपना अपना एक रोल है। सो कैटरेक्ट सर्जरी कोई भी कराए उसको ये नहीं समझना चाहिए कि मैं कैटरेक्ट करा लूंगा, जैसे
0: तो बिल्कुल नजर बिल्कुल
1: नजर बिल्कुल सही हो जाएगी। कुछ लोग कहते हैं कि जी मेरा पर्दा खराब है, मैं ऐनक पहनूंगा तो मुझे नजर आना शुरू हो जाएगा, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि नजर एक्चुअली पर्दा बना रहा है। अगर पर्दा पीछे से नजर नहीं बना रहा तो या कैटरेक्ट कराए या आप ऐनक को लगाए, उससे बेहतर नहीं होगी। हाँ अगर आपके पर्दे की ताकत है तो उसके आप कैटरेक्ट कराएंगे तो नजर डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी, या ऐनक लगाएंगे तो नजर डेफिनेटली बेहतर हो जाएगी।
0: जी इंशाल्लाह। जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। और मैसेज आप क्या देना चाहेंगे?
1: सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज जैसे हम हर दफ़ा कहते हैं कि अपनी आंखों का चेकअप ज़रूर कराया जाए, और आपको अगर कोई भी किसी किस्म की भी डिजीज़ हैं उसका इलाज करा यानी रेगुलरली ज़रूर चेक कराएं। इधर मेडिकल जो केयर है वो काफ़ी एक्सेसिबल है, हर एक चेक करा सकता है, हेल्थ सेंटर हो, हॉस्पिटल्स हो, आप उसमें जाके रेगुलरली चेक करा सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कोई ड्रॉप्स दी गए, कोई भी दवाई दी गई है उसको रेगुलर इस्तेमाल किया जाए, उसमें आप बदएहतियाती नहीं करनी चाहिए। और अगर आपको कोई भी लगा है कि आपकी नज़र धुंधलापन हो गया है और इस तरह कुछ हो गया, तो उस टाइम ही डॉक्टर को दिखाना चाहिए। और अपने ब्लड प्रेशर्स, जैसे हमने आज रेटिनल वेन ऑक्लूजन की बात की, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यंग पेशेंट्स के अंदर और ओल्डर पेशेंट्स में भी फर्स्ट कॉज हाइपरटेंशन का है, क्योंकि वो एक तरह का आपका एकदम से आई होता है, लेकिन उसकी वजूहात कुछ ना कुछ ज़रूर होती हैं, जैसे स्ट्रेस हो गई। अगर आपको कुछ ऐसा लगता है तो अपना रेगुलर मोनिटर ज़रूर किया जाए ब्लड प्रेशर, और अगर आपको लगता है कि उसके यानी फ्लक्चुएट हो रहा है, हाई जा रहा है, तो ज़रूर उसका बर वक्त इलाज कराया जाए।
0: बिल्कुल जी, बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और सामिन मोहतरम, इसके साथ ही प्रोग्राम हेल्थ गाइड से डॉक्टर उस्मान नईम जो कि कंसल्टेंट हैं ऑप्थल्मोलॉजी में फौजिया शफीक को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अपनी आंखों की हिफाजत कीजिए। अल्लाह हाफिज़।

0: Women in Sports, RJ Safa ke saath, sirf FM 107 par, Dil Se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम और बहुत सा प्यारा सा वेलकम हमारे तमाम लिसनर्स के लिए जो कतर और दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से हमें सुन रहे हैं. भाई आप ट्यून इन हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन एफएम 107 कतर और मैं हूं आपकी होस्ट सफा. साथियों कभी एक वक्त था जब स्टेडियम की रोशनी क्राउड का शोर और जीत की खुशी ज्यादातर मर्दों के नाम होती थी. एक ऐसा दौर जहां किसी लड़की का बैट उठाना फील्ड में उतरना या पोडियम का ख्वाब देखना अजीब समझा जाता था. लेकिन अब कहानी बदल रही है और वो भी आहिस्ता आहिस्ता नहीं बल्कि पूरी ताकत के साथ. भाई आज दुनिया भर में एक नई लहर उभर कर सामने आ रही है जो कि है वुमेन इन स्पोर्ट्स की लहर जो सिर्फ खेल नहीं बल्कि सोच को भी बदल कर रख देती है. साथियों वेलकम है आप सभी का वुमेन इन स्पोर्ट्स में, एक ऐसा शो जो सेलिब्रेट करता है हिम्मत को, जज्बे को और उन कहानियों को जो रुकना नहीं जानती. मैं हूं आपकी होस्ट सफा और इस सफर में मैं आपको ले चलूंगी उन लोगों की कहानियां सुनाने जिन्होंने ना सिर्फ खेल जीता बल्कि जिंदगी के रूल्स भी बदल कर रख दिए. ये शो सिर्फ मैचेस और टूर्नामेंट्स के बारे में नहीं है, ये शो है उन ख्वाबों का जो छोटी सी गली से शुरू हुए और इंटरनेशनल स्टेडियम तक पहुंच गए. ये शो है उन लड़कियों का जो हर उस कमेंट जो कि था ये तुम्हारे बस की बात नहीं है को अब देखो मैं क्या करती हूँ मैं बदल देती हैं. आज के दौर में स्पोर्ट्स टूर्नामेंट्स सिर्फ कंपटीशन नहीं है साथियों, ये एक प्लेटफॉर्म बन चुके हैं, एक ऐसी जगह जहाँ टैलेंट को पहचान मिलती है, जहाँ मेहनत को इज्जत मिलती है और जहाँ एक लड़की की जीत पूरी की पूरी कम्युनिटी की जीत बन जाती है. जब एक लड़की अपने स्कूल, अपने शहर या अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करती है ना, तो भाई वो सिर्फ मेडल नहीं जीत रही होती, वो सोच बदल रही होती है, वो एक बहुत बड़ी तब्दीली ला रही होती है लोगों की सोच में. जरा सोचिए जब एक छोटी सी बच्ची टीवी पर या अपने स्कूल के ग्राउंड में किसी फीमेल एथलीट को जीतते हुए देखती है ना, तो उसके दिल में क्या जज्बा आता होगा. एक छोटी सी आवाज कहती होगी अगर वो कर सकती है तो मैं भी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं भी कोशिश करूंगी और क्या पता मैं भी इसकी तरह हूँ. और यहीं से शुरू होता है एक नया सफर विमेन इन स्पोर्ट्स. साथियों विमेन इन स्पोर्ट्स इसी चेंज की कहानी है. इस शो में हम ये जानेंगे कि कैसे स्पोर्ट्स लड़कियों को सिर्फ स्ट्रॉन्ग नहीं बनाता बल्कि उन्हें कॉन्फिडेंट, इंडिपेंडेंट और फियरलेस भी बनाता है. हम बात करेंगे उन चैलेंजेस की जो उन्हें फेस करने पड़े, कभी रिसोर्सेज की कमी, कभी सपोर्ट की कमी और कभी सिर्फ सोसाइटी के प्रेशर के ख्यालात. लेकिन फिर भी वो रुकी नहीं क्योंकि उनके पास एक गोल था और उस गोल के आगे हर रुकावट छोटी लगने लगी थी. भाई इस शो का एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा है फैमिली और कम्युनिटी का रोल. पहले जहां लड़कियों को खेलने पर भी सवालात उठाए जाते थे, आज वही फैमिलीज उनके लिए चीयर कर रही हैं, तालियां बजा रही हैं। जब एक बेटी टूर्नामेंट जीतती है ना, तो वो सिर्फ अपनी जीत नहीं कैलकुलेट कर रही होती, वो उसके घर वालों का फखर बन जाती है, उसकी कम्युनिटी का गुरूर बन जाती है. ये वो लम्हात होते हैं जब थ्योरी रियलिटी में तब्दील होती है, जब जेंडर इक्वालिटी सिर्फ एक कॉन्सेप्ट नहीं रहता बल्कि एक जीती जागती मिसाल बन जाता है. तो साथियों चलिए मेरे साथ यानी सफा के साथ आप सुनेंगे उन कहानियों को जो दिल को छू जाती हैं, उस मेहनत को जो अक्सर नजर नहीं आती, सुबह के जल्दी उठने से लेकर रात तक प्रैक्टिस करना, इंजरी से लेकर कमबैक तक, हर एथलीट के पीछे एक कहानी होती है साथियों जो दूसरों को इंस्पायर करती है. ये शो उन हीरोज के लिए है जो हेडलाइंस में हो या ना हो लेकिन अपनी जिंदगी में चैंपियंस होते हैं. ये शो उन लड़कियों के लिए है जो अभी सिर्फ ख्वाब देख रही हैं ताकि वो कल उन ख्वाबों को हकीकत में तब्दील कर सके. विमेन इन स्पोर्ट्स एक आवाज है, एक ऐसी आवाज जो कहती है कि टैलेंट का कोई जेंडर नहीं होता. ये एक मूवमेंट है जो हर उस लड़की को मोटिवेट करती है जो अपनी पहचान बनाना चाहती है. ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ जीत सिर्फ स्कोरबोर्ड तक महदूद नहीं रहती बल्कि सोच और सोसाइटी दोनों को जीत लेती है. तो तैयार हो जाइए एक इंस्पायरिंग सफर के लिए जहाँ हर एपिसोड एक नई कहानी लाएगा और हर कहानी एक नई उम्मीद जगाएगी और हर उम्मीद एक नई दुनिया की तरफ लेकर जाएगी। ये है विमेन इन स्पोर्ट्स, जहां हर लड़की की जीत सबकी जीत है, और मैं हूं सफा आपके साथ हर कदम पर। साथियों, आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी एथलीट की कहानी जो सिर्फ टेनिस कोर्ट पर अपनी पावरफुल सर्व्स और अनप्रिडिक्टेबल विक्ट्रीज के लिए मशहूर नहीं हुई, बल्कि जिन्होंने अपनी आवाज, अपने कॉन्फिडेंस और अपनी हिम्मत से स्पोर्ट्स की दुनिया में एक नई कन्वर्सेशन शुरू कर दी। आज की हमारी स्पॉटलाइट है एक ऐसी चैंपियन पर जिसने बहुत कम उम्र में टेनिस की दुनिया पर अपना नाम लिख दिया। एक ऐसी एथलीट जिसने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते, दुनिया की नंबर वन प्लेयर बनी, लेकिन साथ साथ हमें ये भी दिखाया कि एक एथलीट सिर्फ ट्रॉफीज और रिकॉर्ड्स का नाम नहीं होती। ना ना ना ना, एक एथलीट एक इंसान भी होती है जिसके इमोशंस होते हैं, स्ट्रगल्स होती हैं और पर्सनल चैलेंजेस भी होते हैं। भाई, आज हम बात करने लगे हैं नायोमी ओसाका की। साथियों, टेनिस की दुनिया में कुछ नाम ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपनी गेम की वजह से नहीं याद रखे जाते, बल्कि इसलिए भी याद रखे जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपने स्पोर्ट से बाहर निकलकर भी लोगों को इंस्पायर किया, और नायोमी ओसाका उन्हीं एथलीट्स में से एक हैं। उनकी कहानी एक यूनिक मिक्स है कल्चर्स का, ड्रीम्स का, हार्डवर्क का और डिटर्मिनेशन का। एक जापानीज मदर और हाइटियन फादर की बेटी, अमेरिका में परवरिश पाने वाली नायोमी ने अपनी जिंदगी के सफर में मल्टीपल आइडेंटिटीज को एम्ब्रेस किया और फिर टेनिस कोर्ट पर दुनिया को अपने टैलेंट से जवाब भी दिया। लेकिन साथियों, हर चैंपियन की तरह नायोमी ओसाका की कहानी भी सीधा सक्सेस से शुरू नहीं होती। नो, हर मेडल और हर ट्रॉफी के पीछे सालों की प्रैक्टिस होती है, सेक्रीफाइसेस होते हैं और ऐसे डिसीजंस होते हैं जो एक एथलीट की पूरी जिंदगी का रुख बदल कर रख देते हैं। नायोमी ओसाका की पैदाइश 16 अक्टूबर 1997 को ओसाका, जापान में हुई। अच्छा, उनका नाम भी उनके बर्थ प्लेस ओसाका सिटी की वजह से ही रखा गया। उनके वालिद लियोनार्ड फ्रांसोइस हाइती से ताल्लुक रखते थे, जबकि उनकी वालदा तमाकी ओसाका जापानीज थी। नायोमी और उनकी बड़ी बहन मारी ने बचपन से ही दो मुख्तलिफ कल्चर्स को एक्सपीरियंस किया था। अच्छा, जब नायोमी छोटी थी, उनकी फैमिली जापान से यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई और उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा फ्लोरिडा में गुजारा। अच्छा, फ्लोरिडा का एनवायरमेंट टेनिस के लिए बहुत बेहतरीन था और यहाँ से नायोमी की प्रोफेशनल जर्नी की बुनियाद मजबूत हुई। साथियों, नायोमी ओसाका का टेनिस का सफर एक इंटरेस्टिंग कहानी, मैं कहूंगी कि एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी रखता है। उनके फादर लियोनार्ड ने उन्हें टेनिस की तरफ मोटिवेट किया जब उन्होंने ये देखा कि सरीना और वीनस विलियम के फादर रिचर्ड विलियम्स ने अपनी बेटियों को टेनिस में दुनिया के टॉप लेवल तक पहुंचा दिया, तो भाई उन्हें भी अपनी बेटियों के लिए इसी तरह का विजन दिखाई देने लगा और उनके दिल में भी चाह हुई कि उनकी बेटियां भी ऐसी टॉप लेवल तक पहुंचें। तो भाई, लियोनार्ड ने नायोमी और मारी को बहुत छोटी सी उम्र से टेनिस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी। उन्होंने उनकी टेक्निक्स, डिसिप्लिन और कॉन्फिडेंस पर फोकस किया। ये सफर आसान नहीं था, लेकिन फैमिली सपोर्ट ने नायोमी को अपने ड्रीम्स के पीछे लगातार मेहनत करने का हौसला दिया। अच्छा, नायोमी ये पर्सनालिटी भी शुरू से यूनिक थी ना, वो बहुत टैलेंटेड थी लेकिन नेचुरली शाय और क्वाइट सी रहने वाली बच्ची थी। अच्छा, टेनिस कोर्ट पर वो अपनी पर्सनालिटी से ज्यादा अपने गेम के जरिए बात करती थी, लेकिन जैसे जैसे उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता गया, दुनिया ने ये देखा कि

पर्सनालिटी के पीछे कितनी पावर और डिटर्मिनेशन छुपी हुई है। अच्छा, प्रोफेशनल टेनिस में एंट्री लेना किसी भी एथलीट के लिए बहुत चैलेंजिंग होता है। हर टूर्नामेंट में दुनिया के बेस्ट प्लेयर्स होते हैं, हर मैच में प्रेशर होता है और हर पॉइंट के लिए फोकस और मेंटल स्ट्रेंथ चाहिए होती है। तो भाई, नायोमी ने आहिस्ता आहिस्ता अपना नाम बनाना शुरू कर दिया। अच्छा, उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पावरफुल सर्व थी। अच्छा, उनकी स्पीड, एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल और कोर्ट पर कॉन्फिडेंस ने टेनिस एक्सपर्ट्स को बहुत इम्प्रेस किया। लेकिन नायोमी का असली ब्रेक थ्रू तब आया जब दुनिया ने उन्हें एक ग्लोबल सुपरस्टार के तौर पर पहचाना। यानी कि 2018 का साल था नायोमी ओसाका के करियर का टर्निंग पॉइंट। यूएस ओपन 2018, एक यंग जापानीज प्लेयर फाइनल तक पहुंच चुकी थी। सामने थी टेनिस की लेजेंड सरीना विलियम्स। अच्छा, ये मैच सिर्फ एक चैंपियनशिप मैच नहीं था, नो, ये टेनिस हिस्ट्री का एक यादगार मोमेंट बन गया भाई। देखिए, नायोमी ने इनक्रेडिबल कॉन्फिडेंस के साथ मैच खेला और सरीना विलियम्स को हरा कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया। वो किसी भी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली जापानीज प्लेयर बन गई। सोचिए, एक यंग एथलीट जो दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस स्टार में से एक का सामना कर रही थी और फिर उसी स्टेज पर चैंपियन बनकर उभरती है। वाह भाई वाह, ये मोमेंट नायोमी के लिए ही नहीं बल्कि जापान और एशिया के टेनिस फैंस के लिए भी बहुत हिस्टोरिक था। लेकिन नायोमी की कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू ये है कि उनकी सक्सेस सिर्फ टेनिस तक नहीं रुकी, वो एक ऐसी जनरेशन की रिप्रेजेंटेटिव बनी जो अपनी आइडेंटिटी को प्राउडली एक्सेप्ट करती है। उन्होंने अपने जापानीज और हाइटियन बैकग्राउंड को सेलिब्रेट किया और दुनिया को ये दिखाया कि मल्टीपल कल्चर्स का हिस्सा होना एक स्ट्रेंथ हो सकता है। अच्छा साथियों, आज के जमाने में ना एथलीट्स सिर्फ स्पोर्ट्स पर्सनालिटीज नहीं रहे, वो रोल मॉडल्स बन चुके हैं। उनकी बातें, उनके डिसीजंस और उनकी स्ट्रगल्स, आप कह लें कि इट रीचेस टू मिलियंस ऑफ पीपल। नायोमी ओसाका ने भी अपने प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस के लिए किया। उन्होंने मेंटल हेल्थ, प्रेशर और एथलीट वेलबींग जैसे टॉपिक्स पर बात की जो पहले स्पोर्ट्स की दुनिया में अक्सर इग्नोर कर दिए जाते थे। अच्छा, ये बहुत हिम्मत की बात थी क्योंकि जिस चीज के बारे में कोई बात नहीं करता, आप आकर प्लेटफॉर्म पे, बड़े प्लेटफॉर्म पर आकर उसके बारे में बात करें, तो ये बहुत हिम्मत की बात थी क्योंकि अक्सर एथलीट से ये एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा स्ट्रांग नजर आए, हमेशा कॉन्फिडेंट हो और कभी भी अपनी वीकनेसेस शो ना करें। लेकिन नायोमी ने ये मैसेज दिया कि भाई, स्ट्रांग होने का मतलब ये नहीं कि आपके इमोशंस नहीं है। स्ट्रांग होने का मतलब है आप अपनी फीलिंग्स को समझें और अपनी वेलबींग का ख्याल रखें। अच्छा, आज नायोमी ओसाका सिर्फ एक, आप कह रहे हैं कि टेनिस चैंपियन नहीं है, वो एक इंस्पायरेशन है उन तमाम यंग गर्ल्स के लिए जो अपने ड्रीम्स फॉलो करना चाहती हैं। वो एक मिसाल है कि आप अपनी इंडिविजुअलिटी के साथ भी दुनिया के सबसे बड़े स्टेजेस पर कामयाब हो सकते हैं। उनकी कहानी हमें ये सिखाती है कि सक्सेस सिर्फ दूसरों को बीट करने का नाम नहीं है, सक्सेस अपने आप को समझने, अपनी जर्नी एक्सेप्ट करने और अपने टैलेंट को दुनिया के सामने लाने का नाम है। आपके नजदीक एक ग्रेट एथलीट की सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होती है? उसका टैलेंट, उसका कॉन्फिडेंस, उसका डिसिप्लिन या फिर प्रेशर के वक्त खुद को कंट्रोल में रखना? हमें अपनी राय जरूर भेजें। आप हमें चाहें तो मैसेज कर सकते हैं 666-22107 पर या हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी हमसे कनेक्ट कर सकते हैं @FM107 कतर के जरिए। कहीं मत जाइए क्योंकि हम लेकर आए हैं नायोमी ओसाका की पूरी कहानी। हम जानेंगे कि किस तरह एक शाइसी बच्ची जापान से निकलकर टेनिस की दुनिया की सबसे बड़ी स्टार्स में शामिल हो गई, किस तरह उन्होंने ग्रैंड स्लैम टाइटल्स जीते और किस तरह उन्होंने स्पोर्ट्स को सिर्फ कंपटीशन नहीं बल्कि चेंज के प्लेटफॉर्म में बदल कर रख दिया। मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107।

0: Women in Sports, RJ Safa के साथ, सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी।
1: तो साथी हमारी आज की स्टोरी ऑफ द वीक में हम बात कर रहे हैं एक ऐसी एथलीट की जिसने बहुत कम उम्र में टेनिस की दुनिया में अपनी जगह बनाई और फिर सिर्फ अपने गेम से ही नहीं बल्कि अपनी पर्सनालिटी से भी, अपनी हिम्मत से भी दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर किया। ये कहानी है नायोमी ओसाका की, एक ऐसी लड़की की कहानी जो जापान के एक शहर में पैदा हुई, अमेरिका में बड़ी हुई और मुख्तलिफ कल्चर्स को अपनी पहचान का हिस्सा बनाया और फिर टेनिस कोर्ट पर दुनिया की सबसे पावरफुल प्लेयर्स में शुमार हुई। साथियों जब हम किसी चैंपियन को ट्रॉफी उठाते हुए देखते हैं ना, तो अक्सर हमें सिर्फ उनकी कामयाबी और वो फाइनल मोमेंट्स नजर आते हैं, हमें वो सालों की मेहनत नजर नहीं आती जो उस ट्रॉफी के पीछे छुपी हुई होती है, हमें वो सैक्रिफाइसेस नजर नहीं आते जो एक एथलीट और मैं कह लूं कि उनकी फैमिली करती है। नायोमी की कहानी भी इसी मेहनत, प्लानिंग और यकीन की कहानी है। देखिए नायोमी ओसाका की पैदाइश, जैसा कि मैंने बताया, 16 अक्टूबर 1997 को ओसाका जापान में हुई। उनकी फैमिली बाद में यूनाइटेड स्टेट्स शिफ्ट हो गई और नायोमी ने अपना बचपन फ्लोरिडा में गुजारा। फ्लोरिडा का जाहिर बात है कल्चर अच्छा था, टेनिस के मामले में फैसिलिटीज अच्छी थी, तो उनके लिए बहुत अहम साबित हुई ये जगह। यहीं से उनका प्रोफेशनल करियर भी टेनिस में शुरू हुआ। अच्छा, उनके फादर ने नायोमी और उनकी बहन मारी को टेनिस की ट्रेनिंग देना शुरू कर दी, लेकिन ये सिर्फ प्रैक्टिस तक महदूद नहीं था, इसमें बहुत डिसिप्लिन, पेशेंस और फैमिली कमिटमेंट शामिल था। नायोमी ने बहुत छोटी सी उम्र में टेनिस रैकेट पकड़ना शुरू कर दिया था, लेकिन उनकी पर्सनालिटी शुरू से ही थोड़ी सी डिफरेंट थी, थोड़ी सी रिजर्व सी थी वो। वो कोर्ट पर बाहर ज़्यादा बात नहीं करती थी, लेकिन कोर्ट पर उनका कॉन्फिडेंस बिल्कुल अलग से नज़र आता था। उनकी खासियत थी कि वो अपनी फीलिंग्स को ज़्यादा अल्फाज में नहीं बल्कि अपनी परफॉर्मेंस के ज़रिए एक्सप्रेस किया करती थी। टीनेज ईयर्स तक पहुँचते पहुँचते नायोमी ने ये डिसाइड किया कि वो प्रोफेशनल टेनिस में करियर बनाएंगी। उन्होंने जूनियर कॉम्पिटिशन में हिस्सा लेना शुरू कर दिया और आहिस्ता आहिस्ता टेनिस एक्सपर्ट्स की नज़र उन पर जमती चली गई। 2013 में नायोमी ओसाका ऑफिशियली प्रोफेशनल टेनिस सर्किट का हिस्सा बन गई थी। लेकिन शुरुआत के दौर में उन्हें भी हर यंग एथलीट की तरह चैलेंजेस का सामना करना पड़ा था। प्रोफेशनल टेनिस का लेवल बहुत हाई होता है साथियों, हर टूर्नामेंट में एक्सपीरियंस प्लेयर्स होते हैं और हर मैच में प्रेशर होता है, लेकिन नायोमी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी पावरफुल गेम थी। उनके सर्व्स टेनिस की दुनिया में बहुत मशहूर हुए। उनकी स्पीड, एग्रेसिव स्टाइल और पावरफुल ग्राउंड स्ट्रोक्स ने उन्हें दूसरी प्लेयर से अलग बनाया। अच्छा, वो ऐसी प्लेयर थी जो मैच के प्रेशर में भी एनर्जी और फोकस मेंटेन रख सकती थी। फिर आया दौर 2016 में नायोमी ने टेनिस वर्ल्ड में ज्यादा अटेंशन हासिल करना शुरू कर दी। उन्हें WTA न्यू कमर ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए भी नॉमिनेट किया गया। अच्छा, एक्सपर्ट्स को अंदाजा होने लगा था कि ये यंग प्लेयर फ्यूचर में बहुत बड़ा नाम बना सकती है। फिर आया 2018, ये साल नायोमी ओसाका की जिंदगी का टर्निंग पॉइंट साबित हुआ। US ओपन 2018, एक यंग जैपनीज प्लेयर दुनिया की सबसे बड़ी टेनिस स्टेजेस में से एक पर खड़ी हुई थी और सामने थी सरीना विलियम्स। सरीना विलियम्स का नाम हिस्ट्री में सबसे सक्सेसफुल एथलीट में शुमार होता है, ये ध्यान में रखें। उनके सामने फाइनल खेलना ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, वो प्रेशर ही अलग होता है, लेकिन नायोमी ने प्रेशर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस और फोकस के साथ मैच खेला। उनकी पावरफुल सर्व्स, काम एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन ने सबको इम्प्रेस कर दिया। यानी कि नायोमी ने सरीना विलियम्स को हरा कर अपना पहला ग्रैंड स्लैम टाइटल जीत लिया और ये मोमेंट बहुत इमोशनल था भाई। लेकिन नायोमी के लिए ये एक ड्रीम कम ट्रू था, वो किसी भी ग्रैंड स्लैम सिंगल टाइटल जीतने वाली पहली जैपनीज प्लेयर बन गई थी। जापान में उनकी कामयाबी को बहुत सेलिब्रेट किया गया था और वो एक नेशनल इंस्पायरेशन बन गई। लेकिन इस हिस्टोरिक फाइनल का एक और इमोशनल पहलू भी था। मैच के बाद नायोमी ने सरीना विलियम्स के लिए बहुत रिस्पेक्ट भी शो की। उनकी पर्सनालिटी ने और ह्यूमिलिटी ने भी लोगों का दिल जीत लिया। अच्छा, ये मोमेंट ना हमें ये दिखाता है कि एक ट्रू चैंपियन सिर्फ जीतने से नहीं बनता, एक चैंपियन अपने एटीट्यूड और रिस्पेक्ट से भी पहचाना जाता है। फिर आया ईयर 2019। अच्छा, 2019 में नायोमी ओसाका ने ऑस्ट्रेलियन ओपन का टाइटल भी जीता। अच्छा, इस विक्ट्री के बाद वो ऑफिशियल रैंकिंग्स में दुनिया की नंबर वन फीमेल टेनिस प्लेयर बन गई। वो एशिया से आने वाली पहली प्लेयर थी जो WTA सिंगल्स रैंकिंग्स में नंबर वन पोजीशन पर पहुंची। जरा सोचिए, एक यंग एथलीट जो बचपन में टेनिस खेलना शुरू करती है, कुछ ही सालों में दुनिया की टॉप रैंक्ड प्लेयर बन जाती है। ओ भाई, ये अचीवमेंट सिर्फ टैलेंट से नहीं मिलती भाई, नहीं मैं तो नहीं मानती, इसके पीछे सालों की डेडिकेशन और सेक्रीफाइसेस होते हैं। नयोमी का प्लेइंग स्टाइल भी उनकी आइडेंटिटी का हिस्सा था। वो एग्रेसिव प्लेयर थी, उनके पावरफुल शॉट्स ओपोनेंट्स के लिए मुश्किल क्रिएट कर देते थे, लेकिन उनका मेंटल गेम भी उनकी सक्सेस का इम्पोर्टेंट हिस्सा था। टेनिस सिर्फ फिजिकल स्पोर्ट्स नहीं होता साथियों, ये एक मेंटल बैटल होती है। एक प्लेयर को हर पॉइंट के बाद अपने इमोशंस कंट्रोल करने होते हैं, एक गलती के बाद दोबारा फोकस हासिल करना होता है। नयोमी ने इस एस्पेक्ट में भी बहुत ग्रोथ दिखाई। लेकिन साथियों, नयोमी की स्टोरी सिर्फ टेनिस विक्ट्रीज की स्टोरी नहीं है, उन्होंने स्पोर्ट्स की दुनिया में एक और इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशन शुरू की, जो कि थी मेंटल हेल्थ के बारे में। 2021 में फ्रेंच ओपन के दौरान नयोमी ने मीडिया कमिटमेंट्स के हवाले से अपने कंसर्न्स शेयर किए और बताया कि प्रेस कॉन्फ्रेंसेस उनकी मेंटल वेलबींग पर असर डाल रही हैं। इसके बाद उनका डिसीजन दुनिया भर में डिस्कशन का टॉपिक बन गया। अच्छा, कुछ लोगों ने उनका सपोर्ट भी किया और कुछ लोगों ने अलग ओपिनियंस भी दिए। लेकिन एक बात जरूरी भाई, एथलीट्स की मेंटल हेल्थ पर दुनिया भर में सीरियस कन्वर्सेशंस शुरू हो गई। नयोमी ने ये मैसेज दिया कि एथलीट भी इंसान होते हैं, उन पर भी प्रेशर होता है, उनकी भी फीलिंग्स होती हैं, और अपनी मेंटल वेलबींग का ख्याल रखना भी उतना ही जरूरी होता है जितना फिजिकल ट्रेनिंग। ये उनकी लेगेसी का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा बन गया। साथियों, नयोमी ओसाका ने टेनिस कोर्ट पर ट्रॉफीज जीती हैं, लेकिन उन्होंने एक और चीज जीती, वो थी उनकी आवाज। वो यंग एथलीट्स के लिए इंस्पायरेशन बनी, जो सिर्फ परफॉर्मेंस नहीं बल्कि अपनी आइडेंटिटी के साथ भी दुनिया में अपनी जगह बनाना चाहती हैं। अच्छा, नयोमी की जर्नी हमें ये सिखाती है कि आपका बैकग्राउंड, आपकी पर्सनैलिटी या आपका सफर आपकी कामयाबी तक लिमिटेड नहीं होता। आप खामोश हो सकते हैं, इंट्रोवर्ट लोग होते हैं और फिर भी पावरफुल हो सकते हैं। आप डिफरेंट कल्चर्स का हिस्सा हो सकते हैं और फिर भी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी कैरी करते हैं। आप चैलेंजेस का सामना कर सकते हैं और फिर भी ये कर सकती है तो शायद मैं भी कर सकती हूँ। अच्छा, ये स्पोर्ट्स की पावर है। नयोमी ओसाका की इंटरनेशनल सक्सेस ने बहुत सी यंग एथलीट्स को इंस्पायर किया, खासतौर पर उन लोगों को जो मल्टीपल कल्चर्स और बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। उनकी आइडेंटिटी खुद एक मैसेज है। वो जापानीज भी हैं, हाइजीन हेरिटेज भी रखती हैं और अमेरिका में ग्रो अप भी हुई हैं। उनका सफर बताता है कि डिफरेंट कल्चर्स का कॉम्बिनेशन वीकनेस नहीं होता बल्कि खूबसूरत स्ट्रेंथ भी हो सकता है। तो भाई, आज कतर जैसे मल्टीकल्चरल सोसाइटी में ये मैसेज और भी मीनिंगफुल है। देखिए, कतर में दुनिया भर से लोग यहाँ आते हैं, रहते हैं। यहाँ मुख्तलिफ नेशनैलिटीज, कल्चर्स और बैकग्राउंड्स के लोग एक साथ काम करते हैं और रहते भी हैं। इस एनवायरमेंट में यंग एथलीट्स के लिए इंटरनेशनल रोल मॉडल बहुत इंपॉर्टेंट है। कतर ने भी पिछले कुछ सालों में विमेंस स्पोर्ट्स को प्रमोट करने के लिए बहुत काम किया है। स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज और स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशंस में गर्ल्स के लिए अपॉर्चुनिटीज बढ़ रही हैं। कतर में विमेन एथलीट्स फुटबॉल, बास्केटबॉल, स्विमिंग और दूसरे तीसरे स्पोर्ट्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं। अच्छा, जब यंग गर्ल्स नयोमी जैसी एथलीट को देखती हैं ना, तो उन्हें ये कॉन्फिडेंस मिलता है कि स्पोर्ट्स एक सीरियस करियर भी हो सकता है। स्पोर्ट्स सिर्फ एक हॉबी नहीं, उससे ज्यादा भी हो सकता है। स्पोर्ट्स लीडरशिप भी सिखाता है साथियों। लीडरशिप का मतलब सिर्फ टीम को कमांड करना नहीं होता, नो। लीडरशिप का मतलब होता है अपनी जिम्मेदारी को समझना और पोजीशन को पॉजिटिवली इस्तेमाल करना। देखिए, नयोमी ने अपनी पब्लिक प्लेटफॉर्म को इम्पोर्टेंट कन्वर्सेशंस के लिए यूज किया। उन्होंने ये हाईलाइट किया कि एथलीट्स की वेलबींग और मेंटल हेल्थ भी इम्पोर्टेंट है। ये एक नया पर्सपेक्टिव था। पहले अक्सर एथलीट्स ये सोचा करते थे कि भाई, उनसे एक्सपेक्ट किया जाता था कि वो हमेशा स्ट्रांग नजर आए, लेकिन मॉडर्न स्पोर्ट्स ने हमें ये सिखाया है कि स्ट्रेंथ का मतलब अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करना नहीं होता।

0: होती है और ये मैसेज यंग एथलीट्स के लिए बहुत जरूरी है क्योंकि स्पोर्ट्स में प्रेशर होता है कंपटीशन होता है एक्सपेक्टेशंस होती हैं अगर एथलीट अपने माइंड का ख्याल ना रखें मेंटल हेल्थ का ख्याल ना रखें तो वो ज्यादा बैलेंस्ड और सक्सेसफुल परफॉर्मेंस नहीं दे पाएंगे साथियों स्पोर्ट्स का एक और खूबसूरत लेसन होता है रिस्पेक्ट एक ग्रेट एथलीट सिर्फ इसलिए ग्रेट नहीं होता कि वो जीत जाता है ट्रॉफीज हाथ में उठा लेता है ग्रेट एथलीट वो होता है जो अपने ओपोनेंट्स अपने कोचेस और अपने फैंस को रिस्पेक्ट करता है नायोमी ने अपने करियर में कई ऐसे मोमेंट्स दिखाए जिन्हें आप कह सकते हैं कि भाई वो ह्यूमिलिटी और रिस्पेक्ट उनके अंदर नजर आती है वो हमें याद दिलाती हैं कि कंपटीशन और रिस्पेक्ट साथ साथ चल सकते हैं आप अपने ओपोनेंट्स को हरा कर भी फिर भी उनकी इज्जत कर सकते हैं और यही स्पोर्ट्समैनशिप होती है दोस्तों अगर हम नायोमी ओसाका की जर्नी से कुछ बातें सीखते हैं ना तो उनमें से एक ये है कि सक्सेस सिर्फ दूसरों को प्रूव करने के लिए नहीं होनी चाहिए सक्सेस अपने आप को डिस्कवर करने का सफर भी होता है स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स को कॉन्फिडेंस देते हैं डिसिप्लिन देता है हेल्थ अवेयरनेस देता है लीडरशिप स्किल्स देता है और सबसे बढ़कर ये सिखाता है कि अपने ड्रीम्स को आपको सीरियसली लेना चाहिए नायोमी ओसाका की कहानी हमें बताती है कि एथलीट की आवाज भी उसकी अचीवमेंट का हिस्सा होती है एक रैकेट हाथ में लेकर शुरू होने वाला सफर कभी कभी दुनिया भर के लोगों के लिए इंस्पायरेशन बन जाता है और शायद यही स्पोर्ट्स की सबसे बड़ी खूबसूरती है एक प्लेयर कोर्ट पर सिर्फ गेम नहीं खेल रही होती वो एक मैसेज दे रही होती है एक उम्मीद दे रही होती है और एक नई जनरेशन के लिए रास्ता बना रही होती है तो हमारे लिसनर्स आज का सवाल आपके लिए ये है कि आपके नजदीक स्पोर्ट्स यंग गर्ल्स की जिंदगी में सबसे बड़ी तब्दीली क्या ला सकता है कॉन्फिडेंस में डिसिप्लिन में लीडरशिप में या अपने ख्वाबों को फॉलो करने के हौसला देने में अपनी राय हमें जरूर भेजिएगा ऑन द नंबर 666-22-107 या चाहे तो आप हमें हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स पर भी मैसेज कर सकते हैं @FM107 कतर के जरिए तो साथियों आज का ये एपिसोड अपने खत्म को पहुंचता है जाने से पहले बस इतना याद रखिएगा कि हर कामयाब इंसान की कहानी के पीछे एक ऐसा वक्त जरूर होता है जब चीजें मुश्किल लगने लगती हैं जब रास्ता क्लियर नहीं होता लेकिन फिर भी वो इंसान एक कदम आगे बढ़ता रहता है नायोमी ओसाका की जर्नी हमें ये मैसेज देती है कि आपको परफेक्ट होने का इंतजार नहीं करना चाहिए आप जहाँ हैं जिस सिचुएशन में हैं वहीं से अपना सफर शुरू कीजिए क्योंकि हर बड़ी अचीवमेंट एक छोटी सी कोशिश से शुरू होती है जिंदगी में चैलेंजेस जरूर आएंगे साथियों कभी लोग आपको समझ नहीं पाएंगे कभी रिजल्ट्स आपकी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल भी नहीं होंगे लेकिन असली कामयाबी ये है कि आप अपने पैशन को जिंदा रखें और अपने आप पर यकीन ना खोएं हर यंग गर्ल जो किसी ड्रीम को फॉलो करना चाहती है उसके लिए एक मैसेज है मेरे पास आपकी आवाज इम्पोर्टेंट है आपके गोल्स इम्पोर्टेंट है आपकी मेहनत आपकी पहचान बन सकती है स्पोर्ट्स हमें सिखाता है कि जीत सिर्फ मेडल हासिल करना नहीं होती जीत ये होती है कि आप डर के बावजूद भी कोशिश करते रहें कभी कभी तो जीत ये भी होती है कि आप गिरने के बाद भी दोबारा खड़े हो जाएं और कभी जीत ये भी होती है कि आप अपने सफर पर फखर करना सीख लें हमारी तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया उन तमाम लिसनर्स को जिन्होंने आज का वुमेन इन स्पोर्ट्स ज्वाइन किया इस खास एपिसोड में हमारा साथ दिया आपके मैसेज और फीडबैक्स हमें मोटिवेट करते हैं साथियों हम आपके लिए दुनिया भर की इंस्पायरिंग एथलीट्स की कहानियां लेकर आते हैं अगले एपिसोड में हम लेकर आएंगे एक और ऐसी फीमेल एथलीट की कहानी जिन्होंने अपनी मेहनत हिम्मत और डिटर्मिनेशन से स्पोर्ट्स की दुनिया में अपना नाम बनाया तब तक के लिए याद रखिए ख्वाब देखना पहला कदम है लेकिन उन ख्वाबों के लिए लगातार मेहनत करना असल कामयाबी है मैं हूं सफा और आप सुन रहे थे विमेन इन स्पोर्ट्स ऑन FM 107 कतर अपना ख्याल रखिए पॉजिटिव रहिए और अपने गोल्स की तरफ बढ़ते रहिए और ये याद रखिए कि जो अपना ख्याल नहीं रखता वो दूसरों का ख्याल क्या ही रखेगा मेरी तरफ से साइनिंग आउट अल्लाह हाफिज
1: आपने सुना हमें ऑन एयर नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर दिल से देसी
2: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज

0: साउंड,
1: सन एंड साउंड,
0: संडे से थर्सडे सुबह 11 बजे से सिर्फ FM 107 पर, दिल से देसी,
1: दिल से देसी।
2: दोस्तों, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर आम हिफाजत के तरीकों की पाबंदी करना आपके शऊर का इजहार करती है और सिक्योरिटी में इजाफा करती है। कौमी हदूद और रेगुलेशन की पाबंदी करें और अदब का ख्याल रखें। पेडेस्ट्रियन रोड पर धीरे चलें और होशियारी से ड्राइव करें। बच्चों की हिफाजत के लिए उन्हें अपनी नजर में रखें। आसपास जो इमरजेंसी एग्जिट्स हैं उनसे फैमिलियर रहिए। दूसरे अशखास को धक्का देने या भीड़ भाड़ करने से बचिए। ये इकदामात आपको और दूसरों को खुद को सेफ रखने में मदद देते हैं और किसी भी अनहोनी से बचने के लिए आपको तैयार रखते हैं। अगर हर शख्स इन रूल्स पर अमल करे तो हम सब मिलकर अपनी और दूसरों की हिफाजत कर सकते हैं। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
3: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: FM 107 पर अपना बिजनेस एडवर्टाइज करने के लिए आज ही राबता करें, आज ही राबता करें हमारी कतर मीडिया कॉरपोरेशन की मार्केटिंग टीम से। कॉल करें 4488806 पर या ईमेल करें marketing@qmc.qa।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
2: अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हलके में एक मरतबा फिर आप सबको खुश आमदीद। पिछले हलके की गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, जबकि गुफ्तगू का मौजू ये था कि ज़मीन से हम आसमान की तरफ अपनी जो है ना रूहानियत या ज़हनियत को कैसे मुंतकिल करें, और ये भी बता रहे थे कि असल ताकत अल्लाह से ताल्लुक़ में है। वैसे आज की जो मादी ज़हनियत है ये इंसान को ये बावर कराना चाहती है कि ज़िंदगी बस इसी ज़मीन का नाम है, यहीं जीना है, यहीं के लिए दौड़ना है, यहीं कामयाब होना है, फिर यहीं दफन हो जाना है और बस किस्सा ख़त्म। गोया इंसान का पूरा वजूद ज़मीन से शुरू हो और ज़मीन ही पर ख़त्म हो। लेकिन ईमान हमें एक बिल्कुल मुख्तलिफ जाविया देता है। मोमिन की असल ताकत ज़मीन में नहीं आसमान से उसके ताल्लुक में होती है। जो इंसान मुश्किल हालात में साबित कदम रहता है, जो दवाओं में भी अपने उसूल नहीं छोड़ता, जो तन्हाई में भी नहीं टूटता, उसकी एक वजह यह कि उसके दिल की रस्सी ऊपर बंधी हुई है, उसका कल्ब अल्लाह से जुड़ा हुआ है। वो कुरान के वादों, उसकी नसीहतों और अल्लाह ताला के करहाम के साथ जिंदा ताल्लुक रखता है। अब जिस इंसान का ये ताल्लुक कमज़ोर हो जाए, सिर्फ दुनिया, लोगों और ज़ाहरी वसाइल पर उसका सहारा रह जाए, तो किसी बड़े झटके के वक्त वो अंदर से बिखर सकता है, क्योंकि ज़मीन के सहारे महदूद हैं मगर आसमान का सहारा लामहदूद है। हम अक्सर खूबसूरत तस्वीर देखते हैं, अंधेरी रात, एक जलती हुई शमा, कोई शख्स खामोशी बैठा दुआ कर रहा है और साथ कोई दिल को छू लेने वाला जुमला। मंजर यकीनन खूबसूरत होता है, मगर असल सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ एक ब्यूटीफुल इमेज बनकर रह गया है, या हमारी अपनी ज़िंदगी में भी कभी ऐसी रात आती है। हमने कितनी रातें मोबाइल के साथ गुजार दी, कितनी रातें बाज़ारों में, दोस्तों के साथ, तफरीह में, स्क्रीन पर मुसलसल स्क्रॉल करते हुए। कभी एक रात अल्लाह के साथ भी गुजार कर देखिए। रात 10 बजे फ़ोन बंद कर दीजिए, दुनिया का शोर थोड़ा सा खामोश कीजिए और अपने लिए आसमान का दरवाज़ा खोलिए। कुछ देर कुरान, कुछ रकात नमाज, कुछ इस्तग़फ़ार और फिर अल्लाह से हम कलाम। यही वो कैफियत है जिसे यूं कहा जा सकता है, अपने दिल को ज़मीन की कशिश से निकाल कर आसमान से जोड़ देना। सामिन किराम, अफसोस के साथ ये बात कहनी पड़ती है सामिन किराम कि हमारी हालत ये हो गई है कि हम तन्हाई से घबराते हैं। 2 मिनट अकेले बैठें तो फौरन फ़ोन निकाल लेते हैं, किसी को कॉल करते हैं, कोई वीडियो खोलते हैं, कुछ ना कुछ नॉइस चाहिए, क्योंकि अपने साथ बैठने की आदत ख़त्म हो गई है। हालांकि कभी अपने दिल की आवाज़ भी सुननी चाहिए। वो शायद कह रहा हो मैं थका हुआ हूँ, मैं अंदर से परेशान हूँ, मुझे सुकून चाहिए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मगर हम उसे सुनते ही नहीं। रूह घटन महसूस करती है क्योंकि ज़मीन की कशिश बहुत ज़्यादा हो गई है और आसमान की रोशनी उस तक नहीं पहुँच पा रही। जिक्र कम हो गया, मुनाजात कम हो गई, अल्लाह के सामने दिल खोलना कम हो गया है। फिर हम पूछने लगते हैं कि दिल में बेचैनी क्यों है, नींद क्यों नहीं आती, हर वक्त घबराहट क्यों है। सामिन किराम, इबादत किसी ज़हनी या तिब्बी बीमारी के पेशा वराना इलाज का मुतबादल नहीं, लेकिन रूहानी ज़िंदगी के अतबार से अल्लाह से ताल्लुक मोमिन के दिल के लिए एक बहुत बड़ा सहारा है। कभी सहर के वक्त अल्लाह के सामने बैठ कर देखिए, जब पूरी दुनिया खामोश हो और आप अपने रब से गुफ्तगू कर रहे हों, उसी कैफियत का अपना एक सुकून है। एक शख्स अपना वाकया बयान करते हुए कहता है कि उसे एक मामले में शदीद परेशानी थी, एक शख्स से तनाज़ु था, समझ नहीं आ रही थी कि क्या करे। وہ ایک صاحب کے پاس مشورہ لینے گئے اور پوری بات بیان کی. انہوں نے بہت مختصر مگر

0: मैं उसका ट्रस्टी हूँ और एक दिन मुझे पूछा जाएगा कि यह अमानत कहाँ से ली, कैसे इस्तेमाल की और किस हाल में वापस छोड़ कर आया। जब ये तसव्वुर दिल में बैठ जाए तो रिज़्क का खौफ भी कम होता है, माल का गुरूर भी टूटता है और खर्च करना भी आसान हो जाता है, क्योंकि फिर इंसान ये तो जान लेता है कि भाई मालिक वो है, मैं सिर्फ अमीन हूँ, राज़िक वो है, मैं सिर्फ सबब इख्तियार करने वाला हूँ और आखिरकार वापसी भी उसी के पास है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इसी के साथ बढ़ते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, मुलाकात होती है ब्रेक के उस पार, जुड़े रहिए हमारे साथ।
1: कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है, अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ, प्रोग्राम तहफीमुल कुरान।
0: वेलकम सामीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद प्रोग्राम तहफीमुल कुरान के आज के इस हफ्ते में। सामीन किराम, हमारी एक बड़ी गलती ये है कि हम आरजी चीज़ों को दायमी समझ बैठते हैं, माल हो, मकान हो, जायदाद हो या मनसब, हम उनके साथ ऐसे वाबस्ता हो जाते हैं जैसे ये कभी हमसे जुदा नहीं होंगे। ज़रा दुनिया के सबसे बड़े मनसब को ले लीजिए, किसी मुल्क के सब बज़ाहिर इक्तदार की आखिरी बुलंदी है ना, लेकिन वहाँ पहुँचने के बाद भी सिर्फ दो ही इम्कानात हैं, या एक दिन मनसब आपको छोड़ देगा या आप दुनिया छोड़कर मनसब से जुदा हो जाएंगे, तीसरा कोई रास्ता नहीं। हमने अपनी ही ज़िंदगी में कितने हुक्मरानों को आते और जाते देखा, इक्तदार रह गया, साहिब इक्तदार चला गया। इसी हकीकत को समझ लेने के बाद आइए अल्लाह ताला के एक और प्यारे नाम की तरफ, अल करीम। आखिर अल्लाह से बढ़कर करीम कौन हो सकता है? ज़रा अपनी ज़िंदगी पर नज़र डालिए, क्या हमने ये तय किया था कि किस घर में पैदा होंगे? क्या हमने पैदा इससे पहले इंतखाब किया था कि हमें इस्लाम की नेमत नसीब हो? नहीं, ये अल्लाह का करम है कि उसने हमें ईमान और इस्लाम की नेमत अता की, अपने अजीम खातमुन्नबीयीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में रखा और कुरान जैसी अजीम किताब अता फरमाई। ये सब उसके करम है और अल्लाह की करम नवाजी सिर्फ नेमत देने में नहीं, हमारे ख़ताओं के बावजूद हमें मोहलत देने में भी है। इंसान गुनाह करता है, नाफरमानी करता है, फिर कभी भटका हुआ वापस अपने रब के दरवाजे पर भी आ जाता है, सर झुकाता है और कहता है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। अब रब करीम तौबा कबूल फरमा, चूँकि वो बंदे की लग्जिश पर उसको अपने दर से धतकार नहीं देता, फिर बंदे को भी अपने रब की उस सिफत के असरात में ज़िंदगी में पैदा करने चाहिए, लोगों के साथ कुशादा दिल हो, मामलात में शरीफ हो, खरीद व फरोख्त में अच्छा रवैया अख्तियार करे, माफ़ करना सीखे और दरगुजर से काम ले। कुरान का कितना खूबसूरत सवाल है, وليعفوا وليصفحوا الا تحبون ان يغفر الله لكم, माफ कर दो, दरगुजर करो, وليعفوا وليصفحوا الا تحبون, क्या तुम ये पसंद नहीं करते, ان يغفر الله لكم, कि अल्लाह तुम्हें माफ कर दे, वो या तुम अल्लाह से मगफरत चाहते हो तो खुद भी माफी बांटना सीखो, तुम चाहते हो कि अल्लाह तुम्हारे लिए आसानी फरमाए तो तुम भी दूसरों के लिए आसानी पैदा करो। अब ये बात तो वाज़ह है कि अल्लाह सिर्फ करीम नहीं, वो हकीम और अलीम भी है। एक इंसान सखी हो सकता है लेकिन हिकमत से खाली, वो औलाद को इतना माल दे कि उसी माल से औलाद बिगड़ जाए, नीयत सखावत की थी, नतीजा नुकसान निकला, लेकिन अल्लाह ताला की अता ऐसी नहीं, वो करीम भी है, हकीम भी और अलीम भी, इसलिए वो जानता है कि किस बंदे को कितना देना है और कौन सी चीज़ किस वक्त उसके हक में बेहतर है। यहाँ हमारे रिज़्क़ के बारे में बड़ी गलत फहमी दूर होती है। बाज लोग पूरी ज़िंदगी ये समझते रहते हैं कि मुझे लाजमन अमीर होना है, मैंने मेहनत की, कारोबार किया, कोशिश की, फिर भी बहुत ज़्यादा मालदार क्यों नहीं हुआ। सुनिए कि हम ज़रूरी नहीं कि हर इंसान के लिए दौलत ही सबसे बड़ी अता हो, मुमकिन है अल्लाह ने आपके लिए माल के ख़जाने ना खोले हों मगर इल्म के ख़जाने खोल दिए हों, मुमकिन है मारिफत दी हो, लोगों के दिलों में कबूलियत दी हो, इज़्ज़त दी हो, सेहत दी हो, सुकून दिया हो या किसी दूसरी नेमत का दरवाज़ा खोल दिया हो। हर ख़जाना सोने और चांदी का नहीं होता है ना, अगर अल्लाह ने माल अता किया है तो माल के साथ ये शऊर भी होना चाहिए कि रज़ाक कौन है। एक निहायत सादा मिसाल

समझिए कि डाकिया आपके दरवाजे पर आए और 2 लाख की कीमती घड़ी पहुंचा दे। आप असल शुक्रिया किसका अदा करेंगे, डाकिये का या उस शख्स का जिसने घड़ी भेजी, या किसी ने आपको 10 लाख का चेक दिया, आप बैंक गए और कैशियर ने रकम आपके हवाले कर दी। क्या आप कैशियर से कहेंगे आपने मुझ पर बड़ा एहसान किया, आपने मुझे 10 लाख दे दी? वो कहेगा भाई मैंने अपनी जेब से कुछ नहीं दिया, शुक्रिया उसका अदा करो जिसने तुम्हें चेक दिया है। वलिल्लाहिल मसलुल आला। दुनिया में बहुत से लोग हमारे रिज़्क़ का ज़ाहिरी ज़रिया बनते हैं, मगर हकीकी अता करने वाला कौन है? हकीकी अता करने वाला अल्लाह है, हकीकी राज़िक अल्लाह है, हकीकी आसानी पैदा करने वाला है अल्लाह। और इसीलिए नेमत मिले तो सिर्फ वसीले पर निगाह न रुक जाए, निगाह वसीले से ऊपर उठ कर मुसब्बिबुल अस्बाब तक पहुँचे। अल्लाह ने दिया है तो उसका शुक्र अदा करें, हाथ उसी के सामने उठाइए, सजदे को तवील कीजिए और दिल से कहिए या अल्लाह ये तेरा करम है। और करीम रब से मांगते हुए छोटा क्यों मांगे, अरे उसके ख़जाने तो ख़त्म होने वाले नहीं। इंसानियत रोज़ाना कितना पानी पीती है, कितना रिज़्क़ खाती है, कितनी हवा में सांस लेती है, कितने फल अनाज गोश्त और दूसरी नेमतें इस्तेमाल करती हैं। सदियों से ये सिलसिला चल रहा है मगर रब के ख़जाने में कोई कमी नहीं। इसलिए अल्लाह फरमाता है लेकिन शक्र तुम लजीदन्नकुम, अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और ज़्यादा दूंगा। शुक्र कीजिए ताकि नेमत बढ़े, फिर बढ़ी हुई नेमत पर दोबारा शुक्र कीजिए। सिर्फ माल नहीं, अल्लाह से ईमान की फरावानी मांगिए, बदन की आफियत मांगिए, रिज़्क़ की कुशादगी मांगिए, इल्म और खैर मांगिए। एक और बुनियादी बात है सामिन कराम कि अल्लाह ने इंसान के अंदर एक फितरत रखी है और उसी अल्लाह ने वही नाजिल फरमाई है। इसीलिए सही फितरत और सही वही एक दूसरे के दुश्मन नहीं, दोनों एक ही खालिक की तरफ से हैं। दुनिया और आखिरत की हकीकी सआदत को अगर एक मुख्तसर लफ्ज़ में समेटना हो तो वो है वही। अपनी खुशी ऐसी जगह मत तलाश कीजिए जहाँ अल्लाह की हिदायत से रिश्ता ही टूट जाए, क्योंकि दिल बनाने वाले ने ही बताया है कि दिल को सुकून कहाँ मिलेगा। और अगर ज़िंदगी में परेशानियाँ हैं, जहन मुंतशिर हैं, मामलात उलझे हुए हैं, दिल पर बोझ है, तो वही हमें इस्तग़फ़ार की तरफ ले जाती है। जब ज़िंदगी से कुरान का रिश्ता कमज़ोर हो जाए, नमाज मामूल न रहे, हलाल व हराम की पहचान धुंधला जाए और दिल आखिरत की फ़िक्र से खाली हो जाए तो इंसान का ईमानी एहसास आहिस्ता आहिस्ता मरने लगता है। अब ईमानी हिस्स की मौत क्या है? ये वो कैफियत है जिसमें इंसान मामूलात तो अंजाम देता है मगर मकसद भूल जाता है। सुबह काम पर गया, शाम वापस आया, खाना खाया, कुछ देर फिल्म भी देख लिया, फिर सो गया और उसने इसी को मुकम्मल ज़िंदगी समझ लिया है। न नमाज की फ़िक्र, न वालिदैन के हुकूक़, न सिला रहमी, न बच्चों की अखलाकी तरबियत, तो ये महज मसरूफ़ ज़िंदगी नहीं बल्कि रूह के आहिस्ता आहिस्ता बेहिस हो जाने की अलामत है। समय करम एक मुसलमान की ज़िंदगी तो हकीकत में नमाज के अवकात, हलाल व हराम, ख़ानदान के हुकूक़ और आखिरत की जवाबदेही से मुनज़्ज़म होनी चाहिए, लेकिन जब दिन का नक्शा इबादत के बजाय सिर्फ मुलाजमत, खाने, तफरी और नींद के गिर्द घूमने लगे तो दिल की सिमत बदल जाती है। फिर नमाज वक्त के मुताबिक ज़िंदगी को मुनज़्ज़म नहीं करती बल्कि ज़िंदगी की मसरूफियात के दरमियान अगर फुर्सत मिले तो नमाज अदा होती है। यही ईमानी हिस के मान पड़ने की एक बड़ी निशानी है। एक और बड़ा सबब माशरती और ज़ाती मसाइल की कसरत है। बहुत से नौजवान रोज़गार के बहरान में हैं, कुछ शादी के खराजात से आजिज़ हैं, कुछ कर्ज और माली दबाव में मुबतला हैं, कुछ तालीम, मुलाजमत या रिहाइश की परेशानी में हैं। जब इंसान की पूरी तवानाई अपनी बका के मसले में सर्फ हो जाए तो वो कहता है कि मुझे अपने मसाइल से फुर्सत नहीं, मैं दूसरों की फ़िक्र कैसे करूँ? तो ये दरअसल इंसानी कमज़ोरी अगरचे काबिल फ़हम है, लेकिन अगर यही कैफियत मुस्तकिल मिजाज बन जाए तो इंसान अपनी ज़ात के गिर्द ऐसा हिसार खड़ा कर लेता है कि दुनिया का कोई दुख उस तक नहीं पहुंचता। वो अपने गम में इस कदर महसूर हो जाता है कि फ़लस्तीन कहें, जुल्म कहें, माशरती फसाद और उम्मत के इज्तमाई ज़ख्म कहें, उसके लिए महज ख़बरें रह जाते हैं। और इस तरह ज़ाती मसाइल इज्तमाई लातअल्लुक़ी पैदा करते हैं। सामने कराम हमें सुनने वाले जितने लिसनर्स हैं, मेरा मानना यह है कि हमारा ताल्लुक मुतवस्सत तबका से है। और आपको बता दूं कि ये जो मुतवस्सत तबका है ये काफ़ी अहम किरदार अदा करता है मुआशरे में।
یہ وہ طبقہ ہوتا ہے جو نہ اس قدر مالدار ہوتا ہے کہ آرام و آسائش میں ہر درد بھول جائے اور نہ اس قدر محتاج کہ روزی کی تلاش اسے ہر دوسری ذمہ داری سے بے نیاز کر دے۔ یہ طبقہ ہی عموماً تعلیم، سماجی شعور، اخلاقی احتجاج اور اصلاحی حرکت میں کردار ادا کرتا ہے، لیکن جب یہ طبقہ کمزور ہو جائے تو معاشرہ دو انتہاؤں میں تقسیم ہونے لگتا ہے۔ ایک طرف ایسا مال جو انسان کو سرکش، غافل اور بے فکر بنا دے، دوسری طرف ایسی غربت جو انسان کو اپنی بنیادی ضرورتوں ہی میں الجھا کر باقی دنیا سے بے خبر کر دے۔ ویسے دولت بذات خود تو برائی نہیں، لیکن جب مال انسان کو اپنے رب، اپنے معاشرے اور دوسروں کے حقوق سے غافل کر دے تو وہ آزمائش بن جاتا ہے۔ اس کا سارا ذہن یہی سوچتا ہے کہ آج بچوں کو کیا کھلایا جائے۔ سامعین کرام، استغفار کو صرف گنتی کا کھیل نہ بنائیں۔ بعض اذکار کے لیے شریعت نے مخصوص تعداد تو بتائی ہے، وہاں تعداد اپنی جگہ اہم ہے، لیکن یہاں مقصود یہ ہے کہ استغفار کو زندگی کی مسلسل کیفیت بنا دیا جائے۔ چلتے ہوئے، آتے ہوئے، تنہائی میں دل پر بوجھ ہو، ہر وقت استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ کثرت استغفار اور ذکر انسان کے باطن پر جمی ہوئی گرد کو ہٹا دیتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ٹوٹنے لگتے ہیں اور انسان کی اصل فطرت کا آئینہ پھر سے چمکنے لگتا ہے۔ یوں آج کے استغفار کل کے لیے ایک خوبصورت ماضی بن جاتا ہے، اور اسی مقام پر یونس علیہ السلام کا واقعہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ وہ تاریکیوں میں تھے، مچھلی کے پیٹ کی تاریکی، سمندر کی تاریکی، رات کی تاریکی، سمندر کی گہرائیوں کی تاریکی۔ انسانی اعتبار سے سوچئے، اگر دنیا کی تمام طاقتیں، تمام جہاز آب دوزیں اور وسائل جمع ہو جائے اور کہا جائے کہ سمندر کی نامعلوم گہرائی میں ایک انسان مچھلی کے پیٹ میں ہے، اسے تلاش کر کے نکالو، ظاہری اسباب کے اعتبار سے تقریباً ناممکن منظر محسوس ہوگا۔ لیکن جب زمین کے تمام دروازے بند ہو جائے، آسمان کا دروازہ بند نہیں ہوتا۔ یونس علیہ السلام نے انہی تاریکیوں میں اپنے رب کو پکارا، ارشاد خداوندی ہے،

0: स्टैंडर्ड्स पर पूरी उतरती हों। लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल आइटम्स इस्तेमाल करना ना सिर्फ आपके माल का नुकसान कर सकता है बल्कि जान को भी खतरे में डाल सकता है। वायर्स का सही तरीके से इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस भी बहुत जरूरी है। ये बात भी याद रखें कि ओवरलोडेड सॉकेट्स या एक्सटेंशन कॉर्ड्स का इस्तेमाल ना करें और इलेक्ट्रिकल वायरिंग को मॉइस्चर और हीट से बचाएं। अगर कभी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कोई मसला आए जैसे कि स्पार्क, झटका या यूजुअल स्मेल, तो फॉरेन क्वालिफाइड इलेक्ट्रीशियन से चेक करवाएं। आपके घर और ऑफिसेज की हिफाजत आपके हाथों में है, इसलिए कभी भी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी को नजरअंदाज ना करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का कहना है कि आपकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है और आप एहतियाती तदाबीर को पहली तरजीह दें। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।
1: हर आदत बदलती है एक अच्छी नीयत से, और हर अच्छी नीयत की बुनियाद है एक खूबसूरत हदीत। सुनिए हदीत टू हैबिट RJ महविश के साथ हर थर्सडे सुबह 10 से 10:30 बजे ओनली ऑन FM 107। एक ऐसा प्रोग्राम जहां हदीत सिर्फ सुनी नहीं जाएगी बल्कि जिंदगी में अपनाई भी जाएगी। स्ट्रेस हो, बिजी रूटीन हो, फैमिली प्रेशर या डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस, हर हफ्ते एक नई हदीत, एक नई आदत और एक बेहतर जिंदगी की तरफ एक कदम। हदीत टू हैबिट, हदीत टू हैबिट, दिल से सुनिए, जिंदगी में अपनाइए।
2: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.

0: Maximum music, maximum fun.
1: On FM 107, Dilsi Desi.

पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी।

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कतरी स्पोर्ट्स लेजेंड्स के इस प्रोग्राम में आप सभी का इस्तकबाल है। मैं हूं आपका मेजबान मोहम्मद अमीन। दोस्तों आज हम बात करेंगे कतर के नुमाया स्क्वाश प्लेयर्स में से एक अब्दुल्ला अल मुतावा के बारे में। दोस्तों अब्दुल्ला अल मुतावा जो है टॉप प्लेयर्स में, कतर में टॉप प्लेयर्स में शुमार होते हैं और मुल्क की नेशनल स्क्वाश टीम की अहम शख्सियत रहे हैं। उन्होंने कम उम्र से ही स्क्वाश खेलना शुरू किया और अपनी मेहनत और लगन की बदौलत कतर की जानिब कई मकामी और बैन अवकामी टूर्नामेंट्स में हिस्सा लिया। उनका मकसद हमेशा कतर का परचम बुलंद करना और स्क्वाश कोर्ट में मुल्क की पहचान मजबूत बनाना रहा है। अब्दुल्ला मुतावा ने GCC चैंपियनशिप्स, अरब चैंपियनशिप्स और एशियन स्क्वाश टूर्नामेंट्स में कतर की नुमाइंदगी की है। उन्होंने मुख्तलिफ मुकाबलों में बेहतरीन परफॉर्मेंस देकर टीम की तजुर्बा हासिल किया।

0: दूसरे खिलाड़ियों से अलग पहचान देती हैं। दोस्तों कतर में स्क्वाश के फरोग के लिए अब्दुल्लाह अल-मुतावा का किरदार भी काबिल-ए-तारीफ। वो नौजवान खिलाड़ियों के लिए एक मिसाल हैं और उन्हें मेहनत, डिसिप्लिन और मुसलसल ट्रेनिंग की अहमियत से आगाह करते रहे हैं। उनका यकीन है कि अगर खिलाड़ी पूरी लगन से मेहनत करे तो बैन अल-अक़वामी सतह पर कामयाबी हासिल की जा सकती है। आज अब्दुल्लाह अल-मुतावा कतर के उन एथलीट्स में शुमार होते हैं जो स्क्वाश को मुल्क में मजीद मकबूल बनाने के लिए अपना हिस्सा डाल रहे हैं। उनका सफ़र नए खिलाड़ियों के लिए हौसला अफजाई है और उम्मीद की जाती है कि वो मुस्तकबिल में भी कतर के लिए मजीद कामयाबियाँ हासिल करेंगे। उम्मीद है आपको आज का ये एपिसोड पसंद आया होगा। अगली बार एक और कतरी स्टार और लेजेंड के साथ हम हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी मोहम्मद अमीन और साउंड डिजाइनर शकीब अहमद को दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।
1: कतर का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107, दिल से देसी।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa और download the app QMC now.
2: गर्मी का सीजन और स्पोर्ट्स का एक्शन,
1: लाइव अपडेट्स, बिग मैचेस और नॉनस्टॉप एक्साइटमेंट.
2: गेम ऑन,
1: वॉल्यूम अप.
2: एवरी संडे और ट्यूसडे दोपहर 1 बजे से
1: विद अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट मोहम्मद अमीन.
2: सुनिए समर.

Sports only on FM 107 Dil Se Desi. दोस्तों, गाड़ी चलाते वक्त तेज रफ्तार से परहेज करना सिर्फ एक एहतियात नहीं बल्कि एक जिम्मेदार ड्राइवर की पहचान भी है। जब आप अपनी गाड़ी को हद से ज्यादा तेज चलाते हैं तो आप ना सिर्फ अपनी जिंदगी खतरे में डालते हैं बल्कि रास्ते पर चलने वाले दूसरे लोगों की जान को भी खतरा लाहक होता है। सड़क पर हमेशा मोहतात और एहतियात के साथ गाड़ी चलाएं ताकि हर किसी की हिफाजत हो सके। एक्सेसिव स्पीड में ब्रेक लगाना मुश्किल हो जाता है जिसकी वजह से एक्सीडेंट्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए अपनी गाड़ी की स्पीड हमेशा स्पीड लिमिट के अंदर रखें, ट्रैफिक साइंस और सिग्नल का एहतराम करें और सड़क की हालत को मद्देनजर रखते हुए सेफ ड्राइविंग प्रैक्टिसेस इख्तियार करें। याद रखें, आपकी छोटी सी एहतियात से ना सिर्फ आपकी जिंदगी महफूज होती है बल्कि आप अपने फैमिली और मुआशरे की भी हिफाजत करते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि सड़क पर एहतियात और सब्र से चलिए, अपनी और दूसरों की हिफाजत को पहली तरजीह दीजिए। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की ख्वाहिश करता है।

0: 107 पर हर गाना हिट,
1: हर गाना हिट,
0: हर दूसरा गाना सुपर हिट।
2: आप सुन रहे हैं हेल्थ चेक।
3: अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। लिसनर्स, आज हम जानेंगे कि हम अपनी समात को लंबे अरसे तक कैसे महफूज रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा शोर वाली जगहों पर एयर प्लग या कानों के हिफाजती आलात जो हैं वो इस्तेमाल कीजिए। अगर आप किसी फैक्ट्री में, तामीराती मुकाम या किसी ऐसी जगह पर काम करते हैं जहाँ मुसलसल शोर हो, तो हिफाजती हदायात पर ज़रूर अमल कीजिए। बच्चों को भी ज़्यादा ऊंची आवाज़ में मोबाइल, टैबलेट्स या वीडियो गेम्स इस्तेमाल ना करने दें। कान साफ करने के लिए रुई की जो एक पतली सी तीली होती है या कोई नुकीली चीज़ कान के अंदर ना डालिए, क्योंकि इससे कान को नुकसान पहुंच सकता है। अगर कान में दर्द हो, रतूबत हो या अचानक कम सुनाई देना शुरू हो जाए या चक्कर आना शुरू हो जाए, तो खुद से कोई भी इलाज करने की बजाय आप डॉक्टर से रुजू कीजिए। डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर और स्मोकिंग भी वक्त के साथ साथ समात को मुतासिर कर सकते हैं, इसलिए मुतवाजन ग़िज़ा, बाकायदा वर्जिश, मुनासिब नींद और जो सिगरेट से परहेज़ है, ना सिर्फ दिल बल्कि कानों की सेहत के लिए भी फ़ायदेमंद है। बुज़ुर्ग अफराद और शोर वाले माहौल में काम करने वाले अफराद को वक्तन फवक्तन अपनी समात का टेस्ट ज़रूर करवाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले की तशखीस जल्द हो सके। याद रखिए, समात एक कीमती नेमत है। सिर्फ चंद आसान एहतियाती तदाबीर अख्तियार करके हम अपनी और अपने बच्चों की समात को कई सालों तक महफूज रख सकते हैं। तो अपनी आवाज़ की सतह कम रखिए, शोर से बचिए और अगर समात में कोई तब्दीली महसूस हो तो फौरन डॉक्टर से रुजू कीजिए। अल्लाह ताला हमें सेहतमंद समात और तंदुरुस्त जिंदगी अता फरमाए।
4: आप सुन रहे हैं FM 107
1: FM 107
0: दिल से देसी।

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. Dil se Desi.
1: अस्सलाम वालेकुम साथियों, मैं हूं सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107। साथियों, पानी हमारी जिंदगी की सबसे बेसिक जरूरत है, ये हम सबको पता है। खास तौर पर गर्मियों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है तो हम सबको ज्यादा पानी पीने की जरूरत महसूस होती है। ऑफिस हो, स्कूल हो, जिम हो, ट्रैवल हो, भाई कहीं पर भी हो, पानी की बॉटल हमारे साथ होनी चाहिए क्योंकि गर्मियां हैं। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि पानी पीने की हमारी आदत का एनवायरनमेंट पर भी असर होता है? जी हाँ, होता है। एक बार इस्तेमाल होने वाली वो जो प्लास्टिक की बॉटल होती है ना, जो आप दुकान से खरीद लेते हैं, उसकी अन्य

0: बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना. देखिए सबसे पहला और मेरे ख्याल से मैं कहती हूँ कि सबसे कॉमन प्रॉब्लम मैंने पता है क्या देखा है, ये जो सिंगल यूज प्लास्टिक बॉटल्स होती है ना भाई, ये बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है. हम अक्सर एक बॉटल खरीदते हैं, पानी पीते हैं और फिर क्या करते हैं, वो बॉटल कहाँ गई, ये गई डस्टबिन के अंदर. अच्छा इसके अलावा पानी को बेवजह वेस्ट करना, जरूरत से ज्यादा बॉटल्ड ड्रिंक्स खरीदना, रियूजेबल ऑप्शंस को इग्नोर कर देना, ये सब छोटी छोटी सी आदतें हैं, लेकिन जब बहुत से लोग रोजाना ऐसी हरकतें करेंगे ना तो इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा हो जाता है भाई. देखिए पानी बहुत कीमती रिसोर्स है, इसलिए हमें सिर्फ पानी पीना नहीं है बल्कि उसकी कदर भी करनी चाहिए. हर घूंट के साथ एक कदर होती है भाई, हर घूंट की. तो भाई इको सच सॉल्यूशन हमारे पास सस्टेनेबल हाइड्रेशन के लिए कुछ सिंपल स्टेप्स हैं, अगर उन्हें फॉलो करेंगे तो हम सभी एनवायरनमेंट को बचाने में मदद करेंगे. पहली चीज ये कि रीयूजेबल बॉटल अपनाएं. सबसे आसान इको स्विच ये है कि अपनी रीयूजेबल बॉटल साथ रखें. स्टेनलेस स्टील हो गया या ड्यूरेबल बॉटल्स को आप बार बार यूज कर सकते हैं और प्लास्टिक वेस्ट इससे बहुत कम हो सकता है. दूसरी चीज ये कि बॉटल रिफिल करने की आदत अपनाएं. जहां पानी रिफिल की फैसिलिटी अवेलेबल हो वहां नई बॉटल खरीदने के बजाय अपनी बॉटल को दोबारा रिफिल करें. ये सिंपल सी हैबिट होती है और अगर आप इसे रोजाना के तौर पर या हर टाइम रिफिल के तौर पर आप ये चीज अपनाएंगे तो इससे प्लास्टिक वेस्ट बहुत कम हो जाता है. तीसरी चीज है पानी वेस्ट ना करें. देखिए सिर्फ पीने के लिए नहीं बल्कि घर के तमाम कामों में पानी की कदर करना सीखें. अपने ग्लास में उतना ही पानी डालें जितने की जरूरत हो. बचा हुआ पानी आप प्लांट्स को दे सकते हैं या किसी और दूसरी तीसरी चीज में उसको स्टोर करके रखें और बाद में इस्तेमाल किया जा सकता है उसे. ऐसा नहीं है कि बचा हुआ पानी आप सिंक में फेंक दें. साथियों चौथी चीज ये कि घर में पानी की बॉटल रेडी रखें. अगर घर से निकलते वक्त बॉटल साथ हो तो बाहर से प्लास्टिक बॉटल लेने की जरूरत ही नहीं पड़ती. ये आदत ट्रैवलिंग और डेली रूटीन के लिए भी, दोनों के लिए बहुत अच्छी है. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों को पानी की कदर करना सिखाएं. बचपन से ही अगर बच्चों को पानी बचाने की या रीयूजेबल बॉटल्स यूज करने की आदत होगी ना तो ये उनकी जिंदगी भर की हैबिट्स को अच्छा बना सकती है. अच्छा अगर इसकी रियल लाइफ एग्जांपल ली जाए तो आजकल बहुत से लोग अपनी डेली लाइफ रूटीन में सस्टेनेबल हाइड्रेशन अडॉप्ट कर रहे हैं. ऑफिस एम्प्लॉयज अपनी डेस्क पर रीयूजेबल बॉटल्स रखते हैं, स्टूडेंट्स स्कूल में अपनी वाटर बॉटल्स लेकर जाते हैं, फैमिलीज घर में रीयूजेबल बॉटल्स का सिस्टम बनाती हैं ताकि हर बार डिस्पोजेबल बॉटल्स खरीदने की जरूरत ना पड़े. जरा सोचिए अगर एक इंसान सिर्फ एक बॉटल पानी रोजाना कम यूज करे तो साल भर में कितना फर्क पड़ेगा भाई, लाखों करोड़ों. तो भाई छोटी सी आदत लेकिन एनवायरमेंट के लिए बहुत बड़ा फर्क होता है. तो साथियों आज का इको स्विच चैलेंज हमारा ये है कि अगले 7 दिन के लिए कोशिश करें कि बाहर जाते वक्त मेहरबानी करके अपनी रीयूजेबल वाटर बॉटल अपने साथ ही ना, और हमें ये जरूर बताएं कि आपकी फेवरेट वाटर बॉटल कौन सी है, स्टील बॉटल, ग्लास बॉटल या कोई कलरफुल रीयूजेबल बॉटल. मुझे तो वो स्टील वाला फ्लास्क अच्छा लगता है, उसके अंदर गर्म डालो गर्म रहता है, ठंडा डालो ठंडा रहता है. आपको कौन सा वाला अच्छा लगता है? मैं हूँ सफा और आप सुन रहे हैं इको स्विच ऑन FM 107. याद रखिए पानी की हर बूंद कीमती है और हर छोटी आदत एनवायरनमेंट के लिए एक पॉजिटिव स्टेप बन सकती है. छोटी सी आदत बदलें और एनवायरनमेंट के लिए एक बड़ा फर्क पैदा करें. सुनते रहें इको स्विच ऑन FM 107, दिल से देसी.
1: आप सुन रहे हैं FM

0: आप सुन रहे हैं FM 107
1: दिल से देसी।
2: अस्सलाम वालेकुम, आप सुन रहे हैं 60 सेकंड्स ऑफ बराका FM 107 पर। मैं हूं आपकी आरजे माविश खान। आज का टॉपिक है सादा जिंदगी गुजारने की अहमियत। सादा जिंदगी गुजारने का मतलब ये नहीं कि इंसान कुछ हासिल ना करे, बल्कि ये है जिंदगी को अननेसेसरी कॉम्प्लेक्सिटी से बचाया जाए। अक्सर हम मटेरियल चीजों के पीछे भागते हैं और सोचते हैं कि इसी में खुशी है, लेकिन असल सुकून सादगी में होता है। इस्लाम हमें एतदाल और सादगी का दर्ज देता है। जब इंसान सिंपल लाइफस्टाइल अडॉप्ट करता है तो उसका फोकस ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजों पर होता है, जैसे इबादत, रिश्ते और इनर पीस। ज्यादा एक्सपेक्टेशंस और कंपैरिजन स्ट्रेस का सबब बन जाते हैं, जबकि सादगी सुकून देती है। आज का अमल ये है कि अपनी जिंदगी में से किसी एक अननेसेसरी चीज को कम करें और सिंपल सोच को अपनाएं। हमारा आज का मैसेज। आप सुन रहे थे 60 सेकंड्स ऑफ बराका आरजे महावश के साथ।
1: आपने सुना हमें ऑन एयर, नाउ फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम @FM107 कतर। दिल से देसी।

0: का पहला देसी रेडियो स्टेशन FM 107 दिल से देसी.
1: One step to 2030.
2: वेलकम टू आवर सेगमेंट कॉल्ड वन स्टेप टू 2030. मैं हूं आपकी होस्ट नाजिया.
1: वन स्टेप टू 2030.
2: आज के सेगमेंट में हम बात करेंगे फ्यूचर ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, फ्लाइंग कार्स एंड हाइपरलूप. देखिए, आज की दुनिया में ट्रांसपोर्टेशन हमारी जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है. रोजाना लाखों लोग कार, बसेस, ट्रेन्स, एरोप्लेन्स के जरिए अपना सफर तय करते हैं, लेकिन बढ़ती हुई पॉपुलेशन और ट्रैफिक कंजेशन की वजह से ट्रेडिशनल ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स के कई चैलेंजेस जो हैं वो सामने आ रहे हैं. इसीलिए साइंटिस्ट और इंजीनियर्स ट्रांसपोर्टेशन के नए और इनोवेटिव सॉल्यूशंस पर काम कर रहे हैं. इनमें सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग कॉन्सेप्ट है फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप का. जी हाँ, फ्लाइंग कार्स एक ऐसे व्हीकल हैं जो रोड पर ड्राइव भी कर सकती हैं और ज़रूरत पड़ने पर हवा में भी उड़ सकती हैं. इनमें एडवांस इलेक्ट्रिक इंजन, AI सिस्टम और स्मार्ट नेविगेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है. कई कंपनीज इस टेक्नोलॉजी पर काम कर रही हैं और कुछ प्रोटोटाइप्स टेस्ट भी किए जा चुके हैं. जी हाँ, फ्लाइंग कार्स का सबसे बड़ा मकसद ट्रैफिक लोड को या ट्रैफिक कंजेशन को कम करना है और सफर को मजीद बेहतर बनाना है. सोचिए, अगर आपको ऑफिस पहुंचने के लिए रोड ट्रैफिक में 1 घंटा लगता है, तो फ्लाइंग कार शायद आपको 15 से 20 मिनट में आपकी मंजिल तक पहुंचा दे. वहीं हाइपर लूप क्या है? देखिए, हाइपर लूप एक अल्ट्रा फास्ट ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है जिसमें स्पेशली डिजाइन कैप्सूल्स लो प्रेशर ट्यूब्स के अंदर बहुत हाई स्पीड से ट्रैवल करती हैं. ये स्पीड 1000 किलोमीटर पर आवर से भी ज्यादा हो सकती है. सुन के आपको घबराहट हुई ना? जी हाँ, हाइपर लूप को फ्यूचर का ट्रांसपोर्ट इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये ट्रेन और एरोप्लेन दोनों के फायदे कंबाइन करता है. इससे शहरों के, मुल्कों के दरमियान फासले बहुत कम हो जाएंगे. इस टेक्नोलॉजी की अहमियत बहुत ज्यादा है. फ्लाइंग कार्स और हाइपर लूप ट्रांसपोर्टेशन के फ्यूचर को रीडिफाइन किया जा सकेगा. दुनिया भर में ट्रैफिक की प्रॉब्लम, पोल्यूशन, वक्त का जाया होना, ये सारी प्रॉब्लम्स का सलूशन. नए ट्रांसपोर्ट सिस्टम ना सिर्फ सफर को फास्ट बना सकते हैं बल्कि इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी बना सकते हैं. अगर सफर का वक्त कम हो जाए तो लोग अपनी फैमिली को, एजुकेशन को और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज के लिए ज्यादा वक्त निकाल सकेंगे. बिजनेस भी शायद ज्यादा इफिशेंट हो जाए और इकोनॉमिक ग्रोथ को सपोर्ट मिले. वैसे इसके फायदे बहुत हैं. फास्टर ट्रैवल, जो हम और आप समझते हैं, दूर का सफर घंटों में, मिनटों में कवर करना. रोड्स पर व्हीकल कम होंगे, ट्रैफिक जैम्स कम होंगे. वहीं बहुत से फ्यूचर मॉडल इलेक्ट्रिक एनर्जी पर चलने के लिए डिजाइन किए जा रहे हैं जिससे पोल्यूशन कम होगा. वहीं रिमोट एरियाज और दूर शहरों को एक बेहतर ट्रांसपोर्ट मिल सकता है. उसके बाद नई इंडस्ट्रीज, जॉब्स और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज पैदा होंगी. वहीं इसके कुछ नुकसान भी हैं. शुरू में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप प्रोजेक्ट्स बहुत महंगे हैं. हर शख्स इसे अफोर्ड नहीं कर सकेगा. फ्लाइंग कार्स के लिए हवा में ट्रैफिक मैनेजमेंट और एक्सीडेंट

0: प्रिवेंशन एक बड़ा चैलेंज होगा। वहीं हाइपर लूप के लिए नए ट्रैक्स और टनल्स की जरूरत होगी, जिस पर बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगेगी। वहीं पर टेक्नोलॉजी भी डेवलपिंग स्टेज में है और कई टेक्निकल मसाइल भी सॉल्व करना बाकी होगा। जी हाँ, गवर्नमेंट्स को नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाने पड़ेंगे ताकि पब्लिक सेफ्टी को यकीनी बनाया जा सके। वैसे फ्यूचर में फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप हमारी ट्रैवलिंग हैबिट को मुकम्मल तौर पर बदल सकते हैं। ऑफिसेज दूर होने के बावजूद लोग आसानी से कम्यूट कर सकते हैं। जी हाँ, टूरिज्म को बूस्ट मिलेगा। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की स्मार्ट सिटीज और ज्यादा एफिशिएंट बनेंगी। टाइम बचने से प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और शायद क्वालिटी ऑफ लाइफ भी इम्प्रूव करें। तो देखिए, फ्लाइंग कार्स और हाइपरलूप सिर्फ साइंस फिक्शन का हिस्सा नहीं है, बल्कि अब मुस्तकबिल की हकीकत बनने के लिए पूरी तरह से तैयार है। इन टेक्नोलॉजीज में कुछ चैलेंजेस जरूर हैं, लेकिन उनके पोटेंशियल बेनिफिट्स बहुत बड़े हैं। अगर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स और गवर्नमेंट्स मिलकर प्रोजेक्ट्स को कामयाब बनाते हैं, तो आने वाले सालों में सफर ज्यादा फास्ट होगा, सेफ होगा, इन्वायरमेंट फ्रेंडली भी हो सकता है। मुस्तकबिल के ट्रांसपोर्टेशन सिर्फ मंजिल तक पहुंचाने के जरिए नहीं होंगे, बल्कि वो दुनिया को पहले से ज्यादा कनेक्टेड और एफिशिएंट बना देंगे। व्हाट यू से? वेल, अभी के लिए इतना ही। मुझे यानी नासिया और शकीब अहमद, हम दोनों को इजाजत दीजिए। देखते हो, सुनते रहिए FM 107, दिल से देसी। One step to 2030.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.

0: Qatar's most heard radio station, FM 107. FM 107. Dil se desi.
1: FM 107 पेश करते हैं प्रोग्राम
2: फ्रॉड अवेयरनेस.
3: गाड़ी चला रहे हैं आप, एकदम से कॉल आती है आपके ब्लूटूथ पे.
4: असलामुअलैकुम.

0: कतर में आकर एक्सपेक्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है। सुनिएगा जरूर इकोनॉमिक लेंस, इकोनॉमिक लेंस हर सैटरडे 1:30 बजे से आरजे सर्वर मिर्जा के साथ सिर्फ एफएम 107 पर।
1: दोस्तों अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद। आज हम बात करेंगे एक चमकते हुए टॉपिक पे, यानी गोल्ड और सिल्वर इन्वेस्टमेंट पे। भाई पुराने दौर के खजाने से लेकर आज की ट्रेडिंग फ्लोर्स तक ये दोनों मेटल्स हमेशा वेल्थ, सिक्योरिटी और स्टेटस की निशानी रहे हैं। लेकिन आज की इकोनॉमी में क्या गोल्ड और सिल्वर अब भी एक स्मार्ट

0: चलिए इन सवालों को थोड़ा पॉलिश करते हैं और आज के एपिसोड में जानेंगे कि क्या हैं इनके फवायद।
1: कतर में आकर एक्सपर्ट तो बन गए, पर अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
0: भाई यहाँ पर मैं आपको लमसम अमाउंट समझाने की कोशिश करूंगा या जो फिगर दूंगा वो सिर्फ एग्जांपल्स के तौर पे हैं। कभी आप सुने और कहने लगे सरूर भाई ने तो इतना बताया था भाई गोल्ड और सिल्वर के बारे में, ऐसा तो नहीं है। तो यहाँ पर सिर्फ एग्जांपल के तौर पर हम बात करेंगे, जितने भी फिगर्स मैं बताऊंगा सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो जानते हैं कि व्हाट्स हैपनिंग ऑन प्लैनेट अर्थ। तो भाई गोल्ड पहुंच गया है 11,03,860 पर तोला, और सिल्वर है मान लीजिए 134 पर ग्राम। रुपए की बात कर रहा हूं मैं, मतलब 1,34,000 रुपए पर किलो। तो गोल्ड और सिल्वर की हालत अगर ये मानते हैं, ये है सबसे क्रेजी चार्ट। देखिए किस तरह कुछ कंट्रीज ने सालों से गोल्ड अपने रिजर्व्स में जमा किए और फिर अचानक 2024 के बीच में एक मैसिव जंप आया। ये सब देखकर बुजुर्गों की बात याद आती है, गोल्ड खरीद लो बेटा, गोल्ड खरीद लो। और हम उनको अपने हिसाब में समझाते लगते और कहते रहते कि भाई आपको म्यूचुअल फंड्स, SIPs, क्रिप्टो का क्या पता, आपने कभी कूल चीजों में इन्वेस्ट नहीं किया, गोल्ड कूल नहीं है, वगैरह वगैरह। लेकिन आज वही डेटा दिखा रहा है, निफ्टी 50 ने दिए हैं 13.5% रिटर्न्स लास्ट 10 सालों में, जबकि गोल्ड ने दिए हैं मोर देन 15%। तो वो बुजुर्ग आज मुस्कुराते हैं और कहते हैं देखा बेटा, अब समझे, ये अब समझ में आया आपके। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस, मैं हूं आपका दोस्त सरवर मिर्जा, आपका फाइनेंशियल गाइड फॉर हैप्पी लिविंग। और दोस्तों इस प्रोग्राम में हम आपको सिर्फ मालूमात ही फराहम नहीं करेंगे बल्कि आपके मैसेजेस, एक्सपीरियंसेस और फीडबैक भी इस शो का हिस्सा बनेंगे, जिनको आप शेयर कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर 666-22107 या हमारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, जहां हम फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स, यूट्यूब और टिकटॉक पर आपके लिए हाजिर खिदमत हैं। हैंडल हमारा इसी नाम से FM 107। तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि गोल्ड और सिल्वर की प्राइसेस क्यों सोर कर रहे हैं और क्या आपको इस वक्त बाई करना चाहिए, और अगर हाँ तो एग्जैक्टली आपको इन्वेस्ट कैसे करना चाहिए, ये सब आज के प्रोग्राम में जानेंगे। तो दोस्तों कुछ इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स हैं जिन पे हम बात करेंगे, तो चलिए पहले थोड़ा सा ब्रश अप कर लेते हैं। सबसे पहले जानिए इन्फ्लेशन हेज के बारे में। ऐसी एसेट जो अपनी वैल्यू को बरकरार रखती है या बढ़ती है जब प्राइस राइज करते हैं। वहीं लिक्विडिटी क्या है, किसी एसेट को कैश में कन्वर्ट करने की आसानी। गोल्ड बहुत ज्यादा लिक्विड होता है। स्पॉट प्राइस गोल्ड या सिल्वर की फॉरेन डिलीवरी के लिए करंट मार्केट प्राइसेस। वहीं डाइवर्सिफिकेशन, इन्वेस्टमेंट को मुख्तलिफ असेट्स में स्प्रेड करना ताकि रिस्क कम हो। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ, आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला हूँ, तो कहीं भी मत जाइएगा, जुड़े रहिए हमारे साथ, सुनते रहिए FM 107।

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: तो दोस्तों सबसे पहले फंडामेंटल्स में बात करते हैं। गोल्ड हमेशा से लोगों का पसंदीदा और ट्रस्ट वाला एसेट रहा है। इंसानी तारीख के बहुत लंबी ड्यूरेशन तक जब करेंसीज का कंसेप्ट आया तो उनकी वैल्यूज को गोल्ड के जरिए बैक किया जाता रहा। मिसाल के तौर पर अगर आपके

के बैकग्राउंड में कुछ बड़ा हो रहा है। अगर आप टाइमलाइन देखें तो हर नए ऑल टाइम हाई के बाद रिकवरी पीरियड छोटा होता गया है। पहले 31 साल, फिर 12 साल, फिर 4 साल और अब सिर्फ कुछ महीने। इसके पीछे क्या वजह है? तो भाई सबसे पहले जानते हैं डिजिटाइजेशन ऑफ गोल्ड के हवाले से। अब गोल्ड लेना और बेचना बहुत आसान हो गया है। आपको फिजिकल ज्वेलरी या गोल्ड बार्स खरीदने की जरूरत नहीं, आप डिजिटल गोल्ड को इंस्टेंटली

डेट बन जाता है और हर लोन की तरह इस डेट पर भी इंटरेस्ट पेमेंट्स होती हैं जब वो इंटरेस्ट पे नहीं कर पाते तो वो और ज्यादा पैसा प्रिंट करते हैं जो कि इन्फ्लेशन का सबब बनता है भाई इन्फ्लेशन पर भी हमने अपने इस प्रोग्राम इकोनॉमिक लेंस पे बात करी है आप हमारे वेब एड्रेस पर जाकर विच इज www.urduradio.qa वहां पर आप

और फिर वो गोल्ड की तरफ रुजू करते हैं। गोल्ड एक फाइनेट एसेट है जिसे प्रिंट नहीं किया जा सकता। बात करें सिल्वर की तो भाई ये हैं छोटे भैया द लिटिल ब्रदर, और फिर आता है इनका नंबर जो गोल्ड के पीछे पीछे चलता है जैसे उसका छोटा भाई, इसलिए मैंने कहा। तो 2020 में सिल्वर का रेट था 40,000

सिर्फ 5 सालों में तकरीबन 3 गुना इजाफा। इवन बेस्ट परफॉर्मिंग स्टॉक्स ने भी इतना रिटर्न नहीं दिया। क्यों? क्योंकि सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड ने आसमान छू लिया है। 10 साल पहले तक लगभग 45% सिल्वर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में यूज होता था, आज ये रेशियो 60-65% तक पहुंच गया है। सिल्वर का इस्तेमाल काफी चीजों में होता है, जैसे कि सोलर पैनल्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, स्मार्टफोन्स, टेलीकॉम इक्विपमेंट्स, मेडिकल डिवाइसेस एज वेल एज वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम्स में। इसका मतलब ये है कि चाहे प्राइजेस बढ़ भी जाएं, इंडस्ट्रीज को सिल्वर लेना ही पड़ता है। ये प्राइस इनलास्टिक है, इसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है और ये कॉन्स्टेंट डिमांड ही प्राइस को ऊपर ले जाता है। चलिए अब बात करते हैं दोनों के रेशियो के हवाले से, यानी गोल्ड सिल्वर रेशियो के बारे में। तो एक बहुत इंटरेस्टिंग मेट्रिक है गोल्ड टू सिल्वर रेशियो की, यानी आपको एक आउंस गोल्ड खरीदने के लिए कितने आउंस

रेशियो 1 था, मतलब लोगों के नजदीक सिल्वर और गोल्ड की वैल्यू लगभग बराबर थी। 2020 में ये रेशियो स्पाइक करके पहुंच गया 127.1

ओवरप्राइज है, लेकिन असल में किसी को भी श्योर नहीं कि कौन सा सही है। कुछ एनालिस्ट का कहना है कि सिल्वर अभी भी 30-35% अंडर वैल्यूड है, जबकि दूसरे एनालिस्ट समझते हैं कि गोल्ड की प्राइस ज्यादा हो गई है और उसमें 20-25% करेक्शन आ सकता है। लेकिन हिस्टोरिकली जब भी गोल्ड सिल्वर रेशियो हाई होता है तो ये इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी का सिग्नल होता है, क्योंकि लोग अनसर्टेन टाइम्स में गोल्ड ज्यादा खरीदते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। प्रोग्राम सुन रहे हैं आप इकोनॉमिक लेंस सर्वर मिर्जा के साथ। आगे आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट बताने वाला

0: अपने मुल्क से दूर कमाना जब आ जाता है तो उसके बाद अगला स्टेप होता है खर्च करना। पर इसका एक तरीका है जो आपके बैंक बैलेंस को हमेशा बैलेंस रख सकता है, और ये इकोनॉमिक लेंस से देखना परखना बेहद जरूरी है।
1: और आजकल वही हो रहा है, कई कंट्रीज गोल्ड को रख रही हैं। तो भाई अब सवाल ये होता है कि शुड यू इन्वेस्ट इन गोल्ड एंड सिल्वर। गोल्ड दुनिया के सबसे सेफ और स्टेबल असेट्स में से एक है जो आप होल्ड कर सकते हैं। भाई अगर आप जवान हैं, यंग हैं, तो अपने पोर्टफोलियो का तकरीबन 10% गोल्ड में एलोकेट करें। अगर आप 40s या 50s में हैं तो इसे 15-20% तक बढ़ा सकते हैं, या उससे भी ज्यादा अगर आप चाहें। सेफ असेट्स में शामिल हैं पीएफ यानी प्रोविडेंट फंड, पीपीएफ यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, एनपीएस नेशनल पेंशन सिस्टम, रियल एस्टेट और हाँ गोल्ड। गोल्ड ने पिछले 10 सालों में एवरेज 15% रिटर्न दिया है, जो कि निफ्टी 50 से भी बेहतर रहा है। 5, 10, 15 और फिर 20 साल के हर पीरियड में गोल्ड ने निफ्टी को आउट परफॉर्म किया है। चलिए अब आपको बताता हूँ गोल्ड ETFs के बारे में, जो डायरेक्ट और सिंपल हैं। गोल्ड ETFs बिल्कुल स्टॉक की तरह एक्सचेंज पर ट्रेड होते हैं। हर यूनिट आमतौर पर 1 ग्राम गोल्ड के बराबर होती है और आप फ्रैक्शनल क्वांटिटीज भी खरीद सकते हैं। ये डायरेक्टली फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं जो सिक्योर वॉल्ट्स में इन्वेस्टर्स के लिए रखा जाता है। आपको उन्हें बाय सेल करने के लिए डीमैट अकाउंट की जरूरत होती है, बिल्कुल शेयर्स की तरह। ये हाईली लिक्विड, ट्रांसपेरेंट और लो एक्सपेंस रेशियो वाले होते हैं, आमतौर पर 0.5% से 1% के दरमियान। दूसरी तरफ ये जानिए कि गोल्ड म्यूचुअल फंड्स खुद फिजिकल गोल्ड नहीं खरीदते, ये गोल्ड ETFs में इन्वेस्ट करते हैं और मल्टीपल ETFs को बैलेंस करके स्टेबल रिटर्न देने की कोशिश करते हैं। ये फंड्स रियल टाइम में ट्रेड नहीं करते, आप इन्हें सिर्फ दिन के एंड में बाय या सेल कर सकते हैं। NAV NAV यानी नेट असेट वैल्यू के बेसिस पर जो 3:30 PM पर डिक्लेयर होती है। इनका एक्सपेंशन रेशियो ज्यादा होता है, तकरीबन 1-2%, क्योंकि इनमें एडिशनल मैनेजमेंट, रिसर्च और एग्जीक्यूशन कॉस्ट शामिल होती हैं। तो भाई चलिए अब जानते हैं प्रोग्राम के हिस्से में कि सबसे आसान या सबसे बेहतरीन तरीका क्या है इसको खरीदने का। भाई ज्वेलरी को इन्वेस्टमेंट के लिए अवॉइड करें, मेकिंग चार्जेस और प्योरिटी के इश्यूज आपके रियल रिटर्न को कम कर देते हैं। ज्वेलरी सिर्फ पहनने के लिए खरीदें, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दूसरा, गोल्ड लोन्स हो सकते हैं स्मार्ट ऑप्शन। अपनी ज्वेलरी बेचने के बजाय आप उसे कोलेट्रल के तौर पर यूज कर सकते हैं। गोल्ड लोन्स का इंटरेस्ट रेट होता है 10-12%, जबकि पर्सनल लोन्स का रेट होता है 14-16%। वहीं डिजिटल गोल्ड या SIPs, भाई बहुत से लोग, अमूमन ख्वातीन को देखा गया है, हर महीने SIP करती हैं डिजिटल गोल्ड में मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के जरिए। ये फ्लेक्सिबल होता है, आप इसे बेच भी सकते हैं या बाद में ज्वेलरी में कन्वर्ट भी कर सकते हैं। तो भाई लो एक्सपेंस रेशियो

कंपनीज ने 15% एनुअल रिटर्न दिए हैं जो निफ्टी से बेहतर हैं। और आखिर में सिल्वर ETFs, इंडिया में ये एक नया ऑप्शन है, 2022 से अवेलेबल है। रिटर्न हाई रहे हैं, तकरीबन 30% एनुअली फॉर 3 ईयर्स, लेकिन वोलेटिलिटी भी ज्यादा रही है। वार्निंग दे रहा हूँ, इसको समझ लीजिएगा। गोल्ड और सिल्वर वोलेटाइल एसेट हैं, ये फिक्स्ड रिटर्न इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हैं। 2008 की ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के दौरान गोल्ड की प्राइसेस क्रैश भी हुई थी क्योंकि इन्वेस्टर्स को कैश की जरूरत थी, लेकिन उसके बाद 2008 से 2011 के दरमियान गोल्ड की प्राइस 3 गुना हो गई। सिल्वर की वोलेटिलिटी और भी ज्यादा होती है। अगर गोल्ड 10% गिरता है तो सिल्वर 15-20% तक गिर सकता है, इसलिए लमसम इन्वेस्टमेंट से परहेज करें। बेहतर ये है कि आप मंथली SIPs के जरिए इन्वेस्ट करें, चाहे डिजिटल गोल्ड हो या ETFs। टाइम के साथ प्राइसेस एवरेज हो जाती हैं और आपको कंपाउंडिंग का फायदा मिलता है। तो भाई आते हैं कंक्लूजन पर। हाँ, आपके पोर्टफोलियो का 10-20% हिस्सा गोल्ड और सिल्वर में होना चाहिए। ये टाइमलेस हैं, ग्लोबली ट्रस्टेड हैं और फाइनेंशियली और इमोशनली रेजिलिएंट हैं। कहीं से भी ऐसा सिग्नल नहीं मिलता कि इन मेटल्स की डिमांड जल्दी खत्म होने वाली है, ना इंडस्ट्रियल लेवल पर, ना इकोनॉमिक और ना ही जियोपॉलिटिकल लेवल पर। गोल्ड और सिल्वर हर वॉर, क्रैश और करेंसी कोलैप्स से सर्वाइव कर चुका है। ये सिर्फ असेट्स नहीं, ये अनसर्टेनिटी के खिलाफ इंश्योरेंस हैं। आज के दौर में जब दुनिया इन्फ्लेशन, डेट और ग्लोबल टेंशन से गुजर रही है, तो ये मेटल्स केओस से सुकून देते हैं। एक बैलेंस्ड पोर्टफोलियो जिसमें 10-20% एक्सपोजर गोल्ड और सिल्वर में हो, आपकी वेल्थ को प्रोटेक्ट कर सकता है, इन्फ्लेशन से हेज कर सकता है और आपको रात को सुकून से सुला सकता है। तो दोस्तों, अगली दफा जब आप किसी स्टोर्स की विंडो में गोल्ड को चमकते हुए देखें, तो याद रखें कि ये सिर्फ ज्वेलरी नहीं है, ये एक टाइमलेस कहानी है ट्रस्ट, कल्चर और इकोनॉमिक स्ट्रेटजी की। चाहे आप एक गोल्ड कॉइन में इन्वेस्ट करें, एक सिल्वर ETF में या एक डिजिटल वॉल्ट में, और असल बात यह है कि आप अपने गोल्स को समझें और सोच समझ कर इन्वेस्ट करें, क्योंकि दिन के आखिर में असली दौलत सिर्फ उस चीज में नहीं होती जो चमकती है, बल्कि उसमें होती है जो वक्त के साथ अपनी वैल्यू बरकरार रखती है। मार्केट फ्लक्चुएट करती हैं, करेंसीज बदलती हैं, लेकिन गोल्ड और सिल्वर कभी अपनी चमक नहीं खोते। स्टे स्मार्ट, स्टे इन्वेस्टेड। तो भाई इसी के साथ दोस्तों, सरवर मिर्जा और प्रोग्राम साउंड डिजाइनर शकीब अहमद जी को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी अगले प्रोग्राम में, एक नए मौजू के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने वॉलेट का ख्याल रखिए और सुनते रहिए FM 107।

0: Anytime, anywhere.
1: Yes, anytime, anywhere.
0: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107. Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
2: Gen Z, Gen X, Gen Alpha, Millennials. ये सब महज टर्म्स नहीं हैं, ये अलग अलग ख्याल आदतें, इन सब को अगर एक दूसरे से मुखातिब कराया जाए तो क्या होगा?
3: तो ये जानने के लिए सुनिएगा जनरेशन टॉक्स, जनरेशन टॉक्स विद आरजे कबीर एंड आरजे सफा एवरी ट्यूसडे एट 2:30 PM ओनली ऑन FM 107. दिल से देसी, दिल से देसी.
4: दोस्तों, ट्रैफिक के रेगुलेशंस की पाबंदी करना हर ड्राइवर की जिम्मेदारी है, खासतौर पर स्कूल जोन्स के आसपास। ड्राइवर्स को रोड मार्किंग्स जैसे लेन्स और स्टॉप लेन्स और पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग्स का ख्याल रखना

0: बचाता है। हर एक शख्स का फर्ज है कि वो इन रूल्स की पाबंदी करे। पेरेंट्स, टीचर और लोकल कम्युनिटी सब मिलकर स्टूडेंट्स की सेफ्टी को बढ़ावा दे सकते हैं। वजारत दाखिला का कहना है कि अगर हम ट्रैफिक रेगुलेशंस फॉलो करें तो स्कूल के आसपास का माहौल ज्यादा सिक्योर और स्टूडेंट्स के लिए सेफ बन जाता है। FM 107 आपकी और आपकी फैमिलीज की हिफाजत की दुआ करता है। सेफ रहें और खुश रहें।
1: Gen Z की डिक्शनरी में एक वर्ड होता है FOMO, फीलिंग ऑफ मिसिंग आउट, यानी एहसास कि कुछ तो छूट गया है। पर हम है ना, 2026 का पूरा कैलेंडर, उसमें जो भी इवेंट्स आएंगे आप अपडेटेड रहेंगे। सो नो फोमो एवर अगेन। सुनिए कतर 2026 RJ फजील के साथ। रहिए अपडेटेड हर ट्यूसडे रात 9 बजे से सिर्फ FM 107 पर। दिल से देसी।
2: आप सुन रहे हैं FM 107
3: दिल से देसी।

0: number one hits music station.
1: Anytime, anywhere.
2: Yes, anytime, anywhere.
1: कभी भी और कहीं भी आप सुन सकते हैं FM 107.
3: FM 107.
1: Log into our website urduradio.qa or download the app QMC now.
4: दोस्तों, ट्रैफिक लॉ के आर्टिकल नंबर 55 के क्लॉज नंबर 3 के तहत गाड़ी चलाते वक्त 10 साल की उम्र से कम के बच्चों को आगे वाली पैसेंजर सीट पे बैठालने की इजाजत नहीं है। बच्चों को आगे वाली सीट पे बैठालने से आप ड्राइविंग करते वक्त डिस्ट्रैक्ट हो सकते हैं। बच्चों को गाड़ी की बैक सीट पे बिठाने से आपकी और आपकी फैमिली की हिफाजत में मदद मिलती है। FM 107 आपके महफूज सफर की ख्वाहिश करता है। कुरान को समझने के लिए आसान कर दिया गया है। अलबत्ता हर शख्स अपनी समझ और तलब के मुताबिक इससे फैज हासिल करता है, मगर जो भी कुरान की सोहबत में बैठे वो खाली हाथ नहीं लौटता। इंसान इस नूरे हिदायत से मरहला बा मरहला कुछ ना कुछ हासिल करता रहता है, यहाँ तक के वो ऐसे मानी और हकाइक तक पहुँच जाता है जो अकलों को हैरत में डाल देते हैं। तिलावत, तदब्बुर और फहमे कुरान के एक खूबसूरत सफर में शामिल हो जाइए तलहा अशरफुज़्ज़मान के साथ। प्रोग्राम तहफीमुल कुरान इतवार से जुमेरात रात 10 बजे से सिर्फ उर्दू रेडियो FM 107 पर।

0: FM 107 से अब पेश खिदमत है तिलावत कलाम पाक। मतलूआ आयात का उर्दू तर्जुमा तिलावत के फौरन बाद पेश किया जाएगा।
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم

ये लोग कभी जमीन में चले फिरे नहीं हैं कि इन्हें उन लोगों का अंजाम नजर आता हो जो इनसे पहले गुजर चुके हैं। वो इनसे ज्यादा ताकतवर थे और इनसे ज्यादा जबरदस्त आसार जमीन में छोड़ गए हैं, मगर अल्लाह ने उनके गुनाहों पर उन्हें पकड़ लिया और उनको अल्लाह से बचाने वाला कोई न था। ये उनका अंजाम इसलिए हुआ कि उनके पास उनके रसूल बय्यनात लेकर आए और उन्होंने मानने से इनकार कर दिया। आखिरकार अल्लाह ने उनको पकड़ लिया। यकीनन वो बड़ी कुव्वत वाला और सजा देने में बहुत